मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन और ओटीटी वेव्स एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 14वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 4 जून सन 2026। सुबह के 5:57 होने को है। प्रातः वंदन के साथ प्रातःकालीन सभा आरंभ करते हैं।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श होगा। इसके बाद गृहमंत्री त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी माझी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
1: नई दिल्ली के

मालवीय नगर इलाके में कल एक गेस्ट हाउस में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। उसने बताया कि इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि घटना के मजिस्ट्रेट जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में

0: बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाली प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। भारत ने सैफ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से मुकाबला होगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।
2: प्रातः बेला की आराधना वंदना।

पंछियों की बोली सुनकर पूरब के आसमान में जैसे सूरज ने किवाड़ खोल दिए, बिखर गया उजाला। एक नया दिन निकल आया, एक नया दिन जिसके पास हर आंगन के लिए रोशनी है, एक नया दिन जिसके पास हर जीवन के लिए नई सांस है, एक नया दिन जिसके पास नई आशा है, नया विश्वास है। सघन अंधकार से फूटती ये भोर जैसे एक विश्वास है कि अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, रोशनी को होना ही है, उजाले को फैलना ही है। और अपने इसी विश्वास की रोशनी में हम ईश्वर के होने को पाते हैं। तो चलिए इसी आस्था को समेटे आरंभ करें आज की वंदना। प्रथम नमन अपने राष्ट्र, अपने वतन को, जिसे अपना कहते हुए हर भारतीय गौरव से भर जाता है।

मुंडकोपनिषद में कहा गया है, न चक्षुषा ग्रह्यते नापि वाचा ना नैरदेवैस्य तपसा कर्मणा वा, ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध तत्वस्ततस्तु तं पश्यते निष्फलं ध्यायमानः। अर्थात आँखों से, जीभ से या अन्य इंद्रियों से उस ईश्वर को नहीं जाना जा सकता, मात्र तप और कर्मकांड भी उसकी अनुभूति नहीं करा सकते। जिस मनुष्य का मन पवित्र और शांत है, वो निर्मल ज्ञान की सहायता से गंभीर ध्यान का आश्रय लेकर उसे अनुभूत कर सकता है, इस जीवन और जगत के रहस्य को समझ सकता है।

भक्ति का संसार अद्भुत है, जहां डूबकर भक्त पार हो जाता है। अपने कृष्ण के लिए गोपियों का समर्पण ऐसा ही था। वो कण कण में कृष्ण तत्व को निहारती, अपनी मौन प्रार्थनाओं में उन्हें ही पुकारती, उस परम तत्व को प्राप्त हुई। कृष्ण रंग में डूबकर वो इस भवसागर से पार हो गई। संपूर्ण समर्पण और प्रेम की यही महिमा है।

भक्ति का मार्ग, प्रतीक्षा का मार्ग है। जिसने हमें बनाया उस पर सब कुछ छोड़कर उसकी राह तकने का मार्ग है। पूर्ण समर्पण के साथ प्रार्थना करने से ही ईश्वर की कृपा मुक्त दान की तरह भक्त पर उतरती है। इस दान की प्रतीक्षा में ही भक्त कहता है, सर सूखे पंछी उड़े और अनसरन समाही, दीन मीन बिनु पंख के कहु रहीम कह जाही।

ईश्वर का नाम स्मरण, सत्संग हमारे जीवन को बदल कर रख देता है, क्योंकि उस ईश्वर का नाम जपना उससे हमारा संपर्क है, एक ऐसा संपर्क जो हमें भीतर से बाहर तक पवित्र और आलोकित कर देता है।

0: इसके साथ ही संपन्न होती है आज की वंदना। गायक स्वर थे शुभदा मेहराल, पामेला सिंह, परवीन सुल्ताना और जमीर हुसैन के।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए अब सुनिए श्रृंखलित श्री रामचरितमानस कान। आज आप सुनेंगे इसकी पहली कड़ी।

श्री रामचरितमानस का स्थान हिंदी में ही नहीं जगत के साहित्य में निराला है। ऐसा सर्वांग सुंदर श्रेष्ठतम काव्य के सभी लक्षणों से युक्त, साहित्य के सभी रसों से परिपूर्ण तथा काव्य कला की दृष्टि से सर्वोच्च कोटि का ग्रंथ अन्यत्र दुर्लभ है। प्रथम प्रकरण के रूप में प्रस्तुत है बाल कांड का प्रारंभिक श्लोक मंगलाचरण, जिसमें भक्त कवि ने सर्वप्रथम अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों की कर्त्री सरस्वती तथा मंगलकारी गणपति की वंदना की है। तत्पश्चात श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप पार्वती और शंकर की स्तुति की गई है। भक्त कवि की उक्ति है कि उसने अनेक पुराणों, वेद और शास्त्र से सम्मत आदि रामायण में वर्णित तथा अन्यत्र उपलब्ध रामकथा को अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत किया है। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मात नौती।

0: श्रृंखलित श्री रामचरित मानस गान की पहली कड़ी आज आप सुन रहे थे पंडित जसराज और साथियों की आवाज़ में। संगीत रचना सतीश भाटिया की थी। इसी के साथ आज की ये पहली कड़ी यहीं संपन्न करते हैं। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। चिंतन के अंतर्गत सुनिए डॉक्टर राजेंद्र जोशी का आलेख पल्लव।
1: प्रकृति के चमत्कार देखते ही बनते हैं। पूरी की पूरी सृष्टि सौंदर्यमय है। धारा से गगन तक जहां जहां नजरें जाती हैं, मनमोहक दृश्यवलियों की छटाएं देखते ही बनती हैं। कवियों और चित्रकारों ने ऐसे दृश्यों की सुंदर और आकर्षक उपमाएं देकर अपने भावों और विचारों के माध्यम प्राकृतिक सौगातों का जो वर्णन किया है, वो हमें सत्यम शिवम सुंदरम के अनुभव का ज्ञान कराता है। प्रकृति में जो सुंदर है वही सत्य है, और जो सुंदर और सत्य है वही शिव है। कवियों और लेखकों ने यदि अपने भावों और कोमल विचारों में सहज और सरल शब्दों में प्रकृति की छवि उतारकर उनमें रंग बिरंगे अर्थ भरे हैं, तो तूलिका के जरिए चित्रकारों ने प्रकृति नटी का ऐसा श्रृंगार किया है जैसे उनमें रंग नहीं शब्द भर दिए हों। प्रकृति जगह जगह मुदित होकर बोल देती है। नदी, पहाड़, जंगल और बाग बगीचे अपनी अपनी मस्ती में अपने अपने आचरण के अनुरूप अपनी अठखेलियां करते रहते हैं। इस तरह की लीलाओं के मन लुभावन दृश्य वनांचलों, अमराइयों, मार्गों के किनारे और गांव के आसपास की भूमि पर खड़े खड़े परोपकार का संदेश देते हैं। पेड़ों के पत्तों की ध्वनि भी बड़ी ही सुर और ताल में होती है। प्रायः हर आकार के पत्तों की करतल ध्वनियों के स्वर में अंतर सुनाई देता है। हवाएं जब इन पत्तों के तानों को छेड़ जाती है तो उससे जो संगीत निकलता है उससे ज्ञान हो जाता है कि कौन सी और कैसी आवाज पीपल के पत्तों की हलचल की है, कौन सी आवाज वटवृक्ष और तमाल वृक्षों के स्पंदन से निकली है। मैदानी और पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाले वृक्षों की तरह या उससे कमोवेश आकार में खड़े सरिताओं, सागरों और सरोवरों से लगे क्षेत्रों में जिन वृक्षों की मात्रा अधिक होती है, उनमें बड़े बड़े पत्तों वाले पेड़ ज्यादा होते हैं। इन पत्तों की सुंदरता के कारण इसके वृक्ष देखने में आकर्षक, छायादार और सघन होते हैं। प्रेमी जनों के साथ ही भाव प्रधान लोगों, विशेषकर कवि हृदय वाले लोग बिना आसक्त हुए नहीं रह पाते हैं। ऐसे दृश्यों का वे बड़ी अलंकारिक शब्दावलियों में वर्णन करते हैं। तरुणि तनुता तट तमाल तरुवर बहु छाए। श्री रामचरित मानस में भी प्रकृति के इसी तरह के सुहावने दृश्यों के अनेक चित्र देखने को मिलते हैं। वनवास काल में श्री रामचंद्र, लक्ष्मण और सीता वन विचरण के समय विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के पेड़ों के बीच से गुजरते हुए

0: दिखाए गए हैं। वनवास के दौरान अनेक ऐसे स्थल मिलते हैं जहां सरोवर के किनारे हैं और जंगली वृक्षों के साथ ही फूल फल और लता बेलों की डालियों का वर्णन है। श्री रामचरितमानस का अरण्य कांड और सुंदर कांड वनांचल की विशेषताओं और वहां के जीवन में प्रकृति की उपयोगिता के अप्रतिम उदाहरण हैं। ताल समीप मुनिन् गृह छाए, चहु दिसि कानन विटप सुहाए, चंपक बकुल कदंब तमाला, पाटल पनस परास रसाला। सुंदर झील के किनारे और उसके आसपास ऋषि मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं। उसके चारों ओर सुंदर वृक्ष हैं, चंपा, मौलसरी, कदंब, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक, आम आदि। पेड़ों के पत्तों की ठंडी ठंडी हवाएं और उनके रसों से प्राणियों को जीवनदायिनी ऊर्जा प्राप्त होती है। अलग अलग प्रजातियों के पत्तों में औषधियां छुपी हुई हैं। अनेक रोगों के उपचार में उपयोग आने वाली पत्तियां जहां स्वास्थ्यवर्धक हैं, वहीं वह आर्थिक उपलब्धियों का भी बहुत बड़ा माध्यम होती हैं। मौसम के पास एक समय सारणी यानी कैलेंडर है, जिसके हिसाब से पेड़ों में कोंपलें आती हैं, अर्थात बाल्यकाल आता है। हरे हरे खड़खड़ाते पत्ते यौवन की तरह प्रतीत होते हैं, और फिर बसंत ऋतु में ये पत्ते वृद्ध और असहाय होकर अपनी पकड़ छोड़ देते हैं और जमीन में मिल जाते हैं। पत्ते एक तरह से मनुष्य जीवन का दर्शन हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से कृषक मित्रों के लिए। अब पेश है आज की कृषि चर्चा। विषय है मृदा सौरीकरण का महत्व। वार्ताकार डॉक्टर अनुराधा कुमारी, क्षमा कीजिए, वार्ताकार डॉक्टर आराधना कुमारी।
2: आज की कृषि चर्चा में हम बात करेंगे मृदा सौरीकरण के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि मूल्यवान फसलों एवं नर्सरी फसल हमें बहुत उपज देते हैं तथा वो हमारे लिए बहुत लाभकारी होते हैं, अतः इसमें खरपतवार व मृदा जनित फसल रोगों के नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है, और इसके लिए मृदा सौरीकरण एक बहुत ही प्रभावी एवं पर्यावरण के लिए मित्रवत विधि मानी गई है। इस विधि में गर्मी के दिनों में मुख्यतः अप्रैल, मई तथा जून में उचित मृदा नमी युक्त तैयार खेत को पारदर्शी पॉलीथीन सीट से ढककर चारों तरफ से सील कर देते हैं। फलस्वरूप अधिकाधिक सौर ऊर्जा मिट्टी के अंदर प्रवेश करके उसका तापमान बढ़ा देती है, जबकि रात के समय यह पॉलीथीन शीट मिट्टी की ऊष्मा को बाहर निकलने से रोकती है। इस प्रकार मृदा का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी अधिक पहुंच जाती है। लंबे समय तक उच्च तापमान बने रहने से मृदा में पाए जाने वाले कई प्रजातियों के खरपतवार के बीज मर जाते हैं। इसके अलावा मृदा जनित रोग फैलाने वाले कई तरह के कवक, निमेटोड तथा जीवाणु भी नष्ट हो जाते हैं। इससे फसलों की वृद्धि और विकास पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ता है। मृदा सौरीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नगण्य होता है और पर्यावरण को भी कोई विशेष नुकसान नहीं पहुँचता है। अतः एकीकृत खरपतवार, बीमारी व कीड़ों के प्रबंधन में इस विधि को विशेष स्थान दिया जाना चाहिए। वर्तमान परिदृश्य में जबकि विश्व स्तर पर जैविक एवं टिकाऊ खेती की वकालत की जा रही हो, वहाँ फसलों में खरपतवारों का नियंत्रण अति आवश्यक है, क्योंकि खरपतवारों से फसल की उपज में 30-80% तक की कमी आंकी गई है। रसायनों का उपयोग जैविक खेती में वर्जित होने के कारण मृदा सौरीकरण एकमात्र वैज्ञानिक विकल्प के रूप में अपनाया जा सकता है। इसी प्रकार खरपतवार तथा मिट्टी में पाए जाने वाले अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों के नियंत्रण के लिए मृदा सौरीकरण तकनीक कारगर साबित होती है। इस तकनीक के तहत सामान्य बातों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है, जैसे कि सौर ऊर्जा का अवशोषण एवं संचयन अधिक हो, इसके लिए पतली एवं पारदर्शी पॉलीथीन शीट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सौर ऊर्जा के अधिकतम शोषण तथा मृदा के तापमान में अधिकतम वृद्धि के लिए पॉलीथीन को इस तरह से बिछाना चाहिए कि जमीन से बिल्कुल चिपकी रहे एवं उसके नीचे कम से कम हवा का आगमन हो, जिससे सौर ऊष्मा का अधिक शोषण एवं मृदा के तापमान में अधिक वृद्धि हो सके। इसके लिए खेतों का अच्छी

0: तरह से समतल होना आवश्यक है। मृदा में नमी की मात्रा इस तकनीक की सफलता का एक मुख्य कारक है। इसलिए पॉलीथीन बिछाने से पहले खेत की हल्की सिंचाई लगभग 50 मिलीमीटर तक कर देना अति आवश्यक है। इससे मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवाणु पर सौर ऊष्मा का प्रभाव बढ़ जाता है तथा साथ ही साथ ऊष्मा का संचालन अधिक गहराई तक होता है। तीव्र गर्मी वाले महीनों में जब खेत में कोई फसल नहीं हो तो सौरीकरण करना तथा अधिक से अधिक समय तक पॉलीथीन बिछा कर रखने से इस तकनीक की सफलता में वृद्धि होती है। मृदा सौरीकरण का प्रभाव मुख्यतः भूमि के ऊपरी सतह तक रहता है। इसके प्रभाव को ज़्यादा गहराई तक पहुँचाने के लिए सौरीकरण की अवधि 8 से 10 सप्ताह की होनी चाहिए।
1: मृदा का सौरीकरण, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर आराधना कुमारी से इस विषय पर जानकारी। इसी के साथ कृषि चर्चा अब यहीं संपन्न होती है। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। समय है एक अंतराल का।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। आकाशवाणी से प्रसारण हेतु कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रित करने संबंधित सूचना। प्रसार भारती आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग हेतु पात्र प्रोडक्शन हाउस, निर्माता, अधिकार स्वामी, एग्रीगेटर, कंटेंट क्रिएटर्स को आमंत्रित करता है। यह कार्यक्रम सोर्सिंग, राजस्व साझाकरण या रेवेन्यू शेयरिंग प्रायोजित अथवा स्पॉन्सर्ड एवं निःशुल्क या ग्रेटिस आधार पर किया जाएगा। यह सब प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए संशोधनों और आदेशों के अनुरूप होगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि प्रस्ताव जमा करने से पहले वे प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों एवं आदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ये सभी दस्तावेज प्रसार भारती और आकाशवाणी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आकाशवाणी भोपाल से हिंदी, उर्दू अथवा सिंधी भाषा में रेडियो
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। केन्द्रीय मंत्रिमण्डलेन विमानन परिवहन मार्ग आधारभूत संरचना क्षेत्रेषु महत्वपूर्णाः योजनाः अनुमोदिताः। पश्चिम एशिया संकट कारणेन वर्धितेषु इंधन मूल्येषु भारतीय विमान सेवानां कृते विमान इंधनस्य अर्थात ATF मूल्यस्य स्थिरीकरणार्थं तैल विपणन समवायेभ्यः सहस्रकोटि रूप्यकाणां आयव्यय सहायतां प्रदातुं प्रशासनं निर्णयं कृतवत्। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव अवोचत यत् एतेन विमानन क्षेत्र संबद्धाः प्रायः 77 लक्ष आजीविकाः सुरक्षिताः भविष्यन्ति। सहायता योजनेयं 36 मासपर्यन्तं प्रवर्तयिष्यते। मंत्रिमण्डलेन दिल्ली निकटवर्ती क्षेत्रे वायु प्रदूषण नियन्त्रणार्थमपि एकस्याः योजनायाः अनुमोदनं कृतम्। द्विवर्षीय योजनायां प्रायः 2 लक्षं ट्रक यानानि, 16,000 बसयानानि च प्रतिष्ठापयितुं लक्ष्यं निर्धारितम्। मंत्रिमण्डलीय समित्या ओडिशा राज्ये रामेश्वरात् पारादी पर्यन्तं 63,100 किलोमीटर परिमितस्य नूतन तटीय राजमार्ग निर्माणाय अनुमतिः प्रदत्ता। एतदतिरिच्य समित्या बिहार राज्ये राष्ट्रीय राजमार्गयोः 31 तथा 31,200 च इत्येतयोः खगड़िया पूर्णिया खंडस्य चतुर्पथ परियोजनापि अनुमोदिता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां वेनेजुएला देशस्य राष्ट्रपतिना डेल्जी रोड्रिगेज इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तां विधास्यति। अस्याम् उच्चस्तरीय चर्चायां भारत वेनेजुएला संबंधानां अशेषेषु पक्षेषु मंथनं भविष्यति। सहैव ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार निवेश, स्वास्थ्य सेवा, परिवहनं, नवीकरणीय ऊर्जा इत्यादिषु क्षेत्रेषु भविष्ये सहयोगस्य नूतन मार्गाणां अन्वेषणं च भविष्यति। रोड्रिगेज्वर्यः भारतदेशस्य 5-दिवसीय यात्रायां ह्यः नवदिल्लीं समागच्छत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् कृत्स्ने ही विश्वे योगस्य लोकप्रियता तीव्रगत्या वर्धमाना वर्तते। एकस्मिन् सामाजिक अन्तर्जालीय पटले एकेन संदेशेन प्रधानमन्त्रिणा संसूचितं यत् अद्य प्रथम वैश्विक योगासन प्रतियोगितायां सह आभासीय माध्यमेन सम्मिलितो भविष्यति। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह अद्य सायंकाले त्रिपुरा राज्यस्य 2-दिवसीय यात्रायाम् अगरतला नगरं प्रति एष्यति। यात्रावधौ श्री शाह पुष्पवंत पैलेस इत्यस्य शिलान्यास समारोहे भागं ग्रहीष्यति। लंकामुरा स्थिते सीमा सुरक्षा बलस्य निरीक्षणं च करिष्यति। सहैव राज्य केन्द्रीय सुरक्षा अधिकारिभिः सह एकं उच्चस्तरीय उपवेशनं करिष्यति। गृहमन्त्रिणः यात्रां वीक्ष्य त्रिपुरा प्रशासनेनापि एका उच्चस्तरीया प्राशासनिक सुरक्षा सीमा सभा आयोजिता। राष्ट्रिय राजधान्यां दिल्ल्यां मालवीय नगरस्य एकस्मिन् विश्रान्ति निलये भीषणाग्निकाण्डे 21 जना

0: अहं मृत्युमुपगताः। अनेके च जनाः व्रणिताः अभवन्। दक्षिणदिल्ल्यारक्षीविभागस्य उपायुक्तः अनन्तमित्तलः अवोचत् यत् अग्निशमनविभागस्य अष्टभिः वाहनैः सह अग्निः नियन्त्रितः। आरक्षिणाम् अग्निशमनस्य तथा अन्य आपत्कालिकसेवानां संयुक्तप्रयत्नैः चत्वारिंशदधिकाः जनाः सुरक्षितरूपेण उद्धृताः, चिकित्सोपचारार्थं च चिकित्सालयेषु प्रेषिताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी घटनामुद्दिश्य गहनं दुःखं व्यक्तीकृतवान्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, गृहमन्त्री अमितशाहः तथा दिल्लीराज्यस्य मुख्यमन्त्री रेखागुप्ता अपि अस्मिन् दुःखदे घटनाक्रमे शोकं प्रकटितवन्तः। सर्वैः नेतृभिः शोकसन्तप्तपरिवारान् प्रति गहनसंवेदना व्यक्तीकृता। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची थी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और ग्लोबल साउथ के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। उनका आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मिलने का कार्यक्रम है। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए गए नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसके बाद गृहमंत्री त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुँचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के अधिकारी शिवाजी माजी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना में सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमान ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहन से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
1: नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया है। इस बीच दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं, साथ ही

अवैध संपत्तियों, अनाधिकृत गेस्ट हाउसों और अग्नि सुरक्षा नियमों तथा भवन उपनियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ पूरे शहर में विशेष अभियान चलाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। दो दिन तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में आभासी

0: दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए अब सुनिए हमारे आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की ससमय विस्तृत जानकारी। सात बजकर 7:20 पर नमस्कार भोपाल में आज सुनिएगा मिशन लाइफ के विषय में जानकारी IIFM की प्रोफेसर डॉक्टर पारुल ऋषि से। रविंद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम यादे बशीर बद्र की जानकारी मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की निदेशक डॉक्टर नुसरत मेहदी से और एक परिचय ढोकरा आर्ट के विषय में सर्च एंड रिसर्च डेवलपमेंट सोसाइटी की चेयरपर्सन डॉक्टर मोनिका जैन और कलाकार आकाश वाघमारे से।

8:30 पर प्रसारित करेंगे स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। 9:02 पर फिल्म संगीत। 9:15 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में राजीव शर्मा के गाए गीत और भजन सुन सकते हैं। नाटक रणधीर पहलवान सुनिए 9:30 पर, जिसके लेखक हैं सआदत हसन मंटो और प्रस्तुतकर्ता है राकेश ढोंडियाल। जिले की चिट्ठी पढ़ी जाएगी सुबह 10:00 और 10:05 पर फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम होगा गीत सागर। आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण आरंभ होगा 11:00 से और आज होगा फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। आपकी फरमाइश दिन में 12:00 और 2:30 पर। संग्रहालय से कार्यक्रम के अंतर्गत इन दिनों आप सुन रहे हैं रेडियो धारावाहिक सिसकियां। आज इसकी 9वीं कड़ी सुनवाई जाएगी। आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र के योगदान से दोपहर 1:00 महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत, सुगम संगीत 1:45 पर और युववाणी कार्यक्रम होगा शाम 5:02 पर। मीडियम वेव पर सांध्यकालीन सभा आरंभ की जाएगी 5:00 से, जिसके अंतर्गत फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे 5:33 पर, 6:30 पर, रात 8:35 पर और 9:30 पर। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम सुनवाया जाएगा शाम 6:00। आकाशवाणी भोपाल से 7:21 पर सुन सकते हैं कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी। रात 8:00 आकाशवाणी मध्य प्रदेश से पुनः जुड़कर सुनिए समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष स्वास्थ्य सेवा। और रात 10:00 आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये थी जानकारी हमारे आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज मेघालय प्रवास पर उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। प्रदेश में भी शीघ्र लागू होगी समान नागरिक संहिता, कहा मुख्यमंत्री ने। और प्रदेश के हर जिले में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए फीडर सेंटर स्थापित होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि योग दुनिया भर में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्रतियोगिता ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को एक मंच पर लाने का काम किया है। उन्होंने इसे योगासन के वैश्विक खेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और आयोजनकर्ताओं तथा प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। गृह मंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि, बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि देश में एक निशान, एक विधान और एक कानून लागू हो, इस राष्ट्रीय भावना में कुछ भी गलत नहीं है। समान नागरिक संहिता को देश के 3 राज्यों ने पहले ही लागू कर दिया है। हमारी सरकार भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। शीघ्र ही मध्य प्रदेश भी देश का UCC लागू करने वाला राज्य बन जाएगा। इसके लिए हमने उच्चतम न्यायालय की रिटायर्ड जज न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की है। ये समिति जिला स्तर पर सभी वर्गों से उनकी राय ले रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के सभी जनजाति समुदाय को UCC से पृथक रखा जाएगा। उन्हें अपने पारंपरिक रीति रिवाज मानने की स्वतंत्रता होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कल नई दिल्ली में आयोजित एक कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार की उन योजनाओं की जो देश के विकास में मील का पत्थर साबित हो रही हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित

0: की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98 लाख से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है, जो बाजार से 50 से 80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 करोड़ रूपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय मंत्रिपरिषद के आर्थिक मामलों की समिति ने मध्य प्रदेश में 4,415 करोड़ रुपए की लागत वाली 2 सड़क निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार की इस महत्वपूर्ण सौगात से प्रदेश की जनजातीय बहुल जिले बैतूल, खंडवा, खरगोन और बड़वानी के समग्र विकास को तेज गति मिलेगी, साथ ही हजारों स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इस परियोजना में खरगोन जिले में एक ग्रीनफील्ड बाईपास भी विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा,
2: राजमार्ग की जो सौगात मिली है, मैं उसके लिए उनका आभार भी मानता हूँ और बधाई देता हूँ। बैतूल, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, ये चारों जिले हमारे करीब करीब महाराष्ट्र से लगे हुए भी हैं और इनके माध्यम से पूरा प्रदेश का विकास का परिपथ बनता है। ऐसे में 4,415 करोड़ से लगभग 2 जो सड़कें की सौगात मिली, 2 परियोजनाएं, ये भविष्य की दृष्टि से एक अलग प्रकार से हमको आर्थिक रूप से इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने में मदद करेगी।
1: उधर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में नई पहल की है। वे अब राजधानी भोपाल में नियमित रूप से ईवी कार से ही यात्रा करेंगे। ये ईवी मुख्यमंत्री सुरक्षा से जुड़े सभी मानकों पर खरा उतरने, फीचर्स की विधिवत जांच और अन्य जरूरी प्रक्रियाओं का बारीकी से पालन करने के बाद मुख्यमंत्री के लघु कार किट में कल से शामिल कर ली गई है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश के कई जिलों में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत व्यापक पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने 5 जून से शुरू हो रहे विशेष जनकल्याण अभियान के तहत प्रदेश भर में वृहद पौधरोपण के निर्देश दिए हैं। खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि प्रदेश के हर जिले में फीडर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इनके माध्यम से खेल प्रतिभाओं की खोज और संवर्धन को नई गति मिलेगी। श्री सारंग कल भोपाल के टीटी नगर स्थित मेजर ध्यानचंद हॉल में टैलेंट सर्च अभियान की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों और खेल प्रशिक्षकों को इस संबंध में व्यापक दिशा निर्देश दिए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में प्री मानसून की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। अगले 24 घंटों में भी 20 से अधिक जिलों में आंधी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बिजली गिरने की भी आशंका है। शिवपुरी में कोलारस की ग्राम पंचायत गोरा टीला में रात्रि चौपाल लगाकर प्रशासन ने ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण किया। खंडवा में आज जिला विकास समन्वय निगरानी समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। आगरमालवा में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर चलाए जा रहे स्वच्छ गांव मेरी जिम्मेदारी थीम के तहत मिशन लाइफ के अंतर्गत पेड़ पौधों की साफ सफाई, संरक्षण संबंधी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। मंदसौर जिले के आदर्श गांव बालागुड़ा में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस चौपाल में कलेक्टर अदिति गर्ग ने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। झाबुआ में कल विश्व क्लब फुट दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। निंडौरी में आगामी मानसून और संभावित बाढ़ की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन संबंधी तैयारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। गुना के कुंभराज क्षेत्र के ग्राम बड़ौद में कल कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल और पुलिस अधीक्षक हितिका वासल ने रात्रि चौपाल में ग्रामीणों से संवाद किया। भारतीय पहलवान आज से मंगोलिया में उलान बतार ओपन रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट में अभियान शुरू करेंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

दोस्तों कहते हैं अगर किसी वृक्ष को आकाश छूना होता है तो पहले उसकी जड़ों को पाताल छूना पड़ता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों का स्वागत और अभिनंदन आज के सफर में। दोस्तों श्रृंगार करती हुई स्त्री और श्रृंगार करती हुई सृष्टि सभी को पाती है। दोस्तों कभी सोचा है आपने कि हम अपने आप को, अपने घर को और अपनी चीजों को व्यवस्थित या सजा हुआ क्यों रखते हैं? क्योंकि हर व्यवस्थित चीज या व्यक्ति अपने आप से एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और यही ऊर्जा उस व्यक्ति या वस्तु से सबको जुड़ने के लिए आकर्षित करती है। इसलिए जो व्यक्ति सुसज्जित रहते हैं लोग उनसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते चले जाते हैं। दोस्तों हम कोशिश करते हैं कि हर मौसम में अपने आप को सजा कर रखें, पर साल भर में एक ही मौसम ऐसा आता है जब ये सृष्टि हमसे अपना श्रृंगार मांगती है। ये मांगती है हवा, पानी और कुछ बीज जिसे ये अपने अंदर समाकर फिर से सृजन कर सके, ताकि हमें लौटा सके शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, भोजन और बहुत सारा सुकून। दोस्तों क्या हम मंदिरों में माँ को चुनरी चढ़ाने के साथ साथ इस धरती माँ को कुछ फलों के बीज अर्पित नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। कभी आपने अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से एक सवाल पूछिएगा दोस्तों कि सारी ज़िंदगी हम इस धरती से कुछ ना कुछ बस लेते ही रहे, कभी सोचा है हमने कि इस धरती को क्या लौटाया हमने? अगर आपकी अंतरात्मा वाकई सच्ची गवाही दे तो इस बारिश वृक्षारोपण ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और कुछ फलों की गुठलियों को बाहर जाते वक्त जंगल में ज़रूर फेंकिएगा और ज़रूर उतारिएगा इस धरती माता के कर्ज को और बनिएगा मिशन लाइफ का एक ज़रूरी हिस्सा।

दोस्तों, इस भीगे से मौसम में हमारा मन भी कुछ यही कर रहा है कि मन करे मैं झूमू झूमू मैं गाऊं। रंग बदलता मौसम हो या दस्तक देते मानसून का हाल, सब कुछ लेकर आ रहा है नमस्कार भोपाल। आइए जानते हैं आज के कार्यक्रम के रंगों को। आज हम आपको जानकारी देंगे रविंद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम यादें बसीर बद्र की, और चर्चा होगी मिशन लाइफ की, और परिचय कराएंगे आपका ढोकरा आर्ट से। पर फिलहाल कार्यक्रम में वक्त समाचार पत्रों की सुर्खियों को जानने का।

सबसे पहली खबर में आस्था की महक। 60 टन पार पहुंची फूलों की मांग। बेंगलुरु और पुणे फ्लाइट से आ रहे विदेशी फूल, मंदिरों में वेस्ट से बन रही है खाद। राजधानी भोपाल इन दिनों आस्था की खुशबू से सराबोर है। अधिक मास के चलते शहर व आसपास के मंदिरों में फूल बंगला, झांकियों और कथाओं व अन्य आयोजन के लिए फूलों की रोजाना की मांग 4 से 5 टन से बढ़कर 6 से 7 टन तक पहुँच गई है। इस भारी डिमांड को पूरा करने के लिए बेंगलुरु और पुणे से महंगे विदेशी फूल हवाई जहाज से सीधे भोपाल लैंड कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जल प्रदूषण रोकने के लिए मंदिर समितियां रोज निकलने वाले 30 से 40 क्विंटल फूलों को जलाशयों में बहाने के बजाय उनसे जैविक खाद और सुगंधित अगरबत्ती बनाकर वेस्ट टू वेल्थ की एक अनूठी मिसाल पेश कर रही हैं। वहीं अगली खबर में अगले हज की तैयारी, पासपोर्ट की वैधता 31 दिसंबर 2027 तक जरूरी। इस वर्ष हज करने सऊदी अरब गए लोगों के लौटने का सिलसिला अभी चल ही रहा है कि ऑल इंडिया हज कमेटी ने आगामी वर्ष 2027 के लिए हज की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कमेटी ने अपने जारी सर्कुलर में आगामी वर्ष हज पर जाने के इच्छुक लोगों से अपने पासपोर्ट बनवाने को कहा है। इसकी वैधता 31 दिसंबर 2027 तक होना अनिवार्य है। और भारत भवन में सजेगा भावानुभाव, कल से होगा शास्त्रीय नृत्य। भारतीय शास्त्रीय नृत्य भक्ति और आध्यात्मिक चेतना साक्षी बनने जा रहा है भारत भवन। अनंत भारत भवन द्वारा आयोजित 3 दिवसीय नृत्य समारोह भावानुभाव का शुभारंभ 5 जून से होगा। इसमें नृत्य कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों को भारतीय सांस्कृतिक विरासत से रूबरू कराएंगे। भारत भवन के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी प्रेम शंकर शुक्ल ने बताया है कि केवल नृत्य प्रदर्शन नहीं बल्कि भक्ति और सौंदर्य बोध के विविध आयामों को अनुभव करने का ये एक सर है। और शाहपुरा में अनंत मंडी में दिखेगा सस्टेनेबल लाइफस्टाइल का रंग। आलियांस फ्रांसिस टी में 6 जून को अनंत मंडी का आयोजन हो रहा है। शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक चलने वाले इस कार्यक्रम में शहरवासियों के लिए प्रवेश निशुल्क रहेगा। यह आयोजन महज एक बाजार नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण, जागरूक जीवन शैली और स्थानीय समुदायों के साथ गहरे जुड़ाव का एक उत्सव है। यहाँ आने वाले लोगों को प्राकृतिक रूप से उगाई गई कृषि उपज और हस्तनिर्मित वस्तुएं, टिकाऊ उत्पाद देखने व खरीदने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही इन उत्पादों को तैयार करने वाले शिल्पकारों और किसानों की प्रेरणादायक कहानियां जानने का भी मौका मिलेगा। और 1 दिवसीय बाल नाट्य समारोह 6 जून को, बाल रंगमंच का 1 दिवसीय बाल नाट्य समारोह त्रिकर्षि का आयोजन 6 जून को शाम 6:30 बजे किया जाएगा। समारोह में बाल कलाकारों द्वारा 3 नाट्य प्रस्तुतियां मंचित की जाएंगी जिसमें रंग पिता, वसु के सवाल और मुस्कान खो गई शामिल है। वहीं मानसून की दस्तक से पहले नगर पालिका का सफाई अभियान जारी। मानसून की दस्तक से पहले बारिश पूर्व सफाई अभियान

0: स्थानीय नगर पंचायत द्वारा प्रारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य जल भराव और गंदगी से बचने के लिए ये तैयारी ग्राउंड लेवल पर तैयारी करना है। अभियान में नालियों में जमा कचरा हटाने के लिए जेसीबी मशीन की मदद से नालों के नीचे जमा सिल्ट को बाहर निकाला जा रहा है, ताकि पानी का बहाव सुचारू रहे। और वहीं अंत में बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी का नाम बदलेगा, होगा बागदेवी भोजपाल। समाचार पत्रों से फिलहाल इतना ही, पर कार्यक्रम में जानकारी, मुलाकातों और मनोरंजन का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ सुबह के 8 बजने तक।
1: मैं गीतकार समीर और आप सुन रहे हैं नमस्कार भोपाल, सुनते रहिए।

0: दोस्तों, आपने अपने रेडियो सेट मोबाइल और डीटीएच पर ट्यून इन किया है आकाशवाणी भोपाल का लोकप्रिय कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। आइए मुलाकात करते हैं हमारे पहले खास मेहमान से। दोस्तों, आज लगभग सभी डिपार्टमेंट मिशन लाइफ की थीम के अंतर्गत काम कर रहे हैं, पर आम आदमी इस मिशन लाइफ का किस प्रकार से हिस्सा बन सकता है और क्या सहयोग कर सकता है ये आम आदमी हम सभी का इस मिशन लाइफ में सफल बनाने में, और ये चर्चा कर रही हैं IIFM की प्रोफेसर डॉक्टर पारुल ऋषि।
1: मिशन लाइफ का फुल फॉर्म लाइफ स्टैंड्स फॉर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। सो ये मिशन लाइफ हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने COP26 में ग्लासगो सम्मेलन में इसके बारे में बताया था, और उनका कहना था कि अगर हर व्यक्ति अपना कुछ ना कुछ सहयोग पर्यावरण के विकास में और पर्यावरण को बचाए रखने में कुछ ना कुछ अपनी भूमिका अगर वो अदा करता है, तो उससे ग्लोबल लेवल पर प्लैनेट की हेल्थ जो है वो पॉजिटिवली इफेक्ट होगी और हमारा पूरा एनवायरनमेंट जो है वो इम्प्रूव करेगा। सो मिशन लाइफ की कुछ थीम्स हैं, जैसे आपको जो है वो वाटर कंजर्वेशन है, एनर्जी कंजर्वेशन है, ई वेस्ट को आपको रिड्यूस करना है, से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक। सो इस तरह से 7 थीम्स हैं मिशन लाइफ की, जिसके ऊपर बहुत सारी एक्टिविटीज राइट फ्रॉम बच्चों के लेवल से लेके और सीनियर सिटीजन्स तक काफ़ी एंगेज की गई हैं। और मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अगर अपना कोई भी छोटा सा भी कॉन्ट्रीब्यूशन मिशन लाइफ में एनवायरनमेंट को बचाने के लिए देते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो वैश्विक पर्यावरण है उसको बचाने के लिए जो है वो हो सकता है।
0: आपने बहुत सारी थीम पर बात की, जिसमें आपने बात की एनर्जी कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन। अगर हम छोटे छोटे से मुद्दों की बात करें, अगर हम घरेलू लेवल पर बात करें, तो एक आम व्यक्ति किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकता है इस मिशन लाइफ को सफल बनाने में?
1: आम व्यक्ति को मिशन लाइफ को सफल बनाने में जैसे बहुत ही सिंपल जो उसका सॉल्यूशन है, जैसे से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक। तो ये सबसे ज्यादा मीनेस जो इस समय वर्ल्ड में क्रिएट होता जा रहा है वर्ल्ड वाइड, वो प्लास्टिक है। उसमें ये रैपर्स जो चिप्स वगैरह हम लोग खाते हैं उसको लें, या फिर हम प्लास्टिक बॉटल्स जो बिस्लरी है उसको लें। जैसे IIFM ने, हमारे भारतीय वन प्रबंध संस्थान ने, हम लोगों ने प्लास्टिक बॉटल्स को बैन किया हुआ है यहाँ पर। तो हमारे कुछ भी इवेंट्स होती हैं उसमें हम लोग स्टील बॉटल्स हमने परमानेंटली रखी हुई हैं और हम फिल्टर से डायरेक्टली रिफिल करके उसको यूज करते हैं। तो एक हैबिट बना लें कि अपनी वाटर बॉटल को साथ में रखना है और फिल्टर से जहां भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले आप उसको भर सकते हैं। तो कम से कम जो बिस्लरी का ट्रैश पूरा कलेक्ट होता है उसको हम लोग सेव कर सकते हैं। उसके अलावा प्लास्टिक बैग्स के बारे में तो काफ़ी कुछ इतने समय से कहा ही जा रहा है, तो उसका ध्यान रखना कि जब भी शॉपिंग के लिए जाएं अपना बैग साथ में लेके जाएं, जिससे सिंगल यूज प्लास्टिक्स जो है वो हम सब्जी वालों से और उन सब से ना लें। सो ये छोटे छोटे स्टेप्स जो हैं ये एक्यूमुलेट होकर एक बहुत बड़े लेवल पर हमको सपोर्ट कर सकते हैं एनवायरमेंट को बचाने के लिए।
0: वर्तमान में हमारा जो देश है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है एनर्जी कंजर्वेशन को लेकर, अगर इसको लेकर हम बात करें तो हम किस तरह से अपना सहयोग कर सकते हैं, जैसे कि सोलर प्लेट्स की हम बात करें या फिर वाटर कंजर्वेशन की, जैसे कि सुपर अल नीनो इफेक्ट बताया जा रहा है, अगर पानी कम गिरता है तो फिर हमारे देश की अर्थव्यवस्था और सफर करेगी।
1: बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप शिखा जी, क्योंकि अभी सोलर के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत नई नई कंपनियाँ आ रही हैं जो कि सोलर एनर्जी के ऊपर फोकस कर रही हैं। सो एक बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप अगर सोलर पैनल्स अपने घर में लगाते हैं तो आप ग्रिड को भी एनर्जी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और आपका सोलर का, आपका जो एनर्जी का बिल

0: आपके घर का बिजली का बिल है वो भी कम हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, थोड़ा सा अपने को एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें गवर्नमेंट काफी सब्सिडीज भी दे रही है, तो उसको यूज करते हुए अगर हम सोलर एनर्जी की तरफ डाइवर्ट होते हैं तो एक बहुत अच्छा स्टेप ये रहेगा कि हम एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। और जैसे आपने एक सुपर एलनीनो इफेक्ट के बारे में बताया, तो ये बहुत क्लाइमेट चेंज से काफी अलाइंड फील्ड है, क्लाइमेट चेंज पर भारतीय वन प्रबंध संस्थान ने काफी रिसर्च भी की है। तो पर्यावरण पर तो हम एसीज यूज करते हैं, जैसे अभी आप देखेंगे अभी गर्मी का मौसम है इस समय, ये शायद बहुत डिकेड्स में ये साल होगा कि जिसमें बहुत लंबा टाइम हमारा टेम्परेचर 42 से ऊपर रहा। अभी पेपर में आया था कि 12 दिन ऐसे थे कि जिसमें हमारा टेम्परेचर 42 डिग्री से ऊपर था। तो ये इस तरह के डेज, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स, ये सब जो बढ़ रही हैं, उसका मेन हम लोग ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि जो है वो हम लोग अपने कंफर्ट के लिए हम ये नहीं सोचते हैं कि उससे पर्यावरण का कितना नुकसान हो रहा है। तो एसी ठीक है, एक एक्सट्रीम कंडीशंस में आपको एसी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जितना कम से कम यूज कर सकते हैं हम उसका, क्योंकि वो सारी हीट तो बाहर ही पर्यावरण में फेंकता है, तो उसी का ही पूरा इम्पैक्ट जो है आपकी ओवरऑल जो आपकी सिटी की वार्मिंग होगी उसके ऊपर पड़ेगा। तो अपना कंफर्ट को कुछ लेवल तक कॉम्प्रोमाइज करके पर्यावरण के बारे में सोचें, यही मेरा एक जो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून को है उस पर मेरा यही सबको मैसेज है कि अपने छोटे छोटे कंफर्ट्स को कॉम्प्रोमाइज करें और लार्जर गुड ऑफ द प्लैनेट, लार्जर गुड ऑफ एनवायरमेंट, उसके बारे में सोचें।
1: IAFM किस तरह से मिशन लाइफ की जो कॉन्सेप्ट्स हैं, थीम्स हैं, इनको स्प्रेड करने में सहयोग कर रहा है?
0: IFM ने जब मिशन लाइफ स्टार्ट हुआ था तभी से ही, बिकॉज हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आते हैं, तो हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट भागीदारी मिशन लाइफ को आगे लेकर चलने में रही है। और शुरू में हम लोगों ने बहुत सारी इवेंट्स, एक पर्टिकुलर सेशन में तो हम लोगों ने 500 से ऊपर इवेंट्स करी थी, जिसमें बहुत इवेंट्स हमने स्लम एरियाज में जाके करी, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हमारे इंस्टीट्यूट में भी बहुत सारी इवेंट हुई। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हम जो है वो छोटे से छोटे बच्चों से लेकर और सीनियर सिटीजन तक सबको इस मिशन लाइफ के साथ जोड़े, क्योंकि जब तक हर व्यक्ति का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, हर व्यक्ति अपने आप को पर्यावरण को बचाए रखने में भागीदार नहीं समझेगा, तब तक इस मिशन को आगे ले जाना जो है वो असंभव है। और रिसेंटली हम लोग एक स्वयं पोर्टल के ऊपर, मिशन लाइफ के ऊपर एक ऑनलाइन प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और वो लॉन्च रिसेंटली लॉन्च होने वाला है, और उसके लिए हम लोग का कंटेंट क्रिएशन का काम चल रहा है। तो उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि इस कोर्स के थ्रू हम युवा लोगों को इस बारे में जागृत करेंगे कि वो पर्यावरण के प्रति अपना सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं, तो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को युवा पर्टिकुलरली किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। सो इस कोर्स के थ्रू हम ये जानकारी अपने देश के युवाओं को देंगे।
1: मिशन लाइफ के विषय में वैल्यूबल थॉट्स को, वैल्यूबल जानकारी को हमारे लिसनर तक पहुंचाने के लिए और इस पर बहुत बेहतरीन तरीके से काम करने के लिए आकाशवाणी परिवार आपको तहे दिल से धन्यवाद अदा करता है।
0: धन्यवाद शिखा जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने कुछ यहाँ के जो कार्यक्रम हैं भारतीय वन प्रबंध संस्थान के, वो आपके थ्रू श्रोताओं तक पहुंचा सके। धन्यवाद।
1: मिशन लाइफ के विषय में अभी आप सुन रहे थे IIFM के प्रोफेसर डॉक्टर पारुल ऋषि को। दोस्तों, बरसते हुए पानी की हर बूंद को बचाइए, कम से कम अपने हिस्से का पानी तो ज़रूर बचाइएगा। फिलहाल आप एंजॉय कीजिए इस गीत को हमारे साथ।

0: भीगी सी सुबह में आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल, और आज की सुबह में आपके साथ चल रही हूं मैं शिखा जैन। दोस्तों, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। दोस्तों, हाल ही में हमने साहित्य जगत के एक युग को खोया है, हमने खोया है एक कोहिनूर को। उनके जीवन से जुड़े कई किस्सों को हमसे साझा करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मध्य प्रदेश के रविंद्र भवन में एक आयोजन याद ए बशीर बद्र की होने जा रहा है। इस आयोजन की अधिक जानकारी हमें दे रही हैं मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की निदेशक डॉक्टर नुसरत मेहंदी।
1: खुद ही कहा कि एक युग का अंत हुआ है डॉक्टर बशीर बद्र साहब के साथ, जो शायरी की दुनिया के वाकई बेताज बादशाह थे, और अभी कुछ दिन पहले 28 तारीख को उनका निधन हो गया है। तो मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग निरंतर इस बात पर नज़र रखे हुए है कि उनके कद के बराबर उनकी श्रद्धांजलि हो, उनके कद के बराबर कार्यक्रम हो। तो उसी दिशा निर्देश के अनुसार हमने याद ए बशीर बद्र 4 जून 2026 को रविंद्र भवन भोपाल में शाम 6 बजे से आयोजित किया है। इसका उद्देश्य, आपने जैसे खुद भी कहा कि वो बहुत बड़ा नाम थे, वो एक पूरा युग थे शायरी का, साहित्य का, और इसके अलावा हिंदी और उर्दू में उनकी बराबर से लोकप्रियता ये बताती है कि वो भाषाओं के, मजहबों के सारी सरहदों से दूर थे, यहाँ तक कि देशों की। क्योंकि इस वक्त आप देख रही होंगी कि उनके निधन के बाद से ही कोई तो कह रहा है कि बशीर बद्र साहब के नाम की सुनामी आई हुई है, ये किसी ने सोशल मीडिया पर लिखा है। एक होड़ सी लगी हुई है कि उनके साथ की यादें शेयर करे, श्रद्धांजलि दे, और सदमे में भी हैं लोग के, भले ही वो 12 साल से खामोश थे, ये भी आपको मालूम ही होगा कि उन्हें डिमेंशिया हो गया था और 12 साल से वो ना तो शायरी कर पा रहे थे ना किसी से बातचीत कर पाते थे। जब लोग उनकी शायरी उनके सामने पढ़ते थे और वो पूरी कर देते थे, तो ऐसा लगता था कि क्या पता एक दिन अपना शेर फिर से दोबारा पढ़ने लग जाएं और एक शायर हमें वापस मिल जाए। लेकिन अब उनको जाना ही था और उनका निधन हो गया।
0: जी, अब शायर खुद एक शायर नहीं होता, कई लोगों के जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है वो, उनकी बातें, उनकी शायरी। जिस तरह से आपने सर के बारे में बताया, तो आपसे जानना चाहेंगे, आपने इसमें काफी सारे कलाकारों को आमंत्रित किया है। प्रोफेसर वसीम बेरलवी जी हैं, विशाल भारद्वाज जी हैं, रेखा भारद्वाज जी हैं, तैयब बद्र जी हैं। तो जानना चाहेंगे मैम, विशाल भारद्वाज और रेखा भारद्वाज जी को आपने जो इन्वाइट किया है, क्या कोई स्पेशल कनेक्शन रखते हैं वो भी हमारे बद्र साहब से?
1: विशाल भारद्वाज जी के बारे में तो ये है कि इन दोनों के, रेखा भारद्वाज जी के, इनके पारिवारिक संबंध थे पूरी आत्मीयता के साथ। ये लोग उनको बिल्कुल अपना, बिल्कुल वालिद की तरह से, फादर की तरह से मानते थे, पैर छूते थे। उसके पीछे एक किस्सा ये है कि किसी हादसे में बशीर बद्र साहब का बहुत सारा कलाम जल गया था। उस समय जो विशाल भारद्वाज हैं, उनको उनका कलाम याद था, 85% कलाम उनको उनका याद था, और उन्होंने बशीर बद्र साहब को वो कलाम उपलब्ध कराया था। उनसे कहा था कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इस हादसे में भले ही आपका ये कलाम जल गया है, लेकिन मेरे जहन में महफूज है और मैं उसको प्रकाशित कराऊंगा। वो उन्होंने प्रकाशित कराया उनका कलाम, पूरा उनके हवाले किया बशीर बद्र साहब के। तब से वो उनके बेटे की तरह से हैं। तो हम उनसे वो सब बातें सुनना चाहते हैं कि इस दौर में इस तरह के लोग भी हैं और ऐसी आत्मीयता रखने वाले लोग भी हैं। तो इस तरह हमने विशाल भारद्वाज जी को आमंत्रित किया है, वो उनके साथ बहुत सारे संस्मरण हैं वो शेयर करेंगे, और रेखा भारद्वाज जी को भी वो बेटी ही

0: कहते थे, तो वो भी साथ में आ रही हैं। आप जानती हैं कि वो सूफी सिंगर भी हैं, तो थोड़ा थोड़ा कलाम हम उनसे बशीर भट साहब का सुनेंगे भी। वसीम बरेलवी साहब क्योंकि उतने ही ऑलमोस्ट सीनियर हैं जितने बशीर भट साहब थे, तो इन्होंने अनेक मुशायरों के मंच साझा किए हैं साथ में, तो उनकी शख्सियत से, उनके फन से प्रोफेसर वसीम बरेलवी बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। उनके भी सैकड़ों के साथ में संस्मरण है, वो भी शेयर करेंगे। वो तो एक तरह का संवाद, तैयब बद्र उनके पुत्र हैं, वो रहेंगे मौजूद। तो इस तरह से हमने कोशिश ये की है कि उनके साथ के लोगों को, और फिर नई जनरेशन पे आधारित एक हमने मुशायरा रखा है कि वो जाने किस विरासत के उनको अधिकारी बना के छोड़ के गए हैं वो बशीर भट्ट साहब, इनका उत्तरदायित्व कितना बड़ा है वो सब सुने। और हमने उनसे कहा है कि उनके जो मिसरे होते हैं उनके ऊपर गजल कहकर लाएं और देखें कि उनके यहाँ कितनी खूबसूरत जबान थी, कितना खूबसूरत लहजा था, और जो कॉन्टेंट था वो कितना प्यारा था, और जो करुणा थी, जो संवेदनाएं थी, जो समाज को जोड़ने वाली बातें थी, शायरी ये है। तो इस तरह से एक मुशायरा है युवाओं पर आधारित, और एक संवाद का ऐसा सत्र है।
1: आपने अपने मेहमानों के बारे में तो बताया, लेकिन आपने भी काफी सारा वक्त जो है बशीर बद्र साहब के साथ गुजारा है, काफी सारी यादें हैं, बहुत कुछ सीखा है जैसा कि आपने खुद बताया। तो आपकी ऐसी कौन सी बहुत खूबसूरत सी यादें हैं जिन्हें आप साझा करना चाहेंगी और कुछ उनके शेर हमारे श्रोताओं तक पहुंचाना चाहेंगी जो आपको बहुत पसंद है?
0: बशीर भट्ट साहब के तो पॉपुलर शेर तो मुझे भी याद है और बहुत सारे लोगों को याद है, लेकिन एक बात बहुत जरूरी है जो सुनना भी चाहिए, समझना भी चाहिए, कि बशीर भट्ट साहब अपने बहुत पॉपुलर शेरों के अलावा भी उनकी शायरी ऐसी है कि जिसमें बशीर भट्ट साहब पूरी तरह मौजूद हैं, और नए बच्चों को उनको पढ़ना चाहिए। संस्मरण मेरे बहुत सारे हैं क्योंकि अध्यक्ष थे वो यहाँ मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी में, 2006 में जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया तो वो अध्यक्ष के रूप में अपने केबिन में रहते थे, और ये मैंने कई लोगों को बताया इस दौरान कि वहाँ पर हर समय एक मुशायरा होता रहता था, लोग उनसे मिलने चले आते थे। कितनी आसानी से उपलब्धता इतने बड़े शायर की होती नहीं थी जितनी यहाँ पे होने लगी थी, तो लोग आते थे और वहाँ एक महफिल जमी रहा करती थी। तो फाइलें लेकर मैं एक बार गई, मैंने कहा सर कुछ फाइलें भी होती हैं साइन करने के लिए, कहने लगे ये तो आपका काम है, आप कहिए तो मैं इन पे शेर कह देता हूँ या कहिए तो फाइलों पे शेर लिख देता हूँ। तो बस इस तरह के बड़े मज़ेदार मज़ेदार किस्से हैं। और एक ये किस्सा है कि मैं खुद नई थी मुशायरों की दुनिया में, उस समय जब मैं पढ़ने खड़ी हुई तो नए नए वैसे ही पैर कांपते हैं, बशीर भट्ट साहब जैसे लोग बैठे हों तो फिर आप सोच सकती हैं पहला मुशायरा या दूसरा मुशायरा था, हम हो गए हूट, उसमें मुशायरों में नहीं चल पाते कई बार, अब घबरा गए। पीछे से बशीर भट्ट साहब आए, मेरे सर पे हाथ रखा और ऑडियंस से उन्होंने कहा कि ऐसा है, अच्छे शेर श्रोताओं तक पहुंचने में टाइम लेते हैं और आप अधीरता इतनी दिखा रहे हैं कि शेर बीच में मर रहा है, पहुंचने तो दीजिए, एकदम सन्नाटा हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे संस्मरण उनके मेरे साथ हैं और मैं बड़ी भावनात्मक अंदाज में उनसे जुड़ी हुई हूँ, और वाकई मुझे तो लगता है व्यक्तिगत नुकसान ही है उनका जाना। उनका शेर है कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, और ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटो भरा बिस्तर नहीं देखा। और ये बड़ा अच्छा शेर है कि दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। ऐसे मतलब कोड मुहावरे बन गए ये शेर, हर संचालन करने वाला कोट कर रहा है, विधानसभा में, संसद में। और एक ऐसा शायर कि जो अगर ऊपर आईएएस आईपीएस और लॉबी इस तरह की कोट करती थी शायरी, तो ऑटो रिक्शा और ठेलों पर और ट्रकों तक पर भी उनके शेर लिखे रहते थे, तो ऐसी लोकप्रियता थी।
1: क्या निवेदन करना चाहेंगी आप सुनने वाली सभी श्रोताओं को कि एक बार दोबारा उस युग को जीने के लिए, एक बार दोबारा उनकी बातों को सुनने के लिए इस कार्यक्रम में जरूर पधारे?
0: बिल्कुल, आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि 4 जून अंजनी सभागार रविंद्र भवन में उनकी यादों को ताजा करने और सुनने बहुत सारे लोगों के संस्मरण जरूर तशरीफ लाएं, इंतजार रहेगा।
1: यादें बशीर बद्र साहब की। अभी आप सुन रहे थे इसे मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की निदेशक डॉक्टर नुसरत मेहंदी से। दोस्तों, बशीर बद्र साहब को श्रद्धांजलि देते हुए हम तो आपसे बस इतना ही कहेंगे कि तुम ये कैसे जुदा हो गए, हर तरफ हर जगह हो गए। दोस्तों, साहित्य जगत में ऐसी कोई सभा या आयोजन नहीं होता जो बगैर उनके शेर के पूरा हो जाए। आप हमेशा हमारी जबान में शब्दों के माध्यम से महकते रहेंगे।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल और कार्यक्रम में वक्त हमारे अगले खास मेहमान से मुलाकात का। दोस्तों, जीवन में और दुनिया में ऐसे कम ही लोग मिलेंगे जो किसी एक कला को, एक संस्कृति को बचाने में अपना पूरा जीवन खर्च कर देते हैं। इसी तारतम्य में आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं ढोकरा आर्ट के कलाकार आकाश बागमारी से और इस आर्ट को बचाने में सहयोग कर रही संस्था सर्च एंड रिसर्च डेवलपमेंट सोसाइटी की चेयरपर्सन डॉक्टर मोनिका जैन से, और उनसे जानेंगे हम इस अद्भुत ढोकरा आर्ट की कला को।
1: जो आर्ट है इसे ढोकरा आर्ट या भरेवा आर्ट के नाम से जाना जाता है, या इसे बेल मेटल आर्ट भी कहा जाता है। ये भारत की एक बहुत ही प्राचीन एक कला है, लेकिन ये विलुप्त होती जा रही है, क्योंकि ये जो कला है ये बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी कला है, लेकिन उतनी ही मेहनत का काम भी इसमें है। इसमें मिट्टी का सांचा बनाया जाता है, उसके ऊपर मोम की लेयर चढ़ाई जाती है और मोम के धागों से ही इस पर डिजाइन बनाया जाता है। तो क्योंकि ये काम बहुत ही मेहनत से किया जाता है, और जब मेटल इसमें डाला जाता है उसके बाद उस मिट्टी के सांचे को तोड़ना होता है, तो हर बार हर आर्टिकल बनाने के लिए हमें एक मिट्टी का सांचा नया बनाना है, उस पर डिजाइन बनाना है, और जब वो बनेगा तो वो टूट जाएगा। तो इसीलिए ये बहुत ही एक टीडियस प्रोसेस है, इसीलिए ये ऐसा लगता है कि अब धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। और अगर हम मध्य प्रदेश में देखें तो बैतूल के टिगरिया जो गाँव है वहां पर ही ये कला सिर्फ बची है। वहीं से हमारे साथ आकाश जी हैं जो इस ट्रेनिंग को ले रहे हैं, और हम ये कहें कि ये ऐसा परिवार है आकाश जी का जो इस कला को बचाए हुए, और हम चाहते हैं कि ये कला ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ये कला विलुप्त ना हो जाए। भारत का जो इतना सुंदर एक पारंपरिक कला है उसको बचाने के लिए ये पूरा एक प्रोसेस है।
0: ज्यादा से ज्यादा लोग इस ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करें, इस आर्ट को सीखें, लोगों तक पहुंचाएं, भारत की संस्कृति को बचाने का एक प्रयास करें, इसके लिए वो कब, कैसे और कहां आवेदन कर सकते हैं?
1: ये जो ट्रेनिंग है ये सभी के लिए फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। ये सर्च एंड रिसर्च डेवलपमेंट सोसाइटी के द्वारा आयोजित की जा रही है, और इस ट्रेनिंग की खास बात है कि यहाँ जो बहुत मेहनत वाला काम है, जैसे वैक्स के थ्रेड्स बनाने का काम, मोम के धागे जिन्हें कहते हैं, उसके लिए हमने DST से एक सपोर्ट लिया है मशीनरी के लिए, और यहाँ इस सेंटर पर सारी मशीनरी अवेलेबल है जिससे ये काम थोड़ा आसान हो जाता है। हस्तशिल्प को हम हस्तशिल्पी रहने देंगे, उसको हमें खत्म नहीं करना है। जब बहुत आंच के पास हम लगातार रहते हैं तो स्किन पर भी इम्पैक्ट आता है और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, तो उससे भी हम बच पाएंगे इस टेक्नोलॉजी सेंटर का उपयोग करके। और आपने पूछा कि कैसे लोग ज्वाइन कर सकते हैं, तो सर्च एंड रिसर्च डेवलपमेंट सोसाइटी को आप अप्रोच कर लें, हम वेलकम करते हैं सभी को। यहाँ एक 12-13 साल के बच्चे भी आ रहे हैं और बहुत एज ओल्ड लोग भी आ रहे हैं सीखने के लिए जिन्हें इंटरेस्ट है। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर 7987832491 है, इस पर आप कॉन्टेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारा अगला बैच 8 जून से दोबारा शुरू होगा।
0: बहुत शुक्रिया इस वैल्यूबल जानकारी को देने के लिए और इस आर्ट को बचाने के लिए एक पहल करने के लिए। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद अदा

0: करते हैं।
1: थैंक यू शिखा जी। एक चीज और बताना चाहूंगी कि ये जो सेंटर है ये कोलार में यूपी का कॉन्वेंट स्कूल के हॉल में आयोजित किया जा रहा है, तो आप भोपाल के भोपाल में इस कला को सीख सकते हैं, जिस कला को आप शायद कहीं देख भी नहीं पाएंगे।
0: थैंक यू। हमारे साथ इस आर्ट को सिखाने के लिए ट्रेनर मौजूद है और हम जानना चाहेंगे आपका नाम।
2: नमस्कार मैम, मेरा नाम आकाश बागमार है।
0: आकाश जी, जैसा कि हमें अभी पता चला कि आपके पिताजी को जो है इस आर्ट के लिए, इस कला के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो जानना चाहेंगे कि क्या सोच रखते हैं आप इस कला के बारे में और किस तरह की कला है, आपकी क्या सोच है इस विषय में।
2: जैसा मैम ने बताया कि ये आर्ट बहुत पुराना है और बस इसको लोगों तक पहुंचाना और इसको जिंदा रखना, बस यही लक्ष्य है, और नए मार्केट तक इसको पहुंचाना।
0: आकाश जी, आपसे जानना चाहेंगे कितना वक्त लगता है इसको सीखने में, और आप जो इतनी मेहनत के साथ इस आर्ट को जीवित रखे हुए हैं, इसके पीछे आपकी क्या सोच है।
2: मैम, इसको पूरा बनाने के लिए तो 8 से लेकर 15 दिन का समय लगता है, मौसम के हिसाब से वो पूरा प्रोसेस होता है, बट सीखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, वो चाहे तो 1 महीने में भी सीख सकता है, पर हाँ पूरा प्रोसेस समझने के लिए 7-8 दिन काफी होता है।
0: आपके पिताजी जो हैं, जिन्हें अभी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, अब वो इस आर्ट को लेकर कहाँ कहाँ जाते हैं और किस तरह का रिस्पांस मिलता है उन्हें लोगों के माध्यम से।
2: अभी तो काफी अच्छा रिस्पांस मिलता है, जहाँ भी एग्जीबिशंस वगैरह में उनको आमंत्रित करते हैं वहाँ जाते हैं, और इंडिया में तो सभी जगह एग्जीबिशंस के थ्रू और कुछ शोरूम्स है मृगनैनी के, ट्राइब्स इंडिया के, इनके थ्रू अपने कलाकृतियों को पहुँचा रहे हैं।
0: क्या विदेशों में भी इस ट्रेनिंग को या फिर इस आर्ट को पहुंचाने का अवसर आपके पिताजी को या आपको मिला है।
2: पापा को मौका मिला था जाने का, पर उस टाइम पे वीजा नहीं हो पाया। 2015 में शिकागो में एक मोर चिमनी करके एक कलाकृति होती है, उसी को लेके उनको वहां से आमंत्रण आया था, बट उस टाइम पे वीजा नहीं हो पाया था तो नहीं गए थे, बट वो जो मोर चिमनी थी वो वहाँ प्रदर्शनी में प्रदर्शित की।
0: क्या उम्मीद करते हैं आप और क्या निवेदन करते हैं आप लोगों से कि अपनी संस्कृति को बचाने में एक छोटा सा योगदान जरूर दें, निशुल्क इस ट्रेनिंग में पधारें और इस आर्ट को सीखें, समझें और अपने देश की इस भव्य विरासत को लोगों तक लेके जाएं।
2: बस यही रिक्वेस्ट है कि आए, सीखें और इस कलाकारी के बारे में जानें।
0: जी, हमें अपना वैल्यूबल टाइम देने के लिए और इस आर्ट को जीवित रखने के लिए और इसे नई जनरेशन तक पहुँचाने के लिए पूरा आकाशवाणी परिवार और पूरा देश ही आपको तहे दिल से धन्यवाद अदा करता है।
2: धन्यवाद।
3: चुप चुप सी ये साजिश है बोलों की, कोई ख्वाहिश है चुप चुप सी।
0: ढोकरा आर्ट के विषय में अभी आप सुन रहे थे कलाकार आकाश बागमारी को एंड सर्च एंड रिसर्च डेवलपमेंट सोसाइटी की चेयरपर्सन डॉक्टर मोनिका जैन को। तो दोस्तों, जरूर सीखिएगा इस कला को निःशुल्क, पर फिलहाल आप एंजॉय कीजिए इस भीगे से गीत को अपने रेडियो सेट पर।

इस गीत के साथ ही वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कार्यक्रम नमस्कार भोपाल के एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए अपने रेडियो मित्र शिखा को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे दैनिक सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में समाचार प्रभात आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। हमारी संवाददाता की ये रिपोर्ट।
5: राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। वह इससे पहले 2015 में विदेश मंत्री और 2019, 2023, 2024 तथा 2025 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का दौरा कर चुकी हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भारत के ऊर्जा, औषधि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी कई प्रतिष्ठानों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना तथा सहयोग की नई संभावनाओं की तलाश करना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित सौहार्दपूर्ण संबंध है। मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत होंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से इशिका शाह।
4: ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर बैठक करेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
6: बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। अनुमेदिता और ऋषो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: इस सम्मेलन के दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त और ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद की एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में 6 कारीगर, वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 अनूठे उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। ये उत्पाद काशी की सदियों पुरानी कला, शिल्प कौशल और

0: और सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को भी वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस

0: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सके। इसके अलावा 2017 में जीएसटी लागू किया गया, जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई, जिससे कारोबार करना आसान हो गया। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
1: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष करके ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है स्टेबिलिटी के लिए। अप्रत्यक्ष करके रिफॉर्म्स से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है, लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
0: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुँच प्रदान करता है।
2: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
0: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। भारत में कारोबार के लिए बेहतर माहौल, मजबूत डिजिटल व्यवस्था और पारदर्शी शासन से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसका मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं में योग को शामिल करना है।
4: इस 5 दिवसीय वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका सहित 60 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी 12 विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। इस चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ी कलात्मक और लयबद्ध योग डिवीजनों के साथ साथ 7 आधिकारिक योग श्रेणियों में हिस्सा लेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। ये घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में कल रात हुई। घटना की जाँच जारी है। इधर नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में लिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमेरिका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। रूबियो ने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि क्वाड देश अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग सहित कई ठोस परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
5: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर

0: में हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
1: भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। गोवा के मडगांव में कल भारतीय महिला फुटबॉल टीम 6 साल बाद सैफ महिला चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से सामना होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी की आशंका है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज मालवीय नगर के होटल में लगी भीषण आग की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, दिल्ली में भयावह अग्निकांड। दैनिक जागरण के शब्द हैं, अवैध होटल में 21 की मौत, 11 विदेशियों सहित 21 जिंदा जले। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, घटना के बाद अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यापक अभियान चलाने पर सख्ती। शीर्षक से हिंदुस्तान ने लिखा है, नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठान सील होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि देने की खबर भी अधिकतम समाचार पत्रों में है। अमर उजाला ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों में बंटने की खबर को शीर्षक दिया है। तृणमूल में टूट, 58 बागी विधायकों ने ऋत व्रत को चुना नेता, मिली मान्यता। इसी खबर पर राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, टूट गई टीएमसी, 58 विधायकों ने स्पीकर को सौंपा समर्थन पत्र। अमेरिका द्वारा भारत सहित 50 से अधिक देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर नवभारत टाइम्स ने बॉक्स में लिखा है, अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत के बीच 12.5% की एक्स्ट्रा ड्यूटी का पेच अमर उजाला ने छापा है। ट्रंप प्रशासन का आरोप, इन देशों ने बंधुआ मजदूरी रोकने के लिए नहीं उठाए कदम, इसलिए लगाया जा रहा है शुल्क। भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि पर अमर उजाला ने संपादकीय लेख में संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के हवाले से चिंता व्यक्त करते हुए टिप्पणी की है, जून से अगस्त 2026 के बीच अल नीनो सक्रिय होने की 80% और नवंबर तक बने रहने की आशंका है। मेघालय के चेरापूंजी में 7 सिस्टर्स और किनरेम वाटरफॉल में लगातार हो रही बारिश की मनमोहक तस्वीर दैनिक भास्कर में है। पौष्टिक आहार के फायदों की याद दिलाते हुए लोक सत्य ने टिप्पणी की है, याददाश्त बढ़ाने में सहायक पौष्टिक आहार।
1: धन्यवाद सरफिरोजी। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज शिलोंग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार पत्र प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला डेल्सी रोड्रिगेज इन न्यू दिल्ली टुडे। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह टू चेयर 73rd प्लीनरी सेशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इन शिलोंग। U.S. Secretary of State Marco Rubio

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि राजकुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 23 अगस्त। और सही जवाब भेजने वाले हमारे दो भाग्यशाली श्रोता हैं, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से महेश पाल और जबलपुर से मनीषा साखर दांडे। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

श्रम मिट्टी में छिपे उस बीज की तरह है जो स्वयं को गलाकर दुनिया को हरियाली दे जाता है, और श्रमिक उस बरगद की तरह जो अपने हिस्से में तपती धूप रखता है और दुनिया को छांव बांटता है। किसी भी राष्ट्र की असली शक्ति इन मेहनतकश हाथों में ही होती है जो अपने पसीने से उसके सपनों को आकार देते हैं। और जब इन्हीं हाथों को उनका अधिकार दिलवाने के लिए कोई आवाज उठती है तो इतिहास उसे एक व्यक्ति नहीं, एक आंदोलन की तरह याद रखता है। भारत के श्रमिक आंदोलन को नई चेतना देने वाले एक ऐसे ही महान व्यक्तित्व थे नारायण मल्हार जोशी, जिनके लिए मजदूरों की पीड़ा उनकी अपनी संवेदना बनी और उन्होंने श्रम को सम्मान दिलवाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। नारायण मल्हार जोशी का जन्म 5 जून सन 1879 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के पास स्थित गोरे गांव में हुआ था। ये समय भारत के लिए परिवर्तन की आहटों का समय था। देश गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था और समाज अनेक असमानताओं के बोझ से दबा हुआ था। ऐसे समय में नारायण मल्हार जोशी का जीवन आकार ले रहा था। उनकी आरंभिक शिक्षा पुणे में हुई, जो उस समय राष्ट्रवादी चेतना का प्रमुख केंद्र था। सन 1901 में उन्होंने डेक्कन कॉलेज पुणे से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने अहमदनगर, मुंबई और पुणे के विभिन्न विद्यालयों में अध्यापन का कार्य आरंभ किया। इस दौरान वो तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन को ध्यान से देख और समझ रहे थे। उनके जीवन में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब वो राष्ट्रवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले के संपर्क में आए। गोखले जी की विचारधारा ने उन्हें बहुत गहराई से प्रभावित किया और सन 1909 में वो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सक्रिय सदस्य बन गए। यहाँ उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि उनका जीवन देश और समाज की सेवा हेतु समर्पित होगा। मुंबई के कपड़ा मिल और औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की दशा देखकर वो विचलित हो गए। बड़ौदा के महाराजा श्रीमंत सयाजी राव गायकवाड़ और कुछ अन्य लोगों के वित्तीय और नैतिक सहयोग से उन्होंने सन 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की, जिसके माध्यम से मजदूरों के लिए रात्रिकालीन विद्यालय खोले गए, पुस्तकालय बनाए गए, चिकित्सा शिविर लगाए गए तथा सहकारी समितियों का निर्माण हुआ। वो समझ गए थे कि केवल आजादी नहीं बल्कि भारत भूमि के

समय की नदी आगे बढ़ रही थी और भारत के सामाजिक जीवन में भी अनेक परिवर्तन जन्म ले रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और देश के औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों का असंतोष चरम पर था। नारायण मल्हार जोशी ये जान चुके थे कि जब तक देश के मजदूर संगठित नहीं होंगे, तब तक वो मिल मालिकों और ब्रिटिश सरकार से अपने अधिकार नहीं मांग सकते। इसी सोच के साथ 31 अक्टूबर 1920 को मुंबई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का ऐतिहासिक प्रथम अधिवेशन हुआ। नारायण मल्हार जोशी इसके मुख्य शिल्पकार थे। उन्होंने लाला लाजपत राय और जोसेफ बैप्टिस्टा के साथ मिलकर इस संगठन की नींव रखी। लाला जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे और नारायण मल्हार जोशी इस संगठन के प्रथम महासचिव चुने गए और उन्होंने सन 1929 तक इस पद पर रहकर भारतीय श्रमिक आंदोलन को दिशा दी। उस दिन केवल एक संस्था का निर्माण नहीं हुआ था, बल्कि बिखरी हुई आशाओं को एक धड़कन मिली थी। मजदूरों के हितों को कानूनी जामा पहनाने के लिए विधायी शक्ति की

आवश्यकता थी। इसे देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने सन 1921 में नारायण मल्हार जोशी को केंद्रीय विधानसभा का सदस्य मनोनीत किया। वो सन 1921 से 1947 तक लगभग 26 वर्ष लगातार इस सदन के सदस्य रहे। सदन के भीतर वो श्रमिकों की निर्भीक आवाज बनकर गूंजते रहे। नारायण मल्हार जोशी ने मजदूरों की आवाज को केवल भारत तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने श्रमिकों की आवाज को वैश्विक मंच तक पहुंचाया। सन 1922 में जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सम्मेलन आयोजित हुआ। नारायण मल्हार जोशी इस सम्मेलन में भारतीय श्रमिकों के आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए। इसके बाद वो कई बार अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के सदस्य चुने गए, जिससे भारतीय श्रमिक आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। भारत की सीमाओं से निकलकर मजदूरों की आवाज अब वैश्विक मंच तक पहुंच रही थी। केंद्रीय विधानसभा में रहते हुए नारायण मल्हार जोशी ने कई ऐतिहासिक कानून पारित करवाए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण था भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम 2026। इस कानून से पहले श्रमिकों के द्वारा संगठन बनाया जाना या अपनी मांगों के लिए हड़ताल करना एक अपराध माना जाता था, लेकिन नारायण मल्हार जोशी के अथक प्रयासों ने श्रम संघों को वो कानूनी मान्यता और सुरक्षा दी जिसने भारतीय श्रम इतिहास का भूगोल बदल दिया। इससे पहले सन 1923 में मजदूर मुआवजा अधिनियम को भी पारित करवाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। परिणामस्वरूप कार्यस्थल पर दुर्घटना होने पर मजदूरों को मुआवजे का अधिकार प्राप्त हुआ। उनके प्रयास अद्भुत थे, जैसे किसी ने वर्षों से बंद दरवाजों को खोल दिया हो। सबके हिस्से की रोशनी सब तक पहुंच सके, इसी दृढ़ संकल्प के साथ वो लगातार आगे बढ़ते रहे।

समय का चक्र निरंतर घूमता रहा और नारायण मल्हार जोशी की यात्रा नए पड़ावों से होकर गुजरती रही। भारतीय कारखानों, चाय बागानों और कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों की वास्तविक स्थिति की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने रॉयल कमीशन ऑन लेबर का गठन किया। नारायण मल्हार जोशी को इस उच्च स्तरीय आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। उन्होंने पूरे भारत का व्यापक दौरा किया और एक ऐतिहासिक रिपोर्ट तैयार करने में मदद की, जिसने आगे चलकर भारत में न्यूनतम मजदूरी और काम के घंटे तय करने की नींव रखी। 1920 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय श्रमिक आंदोलन एक नए मोड़ पर खड़ा था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के भीतर एक नई विचारधारा का प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा। ये लोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए हड़ताल का समर्थन किया करते थे, जबकि नारायण मल्हार जोशी का मानना था कि श्रमिक संगठनों का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक दांवपेच के बजाय शुद्ध रूप से मजदूरों का सामाजिक और आर्थिक कल्याण होना चाहिए। वैचारिक मतभेदों की ये आंधी जब तेज हुई तो वर्ष 1929 के नागपुर अधिवेशन में उन्होंने भारत के भावी राष्ट्रपति वीवी गिरी और दीवान चमनलाल जैसे मनीषियों के साथ मिलकर एक अत्यंत साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने AITUC से अलग होकर 1930 में इंडियन ट्रेड्स यूनियन फेडरेशन की स्थापना की। उनका लक्ष्य सदैव स्पष्ट था। यही कारण है कि जब मजदूरों की एकजुटता का सवाल आया तो वो अड़े नहीं रहे, बल्कि लचीलापन अपनाते हुए सन 1940 में वो पुनः AITUC में शामिल हुए और इसके महासचिव के रूप में वो फिर से सक्रिय हो गए। कुल मिलाकर अपनी राह पर वो दृढ़ संकल्प के साथ चलते रहे। अपने सिद्धांतों से उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया। राजनीति धारा में वो हमेशा निष्पक्ष रहे और जब कभी मजदूरों के हित की बात आई, उनके कल्याण की बात आई, उन्होंने सब कुछ छोड़कर श्रमिक कल्याण का पक्ष लिया। भारत के भावी संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए जब लंदन में प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ तो नारायण मल्हार जोशी ने इसमें भारतीय श्रमिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए भाग लिया। यहां उन्होंने महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ मिलकर वंचित वर्गों के अधिकारों पर गहन विमर्श किया। नारायण मल्हार जोशी ने यहां इस बात की वकालत की कि स्वतंत्र भारत के नए संविधान में प्रत्येक नागरिक को वयस्क मताधिकार मिलना चाहिए तथा श्रमिकों के अधिकारों को मौलिक अधिकारों का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। देश की आजादी के बाद देश के नए औद्योगिक और श्रम कानूनों के निर्माण में वो सरकार के सबसे वरिष्ठ मार्गदर्शक और सलाहकार बने। आजीवन देश और समाज की सेवा करते हुए 30 मई सन 1955 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि नारायण मल्हार जोशी का जन्म कब हुआ था? सवाल एक बार फिर सुन ले, नारायण मल्हार जोशी का जन्म कब हुआ था? आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है wataNkaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

अभी आप सुन रहे थे स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।

0: हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में योगासन को वैश्विक खेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। गृह मंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पर्यटन, कृषि, बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा और

शिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि समान नागरिक संहिता को देश के 3 राज्यों ने पहले ही लागू कर दिया है। हमारी सरकार भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके लिए हमने उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी है। ये समिति जिला स्तर पर सभी वर्गों से उनकी राय ले रही है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के आर्थिक मामलों की समिति ने मध्य प्रदेश में 4,415 करोड़ रुपए की लागत वाली 2 सड़क निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार की इस महत्वपूर्ण सौगात से प्रदेश की जाति बहुल जिले बैतूल खंडवा खरगोन और बड़वानी के समग्र विकास को तेज गति मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब भोपाल में ईवी कार से ही यात्रा करेंगे। ये ईवी मुख्यमंत्री सुरक्षा से जुड़े सभी मानकों पर खरा उतरने के बाद मुख्यमंत्री के लघु कार किट में कल से शामिल कर ली गई है। और पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में प्री मानसून की गतिविधियां जारी हैं। अगले 24 घंटों में भी 20 से अधिक जिलों में आंधी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बिजली गिरने की संभावना भी है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

पेश है फिल्म संगीत। आज इस कार्यक्रम में आपको हम सबसे पहले सुनाने जा रहे हैं शक्ति फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

बप्पी लाहिरी के संगीत निर्देशन में आइए अब सुनते हैं अनजान का लिखा गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। फिल्म का नाम है नमक हलाल।

अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़ में अब सुनते हैं समीर का लिखा गीत। संगीत नदीम श्रवण का है और फिल्म का नाम है फूल और कांटे।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त करते हैं। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे राजीव वर्मा की आवाज़ में गीत और भजन। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं इस गीत से।

0: राजीव शर्मा के गाए इस भजन के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। 9:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए नाटक रणधीर पहलवान। लेखक सआदत हसन मंटो और प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंढियाल।
1: प्रस्तुत है नाटक रणधीर पहलवान। लेखक सआदत हसन मंटो, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल।

0: ए सीधी चल। अरे उधर कहाँ, अरे कहाँ कुर्सी चली जा रही है। तुझे सांप काटे तेरी टांग टूट जाए। अरे सीधी चल रे सीधी।
1: अभी तक आई क्यों नहीं, कहीं नजर नहीं आती।
0: ए तुझे सांप काटे सीधी होकर चल मुर्दार, फिर वहीं चली गई। अरे चल ना सीधी।
1: ये इश्क बुरी बला है, कहाँ मैं एक गरीब मजदूर, कहाँ वो गांव के जमींदार की बिटी है।
0: बहुत बुरा फंसा है शामू बेटा इस प्रेम के चक्कर में।
1: कौन सावित्री?
2: बहुत बुरा फंसा है शामू तू इस प्रेम के चक्कर में।
1: नहीं सावित्री, वो तो मैं ना।
2: तू साफ कह क्यों नहीं देता कि तेरी मेरी टूट गई? मैं तो पहले ही जानती थी कि तू ऐसा ही करेगा।
1: अरे आज तू किस बात पर बिगड़ बैठी है? अरे मैं तो नसीब की बात कर रहा था। क्या ये झूठ है कि तू हमारे जमींदार की बेटी है? और क्या ये सच नहीं कि मैं गरीब मजदूर हूँ? अरे छोड़ तू इन बातों को, आ चलें।
2: आ चलें। तुझे पता भी है कि यहाँ 2 घंटे से तेरी राह देख रही हूँ। सचमुच मर्द बड़े वो होते हैं।
1: क्या होते हैं?
2: मैं नहीं चलूंगी तुम्हारे साथ। ये भी कोई बात हुई कि तेरे लिए हर रोज मुझे बापू से झिड़कियां सहनी पड़े और तू तो चुपचाप अपने घर निकल जाता है?
1: अरे सावित्री जितनी झिड़कियां तुझे अब तक मिली हैं सब की सब मुझे दे दे। चल ना।
2: नहीं श्यामू, अब मैं चलती हूँ। बहुत देर हो गई और फिर घटा छा रही है। अगर रास्ते में बरखा शुरू हो गई तो क्या होगा? तुझे देख लिया है, बस आज यही काफी है।
1: तो सचमुच
2: जाने को जी तो नहीं चाहता, पर क्या करूं, बापू का डर भी तो है ना। उनको पता चल गया तो मार

0: अजी हटाओ, तुम पासा फेंको पासा।
1: अरे फेंकता हूं फेंकता हूं, लो ये 25 धरे पड़े हैं।
0: माधो यहां 10 और 25 फेंकते हैं, लो ये 25 देख लो, और लो ये 10। सदके जाइए, राजा नल के ही आए।
1: उस्ताद, राजा नल को तुमने सिद्ध कर लिया, पर वो लौंडिया सावित्री तुमसे काबू में नहीं आई।
0: अबे चुप बे, कई बार कह चुका हूं तुमसे मैं, तुम मुझे छेड़ा ना करो वरना किसी रोज ताव में आकर कुछ कर बैठूंगा, पर तुम टलते ही नहीं। अरे पहलवान आदमी हूं, दंड पेलता हूं, मुकद्दर घुमाता हूं, मुझे इश्क से क्या काम। शराबी कबाबी हूं, सरकार मुझे 10 नंबरियों में गिनती है, कई बार जेल हो चुकी है। अबे इश्क क्या खाक करूंगा, है सोचने की बात है।
1: तो छोड़ो इस किस्से को, चलो एक दो बाजी चौसर की ओर हो जाए।
0: अरे भाई अब मैं अखाड़े की तरफ जाऊंगा, है आना हो तो उधर आ जाइयो। अरे दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, वरना कहीं तकदीर तमाशा न बना।

0: तो दीवार। अरे दीनू काका,
1: सरकार
0: लस्सी बनाई है?
1: अभी बना देता हूँ।
0: नहीं, मैं आज नहीं पीऊंगा।
1: ठीक है सरकार, इधर दुकान की तरफ तो आइए पहलवान साहब।
0: अरे दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे।
2: पहले तो यूं कभी गाना इस पहलवान पर सवार नहीं हुआ था।

0: सावित्री।
1: कौन?
0: मैं हूँ श्यामू की माँ। डर मत बेटा।
1: जी माता जी।
0: इधर आ, इधर आ मेरे पास।
1: हाँ?
0: घबरा नहीं, मुझे सारी बातों की खबर है।
1: सारी बातों की? किन बातों की माता जी?
0: इसीलिए तो तेरे पास आई हूँ। देख सावित्री, तेरा और श्यामू का कोई जोड़ नहीं। तू एक धनवान की बेटी है और वो एक गरीब मजदूर।
1: तो
0: इसमें तेरी ही बदनामी है बिटिया। उसको समझाती हूँ, बहुत समझाती हूँ, पर वो तो परों पर पानी ही नहीं पड़ने देता। मुझे कोई बात नहीं करने देता। इसी वास्ते तेरे पास आई हूँ।

0: तू समझदार है?
1: पर माता जी, मैं...
0: देख सावित्री, मैं कहती हूं अगर तुम दोनों ना मानोगे तो जरूर कोई आफत खड़ी हो जाएगी।
1: मतलब?
0: उसका तो सिर फिर गया है। मैंने सुना है कुछ दिनों से उसने किसानों को जमींदार के खिलाफ उकसाना शुरू कर दिया। सावित्री, जब से ये बात सुनी है मेरा दिल बतासे की तरह बैठा जा रहा है। मेरा कहा मान और उसे मिलना छोड़ दे।
1: पर माता जी,
0: सावित्री,
1: ये कैसे हो सकता है? मैं श्यामू से मिलना कैसे छोड़ सकती हूँ?
0: मेरी बात तो सुन।
1: आप मुझसे ऐसा क्यों कहती हैं?
0: सावित्री, सावित्री, अरे तूने तो रोना शुरू कर दिया। अरे मेरी बात सुन।

0: आओ पहलवान आओ, इधर मेरे पास बैठ जाओ।
1: आपने मुझे बुलाया, क्या काम है?
0: अरे भाई जरा आराम तो कर लो, काम तो जब तक जिंदगी है होते ही रहेंगे। मुनीम जी,
2: जी, जी, जी, जी क्या हुक्म है सरकार?
0: रणधीर पहलवान की पिछले महीने की और इस महीने की तनख्वाह अभी तक क्यों नहीं दी? ये बहुत बुरी बात है। देखो आइंदा ऐसी गड़बड़ ना हो।
2: जी
0: हाँ, तो अभी रुपए लाकर पहलवान साहब को दे दो।
2: बहुत अच्छा सरकार, अभी लाता हूँ।
1: आप क्यों तकलीफ करते हैं, अभी का तो खाता हूँ फिर ले लूंगा।
0: नहीं पहलवान, यहाँ कौड़ी कौड़ी का हिसाब किया जाता है। बोतल मंगवाऊं? अरे मुनीम जी, वो कल 4 बोतलें आई थी, उनमें से 2 पहलवान साहब की हैं, कोई और उड़ा कर ना ले जाए। ले आओ।
1: अपने लिए खिंचवाई है?
0: हाँ हाँ, खास तौर पर मैंने अपने लिए खिंचवाई थी। हाँ भाई पहलवान, तो किस्सा ये है कि इस श्यामू ने कुछ दिनों से मुझे तंग करना शुरू कर दिया है, किसानों को मेरे खिलाफ उकसा रहा है, जिससे लगान वसूल करने में मुश्किल पैदा हो गई है। है तो बड़ी मामूली सी बात, पर तुम जानते ही हो अगर मैं खामोश रहा तो शह पकड़ जाएंगे। कल मुनीम से बातें हो रही थी, मैंने कहा हमारा पहलवान जो है वो शामू को यूं चुटकियों में ठीक कर देगा। क्यों पहलवान?
1: क्यों नहीं, क्यों नहीं।
0: लो पहलवान
1: जी,
0: ये थोड़ी सी नमूने के तौर पर पियो।
1: अरे
0: इत्तेफाक से बाहरी पड़ी थी। ये लो। देखो पहलवान, बात ज्यादा बढ़नी नहीं चाहिए, रुपए पैसे की तो तुम फिक्र ना करो। अगर कोई ऐसी बात हो गई तो मैं सब बंदोबस्त कर दूंगा। अब 500 रुपए मैंने इस काम के लिए अलग रख छोड़ा है। मेरा मतलब यह है कि अगर चुपके से ये कांटा निकाल ही दिया जाए तो क्या बुरा है।
3: अरे आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा।
4: भाइयों, मैं जमींदार की आंखों में कांटे की तरह खटक रहा हूं, अगर उसका बस चले तो वो मुझे फांसी पर लटकवा दे, मगर वो पापी मुझसे डरता है क्योंकि मैं उसके सारे भेद जानता हूं, इसलिए वो मेरी परछाई से भी डरता है। भाइयों मेरी बात याद रखो, जालिम कभी बहादुर नहीं होता। तुम बिल्कुल ना घबराओ, वो तुम्हारा बाल भी बाका ना कर सकेगा। हम उससे वही चीज मांगते हैं जो वो हमसे छीन चुका है, उसकी डांट डपट में बिल्कुल ना आओ और ऐसे ही डटे रहो। सरकार के कानों तक ये बात पहुंच गई तो समझो हमारा बेड़ा पार है, उसके ढोल की पोल खुल जाएगी।
5: श्यामू भैया, तुमको ये भी पता है कि उसने रणधीर पहलवान को रुपए पैसे का लालच देकर हमारे खिलाफ कर दिया है। कल शराब पीकर वो तुम्हें गालियां दे रहा था।
4: मैं जानता हूँ, पर वो हमारा क्या बिगाड़ सकता है। उस कुत्ते की कोई परवाह ना करो, वो जमींदार से भी ज्यादा पापी है। उसका नाम ला लो मेरे सामने, मेरा खून खोलने लगता है।
6: उसने मुझे कुत्ता कहा।

0: हाँ हाँ उस्ताद, मैंने मैंने इन कानों से सुना है।
1: उसने मुझे कुत्ता कहा, उसने रणधीर पहलवान को कुत्ता कहा। अब अगर वो पर लगाकर आसमान पर उड़ जाए तो भी मैं उसे जिंदा ना छोड़ूंगा। अबे माधव,
0: उस्ताद
1: वो तेरे उस्ताद को गालियां देता गया और तू खामोश खड़ा रहा।
0: वो
1: अरे तूने उसकी जबान क्यों ना खींच ली? लेकिन ये क्या हुआ, मैं अभी जाकर उसको मजा चखाता हूँ। उसने रणधीर पहलवान को समझा क्या है? क्यों बे, तू यहाँ खड़ा क्या डर रहा है?
2: ओ, रणधीर पहलवान, क्यों?
1: अबे मैं पूछता हूँ, यहाँ झाड़ियों के पीछे तू अकेला खड़ा क्या कर रहा है?
2: गा रहा था, अब तेरा मुंह देख रहा हूँ।
1: तू खत्री का लड़का है ना, मरने मारने से बिल्कुल नहीं डरता?
2: जा अपना रास्ता पकड़, बहुत बातें कर चुका।
1: ये मेरे हाथ में तुझे लाठी नजर नहीं आ रही क्या?
2: तू लड़ना चाहता है तो लड़।
1: अबे तुझसे क्या लड़ूंगा, एक लाठी तेरे सिर पर मारूं तो तू जमीन में घुटनों तक गड़ जाए।
2: तेरी लाठी उठने से पहले ही अगर
1: संभाल।
0: कौन? सावित्री।
2: सावित्री तू?
3: श्यामू, श्यामू, ये मैंने क्या कर दिया, अब क्या होगा?
0: सावित्री, तूने मेरा माथा लहूलुहान कर दिया। अरे याद रख, इसकी सजा तुझे भुगतनी पड़ेगी। श्यामू, तुझसे मैं फिर निपट लूंगा। अगर सावित्री बीच में ना आ गई होती तो मैंने तेरा कचूमर निकाल दिया होता।
2: जाजान निकल।
3: श्यामू, मैं इन झाड़ियों के पीछे छुपी हुई थी।
2: हाँ?
3: और जब उसने तुम पर वार करने के लिए लाठी उठाई तो बाल्टी अपने आप मेरे हाथ से निकल गई।
2: कोई बात नहीं
3: श्यामू, श्यामू, उसको उसको बहुत गहरी चोट आई है, वो मुझसे जरूर बदला लेगा। हाय, अब क्या होगा?
2: कुछ नहीं होगा सावित्री, तू चिंता मत कर, तू चल चुपचाप मेरे साथ।
4: आओ आओ पहलवान आओ। अब मुनीम जी,
5: जी
4: ये ढेरे उठा लो।
5: हाँ।
4: बाकी हिसाब फिर करेंगे।
5: जी जी जी, बहुत अच्छा।
4: आओ पहलवान। अरे आओ। ये तुम्हारे माथे को क्या हुआ?
1: कुछ नहीं।
4: तो फिर ये पट्टी क्यों बांध रखी?
1: चोट लग गई थी।
4: हैं? चोट? कैसे?
1: वो कल शामू से जरा चकचक हो गई थी यूं ही।
4: क्या?
5: और उसने तुम्हें घायल कर दिया? हमें क्यों बना रहे हो पहलवान?
1: अरे उसने मुझे घायल नहीं किया।
4: तो फिर किसने किया, तुम मुझे बताओ, वो कौन था पहलवान?
1: अब मैं आपसे क्या कहूँ, बात यह है कि चूक मुझसे हुई, मैं अपने ध्यान में रहा और उसने वार कर दिया।
5: किसने?
1: नहीं, वो शामू ने। लेकिन क्या हुआ, आज फिर दो दो हाथ हो जाएंगे?
4: अरे लेकिन भाई रणधीर, लोग बाग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि पहलवान ने उस कल के लौंडे से।
5: पर जमींदार जी, अब पहलवान बच्चा थोड़ी ही है, अरे उसने सब बंदोबस्त कर लिया होगा।
4: मजा तो तब है कि रणधीर बदनामी से पहले ही उसका सफाया कर दे।
5: हाँ।
4: ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। क्यों मुनीम?
5: 52 तोला पाव रत्ती की बात कही है हुजूर ने।
4: ये 500 देता हूँ, चुपके से अपना काम करे और किसी दूसरे शहर चला जाए,
5: और जब मामला ठंडा हो जाए तो फिर वापस चला आए।
1: रुपए पैसे की बात छोड़िए जमींदार साहब, मैं आपका काम कर दूंगा और बहुत जल्द कर दूंगा। अरे एक आदमी मारना कोई कठिन काम नहीं, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। यह अब फैसला कर लिया है कि शामू जिंदा ना रहेगा।
4: पर रणधीर, काम ऐसे हो कि किसी को कानो कान खबर ना हो।
1: सावित्री।
3: कौन?
1: मैं रणधीर पहलवान, जिसका माथा कल तूने घायल किया था, याद है ना? मैंने उस वक्त क्या कहा था?
3: मुझे मुझे माफ कर दो रणधीर।
1: माफ कर दूं तुझे? हाँ। क्यों डर गई? अरे ठहर जा, जाती कहाँ है, बदला लिए बिना तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अरे तूने समझा क्या था मुझे, रणधीर पहलवान हूँ, रणधीर पहलवान, खून ही पी जाया करता हूँ मैं।
3: मुझे माफ कर दो रणधीर।
1: अरे क्यों माफ कर दूं तुझे, क्या तूने मेरा माथा जख्मी नहीं किया? मैं बदला लिए बगैर तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। जिन हाथों ने मेरा माथा जख्मी किया वही इस पर पट्टी बांधेंगे। बोल, बांधेगी पट्टी?
3: हाँ।
1: तो तू अपनी ओढ़नी से कपड़ा फाड़ और पट्टी बनाकर मेरे माथे पर जल्दी बांध, वरना चल चल बांध, खड़ी सोचती क्या है, चल।

0: बैठो तो मैं बांधू पट्टी, यू यू
1: बैठूं?
0: मेरा हाथ नहीं पहुंचेगा।
1: अच्छा ले ले, बैठ गया मैं। बांध बांध बांध।
0: पट्टी बांध दी मैंने, मैं जाऊं अब?
1: नहीं, पहले फूंक भी मारो, फूंक मारो। हाँ,
0: अब जाऊं मैं,
1: रे
0: जाती
1: भागती कहाँ है? ठहर ठहर ठहर, भागती कहाँ है? ठहर जाओ, अरे ठहर ठहर ठहर।
0: रणदीर छोड़ दे, छोड़ दे मेरी कलाई रणदीर, मेरी चूड़ियां टूट
1: छोड़
0: जाएंगी।
1: दूँ? अरे कहाँ गई तेरी वो चुलबुलाहट? दूँ एक मरोड़ा और मैं? हाँ हाँ छोड़ दे। हाँ
0: रणदीर मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कीड़े चले तेरे तन बदन में, खड़े का खड़ा जमीन में समा जाए तू।
1: सावित्री, सावित्री, सावित्री।
0: परमात्मा करे तुझ पर बिजली गिर जाए, परमात्मा करे तेरी गर्दन मरोड़ी जाए आज तू जैसे मेरी कलाई मरोड़ रहा है।
1: ना ना रो सावित्री, ना रो। तू रोती है तो मेरे दिल को बड़ा दुख होता है। मैंने मैंने तुझसे मजाक किया था। मैं भला तुझे तकलीफ पहुंचाकर खुश हुआ हूं क्या? ना रो ना रो सावित्री, ना रो। ले ए, ए, ए, सुन, मुझे मार ले, ले ले ये पत्थर ले ले, मेरे सिर पर दे, मार सिर पर मार दे मेरे। मैं तुझसे प्रेम करता हूं सावित्री।
0: क्या कहा? प्रेम? तुझ जैसे पापी को प्रेम करने का कोई अधिकार नहीं रणधीर।
1: नहीं नहीं सावित्री, मैं तुझसे प्रेम प्रेम नहीं करता हूं। मैं तुझसे कैसे प्रेम कर सकता हूं? मैं बड़ा जालिम, बड़ा पापी हूं। तू ठीक कहती है, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं बेवकूफ हूं। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे सावित्री, मुझे माफ कर दे।

0: माधव, जहाँ तेरा पसीना गिरे ना वहाँ मैं अपना खून बहाने को तैयार हूँ।
1: क्या बात
2: है। हाँ किशोरी माल, एक हदिया और भेज दे।
1: आजकल उस्ताद कहीं दिखाई नहीं देते हैं, कहाँ रहते हैं आजकल?
3: मैं बताऊँ आजकल वो क्या करता है।
4: क्या सुनाऊं माजराए दर्द दिल।
5: भाई बहुत बड़ी उम्र है हमारे उस्ताद की। आओ आओ उस्ताद, आओ
2: उस्ताद, आओ उस्ताद बैठो, अभी तुम्हारी बात हो रही थी उस्ताद।
5: माधव कह रहा था कि उस्ताद इश्क लगा रहा है, इश्क।
6: उस्ताद क्या इश्क करेगा? माधव मैं बड़ा पापी और बड़ा जालिम हूँ, मैं प्रेम नहीं कर सकता। तूने एक बार कहा था ना, और सच ही कहा था कि उस्ताद तेरे पहलू में दिल नहीं पत्थर है।
2: मैंने तो वो ऐसे ही कहा था उस्ताद, वरना सच्ची बात तो ये है तुम्हारे पहलू में बड़ा ही नर्म दिल है।
6: नहीं तू झूठ कहता है, मेरे पहलू में दिल नहीं पत्थर है। एक बार फिर कह, उस्ताद तेरे पहलू में दिल नहीं पत्थर है। पत्थर पत्थर पत्थर ही तो है। अब लेकिन कोई प्रेम करता है तो इसमें मेरे बाबा का क्या जाता है? मैं उसको नहीं मारूंगा, जमींदार जाने और उसका काम जाने।
2: अरे अरे कहां चले उस्ताद, मैंने अभी अधिया मंगाई है।
6: मैं जमींदार से मिलने जा रहा हूं, एक जरूरी काम है, अभी आता हूं।
7: मुनीम
8: जी,
7: तुमने बात तो ठीक कही है।
8: सरकार मैं तो ठीक ही कहता हूँ, मैंने ये बाल धूप में थोड़े ही सफेद किए हैं। सोचने की बात है सरकार, रणधीर अगर पकड़ा जाए और थाने में ये कह दे कि जमींदार साहब ने मुझे सामू का कत्ल करने के लिए कहा था, तो बैठे बिठाए एक और मुसीबत खड़ी हो जाएगी कसम से।
7: अरे तो इसका इलाज बड़ा आसान सा है।
8: अब वो क्या?
7: श्यामू को रणधीर मारे। हाँ। और रणधीर को कोई और साफ कर दे।
8: हाँ।
7: या फिर ये हो सकता है कि उसको

0: ज्यादा शराब पिला दी जाए और जब वो बेहोश हो जाए तो उसे उठाकर रेल की पटरी पर रख दिया जाए। मुनीम, मुनीम, ये आवाज सुनी तुमने?
1: नहीं तो।
0: अरे मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि बाहर दरवाजे के पीछे कोई खड़ा था।
1: जी नहीं, आपको ऐसे ही वहम हुआ है।
0: नहीं भाई, लेकिन लेकिन डर लगता है।

0: रामू भैया, रामू भैया, तुमने सुना जमींदार जी का खून हो गया।
1: खून? जमींदार जी का खून?
0: श्यामू को पकड़कर थाने ले गए।
2: मैं ना कहता था कि श्यामू का गुस्सा ही जरूर रंग लाएगा।
0: चलो चलो, अरे उठो ना, थाने में चलते हैं, श्यामू को पकड़कर वहीं ले गए।
3: अरे भैया, लाश बाहर खेतों में पड़ी थी है? और श्यामू उसके सिरहाने खड़ा था, और इधर से थानेदार साहब जो दौरे से वापस आ रहे थे उधर ही आ निकले।
2: अब जरूर फांसी हो जाएगी उसे।
3: पर श्यामू तो कहता है कि मैं निर्दोष हूँ।

0: बेटा, श्यामू बेटा, मैं तुझे रोकती रही बेटा, पर तूने मेरी एक न सुनी।
1: मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ माँ।
2: फिर जमींदार जी का खून किसने किया है?

0: चल, दुनिया से एक पापी कम हुआ, उसकी नीयत ही खराब थी, जिसका फल उसको मिल गया। अरे रेल के नीचे अगर उसकी लाश कुचली जाती तो मजा आ जाता। बड़ा चालाक बना फिरता बस। लाला किशोरी लाल, लाला
1: आया पहलवान आया। क्या हुक्म है?
0: अरे आज तुम्हारी शराब को क्या हो गया है? मालूम होता है बीच में ही पानी मिला देते हो।
1: अरे नहीं उस्ताद,
0: आज ठेका खाली खाली क्यों नजर आता है?
1: अरे वो जमींदार जी का कत्ल हो गया है ना, सारा गांव तो थाने में बैठा है, शामू पकड़ लिया गया है।
0: 500 रुपए देता था दूसरे को मारने के लिए। वाह रणधीर पहलवान, तुम्हारे क्या कहने।
2: रणधीर कहाँ है?
0: कौन?
2: रणधीर पहलवान, मैं
0: सावित्री। अरे सावित्री तू यहाँ क्या करने आई है? जा चली जा यहाँ से। अरे क्या हुआ, क्या हुआ सावित्री, तू रोती क्यों है? तू
2: वो शामू को ताने ले गए और कहते कि उसने मेरे बापू को मारा है।
0: अरे
2: ये झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है रणधीर। शामू ने मेरे बापू को नहीं मारा, वो बिल्कुल निर्दोष है। वो तो मुझसे मिलने के लिए खेतों में जा रहा था कि रास्ते में उसे लाश पड़ी दिखाई दी। बस बस उसका इतना ही दोष है रणधीर। मैं मर जाऊंगी रणधीर, मैं मर जाऊंगी।
0: ये एक कैसी बात मुंह से निकालती है सावित्री।
2: मैं जहर खाकर मर जाऊंगी अगर शामू को कुछ हो गया तो।
0: नहीं, ना रो सावित्री, ना रो, मत रो।

0: मैं जाकर देखता हूं थाने में कि क्या बात है। ए अरे सचमुच तू पगली है, मत रोना, बेकार अपनी जान हलाकान कर रही है। चल चल सावित्री चल।
1: सामू की माँ रणधीर।
2: रणधीर
1: दारू पी रखी है,
3: थानेदार की तरफ जा रहा है। रणधीर, ए रणधीर, बाहर खड़े रहो। अब्दुल रहमान, तुम इसको रोकते क्यों नहीं?
0: खबरदार जो मुझे किसी ने हाथ लगाया।
3: आए, आने दो इसे, आने दो। हाँ बोलो, क्या कहना है?
0: कुछ नहीं, मैं ये देखने आया था कि जमींदार जी को किसने कत्ल किया।
3: ये मेरा हाकिम बनाकर तुम्हें किसने भेजा है? खैर, कातिल को देखना है ना? लो देख लो, वो तुम्हारे सामने खड़ा है।
0: ये शामू। शामू ने जमींदार को मारा है।
3: हाँ।
0: अरे थानेदार साहब, आपने गलत आदमी को पकड़ लिया।
3: रणधीर, ज्यादा बकवास ना करो, चलो डॉप भागो यहाँ से, निकल जाओ।
0: अरे मैं कहता हूँ थानेदार साहब, जिस आदमी ने कभी चिड़िया तक नहीं मारी, वो एक आदमी को जान से कैसे मार सकता है?
4: उड़ा ले मेरी हंसी। हाँ हाँ, उड़ा ले मेरी हंसी।
0: थानेदार साहब, अरे ये मुर्दार किसी को क्या मारेगा?
5: थानेदार साहब, इससे पूछिए, जमींदार को अगर शामू ने नहीं मारा तो किसने मारा है?
0: तो मुझसे पूछ, थानेदार से पूछने को क्यों कहता है? थानेदार क्या मेरा खुदा है? ले सुन ले, जमींदार को मैंने मारा है।
2: देखा सावित्री, मेरा बच्चा शामू निर्दोष है। देखा सावित्री, मेरा बच्चा निर्दोष है, निर्दोष है। रणधीर, रणधीर तुम
0: सावित्री, मैंने तुझसे कहा नहीं था कि घर चल के बैठ? तू यहां क्या करने आई है? जा, चली जा यहां से।
2: रणधीर, तुम बहुत अच्छे आदमी हो।
0: नहीं नहीं सावित्री, मैं बड़ा जालिम हूं, बड़ा पापी हूं। मुझे तो ना प्रेम करने का कोई अधिकार ही नहीं है। हाँ, मेरे पहलू में ना दिल नहीं है, पत्थर है, पत्थर।

0: अभी आप सुन रहे थे सादत हसन मंटो का लिखा नाटक रणधीर पहलवान। भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है: शामू अमित रिछारिया, सावित्री कंचन राजानी, माधव कमल जैन, दीनू अरुण गीते, दरबारी मल देशबंधु शुक्ल, शामू की मां अनुराधा चतुर्वेदी, जमींदार नजीर कुरैशी, मुनीम मांगीलाल शर्मा, थानेदार अरशद इकबाल और रणधीर पहलवान की भूमिका निभा रहे थे संजय मेहता। इस नाटक के प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल।
1: अभी आप सुन रहे थे नाटक रणधीर पहलवान, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कटनी जिले की चिट्ठी।
0: प्रस्तुत है
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कटनी जिले की चिट्ठी। आलेख राकेश चतुर्वेदी, वाचन स्वर दीपा सिंह। कटनी जिले में इन दिनों बदले मौसम के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है।

मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटे में तेज हवा और आंधी के साथ बूंदाबांदी की संभावना है। जिले में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष जून माह को मलेरिया निरोधक माह के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मलेरिया संक्रमण काल प्रारंभ होने से पूर्व जन समुदाय में मलेरिया से बचाव रोकथाम संबंधी व्यापक जन जागरूकता फैलाना है, ताकि मलेरिया नियंत्रण और उन्मूलन में आमजन की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। इसके लिए मलेरिया जागरूकता रथ भी चलाया जा रहा है। कटनी में भी पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली को आधुनिक प्रभावी तकनीक रूप से सशक्त बना

रोधक माह के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मलेरिया संक्रमण काल प्रारंभ होने से पूर्व जनसमुदाय में मलेरिया से बचाव रोकथाम संबंधी व्यापक जन जागरूकता फैलाना है, ताकि मलेरिया नियंत्रण और उन्मूलन में आमजन की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। इसके लिए मलेरिया जागरूकता रथ भी चलाया जा रहा है। कटनी में भी पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली को आधुनिक प्रभावी तकनीक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में पुलिस द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। पुलिस मुख्यालय से प्राप्त आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से युक्त टैबलेट जिले के विभिन्न थानों में पदस्थ विवेचना अधिकारियों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे अनुसंधान कार्यों में तेजी, पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। कटनी में भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हितग्राहियों की ई केवाईसी किए जाने का अभियान चलाया जा रहा है। भारत सरकार के द्वारा जारी नवीन निर्देश द्वारा पीएम किसान योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रति वर्ष बायोमेट्रिक के माध्यम से ई केवाईसी की कार्यवाही सभी हितग्राहियों द्वारा कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। कटनी में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए पुलिस सीधे अभियान चलाया गया। पिछले दिनों पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के निर्देशन और महिला थाना प्रभारी वर्षा सोनकर के मार्गदर्शन में गठित पुलिस सीधी की विशेष टीम ने शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों का दौरा किया। टीम ने चौपाटी, मनोरंजन, मेला सहित अन्य भारी भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में सघन भ्रमण कर महिलाओं और बालिकाओं से सीधा संवाद स्थापित किया। पिछले दिनों कटनी में मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता के संबंध में गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक शासकीय तिलक महाविद्यालय कटनी में आयोजित की गई। बैठक में समान नागरिक संहिता के संबंध में अध्ययन और परीक्षण के लिए बनाई गई उच्च स्तरीय समिति की सदस्य और प्रख्यात कानूनविद अनूप नायर उपस्थित रहे। इस दौरान उपस्थित जनों ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित समान नागरिक संहिता के बारे में खुलकर अपने विचार व्यक्त किए। कटनी जिले में नागरिक सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देश पर जिले भर में संचालित पटाखा फैक्ट्रियों, विस्फोटक भंडारण मैगजीनों और अमोनियम नाइट्रेट फैक्ट्रियों तथा स्टोर हाउसों की व्यापक जांच और भौतिक सत्यापन अभियान चलाया गया। जिले में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने और आमजन को स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रेरित करने हेतु 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्व 40 दिवसीय निःशुल्क ऑनलाइन योग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये पहल भारत सरकार के आयुष मंत्रालय और मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार संचालित की जा रही है। जिला आयुष अधिकारी डॉ आशीष रेजा ने बताया कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 11 मई से प्रारंभ होकर जिले के 18 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में नियमित रूप से आयोजित किया जा रहा है। प्रतिदिन 8 बजे से 9 बजे तक पंडित खुशीलाल आयुर्वेद चिकित्सालय से योग आयोग के विशेषज्ञों द्वारा ऑनलाइन माध्यम से योग सत्र संचालित किए जा रहे हैं। कटनी में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के आह्वान और कलेक्टर आशीष तिवारी के मार्गदर्शन में 19 मार्च से जिले में जल स्तर को सुधारने और पारंपरिक जल स्रोतों को सहेजने के लिए चलाया जा रहा जलगंगा संवर्धन अभियान 2026 में जिले ने उत्कृष्ट कार्य किया है। बलराम तालाब की श्रेणी में जलगंगा संवर्धन अभियान के मामले में कटनी प्रदेश के 4 अग्रणी जिलों में शामिल है। जिला प्रशासन और ग्रामीणों के साझा प्रयासों से अब तक जिले में 3,284 जल संरक्षण संबंधी कार्य सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं, जिससे पानी को सहेजने और उसके संरक्षण तथा संवर्धन में मदद मिलेगी। कटनी में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत संचालित मकान सूचीकरण मकान गणना कार्य पूरा हो गया है। इसमें कटनी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कीर्तिमान स्थापित किया है। अब प्रगणकों द्वारा बनाए गए नजरी नक्शे को ट्रेस का काम किया जा रहा है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

अभी आप सुन रहे थे कटनी जिले की चिट्ठी। आलेख राकेश चतुर्वेदी का था, वाचन स्वर दीपा सिंह का। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।

फिर एक नई सुबह में बातों, जानकारियों और गीतों से सजी महफिल का करते हैं आगाज। उम्मीद है समाचार पत्र और चाय की चुस्की के साथ आपकी भी आज की सुबह की हो गई होगी शुरुआत। श्रोताओं, नौ तपा खत्म हो गए।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स, न्यूज़ ऑन AIR एप, OTT वेव्स और DTH के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम सुरमई सवेरा। क्षमा कीजिए, फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम गीत सागर
1: आकाशवाणी भोपाल।
0: अरे अपने

उम्मीद है समाचार पत्र और चाय की चुस्की के साथ आपकी भी आज की सुबह की हो गई होगी शुरुआत। श्रोताओं, नौतपा खत्म हो गया, जून माह भी शुरू हो गया। चिलचिलाती गर्मी से धीरे धीरे राहत की आस मन में लिए हम सभी मानसून का इंतजार कर रहे हैं। और शायद कुछ हद तक हमारा ये इंतजार पूरा भी हो गया है। छुट्टियां बिताकर पुनः सभी अपने अपने घर लौट आए हैं और बच्चों के साथ बड़े और विशेषकर घरेलू कामकाजी महिलाएं भी अपने अपने रूटीन में आने को तैयार है। लेकिन इन सब के बीच एक रूटीन हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए और वो है प्रभु नाम के स्मरण और संकीर्तन का। इसी से हमारा दिन अच्छा बनता है और हम ऊर्जावान बने रहते हैं।

श्रोताओं, तपती गर्मी के बाद मानसून का इंतज़ार थोड़ा सा पूरा भी हुआ। बीती शाम और सुबह की बौछारों ने मौसम में ठंडक और दिलों में सुकून घोल दिया है, लेकिन अभी पूरी तरह से मानसून की दस्तक होने में कुछ समय बाकी है। ऐसे में बदलते मौसम में अपनी सेहत और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। पीने योग्य पानी की शुद्धता पर विशेष ध्यान दीजिएगा। कोशिश कीजिए कि खान पान हल्का और ताज़ा हो और मौसम का आनंद लेते हुए अपने मन को खुश रखें, क्योंकि मानसून की शुरुआत में मौसम का मिजाज बड़ा खुश

0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
4: आकाशवाणी भोपाल से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम गीत सागर, और आज इस कार्यक्रम के सफर में मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी रेडियो संगीनी प्रियंका। श्रोताओं, खुशियों का कोई पैमाना नहीं होता, हर छोटी से छोटी खुशी हमें अपने आप में बड़ी लगती है। जब जो बात हमें खुशी देती है, ऐसा लगता है जैसे इससे अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता। खुशी क्या है, यदि कोई हमसे पूछे तो हम यही कहेंगे कि हर वो बात जो हमें और हमारे मन को अच्छी लगे, वही हमारे लिए खुशी है। एक माँ से पूछे कि उसकी खुशी क्या है, तो उत्तर मिलेगा कि अपने बच्चों को अपने पैरों पर खुद चलते हुए देखने से लेकर उसे अपने पैरों पर जिम्मेदारियों के साथ खड़ा होने तक देखना ही उसकी खुशी है। एक पिता से पूछे कि उनके लिए खुशी क्या है, तो वे बताएंगे कि जब अपने बच्चे उनके कंधों से जिम्मेदारी का बोझ बांटने लगे, तो वही दिन उनकी खुशी का दिन होता है और तब उनका मन यही सुनाता है।

दोस्तों, हर रिश्ता अपने स्तर पर हमें अपनी तरह से खुशी देता है। किस किस रिश्ते और संबंध की बात करें और किस किस को अनदेखा करें। खैर, इस वक्त स्टूडियो के बाहर हम देख रहे हैं कि मौसम हमारे मन को भिगोकर खुशी दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे प्री मानसून नहीं बल्कि मानसून ही आ गया है। प्रकृति सुंदर सुसज्जित हो गई है। हरियाली धरती की धानी चुनर ओढ़े ये धरती सच धज कर आपको लुभाने के लिए तैयार हो गई है। मिट्टी की सौंधी खुशबू हमारे तन और मन पर इत्र की खुशबू की तरह फैल रही है और मन से यही आवाज़ आ रही है,

0: श्रोताओं, मौसम की खुशी यूं ही बरकरार रहेगी। गीत सागर कार्यक्रम में हाजिर होते हैं इस अंतराल के बाद।
1: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: श्रोताओं, हाजिर हैं इस अंतराल के बाद फिर से कार्यक्रम गीत सागर में। खुशी अक्सर हमारे अंदर की होती है, लेकिन हम उसे बाहर ढूंढते हैं और हम ये सोचते हैं कि असली खुशियां भौतिक सुख सुविधाओं और संसाधनों में हैं। बिल्कुल ये बात सही भी है, कुछ हद तक ये संसाधन आपको खुशी देते हैं, लेकिन ये खुशियां अस्थाई होती है और अंदरूनी खुशी आपको हमेशा खुश बनाए रखती है। बाहरी तत्व हमारे अंदर की खुशी को प्रभावित करते हैं। अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छे दोस्त, अच्छा परिवार, अच्छी संगत, अच्छा वातावरण, चाहे वो हमारे आसपास का हो या कुदरत का हो, यही हमारी स्थायी खुशियों के परिचायक है। और बस अपनी उलझनों

श्रोताओं, हम कैसे जान पाते हैं कि कोई खुश है? सीधी सी बात है, आपके चेहरे की मुस्कान आपकी खुशी की झलक होती है। मुस्कान जब धीरे धीरे हंसी में बदले, और ये हंसी जब आपके हलन चलन और शारीरिक क्रियाओं में दिखने लगे, तो जान पाते हैं कि कोई कितना खुश है। कोई जब आपसे मिले और कोई नेगेटिव बात ना हो, तब लगता है कि आज कोई खुश है। आपकी किसी उपलब्धि से जब कोई आपसे खुश होकर मिलता है, तब एहसास होता है कि आज अपने अलावा भी कोई और खुश है। कभी आप भी दूसरों की खुशी का उत्सव मनाकर देखिए, आप भी बदले में खुशी ही पाएंगे।

श्रोताओं, खुश रहने के लिए ज़रूरी क्या है? हमारा मानना है खुश रहने के लिए स्वस्थ तन और स्वस्थ मन ज़रूरी है। और तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए क्या ज़रूरी है, सुनते हैं इस संदेश के माध्यम से।

श्रोताओं, जैसा कि हमने कहा कि अच्छी सोच और अच्छे विचार भी खुशी का कारक हैं और यही धीरे धीरे हमारी आदत में बदलते हैं। हमारे विचारों, आदतों और भावनाओं के अनुसार ही हमारा मन मस्तिष्क काम करता है। इसलिए आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा खुद को बनाने के लिए हमें उसी दिशा में सतत प्रयासरत होना होता है। और हम जैसा बनना चाहते हैं वैसा यदि खुद को महसूस करने लगे तो इससे बड़ी कोई और खुशी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे व्यक्तित्व की पहचान हम स्वयं हैं। और जब खुद से खुद की पहचान गहरी और साफ होती है तो हम सभी जगह पसंद के पात्र होते हैं और जहाँ जाते हैं वहाँ इत्र की खुशबू की तरह महक जाते हैं।

श्रोता हो, व्यक्तित्व की पहचान बनाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है हमारी आदतें। जहां अच्छी आदतें पॉजिटिविटी फैलाती हैं, वहीं कुछ खराब आदतें हमें पीछे धकेल देती है। और यदि समय रहते इन पर ध्यान दे दिया जाए और इन्हें बदल लिया जाए तो ये हमारी हितग्राही होती है। हमेशा सुरक्षित और आसान रास्ता चुनने से नई चीज़ें सीखने और आगे बढ़ने के अवसर कम हो जाते हैं, ऐसा हम मानते हैं, और धीरे धीरे हमारी कुछ अच्छा बनने की चाहत सिर्फ सोच तक ही सीमित हो जाती है। और अपनी खुशियों तक पहुंचने के रास्ते भी इन्हीं आदतों से तो गुजरते हैं।

दोस्तों, खुश रहने और खुश रखने दोनों ही परिस्थितियों के लिए शिकायतों के पिटारे को बंद रखना ही बेहतर है। लगातार शिकायत करने से दिमाग की हर परिस्थिति में नेगेटिविटी पहलू ढूंढने लगता है और इससे तनाव बढ़ता है और हम छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना भूल जाते हैं। अपनी शिकायतों पर ध्यान देने और उन्हें कम करने की कोशिश, सकारात्मक सोच और समाधान हमारी आदतों में परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन ये मीठी सी शिकायत करना और उस पर नाहक रूठ जाने और मनाने में जो खुशी मिलती है, वो भी जिंदगी की खुशी का ही तो एक हिस्सा होती है और ऐसी नोकझोंक भी खुशियों का जरिया ही तो है।

0: खुशियों के न जाने कितने पहलू और न जाने कितने ही रंग है, लेकिन हम तो बस इतना जानते हैं कि अच्छा गीत संगीत भी जीवन में खुशियाँ भरता है, क्योंकि हमारे मन की हर भावना गीतों में अपना एहसास बयां करती है और संगीत उन एहसासों को रंगीन बनाकर खुशी का इंद्रधनुषी रंग हमारे सामने पेश करती है। दोस्तों, आने वाली 8 जून को आकाशवाणी अपने सफर के 90 वर्ष पूरे करने की ओर सतत गति से अग्रसर है। उम्मीद ही नहीं, आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि सूचना, जानकारी और मनोरंजन की कसौटी पर हम अपनी यात्रा को आने वाले समय में और भी सुखद बनाएंगे और जल्द ही शतक की सरहद तक आपके साथ रहेंगे। सुनते हैं ये प्यारा सा संदेश।
1: कवि हेमंत देवलेकर।
2: आकाशवाणी की दुनिया जहाँ संगीत है, नाटक है, समाचार है, समाज सुधार और शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रसारण है, हम सब रचनाकार, अलग अलग क्षेत्रों के सर्जक आकाशवाणी के प्रति हार्दिक आभारी हैं कि आकाशवाणी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपनी अपनी आवाज़ें आकाशवाणी के माध्यम से देश में, समाज जनों के बीच में प्रसारित कर पाएं। आकाशवाणी आकाश की तरह अजर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।
0: इसी के साथ आज का गीत सागर कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की अनुमति दीजिए। अगली मुलाकात तक खुश रहिए, बदलते मौसम में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और नेक गतिविधियों में व्यस्त रहिए। अनुमति दीजिए आपकी अपनी रेडियो संगिनी प्रियंका को। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम गीत सागर। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर संतुलित, स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिया जा सकता है। केंद्रीय कैबिनेट ने मध्य प्रदेश के लिए 2 महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि ये परियोजनाएं बैतूल, खंडवा, खरगोन, बड़वानी जिले के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। इनके माध्यम से राज्य में इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज राज्य संग्रहालय में भोपाल मेट्रो परियोजना और उच्च शिक्षा विभाग के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। भारत भवन में भारतीय नृत्य की विविध शैलियों पर केंद्रित नृत्य समारोह 5 जून से प्रारंभ होगा। 3 दिवसीय इस आयोजन में प्रतिदिन शाम 6 बजे से कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे, जिसमें प्रवेश निःशुल्क है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में प्री मानसून की गतिविधियां जारी हैं। अगले 24 घंटों के लिए 20 से अधिक जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार कहीं कहीं बिजली गिरने की भी संभावना है। और भारत ने सिर्फ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 5 बार के विजेता भारत का शनिवार को फाइनल में बांग्लादेश से सामना होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी, गीत हमारे।
4: श्रोताओं नमस्ते, मैं हूँ नीतिका वर्मा, लेकर हाजिर हूँ प्रोग्राम बात आपकी, गीत हमारे। जब से मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया है, उसकी प्रगति थमी नहीं है। ये पहिया ऐसा चला कि आज तक नहीं थमा है। इसने जीवन के कई नए आयाम को खोज और आविष्कार के माध्यम से सुलभ बनाया है। तो श्रोताओं, आज बात करेंगे साइकिल की। ये आपके जीवन में क्या परिचय देती है और आपके जीवन में इसका क्या महत्व है? शुरू करते हैं।

0: है हमारे पहले श्रोता के साथ जुड़कर।
1: प्रणाम मैम, नमस्कार, आपको करता हूँ। मैं संतोष कुमार राव बात कर रहा था, उमरिया मध्य प्रदेश से।
0: जी संतोष जी, कैसे हैं?
1: मैडम बहुत अच्छे हैं, लगातार आपके प्रसारण सुनते हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के। बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम लेकर के आप आते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है मैडम आपसे बातें करते हुए हमें।
0: और हमें भी बहुत खुशी होती है जब हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़ते हैं और इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, है ना? तो
1: जी बिल्कुल मैम।
0: संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहला फ़ोन कॉल आपका है और जानना चाहते हैं कि साइकिल जो है वो आपके जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल, उमंगों का खास एक सुकून भरा एहसास जो दिलाता है वो साइकिल होती है। हम लोग बचपन से लेकर के अभी तक जो शौक रहा है हमारा, अब तो चल खास करके टू व्हीलर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो साइकिलें होती है उससे उससे हमारी शारीरिक मानसिक जो ऊर्जा शक्ति होती है उसका निर्माण होता है। और साइकिल चलाने से हमारी जो पैर की कसरत है वो भी पूरी होती है और इसे बहुत ज़्यादा हमें सुकून भी मिलता है मैडम जी।
0: तो आप साइकिल को सुकून का एक जरिया मानते हैं?
1: बिल्कुल मैम, खास करके हम जब युवा रहे हैं, बताएं आपसे, अभी भी हम युवा ही हैं और हम लोग जब स्कूले जाते हैं साइकिलों से तो बहुत ही अच्छा लगता है।
0: चलिए साइकिल चलाते रहिए तो आपकी जो युवावस्था है ये एक लंबे समय तक तो जरूर बरकरार रहेगी। संतोष जी, इसी उम्मीद के साथ मैं आपका बहुत धन्यवाद करते हैं और आपने बहुत अच्छी बातें की, इस बात का बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बिल्कुल मैम, और आपके प्रसारण लगातार हमें हम तक पहुँच रहे हैं न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन के साथ साथ DTH पर भी। आपका जो कार्यक्रम जाता है ना आकाशवाणी मध्य प्रदेश का, बहुत ही अच्छा लगता है मैडम जी ऐसे कार्यक्रम को।
0: जी जी जी जी, साथ में वेव्स OTT ऐप जो है उसके भी 2 वर्ष हो गए हैं हमारे, और इस पे भी आप प्रसारण सुनिए तो आपको भी बहुत आनंद आएगा।
1: बिल्कुल मैम, और साथ में फेसबुक पर भी जो कमेंट मतलब जाते हैं आकाशवाणी भोपाल के, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं मैडम जी।
0: आप बहुत सक्रिय श्रोता लग रहे हैं हमारे संतोष जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल मैम, लगातार पत्राचार भी हम लोग करते थे, आकाशवाणी पदाधिकारी हैं, चाहे उनके निर्देशन में बहुत सारे कार्यक्रमों का निर्माण होता रहा है और बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रमों का संचालन भी अभी किया जाता है।
0: अच्छा, तो एक चीज ये बताइए कि आपने कहा कि आप पत्र लिखा करते थे, तो वो लिखा करते थे को लिखा करूंगा बोलिए और लिखना शुरू कीजिए।
1: आकाशवाणी भोपाल और आकाशवाणी मध्य प्रदेश तक जरूर पहुंचेगा कार्यक्रम मन भावन और कार्यक्रमों के लिए। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, नमस्कार।
0: जी जी नमस्कार।

0: हेलो,
1: जी नमस्कार,
0: नमस्कार।
1: आपका परिचय दीजिए।
0: हम रजनी सोनी बोल रहे हैं दीदी। हम बालाघाट जिला से बोल रहे थे।
1: जी साइकिल चलाना जानती हैं?
0: नहीं,
1: लेकिन साइकिल का महत्व है आपके जीवन में, साइकिल आपके लिए कितनी उपयोगी है ये बताएं।
0: अब देखो दीदी, अब हम बच्चे वाले हो गए। पहले हम पढ़ते थे तो चलाते थे, अब क्या है हमारे बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं।
1: तो बच्चों को साइकिल इनाम में दी कभी?
0: अरे अब देखो, बच्चे अपने पढ़ रहे हैं तो अपन तो उनके लिए लेते थे ना साइकिल। स्कूल जाते थे, प्राइवेट स्कूल, तो पहले क्या है बस का साधन नहीं, तो 4-5 किलोमीटर में बच्चे चलाते जाते थे। हमारे तीनों बच्चे ने पढ़े हैं
1: हाँ, तो देखिए जब
0: जी।
1: हम वाहन चलाना सीखते हैं ना तो सबसे पहले
0: अभी
1: हमें
0: तो
1: साइकिल
0: हमारा बड़ा
1: सीखनी
0: वाला
1: पड़ती
0: बेटा,
1: है।
0: हमारे यहाँ गाड़ी वाड़ी सब है, बाकी वो कहता है साइकिल चलाने से स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि वो साइकिल चलाने और शौक लगती है उसको, तो ऐसे व्यायाम टाइप का। हाँ, तो इसलिए वो गाड़ी भी है, पर वो कहता है साइकिल से बहुत स्वस्थ रहते हैं करके वो साइकिल भी फिर से खरीदे हैं। साइकिल के बच्चों ने पढ़े तो हमने उनको बेच दिया जब उन बड़े बड़े हो गए थे जी।
1: तो अभी दोबारा साइकिल खरीदी उन्होंने।
0: अब वो क्या है, थोड़ा सा बोलते हैं गाड़ी गाड़ी में अच्छा नहीं लगता है, तो साइकिल में थोड़ा सा अपना इधर उधर आस पास घर के थोड़ा सा घूम लेते हैं।
1: हाँ चलिए, तो साइकिल वो अपने व्यायाम के तौर पर ले रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जी नमस्ते।

0: हेलो आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
1: आपका परिचय बता दीजिए।
0: मुन्ना सोनी गुरु नानक स्कूल के पास दमो मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ मैडम।
1: जी बहुत स्वागत है आपका।
0: नमस्कार मैडम, कैसी हैं आप मैडम?
1: जी हम बहुत अच्छे हैं। मुन्ना सोनी जी, हम जानना चाहते हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से साइकिल आपके लिए कितनी उपयोगी है, बताएं।
0: मैडम कम से कम 33 साल हो गए मुझे साइकिल चलाते हुए।
1: जी
0: और आज भी जो है मैं साइकिल चलाता हूँ। वो सबसे बड़ी चीज, साइकिल चलाने से बहुत से फायदे हैं।
1: हाँ हाँ,
0: जैसे हाथ पैर में आपके लिए कभी दर्द नहीं रहेगा।
1: हाँ,
0: कमर में दर्द नहीं रहेगा।
1: हाँ,
0: और स्वास्थ्य भी अपना बहुत बढ़िया रहेगा।
1: हाँ,
0: और दूसरी चीज क्या है कि आजकल क्या है कि जरा जरा से काम के लिए बच्चे जो है बाइक से या मोटरसाइकिल से मार्केट चले जाते हैं, वो अपने लिए जो है साइकिल से आसपास के अपने काम निपटाना चाहिए।
1: हाँ बिल्कुल सही,
0: उसमें स्वास्थ्य भी अपना बढ़िया रहेगा।
1: जी जी जी, इसमें काफी कुछ आपकी, देखिए सांस भी आपकी अच्छी हो जाती होगी इससे, क्योंकि इसमें काफी बल लगता है।
0: बढ़िया फिट रहते हैं।
1: हाँ शारीरिक बल लगता है, तो बहुत अच्छी बात है। और पैरों की कमर की तो आप बता ही रहे हैं कि इससे आपको काफी
0: पूरा दिन तरोताजा महसूस करते हैं अपने लिए हम।
1: चलिए बहुत अच्छा लगा मुन्ना सोनी जी, आपने साइकिल के इतने इतने अच्छे फायदे गिनवाए।
0: जी मैडम नमस्कार, थैंक यू मैडम।
1: नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, नमस्कार
1: हाँ, आप कौन बोल रही मैम?
0: जी। मैं नीतिका वर्मा बोल रही हूँ।
1: हम जानकी गुप्ता बोल रहे हैं, ग्राम भगवंत नगर माजरा जिला टीकमगढ़।
0: जी
1: बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं, 10 मिनट हो गए ट्राई करके कॉल
0: हाँ
1: करके।
0: हाँ हो जाता है, बहुत लोग बातें करते हैं, 10:30 का इसका वक्त होता है। तो जानकी गुप्ता जी, आज हम बात करना चाहते हैं साइकिल पर। तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि पर्यावरण की दृष्टि से साइकिल आपके लिए कितनी उपयोगी है।
1: मैडम बहुत उपयोगी है, ना पेट्रोल लगना, ना डीजल लगना है, ना उसका धुआं आने, कुछ भी नहीं आने। अगर चला ली तो अपन कहीं जाते
0: अच्छा।
1: हैं साइकिल से।
0: तो आपके
1: हम
0: घर,
1: जब हम स्कूल जाते थे तो साइकिल ही से जाते थे, जब इतनी गाड़ी गाड़ी तो चलती नहीं थी।
0: हाँ सही बात है, अधिकतम लोग तो साइकिल से ही स्कूल जाया करते थे।
1: हाँ, अब तो ऐसी गाड़ी चल गई थी, अभी स्कूटी चल गई, बच्चा स्कूटी से जाते हैं, लेकिन हम लोग तो साइकिल से जाते थे, कम से कम 6 किलोमीटर दूर। अगर साइकिल खराब हुई तो पैदल भी जाते।
0: सही बात है। तो जानकी गुप्ता जी,
1: बस
0: आज भी आपके यहाँ साइकिल है या नहीं?
1: हाँ है मैम, हमारे यहाँ साइकिल साइकिल भी है, मोटरसाइकिल भी है।
0: और उसका उपयोग कौन करता है?
1: मेरे पति तो है नहीं, मेरे बच्चा है और बच्ची है।
0: अच्छा, साइकिल चलाते हैं वो लोग।
1: हाँ साइकिल, ऐसे कहीं जाते हैं साइकिल से चले जाते। लड़की पहले चलाती, 9वां में पढ़ती थी तो साइकिल से जाती थी स्कूल। और हम गांव में रह रहा इस समय,
0: हाँ
1: तो वो कम से कम काफी दिन से उसने साइकिल चलाई, तो थोड़ी बहुत चला दी, भूल सी गई भी। अब कल लगती मम्मी हम भूल गए साइकिल चला। मंदिर गई थी हमारे साथ तो चलाती गई थी, एक लड़की के साथ गई थी उसके दोनों जने चला के गई।
0: जानकी गुप्ता जी, आप अपनी बेटिया से कहिए कि वो साइकिल का अभ्यास करे, क्योंकि साइकिल चलाना, तैरना, ये कुछ ऐसी विधाएं हैं जो

0: इंसान एक बार सीख ले तो वो भूलता नहीं है, है ना।
1: हाँ
0: तो बस थोड़ा सा अभ्यास करेगी तो उसको आत्मविश्वास आ जाएगा उसमें कि मैं साइकिल चला रही हूँ और मेरे से बनती है।
1: सही में
0: तो चलिए, पर्यावरण की दृष्टि से ये बहुत उपयोगी है साइकिल आज, क्योंकि देखिए बिना गाड़ी के तो हमारा काम हो नहीं रहा है, और पर्यावरण की मांग भी है ना। अभी 5 जून को हम पर्यावरण दिवस भी मनाएंगे। जाहिर बात है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण जो होता है वो धुएं से हो रहा
1: धुएं से होता
0: है
1: है।
0: ना। तो जहाँ संभव हो सके वहाँ हमें बचत करनी चाहिए, धुएं कम निकलें इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो सबका एक प्रयास जो है वो रहेगा तभी ये काम सार्थक हो पाएगा।
1: हाँ मैम,
0: जी जानकी गुप्ता जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। नमस्कार।

0: हाँ नमस्ते मैडम, मैं पिंडरी जिला मंडला से सुमत रिटायर शिक्षक सुमत कुमार जैन बोल रहा हूँ। मैडम
1: आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम देख रहे हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में जहाँ पर ईंधन की कमी हो रही है और वैसे भी जीवाश्म ईंधन जो है वो एक न एक दिन तो खत्म होगा ही
0: होगा, वो तो निश्चित है।
1: हाँ, तो ऐसे में जब संकट की
0: उपयोगी मैडम साइकिल से तो बताया ना मैं कि साइकिल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। आपको अगर शुगर है या बीपी है तो साइकिल आपको बहुत रोकथाम कर देती है, और साइकिल आपकी सस्ती भी है, और साइकिल आपकी कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत बढ़िया है। साइकिल से अपना स्वास्थ्य भी सुधरता है और मेंटेनेंस की भी उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी प्रकार की कोई परेशानी रख रखाव से लेकर हर चीज की पूरी समस्याएं हल कर देती है मैडम।
1: जी जी
0: 20 साल साइकिल चलाया हूँ मैडम मैं था।
1: हाँ।
0: और नदी पहाड़ सब थे, साइकिल सब जगह चल जाती है, नदी पहाड़ कहीं भी चला लूँ साइकिल बहुत सुलभ है।
1: हाँ, और छोटे मोटे नाले पड़े हैं तो हाथ में उठा करके भी साइकिल पार कर
0: हाथ
1: लेते
0: में कंधे में रख करके ले जा लूँ चल जाती है।
1: चाह रहे थे क्योंकि देखिए आज के परिप्रेक्ष्य में जहाँ ईंधन बचाना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है तो ऐसे में
0: मेरा नाती है मैडम, ये भी बहुत साइकिल चलाता है, लीजिए इससे थोड़ा बात कर लीजिए।
1: बिल्कुल।
2: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, आपका नाम क्या है?
2: मेरा नाम कबीर जैन है।
1: और कबीर, साइकिल चलाते हैं आप?
2: हाँ यस मैम।
1: और कैसा लगता है साइकिल चलाना?
2: अच्छा लगता है।
1: अच्छा, तो साइकिल से आप कहाँ कहाँ जाते हैं?
2: स्कूल, शॉप और साइकिलिंग में चल जाते हैं दोस्तों के साथ।
1: और मम्मी कोई सामान लाने के लिए कहती हैं तो साइकिल से जाके जल्दी से ला के देते हैं?
2: हाँ,
1: है ना। चलिए, बहुत अच्छा लगा कबीर, ये शौक हमेशा बनाए रखिए।

0: कुमार बोल रहा हूँ, मंदसौर से। हाँ भैया।
1: सुरेश जी,
0: हाँ
1: हम ये जानना चाहते थे कि भाई जो छोटे बच्चे होते हैं, है ना,
0: हाँ
1: स्कूल में जो 10वीं 11वीं कर लेते हैं या फिर जब जैसे ही कॉलेज में जाते हैं तो वो ज़िद करने लगते हैं घर में कि हमें गाड़ी खरीद के दी जाए। देखिए, ज़रूरत के लिए अगर हम खरीद रहे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन एक स्टेटस की बात जब बच्चे करने लगते हैं, क्योंकि वो लोग गाड़ी से आते हैं तो हम साइकिल से क्यों जाएं? भले ही उनके घर से 2-3 किलोमीटर पे ही विद्यालय है या कॉलेज है, लेकिन तब भी वो कहते हैं कि नहीं, हमें गाड़ी चाहिए क्योंकि बाकी लोगों के पास गाड़ी है। तो वो तुलनात्मक दृष्टि से जब वो बोलते हैं तो वो कितना सही बोलते हैं?
0: और तुलना नहीं कर रही, अगर पास में स्कूल है तो अपन को भाई पास पैदल चले जाओ, साइकिल से चला जाओ, मतलब
1: हाँ,
0: उनका कहना मानना चाहिए। आजकल बच्चों को भी, माता पिता का भी भाई।
1: हाँ, बिल्कुल सही।
0: मेरा मेरा सुझाव ये आपसे, मतलब है
1: हाँ,
0: बच्चों को माता पिता का कहना मानना चाहिए। पास में अगर स्कूल बोले पैदल चले जाओ, साइकिल पे चले जाओ, साइकिल क्या है तो, मतलब।
1: हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। ऐसा है ना कि साइकिल अगर आप चलाएंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे, पेट्रोल से पैसे
0: स्वस्थ
1: भी
0: भी रहेंगे,
1: बचेंगे।
0: अपना खून का दौरा भी चलेगा और कसरत हो जाएगी, सुस्ती नहीं आएगी शरीर में। एक
1: और सही बात तो ये भी है ना सुरेश कुमार जी, कि आर्थिक दृष्टि से भी इस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है ना। एक हाँ, बड़ी धनराशि जो है वो घर से खर्च करनी पड़ती है
0: खर्च
1: उसे
0: नहीं
1: लेने
0: पड़ती
1: के
0: है,
1: लिए।
0: मतलब। और पेट्रोल अगर जहाँ गाड़ी, पेट्रोल नहीं गाड़ी वो रखनी पड़ती है।
1: हाँ
0: साइकिल तो अपन कहा भी पैदल भी ले आ सकते, चला भी सकते, मतलब उसका कोई चार्ज भी नहीं लगता है।
1: हाँ चलिए
0: मेरा विचार ये दीदी क्या।
1: चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपने इतने अच्छे विचार हमें दिए हैं सुरेश कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फोन किया।
0: हाँ धन्यवाद मैडम।

0: जिला सागर तहसील बंडा से भोले लोधी बात कर रहा हूँ।
1: जी जी बहुत स्वागत है भोले लोधी जी आपका। कि बच्चे जो हैं वो आज साइकिल जब चलाते हैं तो उनकी खुशी जो है इनाम के तौर पर जब हम उन्हें देते हैं तो वो बड़े खुश रहते हैं, और लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं है ना, तो वो उनको ये लगता है कि अब हमें गाड़ी चलानी चाहिए, साइकिल नहीं चलानी चाहिए। वो देखा देखी में भी ऐसा कहते हैं। तो ये देखा देखी वाली जो बात है साइकिल ना चलाने की, वो कहाँ तक उचित है ना। तो लेकिन साइकिल जो है वो एक स्टेटस सिंबल लोग बाग बना लेते हैं कि इस हम अगर गाड़ी चला रहे हैं तो हम बहुत संपन्न और इस प्रकार से अपने आप को समझते हैं, और साइकिल चलाने को आज कई लोग जो है हीन भावना से देखते हैं। तो ये कहाँ तक उचित है?

0: पहले से साइकिल तो ठीक है, वैसे पर्यावरण से भी बच्चे माने बचा है, पेट्रोल बचता है, सही है, नहीं रहता है।
1: जी
0: साइकिल का उपयोग ज्यादातर करने चाहिए, साइकिल तो बहुत अच्छी है। पहले आदमी बोलते थे साइकिल से काम होता था, बहुत अच्छा लगता था, जहाँ जहाँ जाते थे। साइकिल तो सही है मैम, लेकिन बच्चों को नहीं देना चाहिए, छोटे बच्चे हैं उनको नहीं देना चाहिए, रोड पे सड़क पे चलाना चाहिए।
1: नहीं, गाड़ी नहीं देना चाहिए साइकिल तो। खैर ऐसा है कि जब बहुत छोटे रहते हैं तो वो अपने घर के सामने आसपास चलाते हैं,
0: सर
1: तो
0: ये तो होता है, चलाते
1: हाँ
0: हैं आमने सामने घर के आस
1: हाँ
0: पास।
1: हाँ नहीं, हमारा तो प्रश्न खाली ये था कि जो बनावटी दिखावटी जो दुनिया है उस पे दिखाने के लिए जो बच्चे जिद करते हैं ना कि नहीं अब हम साइकिल नहीं चलाएंगे, ज़रूरत नहीं है उन्हें बड़े वाहन की, लेकिन तब भी वो जिद करके जो है वो स्कूटी और मोटरसाइकिल वगैरह खरीदने की जिद करने लगते हैं, उसकी हम बात
0: बच्चों
1: कर
0: को
1: रहे
0: कुछ
1: थे।
0: नहीं करना चाहिए मैम, 2 मिनट का रोज कहाँ कर देता है अपन के लिए, रोज नहीं करना चाहिए।
1: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भोले लोधी जी, और आप जैसे सक्रिय श्रोता जो हैं, सुधी श्रोता जो हैं, कृतज्ञ हैं कि वो हमारे लिए इतनी अच्छे विचार देते हैं और हमारे रेडियो के साथ में हमेशा जुड़े रहना पसंद करते हैं, ये हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो चलिए, बहुत धन्यवाद, आपने बात की।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्ते मैम
0: नमस्ते, परिचय दे दीजिए।
1: जी। लक्ष्मण सिंह चंदेल, ग्राम बोतराई, तहसील पथरिया, जिला दमोह से बात कर रहा हूँ मैं।
0: आज विश्व साइकिल दिवस है, इसी पर आज हम बात कर रहे हैं
1: अच्छा मैम
0: जी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि
1: जी,
0: इनाम के तौर पर कभी साइकिल मिल

0: ली है या आपने किसी को दी है, या साइकिल जब हमें कभी कोई मिल जाए कभी बतौर इनाम, है ना। कभी कभी दोस्त भी आपस में एक दूसरे से कहते थे जब छोटे छोटे होते हैं ना, तो एक साइकिल चला रहा है, दूसरे के पास नहीं है, तो वो कहता है अच्छा मैं एक राउंड मारने के लिए मुझे दे दे, है ना। फिर वो जो खुशी मिलती है ना जब उसे मिल जाती है साइकिल, तो
1: जी
0: वो
1: देखिए मैम, ऐसा है, साइकिल तो मैम हम अभी भी चलाते
0: हाँ
1: हैं।
0: हाँ
1: जी जी बिल्कुल, और खेत पे जाते हैं तो साइकिल से ही जाते हैं मैम। और कई बार ऐसा होता है जैसे आप बता रही हैं मैम, कुछ
0: हाँ
1: मित्र लोग भी मांग लेते, क्या बताया हम एक राउंड लगा के आ रहे हैं,
0: हाँ
1: वो
0: हाँ
1: बाद में आपकी वापस कर
0: तो वही हम कह रहे हैं कि इनाम के तौर पर भी कभी कभी हमें जब साइकिल मिलती है ना, या
1: देंगे।
0: पहली बार जब कभी आपको साइकिल मिली होगी, तो आप कितने प्रसन्न हुए थे और क्या आपका अनुभव रहा था ये बताइए,
1: प्रसन्न का
0: कुछ
1: क्या,
0: याद है
1: पहली
0: तो।
1: बात तो है, जब हम मतलब सीख रहे थे चलाबो मैम, तो
0: हाँ
1: हम यही विनती करते भगवान से कि हम पे साइकिल बन लगे, हम नारियल फोड़। जब बहुत बहुत मतलब बड़न लगी थी, पर कैची, पहले कैची सीख रहे थे मैम, तो
0: हाँ
1: कैची के बाद में फिर डंडा, फिर सीख सीख पे मतलब ऐसे ही सीख पाए थे।
0: हाँ क्योंकि छोटी साइकिलें बहुत कम बनती थी, बड़ी
1: जी
0: साइकिल होती थी तो कैची चलानी पड़ती थी, क्योंकि सीट तक
1: बिल्कुल मैम,
0: तो
1: बिल्कुल।
0: हाँ पैर नहीं
1: और
0: पहुंचते
1: कहीं
0: थे।
1: भी जैसे अब जगदीश रथ यात्रा हो अभी आ रही है जो मैम,
0: हाँ
1: इसके लिए हम लोग पथरिया जा रहे थे, कोई चलो कोई तीन जना चलेंगे, आपको टेबल चलाएंगे, कहीं आधी रास्ता में तुम चलाना, आधे में हम चलाएंगे। बहुत
0: हाँ
1: मजा आ रहा था मैम।
0: चलिए, कितना अच्छा लगता है ना, साइकिल के पुराने दिन भी याद कर लो तो बड़ी खुशी होती है ना।
1: बिल्कुल मैम,
0: चलिए लक्ष्मण सिंह चंदेल जी, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई,
1: जी
0: और साइकिल चला करके आप यूं ही खुश रहा कीजिए।
1: बिल्कुल मैम,
0: चलिए नमस्कार।
1: धन्यवाद धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी नमस्कार,
0: जी, नमस्कार
1: परिचय दे दीजिए आपका।
0: जी। मेरा नाम है देवेंद्र कुमार साहू।
1: जी
0: मैं कटनी से बोल रहा हूँ,
1: जी
0: मध्य
1: जी
0: प्रदेश कटनी से।
1: जी जी जी बहुत स्वागत है आपका।
0: मैं एक्चुअली मैम आर्मी से हूँ
1: आर्मी में हैं तो आप लोग क्या साइकिल चलाते हैं?
0: जी। साइकिलिंग करते हैं मैम।
1: अच्छा, तो साइकिल का कितना महत्व है आर्मी में?
0: साइकिलिंग एक्चुअली मैम हम लोग क्या है, जैसे ड्यूटी एरिया थोड़ा सा दूर है, तो क्या है हम लोग या तो बाइक रखते हैं या तो साइकिल वगैरह रख लेते हैं।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: जी तो देवेंद्र कुमार साहू जी ये जानना चाहेंगे कि आजकल तो बहुत एडवांस साइकिलें आने लगी हैं, तो अच्छी साइकिलें भी आ चुकी हैं, लेकिन तब भी लोगों का रुझान जो है वो साइकिल की तरफ नहीं है। तो साइकिल की
0: हाँ
1: तरफ रुझान जो लोगों का बढ़े, इसके लिए आप क्या कहेंगे?
0: आजकल क्या है, रूटीन भी लोगों का ऐसा हो गया है कि पैदल चलना नहीं चाहते है ना।
1: जी।
0: तो अगर साइकिल से अगर जाते हैं तो बहुत ही पेसिंग करना है, थोड़ा सा दूर है 2-3 किलोमीटर, तो साइकिल से अपना काम हो
1: हाँ
0: जाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, है ना। और साथ साथ में हम तो ये कहते हैं कि साइकिल के प्रति रुझान यदि वो बढ़ा लें तो
0: हाँ
1: व्यायाम भी होगा, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी वो बहुत अच्छा होगा।
0: बिल्कुल, उससे क्या बॉडी में फिट रहेगा,
1: हाँ, और पेट्रोल बचेगा,
0: शरीर
1: पर्यावरण की दृष्टि से
0: थोड़ा
1: बहुत अच्छा
0: एफिशिएंट
1: है।
0: बहुत हो गए, तो ये सब में कंट्रोल होगा।
1: जी, बहुत धन्यवाद देवेंद्र कुमार।

0: तो श्रोताओं, साइकिल कितनी उपयोगी है इस विषय पर श्रोताओं ने अपने विचार दिए। आज साइकिल चलाना कई लोग पसंद नहीं करते, वक्त की कमी की बात कहते हैं तो कभी दूरी की। लेकिन मित्रों, पर्यावरण की दृष्टि से आज के परिप्रेक्ष्य में साइकिल को अपनाना ज़रूरत बन गई है। आज एडवांस साइकिल मार्केट में उपलब्ध है, गियर होते हैं, उसमें बैटरी भी होती है। ये सारी सुविधाओं को यदि आप अपनाएंगे तो आपको आसानी भी रहेगी और आज के परिप्रेक्ष्य में साइकिल देश हित में साबित होगी। चाहते थे लोगों में साइकिल के प्रति जागरूकता बढ़े, तो आप कार्यक्रम समेटने की अनुमति दीजिए नीतिका वर्मा को। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन प्रोग्राम बात आपकी गीत हमारे। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है इस घंटे की खास खबरों का।
2: ब्रिटेन के विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों के मंत्री यवेद कपूर 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कपूर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वो आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन का दौरा करेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली, औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी सूरत में 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक आयोजित की जा रही है। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि समान नागरिक संहिता को देश के 3 राज्यों ने पहले ही लागू कर दिया है। हमारी सरकार भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके लिए गठित एक उच्च स्तरीय समिति जिला स्तर पर सभी वर्गों से उनकी राय ले रही है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में प्री मॉनसून की गतिविधियां जारी है। अगले 24 घंटों के लिए 20 से अधिक जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार कहीं कहीं बिजली गिरने की भी आशंका है। और भारतीय पहलवान आज से मंगोलिया में शुरू हो रही 4 दिवसीय ओपन रैंकिंग सीरीज प्रतियोगिता में पुरुष फ्री स्टाइल, महिला कुश्ती और ग्रीको रोमन कुश्ती स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुति कार्यक्रम आपकी फरमाइश। सबसे पहले सुनते हैं प्यार का मौसम फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत RD बर्मन का है और इस गीत को सुनना चाहा है पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप बेबी आरजू जाजोरिया, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारनी, सूरज, ज्योति और बाबू रेयांश ठाकुर, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और झाविंद्र कुमार वर्मा। और इसी गीत को सुनना चाहा है डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिए, राधिका बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिए, भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन ने।

अगले गीत की फरमाइश हमें मिली है कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार की। नाम है मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। इसी गीत को पसंद किया है गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधड़े, आरती जोंधड़े, नेपाल पैलेस सागर से ये हमारे श्रोता हैं, तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका।

नुपुर, ऋषिका, रॉबिन और सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, ठेकेदार नसीम बेगम, आयशा हदिया, अस्मा सालिया, शोएब खान, पोतरा मुस्तावा खान, राउफ भाई, शाहिद भाई और गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। हमारे ये श्रोता सुनना चाहते हैं बरसात की एक रात, फिल्म का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ें। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत आर डी बर्मन का है।

तेरे मेरे सपने इस फिल्म का गीत अब आपके लिए पेश कर रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीत लिखा है नीरज ने और धुन तैयार की है SD वर्मन ने, और इस गीत को सुनना चाहा है औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश, और इसी गीत को पसंद किया है हुलास राम कटरे, नानेश्वरी कटरे। ये हमारे श्रोता है करियादंड बालाघाट के, और सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा ने लिख भेजी है हमें इस गीत की फरमाइश। तो सुनते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद तेरे मेरे सपने फिल्म से।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं आनंद बख्शी का लिखा ये गीत, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के साथ साथियों की आवाज़ है। फिल्म का नाम है जीने की राह और इस गीत को पसंद किया है लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति

साहू सरोजनी और कुंती साहू, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, और दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी और प्रांजल राय ने, जयबराज प्लॉट राजकोट से ये पत्र हमारे पास आया है, मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जास्मीन और प्रयागराज भट्ट का, और देवरी भाटापारा से ही इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता है गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विन वर्मा और गणेश मिस्त्री।

में आ।

और कार्यक्रम के अंत में सुनवाते हैं हम दोनों फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। गीत साहिर लुधियानवी ने लिखा है और संगीत जयदेव का है। इस गीत को पसंद किया है बनिया पारा धमतरी से रामचंद माखीजा, काफिर भाई, श्रीमती सविता, बेबी रचाती और पूरा माखीजा परिवार। साथ ही साथ इसे पसंद किया है इस्लामपुर सनावत से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतसा, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। और बेरड़ी से ये हमारे श्रोता ने पत्र भेजा है हुकुम करम कर, सुनीता करम कर, हार्दिक करम कर, प्राची और तनु करम कर ने। इन सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं हम दोनों फिल्म का ये गीत।

0: पत्र द्वारा भेजी गई फरमाइश के आधार पर आज अभी श्रोता सुन रहे थे अपने फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए देश के लिए।

0: स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: सूचना हो, समाचार हो या हो सुरताल, सबकी पहली पसंद आकाशवाणी भोपाल।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम संग्रहालय से। इसके अंतर्गत इन दिनों आप सुन रहे हैं रेडियो धारावाहिक सिसकियां। आज सुनिए इसकी 9वीं कड़ी।

वैभवी पिक्चर्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक सिसकियां। ये धारावाहिक खेमलता वकलू के उपन्यास खिला फूल मुरझाया पर आधारित है।

पिछली कड़ी में आपने सुना कि सारे का निकाह रसूल से हो जाता है। सारे और रसूल के बीच छोटी छोटी बातों पर तकरार होने लगती है। अपनी बेटी को नाखुश देखकर हसन बट एक दिन फाता पर बरस पड़ते हैं। इसके बाद हसन बट घर छोड़कर पास ही

एक कोठरी में रहने लगते हैं। एक दिन मुश्ताक हसन बट से मिलने आता है, जहां सारे से मुलाकात के बाद उन दोनों के बीच की गलत फहमियां दूर हो जाती हैं और वे अक्सर मिलने लगते हैं। अब आगे।

0: भागे हैं मुश्ताक? आओ, बड़ी देर कर दी।
1: वो सारे कुछ लोग मिल गए थे।
0: मुश्ताक, मुझे एक जरूरी बात करनी है।
1: हाँ हाँ, बोलो, क्या बात है?
0: अब हम यहाँ नहीं मिल पाएंगे। गांव वालों को हमारे मिलने की भनक लग गई है और वे लोग हमें अलग करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
1: सारे, तुम फिक्र ना करो, गांव वाले हमारा कुछ ना बिगाड़ पाएंगे। जब हम एक हैं तो हमें कोई जुदा नहीं कर पाएगा।
0: पर मुझे बहुत डर लग रहा है मुश्ताक, अगर ये बात गांव में फैली और रसूल को पता चला तो वो तो कुछ भी कर सकता है। हमें कुछ करना चाहिए मुश्ताक।
1: अरे तुम इतनी परेशान ना हो, मैं तलाक के लिए कोशिश कर रहा हूं, लेकिन रसूल के आने के बाद ही कुछ हो सकता है।
0: ठीक है, पर तब तक हमें एहतियात से काम लेना होगा ताकि गांव वाले हमारे लिए कोई परेशानी खड़ी ना कर सकें।
1: सारे, डरने की कोई बात नहीं, रसूल के आते ही हम तलाक की बात कर लेंगे। और जहां तक गांव वालों की बात है तो कुछ दिन हम नहीं मिलेंगे।
0: हाँ, यही ठीक रहेगा।
1: ठीक है सारे, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना।
0: आप भी अपना ख्याल रखना।

0: असलामुअलैकुम भाई।
1: वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम भाई,
0: क्या बातें हो रही थी?
1: अरे वो कुछ भी नहीं, बस यूं ही इधर उधर की बातें हो रही थी।
0: अरे इधर उधर की बातें, पता नहीं चला कुछ? अरे मिल्की कोठी में जो हसन भट रहता है ना।
1: अरे हाँ हाँ, पर क्या हुआ हसन भट को?
0: अरे उसकी बेटी जो सारा है ना।
1: हाँ हाँ जानता हूँ उसे, बोलो तो सही।
0: अरे मुश्ताक के साथ उसका चक्कर है।
1: लाहौल विलाव कुवत। अरे मियाँ ये क्या कह रहे हो?
0: अरे सही कह रहा हूँ, वो लोग हसन भट्ट की कोठी में मिलते हैं।
2: सुना तो मैंने भी कुछ ऐसा ही है भैया,
1: लेकिन सारे का निकाह तो रसूल के साथ हुआ है ना, अब फिर ये?
2: अरे पहले तो उसी मुश्ताक के साथ हुआ था, फिर तलाक हो गया था ना।
0: इसका मतलब है तो रसूल की बीवी ना। फिर एक औरत अपने मर्द की गैर हाजिरी में गैर मर्द से मिले, ये तो उसूल के खिलाफ है।
1: हाँ हाँ भैया बिल्कुल, अरे इससे तो हमारी बहु बेटियाँ भी बिगड़ सकती हैं।
0: हाँ, हमें कुछ करना चाहिए।
1: अरे बेगैरत औरतों को जो मर्द के रहते दूसरे मर्द को देखे, उसे भी तो सजा मिलनी चाहिए।
2: हाँ लेकिन सारे ऐसा क्यों करेगी?
1: अरे जिस औरत को मर्द की हवस हो वो कुछ भी कर सकती है मियाँ।
2: हाँ लेकिन मुश्ताक उसका पहचान वाला है, उससे मिलने में क्या बुराई है? अरे हो सकता है वो लोग यूं ही मिलते रहते हो।
0: लाहौल विलाकवत। अरे मैंने तो सुना है रसूल को धोखा देकर सारा मुश्ताक के साथ नाजायज ताल्लुकात रखती है।
2: अरे तो रसूल कौन सा भला आदमी है कि आप उसकी तरफदारी कर रहे हैं?
1: अरे मर्द चार चार निकाह करे ये जायज है, हमारे मजहब में इसे जायज बताया गया है। पर औरत के लिए अपने शोहर को छोड़ दूसरे मर्द को छूना भी गुनाह है, और अगर कोई इस पाक असूल को तोड़ता है तो उसे सजा का भागीदार होना ही पड़ेगा।
0: इस मामले में फाता व हसन भट्ट को हम सब लोगों को मिलकर समझाना चाहिए ताकि वो सारे पर लगाम कसे।
1: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप तो बिल्कुल सही कहते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता तो सारे को पूरे गांव के सामने सजा दी जाएगी ताकि हमारी बहू बेटियां सबक ले सकें।

0: दूसरे गांव का आदमी हमारे गांव की बेटी के साथ रंग रैलियां मनाए, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते।
1: अरे पहले उसके अम्मी और अबू से तो बात करो, अगर बात सुलझ जाए तो अच्छी है, अरे बदनामी से तो बचेंगे।
2: हाँ हाँ ये बिल्कुल ठीक है, हम हसन भट्ट और फाता से बात करेंगे, नहीं माने तो गांव में पंचायत बुलवाएंगे। एक औरत हमारे मजहब को नकारे ये हम नहीं सहेंगे मियाँ। हाँ चलो, चलो, चलो ये नहीं सहेंगे।

0: सुन ली ना अपनी बेटी की दास्तान, सारे गांव में थू थू हो रही है हमारी।
1: फाता, शांत रहो। लोग क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं हमारे लिए ये मायने नहीं रखता।
0: तो और क्या करोगे तुम बाप बेटी मिलकर?
1: तुम कुछ देर चुप नहीं रह सकती क्या? अरे हमें सोचने तो दो।
0: मेरी बात तुम दोनों कान खोलकर सुन लो। सारे अब मुश्ताक से कभी नहीं मिलेगी।
1: सारे और मुश्ताक मिलते हैं या नहीं, अगर मिलते ही हैं तो वो हमारा रिश्तेदार ही है, कोई गैर तो नहीं। और तुम किन लोगों की बातों में आकर ये सब तमाशा कर रही हो?
0: तमाशा? अरे तमाशा मैं नहीं कर रही, तमाशा तुम और सारे कर रहे हो, सारा गांव हमारे नाम पर।
2: अब रहने भी दो अम्मी।
0: क्यों रहने दूं? के तू सारे गांव में मुंह काला कर आए, इसलिए?
2: मैं मुश्ताक से प्यार करती हूँ।
0: सारे सारे कमबख्त लड़की, बंद कर अपनी जुबान वरना हलक से खींच कर बाहर कर लूंगी। मुझसे जुबान लड़ाती है, तेरा निकाह रसूल से हुआ है और तू अब मुश्ताक से प्यार करती है? जुबान न काट दूं तेरी।
1: ये क्या कह रही है फाता?
0: मैं जो कह रही हूँ वही सही है।
1: तो क्या गांव वाले सच बोल रहे हैं?
0: नहीं तो क्या झूठ बोलेंगे?
2: ये सच है अबू कि मैं मुश्ताक से मिलती हूँ, पर गांव वाले जैसा कह रहे हैं वो सच नहीं है।
0: हाय, किस्मत फूटी मेरी जो तुझे जना बदनामी करा कर जुबान लड़ाती है।
2: जो बात है वही कह रही हूँ।
1: सारे, अब तेरा निकाह रसूल से हो चुका है और ऐसे में तू रसूल के सिवा किसी और से मेल जोल रखे तो ये हमारे मजहब के खिलाफ है बेटा, और इससे हमारी बदनामी होगी। अगर हो सके तो तू मुश्ताक से ना मिल।
2: मुझे और मुश्ताक को मिलने से कोई नहीं रोक सकता।
1: सारे, क्या तुझे अपने बूढ़े बाप पर तरस नहीं आता? अब मैं सारे गांव वालों को क्या जवाब दूं? क्या कहूं मैं उनसे कि मेरी बेटी हमारे सामने हमारे उसूलों को खाक में मिला रही है और हम कुछ भी नहीं कर सकते?
2: अब्बू अब्बू अब्बू, आप परेशान मत होइए, जो होगा उसे मैं संभालूंगी।
0: अरे नामाकूल, तू तो हमें मार कर ही खुश होगी।
2: कौन किसे मार रहा है अम्मी, ये तो खूब जानती है।
0: मुझसे जुबान ना लड़ा, आखिर तू कहना क्या चाहती है? मैं बुरी हूँ और तू जो कर रही है वो सही है।
2: मुश्ताक से तलाक किसने दिलवाया मुझे? मैं आज भी मुश्ताक से प्यार करती हूँ, और जहाँ तक बात रसूल की है तो मुझे बदनामी का कोई डर नहीं। रसूल से मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती।
0: कुछ भी हो, अब रसूल तेरा शौहर है।
2: रसूल को मेरी जिंदगी में जबरदस्ती धकेला गया है, और अम्मी ये सब तेरा किया धरा है। मैं रसूल को शौहर नहीं मानती।
0: अरे एक बार जो रिश्ता बन जाए वो कभी नहीं टूटता।
2: मेरा रिश्ता सिर्फ मुश्ताक से था, है

0: रहेगा।
1: सारे एक बार और सोचिए बेटा, अपने बूढ़े माँ बाप के बारे में सोच। हम जिस समाज में रहते हैं हमें उसे जवाब देना होता है, और अगर तू रसूल के रहते मुश्ताक से अपने ताल्लुकात रखती है तो हम क्या जवाब देंगे, बोलो।
0: किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है अब्बू।
2: तुम्हें नहीं है शायद, पर समाज इन रिश्तों को नहीं मानता, और हमें तो जवाब देना ही होगा। हम इस समाज की मर्यादा को नहीं तोड़ सकते।
0: किस जवाब और किस मर्यादा की बात कर रही है अम्मी? आज जो लोग तुमसे, अप्पू से या मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि मुश्ताक से रिश्ता क्यों रखती हो, तो क्या तुम्हारा समाज मेरे सवालों का जवाब देगा कि रसूल से नूरी का तलाक क्यों हुआ? मेरी इच्छा के बगैर रसूल से मेरा निकाह क्यों पढ़वाया गया? मुश्ताक से मेरा तलाक धोखे से क्यों करवाया गया? रसूल जो मेरा शौहर है, वो मुझे छोड़कर शहर में दूसरी औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात क्यों रखता है?
2: अरे जा, अपनी जुबान न चला। तू औरत है और औरत की मर्यादा में रह। मर्दों की बातों में दखल अंदाजी न दे। औरतों को सवाल पूछने का हक नहीं।
0: जो इंसाफ करते वक्त दोनों तरफ की बातें ना सुने, उनके सामने मुझे दलील देने की कोई जरूरत नहीं है।
1: सहरे, रसूल से तेरा निकाह हुआ है, क्या तू इस रिश्ते को नहीं मानती? क्या तुझे हम पर भरोसा नहीं है? आखिर तू चाहती क्या है बेटा?
0: अब्बू, मैं कुछ नहीं चाहती, कुछ भी नहीं। रसूल से मेरा निकाह हुआ है, पर रसूल के लिए मैं सिर्फ एक देह हूँ, बीवी नहीं। क्योंकि रसूल के लिए तो औरत सिर्फ एक गुलाम है। मैंने मुश्ताक से प्यार किया था अब्बू, और आज भी मुश्ताक से ही प्यार करती हूँ।
2: तेरा तलाक हो चुका है।
0: हमारा तलाक एक धोखा था।
2: मजहब तलाक मानता है।
0: मैं उस मजहब को नहीं मानती जो इंसानी रिश्तों को भूल जाए।
2: तू औरत है और तुझसे जो कहा जाए वो ही करेगी।
0: मैं औरत हूँ इसलिए किसी मर्द की जूती बनकर रहूँगी, ये मुझसे नहीं होगा। मैं अपनी इच्छा से मुश्ताक के साथ रहूँगी, और रसूल मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा।
2: अरे देख, ये अच्छा ना होगा। तेरा निकाह रसूल से करने में कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा था, ये शायद तू नहीं जानती।
0: तकलीफ?
2: तू ऐसे नहीं मानेगी। रसूल को आने दे, वही समझाएगा तुझे।
0: हाँ हाँ, आने दो रसूल को, मुझे अब डर नहीं है किसी का। अब मैं जान गई हूँ कि औरों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश करती रही है तू।
2: मेरे घर में रहकर मुझे ही धौंस दिखाती है।
1: फाता, बात को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। हमें इस मसले पर सोच विचार करना चाहिए। अगर सारे नहीं चाहती कि वो रसूल के साथ रहे, तो हमें भी उस पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। पहले भी एक बार हम सारे के साथ गलती कर चुके हैं। अब
2: अम्मा तुम चुप रहो। आज तक किसी का भला चाहा है तुमने? तुम्हारी बेटी सारे गांव में मुंह काला किए फिर रही है। शौहर रहते मुश्ताक से मिलती जुलती है, और तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो। हाय,
1: मैं तरफदारी नहीं कर रहा। अगर सारे चाहती है कि वो मुश्ताक के साथ रहे तो उसे।
2: या खुदा, मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा, और इस घर में तो कभी नहीं। मैं ऐसा हरगिज़ ना होने दूंगी।
0: तो मैं ये घर छोड़ दूंगी।
2: धमकी देती है मुझे, अपनी माँ को।
0: अम्मी, अगर तू यही चाहती है

0: यही सही, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। जब कहो तब मैं ये घर छोड़ सकती हूँ।
1: सारे अंदर जा, हमें सोचने दे कि हम क्या करें।
2: जरा देखो इस बदसात लड़की की हिम्मत तो देखो।
1: सारे तू अंदर जा। फाता ये ना समझ कि वो अभी भी बच्ची है, अच्छे बुरे की पहचान है उसे। हमने उसकी जिंदगी में पहले ही जहर खोल रखा है, हमें ही संभालना होगा उसे।
2: या खुदा, तुम बाप बेटी पागल हो गए हो। बेटी की जिद के सामने तुम झुक सकते हो, मैं नहीं।
1: अरे हमें सारे की खुशी के बारे में सोचना है, उसके भले के लिए सोचना है। समाज अपनी जगह है और वो
2: और क्या, अपनी बेटी को उस मुश्ताक के पास भेज दोगे क्या? रसूल को क्या जवाब दोगे?
1: आने दो रसूल को, फिर बात करते हैं। अरे अभी तो तसल्ली से रहना होगा हमें।

0: आ गए रसूल, आओ बैठो यहाँ।
1: फाता, ये मैं क्या सुन रहा हूँ?
0: क्या सुन रहा है?
1: सारे के बारे में लोग जो कह रहे हैं, क्या वो सच है?
0: अब तुमसे क्या छुपाना बेटा।
1: फाता, साफ साफ कहो, क्या ये सच है?
0: हाँ, तुम्हारे जाने के बाद ही सारे मुश्ताक से मिलती रही है।
1: तो तुमने उसे रोका नहीं?
0: रोका था, पर पहले तो मुझे इधर उधर की सुना देती थी, पर जब बात बढ़ गई और पूरे गांव को पता चल गया तो फिर
1: क्या? अरे, ऐसी औरत के हाथ पैर तोड़कर घर में बंद कर देना चाहिए।
0: सही कहते हो रसूल, पर मैं तो लाचार हो गई हूँ। अब तुम आ गए हो तो अब तुम ही संभालो उसे।
1: ठीक है, सारे कहाँ हैं? जरा बुलाओ उसे।
0: घर में ही है, पर बेटा जरा समझा उसे कि इस तरह की हरकत ना करे, और तू भी ध्यान दिया कर उसकी तरफ।
1: ठीक है।
0: औरत को एक बार प्यार से देखेगा ना तो तेरी गुलामी को तैयार हो जाएगी।
1: फाता, मेरे पास बहस करने का वक्त नहीं है। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, दो पैसे जोड़ता हूँ, अपने मन से खर्च करता हूँ। अरे, सारे जैसी कई लड़कियां मेरे जूतों में पड़ी रहती हैं। अरे, वो तो तुम्हारी बातों में आकर निकाह को हाँ कर दी थी, वरना मुझे क्या पड़ी थी सारे से निकाह करने की। पर जब निकाह हो ही गया तो उसे वही करना होगा जो मैं कहूंगा, और जब मैं नहीं रहता तो तू क्या करती है? अरे, मेरे से इतने पैसे लेती है किस लिए? अरे, तुझसे अपनी बेटी भी नहीं संभलती?
0: अरे समझाया था, समझाया था, पर
1: अरे, तुम पर जितने पैसे खर्चे हैं मैंने, उतने में 10 साराय को अपने साथ घुमा चुका होता। पर तुझ पर तरस आ जाता है सो मन मार लेता हूँ। पर अब पानी सर से ऊंचा जा चुका है। सारे मेरी बीबी है और उसे मेरे कहे पर चलना होगा।
0: हाँ हाँ वही तो मैं समझाती हूँ उसे, पर मेरी सुने तब ना।
1: बुला उसे, मैं समझाता हूँ।
0: सारे
2: आई अम्मी।
1: क्योरी, मेरे जाते ही तेरे चेहरे पर रौनक आ जाती है और मेरे सामने ये मनहूस चेहरा लेकर आ जाती है।
2: हुआ क्या है?
1: जो बात पूरे गांव को पता है, जो बात अभी अभी फाता ने बताई है, क्या वो बात तुझे मालूम नहीं? हाँ, बोल, बोलती क्यों नहीं? मैं ही बताता हूँ तुझे।
2: रसूल, तू अब ऐसा नहीं कर सकता।
1: तो तू मुझे समझेगी?

0: क्या करना है और क्या नहीं है अभी बताता हूँ तुझे। औरत का मजहब होता है शोहर की सेवा करना, उसके कहे को मानना, अगर मर्द घर से बाहर रहे तो उसका इंतजार करना, और तू तू मेरे ना रहने पर उस मुश्ताक के साथ ऐश करती थी।
1: अरे अरे सारे बेहोश हो गई, अभी छोड़ दे, अभी छोड़ दे, अब अकल ठिकाने आ जाएगी।
2: अरे ये शोर कैसा है? अरे सारे को क्या हुआ है? क्या हुआ सारे बेटा?
0: अरे कुछ नहीं, अब इसकी अकल ठिकाने आ गई।
2: सारे उठ मेरी बच्ची, सारे।
1: अरे रहने दो, बड़े बाप बनते हो, तुम्हारी नाक के तले ही हमारी बदनामी करती रही और अब प्यार जता रहे हो।
2: अरे तुम लोगों ने मिलकर मारा है सारे को, फाता तुम माँ नहीं है, सारे पे होश हो गई और तुम देखती रही।
0: अरे अब तुम भी अपना रोना बंद करो, मेरी बदनामी करेगी तो सारे के साथ ऐसा ही होगा।
2: बंद करो तुम लोग अपनी हैवानियत, अब तुम लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते। सारे मैं सारे को अपने साथ कोठी पे ले जा रहा हूँ। सारे उठ बेटा, उठ, चल बेटा।

0: सारे
1: अबू
0: सारे बेटा तुम ठीक तो हो?
1: हाँ अबू, अबू मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है?
0: बेटा वक्त के हाथों में हम सब कठपुतलियां हैं, वक्त जो करेगा हमें वही देखना है।
1: पर वक्त को बदला तो जा सकता है अब्बू।
0: नहीं मेरी बच्ची, नहीं, वक्त हमारी नियति बनाता है और उसे बदलना नामुमकिन है।
1: तो क्या मुश्ताक से मेरी मुलाकात अब कभी नहीं हो सकेगी?
0: वक्त ने चाहा तो मुश्ताक से कोई अलग नहीं कर सकता तुझे।
1: अब्बू आप तो मेरे साथ है ना?
0: हाँ सारे बेटे, अगर तेरी खुशी इसी में है तो यही सही, मैं तेरे साथ हूँ।
1: रसूल के साथ तलाक हो जाने के बाद ही मैं मुश्ताक के साथ रह सकती हूँ अब्बू।
0: वक्त ने चाहा तो ऐसा ही होगा, पर पहले तू ठीक हो जा, उसके बाद सोचा जाएगा।
1: अब्बू, अब्बू हमें तलाक के बारे में मुश्ताक से बात करनी होगी।
0: तू आराम कर, हम बात कर लेंगे, और खुदा ने चाहा तो तुम्हारी मुराद जरूर पूरी होगी।
1: अब्बू मेरी वजह से आपको भी परेशानी हो रही है ना?
0: अरे पगली, औलाद की खुशी तो माँ बाप की खुशी होती है, उसमें तकलीफ कैसी उठानी? तू ऐसा ना सोच कि तेरी मदद करने में मुझे तकलीफ होगी। तू फिक्र मत कर बेटी, अल्लाह ताला सब ठीक कर देंगे। मुश्ताक तलाक के लिए जरूरी बातें पता कर रहा है।
1: पर अब्बू क्या रसूल मानेगा?

अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक सिसकियां की नौवीं कड़ी। गीतकार अशोक वर्मा, संगीत दिया था मोहनलाल ने,

गायिका सुप्रिया श्रीवास्तव, ध्वनिमुद्रण और संपादन जितेंद्र, लेखक अक्रम खान, निर्माता निर्देशक अंशु आनंद। भाग लेने वाले कलाकार थे नीलम, लोकेश, सुप्रिया, हरीश और ललित। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से कार्यक्रम, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति से मुलाकात की। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर आज दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन का दौरा करेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपये से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और सूरत में 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे। प्रदेश में खेल प्रतिभाओं की खोज और संवर्धन को नई गति देने के उद्देश्य से हर जिले में फीडर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कल एक बैठक के दौरान अधिकारियों एवं खेल प्रशिक्षकों को इस संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं मौसम की बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में प्री मानसून की गतिविधियां जारी हैं। अगले 24 घंटों के लिए 20 से अधिक जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। और खेलों की खबर में सैफ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है।

नमस्कार बहनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम महिला सभा में। आज मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी सखी अमृत। बहनों, हमें पता है कि आप इस वक्त इस गर्मी में घर में कूलर एसी की ठंडक में रहना ही पसंद करते हैं, तो आप इस वक्त घर पर ही आ जाइए अपने रेडियो सेट के नज़दीक, क्योंकि हम आ गए हैं आपका अपना कार्यक्रम महिला सभा लेकर। बहनों, गर्मी की छुट्टियाँ आपके साथ इस वक्त थोड़ी सी व्यस्तता भरी हो सकती हैं। बच्चों की घर में धमा चौकड़ी तो चल ही रही होगी और साथ ही आप व्यस्त होंगी उनके ठंडक भरे पेय बनाने में। साथ ही उनको समझाइश भी चल रही होगी कि तेज गर्मी से एकदम ठंडक में ना आएं और ना ही बाहर से एकदम आकर एकदम ठंडा पानी भी ना पिएं। जहाँ तक हो सके तेज़ धूप में बाहर निकलने से बचें।

बाहर जाने से पहले लू से बचने के लिए दादी नानी का नुस्खा ज़रूर अपना लें, यानी निकलने से पहले पेट भर कर पानी पी कर निकलें और फिर अपना मुंह कान बांध कर निकलें। ऐसे छोटे छोटे उपाय हमें लू से बचा सकते हैं। बहनों, वैसे जब गर्मी की छुट्टियां होती हैं तो अपनों के साथ रिश्ते मजबूत करने का भी सबसे सही समय होता है, क्योंकि बाकी पूरे समय कभी बच्चों की पढ़ाई, कभी कोचिंग, तो कभी हमारे कुछ ज़रूरी काम होते ही हैं। पहले हम लोग नानी के घर जाने के लिए छुट्टियों का इंतज़ार करते थे, और अब ज़्यादातर एकल परिवार होने से बच्चे अपनों से ही दूर हो जाते हैं। तो कुछ समय ऐसा ज़रूर निर्धारित करें कि हमें अपनों का साथ मिल सके। इसके अलावा कई लोग घूमने भी जाते हैं, वहाँ की जानकारी लेते हैं और बेहतर समय परिवार के साथ बिताते हैं। तो कुछ लोग अपनी रुचि, अपने हुनर को और अधिक अच्छे तरीके से सीखने में समय बिताते हैं जो भविष्य में काम आ सके। कुछ रचनात्मक शौक पूरे करके अपने समय का सदुपयोग भी करते हैं। मैंने बातें आपसे और भी करेंगे, उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

बहनों, ये तो आप भी मानती ही होंगी कि छोटे बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं। हम उन्हें जिस रूप में, जिस आकार में ढाल दें, वही रूप बस ले लेते हैं। हम चाहें तो उन्हें बचपन से ही सुसंस्कार से सज्जित कर दें, या फिर उन्हें उनके हाल पर ही छोड़ दें। उनके सामने लड़ाई झगड़ा करके या फिर अपशब्दों का उपयोग करके उनके मन में कुंठा भर दें। जब घर में, समाज में बच्चे अगर इस तरह का व्यवहार देखते हैं, तो ही उनके मन मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जब देशों में

बहनों, ये तो आप भी मानती ही होंगी कि छोटे बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं। हम उन्हें जिस रूप में, जिस आकार में ढाल दें, वही रूप बस ले लेते हैं। हम चाहें तो उन्हें बचपन से ही सुसंस्कार से सज्जित कर दें, या फिर उन्हें उनके हाल पर ही छोड़ दें। उनके सामने लड़ाई झगड़ा करके या फिर अपशब्दों का उपयोग करके उनके मन में कुंठा भर दें। जब घर में, समाज में बच्चे अगर इस तरह का व्यवहार देखते हैं तो ही उनके मन मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जब देशों में युद्ध की स्थिति निर्मित होती है तो इसका प्रभाव देश की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति पर तो पड़ता ही है, साथ ही जनहानि भी होती है। जाने कितने ही लोग बेघर हो जाते हैं, कई लोगों का अपनों का साथ भी छूट जाता है। इस स्थिति में सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं छोटे निर्दोष मासूम बच्चे, जो इन सभी बातों से बेखबर होते हैं। जो उम्र उनके माता पिता पर निर्भर रहने की होती है, उस उम्र में वो बेघर हो जाते हैं। तो इस समस्या के समाधान के रूप में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 4 जून को आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। इसकी स्थापना 19 अगस्त 1982 को हुई थी। अपनी 31वीं पूर्ण बैठक में, अपने पुनः शुरू हुए 7वें आपातकालीन विशेष सत्र में फिलिस्तीन के मुद्दे पर विचार करते हुए इसराइल के आक्रामक कृत्यों के शिकार निर्दोष फिलिस्तीनी और लेबनानी बच्चों की बड़ी संख्या से स्तब्ध होकर हर साल 4 जून को आक्रामकता के निर्दोष बच्चों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इसका उद्देश्य दुनिया भर में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण के शिकार बच्चों द्वारा झेली गई पीड़ा को स्वीकार करना है। ये दिन बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। आखिर उन्हें भी तो एक स्वस्थ, अच्छा जीवन मिल सके, इसके लिए एकजुट होकर उन्हें आगे बढ़ाने का एक प्रयास ही तो है ये। बहनों, ये आखिर ये मासूम बच्चे अपनों से जब दूर होते हैं तो उनकी याद उनके जहन में ज़रूर होती है। उस समय, खासकर युद्ध के समय, कुछ भयानक दृश्य उनके मानसिक पटल पर गहरी छाप भी छोड़ देते हैं, जिससे उनका व्यवहार भी प्रभावित हो सकता है। और बहनों, मानसिक रूप से प्रभावित ये बच्चे छोटी छोटी चीज़ों से या कुछ भी युद्ध जैसी स्थिति निर्मित होने पर मानसिक रोग से भी पीड़ित हो सकते हैं। इस स्थिति में दवा के साथ उन्हें भावनात्मक सुरक्षा की भी ज़रूरत होती है। ऐसी ही स्थितियों से निपटने के लिए कई सामाजिक संस्थाएं आगे आती हैं और उन्हें न केवल आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देती हैं, बल्कि उसके साथ साथ भावनात्मक रूप से भी उन्हें मजबूत बनाती हैं। इस दिशा में ये आक्रमण से पीड़ित बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आखिर बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, थोड़ा सा सहारा, भावनात्मक लगाव उन्हें संभाल लेता है और आगे बढ़ने में मदद करता है, ताकि उनका शारीरिक, मानसिक विकास हो सके और आर्थिक रूप से भी ये सक्षम हो सकें। आखिर मासूम बच्चे मन के तो सच्चे होते ही हैं, जल्द ही संभल भी जाते हैं।

0: बहनों, हम सभी की चाहत होती है कि मन प्रसन्न रहे, हम आप सदा मुस्कुराते रहें। कभी कभी हमें किसी की मुस्कान बहुत ही प्यारी लगती है। अगर हमारे दांत स्वस्थ हों, सुंदर हों, तो हम खुलकर हंसते भी हैं। कई बार हम दांतों के रोग को नज़रअंदाज कर देते हैं और तकलीफ ज़्यादा हो जाती है। दांतों का ही एक रोग है पायरिया। आज हम स्वास्थ्य भेंटवार्ता में जानकारी लेकर आए हैं आपके लिए, दांतों में होने वाले रोग पायरिया, इस विषय पर विस्तृत जानकारी दी है डॉक्टर अश्विनी कुमार त्रिवेदी ने और उनसे बातचीत की है हमारी सखी संयोगिता ने।
1: श्रोता बहनों, मुस्कुराता चेहरा हर किसी की चाहत होती है। उस मुस्कुराहट के पीछे मोती जैसे दांत सोने पे सुहागा जैसा काम करते हैं, पर हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी ये चाहत पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि उनके दांतों में किसी न किसी तरह की समस्या होती है, पीलापन होता है या किसी प्रकार का रोग होता है। दांतों में होने वाले रोग पायरिया के बारे में आज हम जानकारी लेकर आए हैं। हमारे साथ हैं दंत चिकित्सक डॉक्टर अश्विनी कुमार त्रिवेदी, जो हमें दांतों में होने वाले रोग पायरिया के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि दांतों में होने वाला पायरिया रोग है क्या?
2: देखिए, पायरिया रोग तो जो है ये मुख्यतः जो दांतों में गंदगी रहती है, जिसे कि हम मैंने अपनी डेंटिस्टी की भाषा में प्लाक सरफेस या टाटर या कैलकुलस कहते हैं, और आम भाषा में इसको अपन पपड़ी का बोल देते हैं, कि जो अन्य के कण हैं बारीक बारीक के दांत और मसूड़े के बीच में जमा हो जाते हैं, जिसके कारण कि ये रोग होता है
1: जी।
2: इस रोग में पहले तो हल्की फुल्की तकलीफ होती है, पेशेंट को ब्रश करने पर खून आता है, और थोड़ा सा अगर ये रोग बढ़ जाता है तो मुँह से बास आने लगती है, ठीक है, और लेट स्टेज में पूरे मसूड़े पिलपिले टाइप के हो जाते हैं और इससे मवाद निकलने लगता है, और ये मवाद पूरा अपने निकलते मुंह के द्वारा पेट में जाता है, पेट के द्वारा अपने पूरे शरीर में फैलता है, जिससे कि अपना जो शरीर है ये डल टाइप का हो जाता है, और अन्य फुर्तीला जिसे बोलते हैं कि शरीर में फुर्ती नहीं रहती है, आलस बना रहता है, आदमी चिड़चिड़ापन रहता है, तो इसलिए ये रोग का इलाज

0: मत अति आवश्यक है।
1: मतलब दांतों का जो पायरिया रोग है केवल दांतों तक ही सीमित नहीं है, ये दांतों के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में फैल सकता
0: बिल्कुल,
1: है।
0: जैसे
1: जी
0: कि मैं आपको उदाहरण दूं कि जैसे कई लोगों को डायबिटीज रहती है,
1: जी
0: अगर डायबिटीज किसी के उस उन डायबिटिक पेशेंट को अगर पायरिया रोग है तो उनकी डायबिटीज भी दवाई लेने के बाद भी कंट्रोल में नहीं रहती।
1: जी
0: तो जैसे कई मरीज बोलते हैं साहब हम तो दवाई लेते हैं, पैदल रोज चलते हैं, खान पान का परहेज रखते हैं, फिर भी हमारी शुगर कंट्रोल नहीं है। उसके लिए अगर किसी को पायरिया रोग है तो उसका इलाज कराना अति आवश्यक है,
1: जी
0: तभी उसकी डायबिटीज भी कंट्रोल हो पाएगी।
1: मतलब साधारण रूप से हम दांतों की इस समस्या को ना लें जिस
0: हाँ
1: तरह से आप बता रहे
0: बिल्कुल सही
1: हैं।
0: है, क्योंकि क्या है कि इससे देखिए एक तो पेट की बीमारी हो सकती है,
1: जी
0: डायबिटीज का भी फर्क पड़ सकता है,
1: जी
0: और कोई भी खराब चीज अगर शरीर में जा रही है, पस अगर शरीर में जा रहा है तो स्वाभाविक है कि वो कोई ना कोई तो रोग उत्पन्न करेगा शरीर में अंदर।
1: शुरुआती लक्षण के बारे में अगर हम जानना चाहें तो किस तरह से हम
0: शुरुआती लक्षण जैसे मैंने आपको बताया कि
1: जी
0: ब्रश करने पे खून आना,
1: जी
0: मुंह से बास आना, मवाद निकलना,
1: जी
0: ये सब लक्षण है पायरिया रोग के।
1: तो कई बार ये होता है डॉक्टर साहब कि हम जैसे ब्रश कर रहे हैं तो एक आध बार मतलब दांतों से ब्लड हमें दिखाई देता है, फिर वो बंद हो जाता है, फिर हम करते हैं तो फिर कभी दांत में दर्द होता है, तो क्या ये भी पायरिया के
0: हाँ
1: अंतर्गत
0: ये
1: आता है?
0: पायरिया, ये क्योंकि जब ब्रश करने में ब्लड जो आना ये पायरिया रोग का ही लक्षण है, ये
1: मतलब हमें चिकित्सक के पास
0: पास
1: जाना नहीं।
0: जाके
1: जी
0: इसका इलाज कराना चाहिए। इसका जो इलाज है अब मैं आपको वो बताता हूँ कि इलाज के लिए जैसे कि हम लोग सिंपल जो है पहले अगर कम स्टेज में रोग है, जैसे सपोज करिए कि ब्रश करने पर खून भरा आ रहा है,
1: जी
0: तो उस अवस्था में सिर्फ दांतों के अल्ट्रासोनिक स्केलर्स के द्वारा सफाई करके इस रोग को ठीक किया जा
1: जी
0: सकता
1: जी
0: है। और थोड़ा सा अगर ये रोग बढ़ गया है
1: जी
0: जिसमें कि मवाद आने लगी है, मुंह से बास आने लगी है, तो उसमें हम लोग मसूड़ों की सर्जरी करते हैं।
1: जी
0: फ्लैप सर्जरी है, जिंजाइबोप्लास्टी है, जिंजिवेक्टमी है, मसूड़ों के अलग अलग प्रकार की सर्जरी रहती हैं
1: जी
0: वो करते हैं।
1: जी
0: और जो आजकल लेटेस्ट कर रहे हैं वो मैं जो करता हूँ वो डेंटल लेज़र के द्वारा इस रोग को ख़त्म करता हूँ। जो मसूड़ों की सर्जरी मैनुअली करते थे
1: जी
0: तो वो आजकल लेज़र के द्वारा हम करने लगे
1: मतलब
0: हैं।
1: ये सुविधा आज हमारे पास उपलब्ध है
0: जबलपुर शहर में है
1: जी,
0: उपलब्ध ये,
1: कि लेजर के माध्यम से
0: उससे हम
1: भी
0: कर
1: पायरिया
0: सकते हैं
1: का
0: इसको
1: इलाज।
0: रोग, उसका जो रिजल्ट है इतना अच्छा है कि ये रोग बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाता है।
1: मतलब लेजर के माध्यम से भी आजकल पायरिया का इलाज हो
0: जी
1: सकता है,
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: ये किसी तरह की घबराहट हमारे सुनने वाले अपने मन में ना रखें कि हम
0: नहीं
1: डॉक्टर के पास
0: इसमें
1: जाते
0: हाँ
1: हैं।
0: लेज़र का एडवांटेज भी बता देता हूँ मैं आपको
1: जी
0: कि जैसे मैनुअल सर्जरी करते हैं उसमें इंजेक्शन लगा के शून्य करा जाता है, मसूड़ों को खोल के टांके लगाए जाते हैं, हैवी दवाइयाँ दी जाती हैं। लेज़र में ये फ़ायदा है कि शून्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, पेशेंट को करते समय कोई तकलीफ नहीं होती है,
1: जी
0: बाद में बहुत हैवी मेडिसिंस की भी आवश्यकता नहीं रहती है, तो ये थोड़े से फ़ायदे हैं लेज़र के।
1: ये बेनिफिट हम लेकर चलते हैं
0: जी
1: अपने साथ में।
0: जी
1: अच्छा, ये पायरिया रोग क्या उम्र का भी इस पर कोई फर्क पड़ता है? जैसे छोटे बच्चे हैं क्या उनको भी हो सकता है, या एक उम्र पार करने के बाद ही पायरिया के लक्षण पाए
0: नहीं
1: जाते
0: देखिए
1: हैं?
0: ये रोग तो किसी को भी हो सकता है, बाकी जो है उम्र की जहाँ तक आपने बात करी तो ये जो रोग है ये 12-13 साल के बाद ही डेवलप होता है, जब
1: जी
0: पूरे
1: जी
0: बच्चों के पक्के दांत आ जाते हैं
1: जी
0: तभी ये रोग डेवलप होता है और लेट स्टेज में है, अन्य 40-45 के बाद में ये इसके लक्षण ज़्यादा देखने को मिलते हैं मरीजों में,
1: जी जी तो मतलब उम्र का भी फर्क पड़ता
0: फर्क
1: है, मतलब
0: पड़ता
1: छोटे
0: है।
1: बच्चों में ही नहीं
0: हाँ
1: होता है, 12-18 जैसे आपने
0: हाँ
1: बताया।
0: 18 मतलब 14-15 साल के बाद से लेके 40-45 साल की एज में ज़्यादा मिलते हैं, और
1: जी
0: ये जो रोग है गांव वालों में, जो गांव के ग्रामीण क्षेत्र के पेशेंट हैं उनमें ज़्यादा रहता है, शहर के जो पेशेंट्स हैं उनमें ये अपेक्षाकृत कम रहता है ये रोग ये।
1: अच्छा, एक बात हम और आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये रोग ज़्यादा देखा गया है, तो किस वजह से ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज़्यादा शिकार होते हैं? क्या वो जो परंपरागत दातून करते हैं उस वजह से है, या शहरी लोग हम जो करते हैं वो ब्रश लेते हैं
0: नहीं
1: इस तरह
0: दतून
1: से?
0: करना बहुत अच्छा है
1: जी
0: काम, दतून के लिए तो बिल्कुल भी, दतून तो एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है।
1: जी
0: बाकी ये जो शहरी लोग को जैसे मैंने बताया कम होता है क्योंकि अपन पेस्ट और ब्रश करते हैं तो जो
1: जी
0: अन्न के कण हैं वो दांत और मसूड़े के बीच में नहीं जम पाते हैं, गांव वाले जो है सिर्फ दतून करते हैं और ये और अंगुली से मंजन कर लेते हैं।
1: जी जी
0: अगर वो ब्रश का उपयोग करें साथ में तो फिर ये उनका जो मैल जो जमता है, जो अन्न के कण जमा हो जाते हैं वो जमा नहीं होंगे।
1: नहीं तो धारणा तो ये भी है सर कि हम अगर ब्रश करते हैं तो दांतों में होल ज्यादा होता है ब्रश से।
0: नहीं होल नहीं होते दांत,
1: जी
0: क्या है कि किसी भी चीज को अपन ज्यादा घिसेंगे
1: जी
0: तो स्वाभाविक है कि वो चीज घिसेगी।
1: जी
0: ब्रश ऐसा होना चाहिए कि जो अन्न के कण फंसे हैं वो दांत और मसूड़े साफ हो जाए, ब्रश ऐसा नहीं होना चाहिए कि दांत मोती समान चमकते रहे अपने
1: जी
0: चमकाने के उद्देश्य से
1: तो
0: करें।
1: नुकसान नहीं हो दांतों
0: हाँ
1: को इस तरह
0: मतलब
1: का?
0: 2-4 मिनट तक ब्रश करें वो ज्यादा अच्छा है अपने लिए।
1: किस तरह की सावधानियां रखें कि दांतों में पायरिया रोग ना हो?
0: सावधानी जो है जो मुख्य है सावधानी वो साफ सफाई है, जैसे कि अपन सोचते हैं कि सुबह और शाम

0: को ब्रश कर लिए तो अपने दांत स्वच्छ रहेंगे, अपन को रोग नहीं होगा मुंह का, ये बिल्कुल धारणा गलत है
1: जी।
0: मेरा ये कहना है कि अगर अपन कुछ भी चीज़ खाते हैं, दिन में अपन 10 बार कोई भी चीज़ खाते हैं या पीते हैं, उसके बाद सादे पानी से कुल्ला बहुत अच्छे से होना चाहिए, जिससे कि जो अन्य के कण जो फंसे हैं दांत और मसूड़े के बीच में, या कोई चीज़ पिए तो उसकी जो लेयर अपने मुँह के अंदर या दांतों के मसूड़ों के ऊपर जम गई है वो पूरी धुल जाना चाहिए, और सुबह और रात को अच्छे से ब्रश करके सोएं, और कुछ भी चीज़ खाएं पिएं उसके बाद कुल्ला बहुत अच्छे से करें, हरी सब्जी फल इनका उपयोग करें, जो मीठी चीज़ें हैं चॉकलेट्स वगैरह हैं इनका उपयोग ना करें, जिससे कि इस रोग से बचा जा सकता है, और जो बैड हैबिट्स हैं बीड़ी तम्बाकू सिगरेट इसका भी उपयोग नहीं करना चाहिए,
1: ये भी मतलब खतरनाक
0: सब कारण है, ये रोग के कारण है ये सब।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मैंने अभी सुन रही थी स्वास्थ्य भेंट वार्ता, दांतों में होने वाला रोग पायरिया, इस विषय पर डॉक्टर अश्विनी कुमार त्रिवेदी से संयोगिता की बातचीत। बहनों, एक बार फिर हम गर्मी की छुट्टी पर आते हैं, तो क्यों ना एक बार कुछ अपनों से और बच्चों से अलग करवाया जाए। तो बच्चों की पूरी छुट्टी व्यस्त रखना भी ज़रूरी है, और व्यस्तता भी ऐसी कि छुट्टियां सार्थक हो जाएं। वो जो भी सीख रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जहां भी घूमने गए हैं या घर पर ही हैं, उन्होंने जो कुछ भी किया है अपनी पूरी छुट्टी में, उसके लिए उन्हें एक डायरी दे दी जाए और उनसे कहें कि हर दिन अपना अनुभव इसमें लिखें, भले ही 4 लाइन में लिखें या 6 लाइन में। इससे आजकल जो बच्चे कॉपी किताबों से पढ़ने के शौक को ख़त्म हो रहा है वो विकसित होगा, और उन्हें बताएं अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करके थोड़ा सा लिखें, और हर रोज़ हम उन्हें कुछ नए शब्दों का प्रयोग भी बताएं, जिससे उनका भाषा सुधार होगा, शब्दकोश में वृद्धि होगी और उनकी राइटिंग में भी सुधार होगा, लेखन में छोटी छोटी गलतियों का पता भी चलेगा, और अंत में उन्हें अपनी छुट्टियों का सार लिखने को भी कहें। निश्चित रूप से हम उसे हर दिन देखते भी रहें, इससे उनके विचार उनके भाव हमें पता चलेंगे। इस बारे में आप हमें भी ज़रूर बताएं। तो बहनों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, और दीजिए अनुमति आपकी अपनी सखी अमृत को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: सभी हेमंत देव लेकर
1: आकाशवाणी की दुनिया जहां संगीत है, नाटक हैं, समाचार हैं, समाज सुधार और शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रसारण है, हम सब रचनाकार अलग अलग क्षेत्रों के सर्जक आकाशवाणी के प्रति हार्दिक आभारी हैं कि आकाशवाणी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपनी अपनी आवाजें आकाशवाणी के माध्यम से देश में समाज जनों के बीच में प्रसारित कर पाए। आकाशवाणी आकाश की तरह अजर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है। कलाकार हैं संगीता उपाध्याय। पहले सुनते हैं इनसे ईसुरी चौघड़िया।

लोक संगीत में अभी आप सुन रहे थे संगीता उपाध्याय के गाए लोकगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए सुगम संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर केंद्र की प्रस्तुति है। कलाकार हैं नंद कुमार जैन। पहले सुनते हैं इनका गाया ये भजन।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये वक्त है छोटे से अंतराल का। आपको एक सूचना दे दें, आकाशवाणी से प्रसारण हेतु कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रित करने की सूचना। प्रसार भारती आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग हेतु पात्र प्रोडक्शन हाउस, निर्माता, अधिकार स्वामी, एग्रीगेटर या कंटेंट क्रिएटर्स को आमंत्रित करता है। यह कार्यक्रम सोर्सिंग राजस्व साझाकरण या रेवेन्यू शेयरिंग प्रायोजित अथवा स्पॉन्सर्ड एवं निःशुल्क या ग्रेटिस आधार पर किया जाएगा। यह सब प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए संशोधनों अथवा आदेशों के अनुरूप होगा। आवेदकों को यह सलाह दी जाती है कि प्रस्ताव जमा करने से पहले वे प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों एवं आदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ये सभी दस्तावेज प्रसार भारती और आकाशवाणी की वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं। आकाशवाणी भोपाल से हिंदी, उर्दू अथवा सिंधी

भाषा में रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग के लिए इच्छुक आवेदक ईमेल bhopal@prasarbharti.gov.in एवं hopair@gmail.com पर अपने प्रस्ताव भेज सकते हैं। प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। सूचना समाप्त हुई।

एक आवाज जिसने बदल दिया वक्त का सफर, एक सुर जिसने जोड़े हर दिल से रिश्ते, और अब पूरा कर चुका है अपना गौरवशाली 90 साल का सफर। हाँ श्रोताओं, यह है आपका अपना आकाशवाणी। 90 वर्षों से हर दिल की आवाज।

आप सुन रहे हैं आपकी आकाशवाणी, ये प्रसारण हो रहा है आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत अनपढ़ फिल्म से हमने लिया है, जिसे गाया लता मंगेशकर ने। राजा मेहंदी अली खान ने इस गीत को लिखा, संगीत मदन मोहन का।

0: कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने गाया है, साहिल लुधियानवी की शब्द रचना संगीत जयदेव का। इस गीत को हमने लिया हम दोनों फिल्म से।
1: अभी न जाओ छोड़ कर।

हम दोनों फिल्में अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले को। गीत लिखा था साहिल लुधियानवी ने, संगीत जयदेव का था। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। हम कुछ और फिल्मी नगमे आपको सुनवाएंगे आज दोपहर 2:30 बजे। कार्यक्रम होगा आपकी फरमाइश, सुनना ना भूलें।

0: मीडियम वेव 180.32 मीटर और डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही साथ न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दोपहर के 2:10 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। 5 दिन की भारत यात्रा पर आई रोड्रिगेज के साथ विदेश, अर्थव्यवस्था और विज्ञान मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी है। इस बातचीत में ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, फार्मास्यूटिकल और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। भारतीय सार्वजनिक उपक्रम पहले से ही वेनेजुएला के ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन का दौरा करेंगे। सूरत में वे सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा श्री मोदी शाम को दमन में करीब 3,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिनमें स्वास्थ्य, पर्यटन और हवाई संपर्क से जुड़ी योजनाएँ शामिल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शनिवार को पश्चिम बंगाल जाएंगे और रुकी हुई रेल परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। वे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबान सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे, जिसमें पूर्वी रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे और मेट्रो रेलवे के महाप्रबंधक भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर रायसेन जिले की प्रेमा मेहरा ने अपनी कहानी साझा की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि
2: मैं सन 2017 से ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी। आजीविका मिशन से जुड़ने से पहले मेरे घर की परिस्थिति बहुत ही बेकार थी, मगर आजीविका मिशन से जुड़ने के बाद मैंने अपनी बचत जमा करना सीखा। इसके अलावा ग्रामीण आजीविका मिशन ने मुझे भी काम दिया। मैंने सीआरपी का काम करा। इसके अलावा मैं बैंक सखी का काम भी करती थी और आज मैं प्रधान एनजीओ में बाड़ी ब्लॉक में आजीविका सहायक के रूप में कार्य कर रही हूँ। मेरी मासिक आय 18,000 रुपये है और मैं खुश होकर कह सकती हूँ कि मैं एक लखपति दीदी हूँ।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन को शामिल कर लिया है। कल उन्होंने मुख्यमंत्री निवास से स्टेट हैंगर तक पहली बार ईवी से यात्रा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचत के संदेश को अमल में लाते हुए वे अब भोपाल में नियमित रूप से इलेक्ट्रिक वाहन से ही चलेंगे। उन्होंने कहा कि ईवी से वायु प्रदूषण नहीं होता, रखरखाव सस्ता है और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ भविष्य की दिशा में एक अहम कदम है। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए स्वामित्व अधिकार अभिलेखों के पंजीयन पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क पूरी तरह से माफ़ कर दिया है। 3,800 करोड़ रुपए का यह पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। प्रदेश में अब तक 68 लाख से अधिक अधिकार अभिलेख तैयार किए जा चुके हैं और लगभग 98% ड्रोन सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है। भोपाल के बरकतुल्ला विश्वविद्यालय का नाम बदलकर वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय करने की तैयारी एक कदम और आगे बढ़ गई है। कल विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अब यह राज्यपाल मंगूभाई पटेल के पास भेज दिया गया है। हालांकि कार्य परिषद सदस्य डॉक्टर ताहिरा अब्बासी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह नाम स्वतंत्रता सेनानी बरकतुल्ला भोपाली की स्मृति से जुड़ा है और इसे बदला जाना उचित नहीं है। नाम परिवर्तन के लिए अभी विधानसभा में संशोधन विधेयक पारित कराना और राज्यपाल की मंजूरी लेना जरूरी होगा। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। आज सुबह भोपाल, रायसेन, सीहोर और नर्मदापुरम में बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 39 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि नीमच, श्योपुर, मुरैना, टीकमगढ़ और छतरपुर में ओलावृष्टि की चेतावनी भी है। वहीं कल रतलाम 42 डिग्री के साथ प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा। मानसून इस बार सामान्य से देरी से यानी 20 जून के बाद प्रदेश में दाखिल हो सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नीमच के ग्राम खातीखेड़ा में आयोजित जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर में कलेक्टर ने ग्रामीणों से रूबरू होकर समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को मुख्य आयोजन गैरिसन ग्राउंड ग्वारीघाट स्थित आयुर्वेदिक

कॉलेज मैदान पर किया जाएगा। शिवपुरी में इफको कंपनी की डीएपी रैक के माध्यम से 1370 मीट्रिक टन डीएपी उपलब्ध हुई है, जिसका ई विकास प्रणाली से वितरण किया जाएगा। आगरमालवा में कल 2 नवीन वाहनों को पुलिस के बेड़े में शामिल किया गया। इस मौके पर एसपी दिलीप कुमार सोनी ने कहा कि इससे जिले में नियमित गश्त, विशेष अभियान एवं आपात स्थितियों में पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता मजबूत होगी। झाबुआ में जलगंगा संवर्धन अभियान के दूसरे चरण में जल स्रोत सेवा समागम के तहत प्रस्फुटन ग्राम भोयरा में सुरक्षित जल समृद्ध कल विषय पर जल चौपाल का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता, ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू और पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप अहमदाबाद में शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ व्यापक चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, ऑटोमोबाइल आदि क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे। मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने तथा वैश्विक दक्षिण के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना तथा सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद NEC का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलंग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे के विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। बैठक में क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए गठित मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय कार्यबलों द्वारा की गई प्रगति पर

0: चर्चा प्रमुखता से शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा कि इन विचार विमर्शों से राज्यों और हितधारकों के बीच समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे साझा विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री श्रीकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अलावा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक को महत्वपूर्ण बताया।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
0: उत्तर पूर्वी परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सर्वोच्च क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में कार्य करती है। ये क्षेत्र में समन्वित विकास को बढ़ावा देने और सहकारी संघवाद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा है कि वैश्विक व्यवधानों और आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत वैश्विक बाजार में अन्य देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। श्री प्रसाद ने नई दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस GBRC के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने हाल ही में कई देशों के साथ सम्पन्न हुए मुक्त व्यापार समझौतों की सराहना भी की। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा आयोजित GBRC का उद्देश्य वैश्विक व्यापार से जुड़े विषयों और चुनौतियों पर शोध के लिए चर्चा का अवसर प्रदान करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की है। इसके तहत पिछले 24 वर्षों में गुजरात में अवैध रूप से रह रहे 424 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 782 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। ये अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ शुरू किया गया था। गांधीनगर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले प्रत्येक घुसपैठिए का पता लगाया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों को आश्रय, रोजगार या सहायता प्रदान करके कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
2: 6,200 से ज्यादा लोगों की तहकीकात की जा रही है, इनमें से 362 लोग अभी तक बांग्लादेशी पाए गए हैं। साथ ही जिन लोगों ने उनको रहने के लिए घर दिया होगा और जिन्होंने उनको नौकरी दी है लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे होंगे, उन पे भी एक कड़े कदम उठाने के लिए एक पूरी टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। गुजरात पुलिस घर घर और गांव गांव तक ये तहकीकात चालू रखेगी।
0: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। ये घटना कल रात ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में हुई। गंभीर मरीजों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की जांच जारी है।
3: ICU 14 फ्लोर पर है, उसी में आग लगने की बात है शॉर्ट सर्किट से। कुल 13 से 15 लोग भर्ती थे, लेकिन 3 लोगों की मृत्यु कंफर्म है, बाकी लोग अन्य जगह भेजा गया अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए। तो मृत्यु का आंकड़ा बढ़ सकता है हालांकि, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, हम लोग जांच कर रहे हैं।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मालवीय नगर अग्निकांड के घायलों से मिलने आज साकेत के निजी अस्पताल पहुंची। मुख्यमंत्री ने घायलों तथा उनके परिजनों से बातचीत की और अधिकारियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। श्रीमती गुप्ता ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 10-10 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घायलों के चिकित्सा खर्च की व्यवस्था की जाएगी। मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मृत्यु हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। वयोवृद्ध निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76

0: वर्ष के थे। 10 जनवरी 1950 को जन्मे निहलानी ने 1982 में आई फिल्म हथकड़ी से निर्माता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें 1986 में आई फिल्म इल्जाम से अभिनेता गोविंदा को पहला बड़ा ब्रेक देने का श्रेय दिया जाता है। जनवरी 2015 में निहलानी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सख्त नए दिशा निर्देश लागू किए, जिनके तहत ए रेटिंग वाली फिल्मों में भी कुछ अपशब्दों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या हिंसा दर्शाने वाली सामग्री को सीमित करने का प्रयास किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। आलोचकों का कहना है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को अमरीकी संसद की मंजूरी मौसम विभाग ने आज केरल में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन की पुष्टि की है। मॉनसून 3 दिन देर से आया है। 1 जून से केरल में मॉनसून के आने की संभावना थी। विभाग ने 9 जून तक केरल और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरल से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में तेज बारिश हो रही है।
1: केरलम के 6 जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। केरलम में कई जगहों पर रात से अब तक लगभग 5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। केरलम से स्मिथ एम पलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी इसी तरह की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर आंधी की प्रबल संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ, जो वैश्विक खेलों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं देंगे। पूरे विश्व से योग प्रेमी और एथलीट प्रतियोगिता के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहुखेल प्रतियोगिताओं को योग में शामिल करना है।
2: वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर संतुलित, स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और लाओस के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं और ये बौद्ध धर्म तथा रामायण की साझा विरासत में दिखाई देते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंग सावन फोम विहाने से भेंट की। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 149 अंक गिरकर 74,197 पर, जबकि निफ्टी 34 अंक फिसलकर 30,372 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू और अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को छाया पाठक का नमस्कार। आपकी पसंद का पहला गीत हम लेकर हाजिर हैं हीरो पंती फिल्म से। मुस्तफा जहीद ने इस फिल्म को गाया है। कौशर मुनीर की शब्द रचना, संगीत मुस्तफा जहीद का। सुना चाहा है बठिंडा पंजाब से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार ने। पटेल नगर मलोट पंजाब से पत्राया। रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप और बेबी आरजू जाजोरिया का।

अगला गीत हमने लिया सत्यमेव जयते फिल्म से। इसे सुनना चाहा है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी दुबिहा नेवादा गाजीपुर से पतराया प्रतीक राय, रोशनी प्रांजल का। इसी गीत की फरमाइश भेजी आनंद कुमार कामले, रेखा राखी पारस तपस्या और करिश्मा कामले ने। सत्यमेव जयते के इस फिल्म के इस गीत को गाया है जरा के खान ने। तनिष्क बागची का गीत और संगीत है, तो आइए सुनते हैं ये गाना।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश कार्यक्रम का अगला गीत सुना जा है ताज मोहम्मद अंसारी गुलाब साविर राही महराज जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ये फरमाइश।

करता है आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी और करिश्मा गौरीनगर इंदौर से। सपना संगीता रोड इंदौर से ही पत्र आया। लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया का। इन सभी श्रोताओं ने सुना चाहा है उदित नारायण और पूर्णिमा का गाया हुआ, समीर का लिखा, आनंद बख्शी का संगीतबद्ध किया, माफ़ कीजिए आनंद मिलिंद का संगीतबद्ध किया हीरो नंबर 1 फिल्म का गीत।

गीत संगीत और गायक कलाकार हैं करण औजला। फिल्म का नाम बैड न्यूज़। इस गीत को सुनना चाहा बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद माखीजा का, फिर शंकरलाल राहुल कुमार सविता स्वाति एवं पूरा माखीजा परिवार। औरंगाबाद से पत्राया राजेश साबले, राजदीप राजेश राजी राशि और शीतल राजेश का।

0: एक लड़की थी दीवानी सी,
1: एक लड़के पे वो मरती थी। अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आपकी फरमाइश का, मोहब्बतें फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों ने। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत जतिन ललित का है। सुनना चाहा है नेपाल पहले सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका, रॉबिन, आदर्श नगर मलोट पंजाब से पत्राया, राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश और सौरभ शर्मा का। तो आइए आपको सुनवाते हैं इन सभी श्रोताओं की पसंद का मोहब्बतें फिल्म का गाना।

कार्यक्रम का अंतिम गीत तुम मिले फिल्म से है, आवाज़ है के की। सईद कादरी के बोल हैं, संगीत प्रीतम का है। सुना चाहा है प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से। बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश और ऋषि वर्मा ने। भाटापारा दत्तरेंगी छत्तीसगढ़ से पत्राया द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक, झावेंद्र कुमार। यहीं से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, सूरज, ज्योति और रियांश का।

0: के की आवाज़ में गाए तुम मिले फिल्म के इस गाने के साथ ही आपकी फरमाइश यहीं समाप्त करने की छाया पाठक को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। 5 दिन की भारत यात्रा पर आई रॉड्रिगेज के साथ विदेश, अर्थव्यवस्था और विज्ञान मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन का दौरा करेंगे। सूरत में वे सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शनिवार को पश्चिम बंगाल जाएंगे और रुकी हुई रेल परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। वे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबान्न सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे, जिसमें पूर्वी रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे और मेट्रो रेलवे के महाप्रबंधक भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन को शामिल कर लिया है। कल उन्होंने मुख्यमंत्री निवास से स्टेट हैंगर तक

पहली बार ईवी से यात्रा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचत के संदेश को अमल में लाते हुए वे अब भोपाल में नियमित रूप से इलेक्ट्रिक वाहन से ही चलेंगे। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए स्वामित्व अधिकार अभिलेखों के पंजीयन पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क को पूरी तरह से माफ कर दिया है। 3,800 करोड़ रुपए का यह पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। और प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। आज सुबह भोपाल, रायसेन, सीहोर और नर्मदापुरम में बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 39 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए आपको जानकारी दे दें आज शाम प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति रहेगा। फिल्म संगीत का आनंद आप उठा सकते हैं आज शाम 5:33 और शाम 6:30 पर। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकते हैं शाम 6:00। आकाशवाणी भोपाल से ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम होगा 7:21 पर, जिसमें आज आप सुन सकते हैं ग्रीष्मकालीन अवकाश में बच्चों के समय का सदुपयोग, इस पर सामयिक चर्चा। इसके अलावा बुंदेली समाचार और लोकगीत। समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष स्वास्थ्य सेवा, इसका प्रसारण होगा आज रात 8:00। कुछ और फिल्मी नगमे हम आपको सुनाएंगे 8:35 पर और रात 9:30। प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात 10:00 हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। ये थे आज शाम प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय दोपहर के 3:42 हुए हैं। अब मीडियम वेव पर हमारा ट्रांसमिशन कुछ देर के लिए बंद होता है। शाम 5:00 से आप हमारे कार्यक्रम पुनः मीडियम वेव 188.32 पर सुन सकेंगे। इस बीच कार्यक्रम DTH पर जारी है। आप सुन रहे हैं DTH का प्रसारण। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत। कलाकार है संगीता उपाध्याय। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है। पहले सुनते हैं ईश्वरी चौगड़िया।

लोक संगीत में अभी आप सुन रहे थे संगीता उपाध्याय के गाए लोक संगीत। आप सुन रहे हैं डीटीएच का प्रसारण। लीजिए सुनिए सुगम संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है। कलाकार है नंद कुमार जैन। पहले सुनते हैं इनका गाया ये भजन।

सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे नंद कुमार जैन को। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं डीटीएच का प्रसारण। लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत रॉकी और रानी की प्रेम कहानी फिल्म से है। अरिजीत सिंह, जोनिता गांधी और रणवीर सिंह की आवाज़ें हैं। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल हैं, संगीत प्रीतम का।

0: 순간
1: मोहन जोदाड़ो फिल्म का ये गीत है, यार रहमान की आवाज़ है, साथ दिया इसने मोहंती ने।

डीटीएच पर आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत सिटी लाइट्स फिल्म से है, अरिजीत सिंह की आवाज़ है। रश्मि सिंह ने इस गीत को लिखा, संगीत जीत गांगुली का।

0: हे बेबी, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें थी नीरज श्रीधर, रमन, परवेज कादिर और लॉय की। गीत लिखा था समीर ने, संगीत शंकर एहसान लॉय का। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं DTH का प्रसारण।
1: एक आवाज जिसने बदल दिया वक्त का सफर, एक सुर जिसने जोड़े हर दिल से रिश्ते, और अब पूरा कर चुका है अपना गौरवशाली 90 साल का सफर। हाँ श्रोताओं, यह है आपका अपना आकाशवाणी। 90 वर्षों से हर दिल की आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं डीटीएच का प्रसारण। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। 5 दिन की यह भारत यात्रा पर आई रोड्रिगेज के साथ विदेश, अर्थव्यवस्था और विज्ञान मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन का दौरा करेंगे। सूरत में वे सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सुबह नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत वेनेजुएला संबंधों के प्रति उनकी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का भारत सम्मान करता है। विदेश मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने काफिले में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल कर लिया है। कल उन्होंने मुख्यमंत्री निवास से स्टेट हैंगर तक पहली बार ईवी से यात्रा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के ईंधन बचत के संदेश को अमल में लाते हुए वे अब भोपाल में नियमित रूप से इलेक्ट्रिक वाहन से ही चलेंगे। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए स्वामित्व अधिकार अभिलेखों के पंजीयन पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क को पूरी तरह से माफ कर दिया है। 3,800

0: करोड़ रुपए का यह पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। और मौसम में प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। आज सुबह भोपाल, रायसेन, सीहोर और नर्मदापुरम में बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 39 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आप सुन रहे हैं डीटीएच का प्रसारण। लीजिए अब सुनिए शहादत हसन मंटो का लिखा नाटक रणधीर पहलवान।
2: प्रस्तुत है नाटक रणधीर पहलवान, लेखक शहादत हसन मंटो, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल।

0: ए सीधी चल। अरे उधर कहाँ, अरे कहाँ कुर्सी चली जा रही है। तुझे सांप काटे तेरी टांग टूट जाए। अरे सीधी चल रे सीधी।
1: अभी तक आई क्यों नहीं, कहीं नजर नहीं आती।
0: ए तुझे सांप काटे सीधी होकर चल मुर्दार, फिर वहीं चली गई। अरे चल ना सीधी।
1: ये इश्क बुरी बला है, कहाँ मैं एक गरीब मजदूर, कहाँ वो गांव के जमींदार की बिटी है।
0: बहुत बुरा फंसा है शामू बेटा इस प्रेम के चक्कर में।
1: कौन सावित्री?
2: बहुत बुरा फंसा है शामू तू इस प्रेम के चक्कर में।
1: नहीं सावित्री, वो तो मैं ना।
2: तू साफ कह क्यों नहीं देता कि तेरी मेरी टूट गई? मैं तो पहले ही जानती थी कि तू ऐसा ही करेगा।
1: अरे आज तू किस बात पर बिगड़ बैठी है? अरे मैं तो नसीब की बात कर रहा था। क्या ये झूठ है कि तू हमारे जमींदार की बेटी है? और क्या ये सच नहीं कि मैं गरीब मजदूर हूँ? अरे छोड़ तू इन बातों को, आ चलें।
2: आ चलें। तुझे पता भी है कि यहाँ 2 घंटे से तेरी राह देख रही हूँ। सचमुच मर्द बड़े वो होते हैं।
1: क्या होते हैं?
2: मैं नहीं चलूंगी तुम्हारे साथ। ये भी कोई बात हुई कि तेरे लिए हर रोज मुझे बापू से झिड़कियां सहनी पड़े और तू तो चुपचाप अपने घर निकल जाता है।
1: अरे सावित्री जितनी झिड़कियां तुझे अब तक मिली हैं सब की सब मुझे दे दे। चल ना।
2: नहीं श्यामू अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई और फिर घटा छा रही है। अगर रास्ते में बरखा शुरू हो गई तो क्या होगा? तुझे देख लिया है बस, आज यही काफी है।
1: तो सचमुच
2: जाने को जी तो नहीं चाहता पर क्या करूं, बापू का डर भी तो है ना, उनको पता चल गया तो

0: अजी हटाओ, तुम पासा फेंको पासा।
1: अरे फेंकता हूं फेंकता हूं, लो ये 25 धरे पड़े हैं।
0: माधो यहां 10 और 25 फेंकते हैं, लो ये 25 देख लो, और लो ये 10। सदके जाइए, राजा नल के ही आए।
1: उस्ताद, राजा नल को तुमने सिद्ध कर लिया, पर वो लौंडिया सावित्री तुमसे काबू में नहीं आई।
0: अबे चुप बैठ, कई बार कह चुका हूं तुमसे मैं, तुम मुझे छेड़ा ना करो वरना किसी रोज ताव में आकर कुछ कर बैठूंगा, पर तुम टलते ही नहीं। अरे पहलवान आदमी हूं, दंड पेलता हूं, मुकद्दर घुमाता हूं, मुझे इश्क से क्या काम। शराबी कबाबी हूं, सरकार मुझे 10 नंबरियों में गिनती है, कई बार जेल हो चुकी है। अबे इश्क क्या खाक करूंगा, है सोचने की बात है।
1: तो छोड़ो इस किस्से को, चलो एक दो बाजी चौसर की ओर हो जाए।
0: अरे भाई अब मैं अखाड़े की तरफ जाऊंगा, है आना हो तो उधर आ जाइयो। अरे दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, वरना कहीं तकदीर तमाशा न बना।

0: तो दीवार। अरे दीनू काका,
1: सरकार
0: लस्सी बनाई है?
1: अभी बना देता हूँ।
0: नहीं, मैं आज नहीं पीऊंगा।
1: ठीक है सरकार, इधर दुकान की तरफ तो आइए पहलवान साहब।
0: अरे दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे।
2: पहले तो यूं कभी गाना इस पहलवान पर सवार।

0: सावित्री।
1: कौन?
0: मैं हूँ शामू की माँ। डर मत बेटा।
1: जी माता जी।
0: इधर आ, इधर आ मेरे पास।
1: हाँ?
0: घबरा नहीं, मुझे सारी बातों की खबर है।
1: सारी बातों की? किन बातों की माता जी?
0: इसीलिए तो तेरे पास आई हूँ। देख सावित्री, तेरा और शामू का कोई जोड़ नहीं। तू एक धनवान की बेटी है और वो एक गरीब मजदूर।
1: तो
0: इसमें तेरी ही बदनामी है बिटिया। उसको समझाती हूँ, बहुत समझाती हूँ, पर वो तो परों पर पानी ही नहीं पड़ने देता, मुझे कोई बात नहीं करने देता। इसी वास्ते तेरे पास आई हूँ। तू समझदार है?
1: पर माता जी, मैं...
0: देख सावित्री, मैं कहती हूँ, अगर तुम दोनों ना मानोगे तो जरूर कोई आफत खड़ी हो जाएगी।
1: मतलब?
0: उसका तो सिर फिर गया है। मैंने सुना है कुछ दिनों से उसने किसानों को जमींदार के खिलाफ उकसाना शुरू कर दिया। सावित्री, जब से ये बात सुनी है, मेरा दिल बतासे की तरह बैठा जा रहा है। मेरा कहा मान और उससे मिलना छोड़ दे।
1: पर माता जी,
0: सावित्री,
1: ये कैसे हो सकता है? मैं श्यामू से मिलना कैसे छोड़ सकती हूँ?
0: मेरी बात तो सुन।
1: आप मुझसे ऐसा क्यों कहती हैं?
0: सावित्री, सावित्री, अरे तूने तो रोना शुरू कर दिया। अरे मेरी बात सुन।

0: आओ पहलवान आओ, इधर मेरे पास बैठ जाओ।
1: आपने मुझे बुलाया, क्या काम है?
0: अरे भाई जरा आराम तो कर लो, काम तो जब तक जिंदगी है होते ही रहेंगे। मुनीम जी।
2: जी, क्या हुक्म है सरकार?
0: रणधीर पहलवान के पिछले महीने की और इस महीने की तनख्वाह अभी तक क्यों नहीं दी? ये बहुत बुरी बात है। देखो आइंदा ऐसी गड़बड़ ना हो।
2: जी
0: हाँ, तो अभी रुपए लाकर पहलवान साहब को दे दो।
2: बहुत अच्छा सरकार, अभी लाता हूँ।
1: आप क्यों तकलीफ करते हैं, अभी का तो खाता हूँ फिर ले लूंगा।
0: नहीं पहलवान, यहाँ कौड़ी कौड़ी का हिसाब किया जाता है। बोतल मंगवाऊं? अरे मुनीम जी, वो कल 4 बोतलें आई थी, उनमें से 2 पहलवान साहब की हैं, कोई और उड़ा कर ना ले जाए। ले आओ।
1: अपने लिए खिंचवाई है?
0: हाँ हाँ, खास तौर पर मैंने अपने लिए खिंचवाई थी। हाँ भाई पहलवान, तो किस्सा ये है कि इस श्यामू ने कुछ दिनों से मुझे तंग करना शुरू कर दिया है, किसानों को मेरे खिलाफ उकसा रहा है, जिससे लगान वसूल करने में मुश्किल पैदा हो गई है। है तो बड़ी मामूली सी बात, पर तुम जानते ही हो अगर मैं खामोश रहा तो शह पकड़ जाएंगे। कल मुनीम से बातें हो रही थी, मैंने कहा हमारा पहलवान जो है वो शामू को यूं चुटकियों में ठीक कर देगा। क्यों पहलवान?
1: क्यों नहीं।
0: लो पहलवान
1: जी,
0: ये थोड़ी सी नमूने के तौर पर पियो।
1: अरे
0: इत्तिफाक से बाहरी पड़ी थी। ये लो। देखो पहलवान, बात ज्यादा बढ़नी नहीं चाहिए, रुपए पैसे की तो तुम फिक्र ना करो, अगर कोई ऐसी बात हो गई तो मैं सब बंदोबस्त कर दूंगा। अब 500 रुपए मैंने इस काम के लिए अलग रख छोड़ा है। मेरा मतलब यह है कि अगर चुपके से ये कांटा निकाल ही दिया जाए तो क्या बुरा है।
3: अरे आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा।

भाइयों, मैं जमींदार की आंखों में कांटे की तरह खटक रहा हूं। अगर उसका बस चले तो वो मुझे फांसी पर लटकवा।

0: दे, मगर वो पापी मुझसे डरता है क्योंकि मैं उसके सारे भेद जानता हूं, इसलिए वो मेरी परछाई से भी डरता है। भाइयों मेरी बात याद रखो, जालिम कभी बहादुर नहीं होता। तुम बिल्कुल ना घबराओ, वो तुम्हारा बाल भी बाका ना कर सकेगा। हम उससे वही चीज मांगते हैं जो वो हमसे छीन चुका है। उसकी डांट डपट में बिल्कुल ना आओ और ऐसे ही डटे रहो। सरकार के कानों तक ये बात पहुंच गई तो समझो हमारा बेड़ा पार है, उसके ढोल की पोल खुल जाएगी।
1: श्यामू भैया, तुमको ये भी पता है कि उसने रणधीर पहलवान को रुपए पैसे का लालच देकर हमारे खिलाफ कर दिया है। कल शराब

0: क्या बिगाड़ सकता है? उस कुत्ते की कोई परवाह ना करो, वो जमींदार से भी ज्यादा पापी है। उसका नाम ला लो मेरे सामने, मेरा खून खोलने लगता है।
1: उसने मुझे कुत्ता कहा?
2: हाँ हाँ उस्ताद, मैंने इन कानों से सुना है।
1: उसने मुझे कुत्ता कहा, उसने रणधीर पहलवान को कुत्ता कहा। अब अगर वो पर लगाकर आसमान पर उड़ जाए तो भी मैं उसे जिंदा ना छोड़ूंगा। अबे माधव,
2: उस्ताद
1: वो तेरे उस्ताद को गालियां देता गया और तू खामोश खड़ा रहा।
2: वो
1: अरे तूने उसकी जबान क्यों ना खींच ली? लेकिन ये क्या हुआ, मैं अभी जाकर उसको मजा चखाता हूँ। उसने रणधीर पहलवान को समझा क्या है? क्यों बे, तू यहाँ खड़ा क्या डर रहा है?
0: ओ रणधीर पहलवान, क्यों?
1: अबे मैं पूछता हूँ, यहाँ झाड़ियों के पीछे तो अकेला खड़ा क्या कर रहा है?
0: गा रहा था, अब तेरा मुंह देख रहा हूँ।
1: तू खत्री का लड़का है ना, मरने मारने से बिल्कुल नहीं डरता।
0: जा अपना रास्ता पकड़, बहुत बातें कर चुका।
1: ये मेरे हाथ में तुझे लाठी नजर नहीं आ रही क्या?
0: तू लड़ना चाहता है तो लड़।
1: अबे तुझसे क्या लड़ूंगा, एक लाठी तेरे सिर पर मारूं तो तू जमीन में घुटनों तक गड़ जाए।
0: तेरी लाठी उठने से पहले ही अगर
1: संभाल।
2: कौन? सावित्री।
0: सावित्री तू?
3: श्यामू, श्यामू, ये मैंने क्या कर दिया? अब क्या होगा?
2: सावित्री तूने मेरा माथा लहूलुहान कर दिया। अरे याद रख, इसकी सजा तुझे भुगतनी पड़ेगी। श्यामू तुझसे मैं फिर निपट लूंगा। अगर सावित्री बीच में ना आ गई होती तो मैंने तेरा कचूमर निकाल दिया हो।
0: जाजान निकल।
3: श्यामू मैं झाड़ियों के पीछे छुपी हुई थी।
0: हा?
3: और जब उसने तुम पर वार करने के लिए लाठी उठाई तो बाल्टी अपने आप मेरे हाथ से निकल गई।
0: कोई बात नहीं
3: श्यामू, श्यामू उसको उसको बहुत गहरी चोट आई है, वो मुझसे जरूर बदला लेगा। हाय अब क्या होगा?
0: कुछ नहीं होगा सावित्री, तू चिंता मत कर, तू चल चुपचाप मेरे साथ।
4: आओ आओ पहलवान आओ। अब मुनीम जी
5: जी
4: ये ढेरी उठा लो।
5: हाँ।
4: बाकी हिसाब फिर करेंगे।
5: जी जी जी बहुत अच्छा।
4: आओ पहलवान। अरे ये तुम्हारे माथे को क्या हुआ?
1: कुछ नहीं।
4: तो फिर ये पट्टी क्यों बांध रखी?
1: चोट लग गई थी।
4: हैं? चोट कैसे?
1: वो कल शामू से जरा चकचक हो गई थी यूं ही।
4: क्या?
5: और उसने तुम्हें घायल कर दिया? हमें क्यों बना रहे हो पहलवान?
1: अरे उसने मुझे घायल नहीं किया।
4: तो फिर किसने किया, तुम मुझे बताओ, वो कौन था पहलवान?
1: अब मैं आपसे क्या कहूँ, बात यह है कि चूक मुझसे हुई, मैं अपने ध्यान में रहा और उसने वार कर दिया।
5: किसने?
1: नहीं वो शामू ने। लेकिन क्या हुआ, आज फिर दो दो हाथ हो जाएंगे।
4: अरे लेकिन भाई रणधीर, लोग बाग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि पहलवान ने उस कल के लौंडे से।
5: पर जमींदार जी, अब पहलवान बच्चा थोड़े ही है, अरे उसने सब बंदोबस्त कर लिया होगा।
4: मजा तो तब है कि रणधीर बदनामी से पहले ही उसका सफाया कर
5: दे। हाँ।
4: ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। क्यों मुनीम?
5: 52 तोला पाव रत्ती की बात कही है हुजूर ने।
4: ये 500 देता हूँ, चुपके से अपना काम करे और किसी दूसरे शहर चला जाए,
5: और जब मामला ठंडा हो जाए तो फिर वापस चला आए।
1: रुपए पैसे की बात छोड़िए जमींदार साहब, मैं आपका काम कर दूंगा और बहुत जल्द कर दूंगा। अरे एक आदमी मारना कोई कठिन काम नहीं, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। यह अब फैसला कर लिया है कि शामू जिंदा ना रहेगा।
4: पर रणधीर काम ऐसे हो कि किसी को कानों कान खबर ना हो।
1: सावित्री।
3: कौन?
1: मैं रणधीर पहलवान, जिसका माथा कल तूने घायल किया था, याद है ना? मैंने उस वक्त क्या कहा था?
3: मुझे मुझे माफ कर दो रणधीर।
1: माफ कर दूं तुझे? हाँ? क्यों डर गई? अरे ठहर जा, जाती कहाँ है, बदला लिए बिना तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अरे तूने समझा क्या था मुझे, रणधीर पहलवान हूँ, रणधीर पहलवान, खून ही पी जाया करता हूँ मैं।
3: मुझे माफ कर दो रणधीर।
1: अरे क्यों माफ कर दूं तुझे, क्या तूने मेरा माथा जख्मी नहीं किया? मैं बदला लिए बगैर तुझे कभी नहीं छोड़।

0: दूंगा। जिन हाथों ने मेरा माथा जख्मी किया वही इस पर पट्टी बांधेंगे। बोल, बांधेगी पट्टी? तो तू अपनी ओढ़नी से कपड़ा फाड़ और पट्टी बनाकर मेरे माथे पर जल्दी बांध, वरना चल चल बांध, खड़ी सोचती क्या है, चल।
1: तुम बैठो तो मैं बांधू पट्टी।
0: बैठू?
1: यूं मेरा हाथ नहीं पहुंचेगा।
0: अच्छा, ले ले, बैठ गया मैं, बांध बांध बांध।
1: पट्टी बांध दी मैंने, मैं जाऊं?
0: नहीं, पहले फूंक भी मारो, फूंक मारो।
1: हाँ
0: हाँ,
1: अब जाऊं मैं?
0: अरे भागती कहाँ है, ठहर ठहर ठहर, भागती कहाँ है, ठहर जाओ।
1: रणधीर छोड़ दे, छोड़ दे मेरी कलाई रणधीर, मेरी चूड़ियाँ टूट जाएंगी।
0: छोड़ दूँ? अरे कहाँ गई तेरी वो चुलबुलाहट, दू एक मरोड़ा और मैं।
1: छोड़ दे रणधीर, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कीड़े चले तेरे तन बदन में, खड़े का खड़ा जमीन में समा जाए तू।
0: सावित्री, सावित्री, सावित्री,
1: परमात्मा करे तुझ पर बिजली गिर जाए, परमात्मा करे तेरी गर्दन मरोड़ी जाए, आज तू जैसे मेरी कलाई मरोड़ रहा है।
0: ना रो सावित्री, ना रो, तू रोती है तो मेरे दिल को बड़ा दुख होता है। मैंने मैंने तुझसे मजाक किया था, मैं भला तुझे तकलीफ पहुंचाकर खुश हुआ हूं क्या? ना रो, ना रो सावित्री, ना रो। ले ए, ए, सुन, मुझे मार ले, ले ले ये पत्थर ले ले, मेरे सिर पर दे मार, सिर पर मार दे मेरे, मैं तुझसे प्रेम करता हूं सावित्री।
1: क्या कहा, प्रेम? तुझे से पापी को प्रेम करने का कोई अधिकार नहीं रणधीर।
0: नहीं नहीं सावित्री, मैं तुझसे प्रेम नहीं करता हूं। मैं तुझसे कैसे प्रेम कर सकता हूं, मैं बड़ा जालिम, बड़ा पापी हूं। तू ठीक कहती है, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं बेवकूफ हूं। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे सावित्री, मुझे माफ कर दे।

0: माधव, जहाँ तेरा पसीना गिरे ना वहाँ मैं अपना खून बहाने को तैयार
1: हूँ। क्या बात
2: है। हाँ किशोरी माल, एक हदिया और भेज दे।
3: आजकल उस्ताद कहीं दिखाई नहीं देते हैं, कहाँ रहते हैं आजकल?
4: मैं बताऊँ आजकल वो क्या करता है।
5: क्या सुनाऊं माजराए दर्द दिल।
6: भाई बहुत बड़ी उम्र है हमारे उस्ताद की। आओ आओ उस्ताद, आओ
2: उस्ताद, आओ उस्ताद बैठो, अभी तुम्हारी बात हो रही थी उस्ताद।
6: माधो कह रहा था कि उस्ताद इश्क लगा रहा है, इश्क।
7: उस्ताद क्या इश्क करेगा? माधो मैं बड़ा पापी और बड़ा जालिम हूँ, मैं प्रेम नहीं कर सकता। तूने एक बार कहा था ना, और सच ही कहा था कि उस्ताद तेरे पहलू में दिल नहीं पत्थर है।
2: मैंने तो वो ऐसे ही कहा था उस्ताद, वरना सच्ची बात तो ये है तुम्हारे पहलू में बड़ा ही नर्म दिल है।
7: नहीं तू झूठ कहता है, मेरे पहलू में दिल नहीं पत्थर है। एक बार फिर कह, उस्ताद तेरे पहलू में दिल नहीं पत्थर है। पत्थर पत्थर पत्थर ही तो है, लेकिन कोई प्रेम करता है तो इसमें मेरे बाबा का क्या जाता है। मैं उसको नहीं मारूंगा, जमींदार जाने और उसका काम जाने।
2: अरे अरे कहां चले उस्ताद, मैंने अभी अधिया मंगाई है।
7: मैं जमींदार से मिलने जा रहा हूं, एक जरूरी काम है, अभी आता हूं।
8: मुनीम
9: जी,
8: तुमने बात तो ठीक कही है।
9: सरकार मैं तो ठीक ही कहता हूँ, मैंने ये बाल धूप में थोड़े ही सफेद किए हैं। सोचने की बात है सरकार, रणधीर अगर पकड़ा जाए और थाने में ये कह दे कि जमींदार साहब

0: आपने मुझे सामू का कत्ल करने के लिए कहा था तो बैठे बिठाए एक और मुसीबत खड़ी हो जाएगी कसम से।
1: तो इसका इलाज बड़ा आसान सा है।
0: अब वो क्या?
1: शामू को रणधीर मारे। हाँ। और रणधीर को कोई और साफ कर दे।
0: हाँ?
1: या फिर ये हो सकता है कि उसको ज्यादा शराब पिला दी जाए।
0: हाँ।
1: और जब वो बेहोश हो जाए तो उसे उठाकर रेल की पटरी पर रख दिया जाए।
0: हाँ।
1: मुनीम मुनीम, हाँ? ये आवाज सुनी तुमने?
0: नहीं तो।
1: अरे मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि बाहर दरवाजे के पीछे कोई खड़ा था।
0: जी नहीं, आपको ऐसे ही वहम हुआ है।
1: नहीं भाई, लेकिन लेकिन डर लगता है।

0: रामू भैया, रामू भैया, तुमने सुना जमींदार जी का खून हो गया।
1: खून? जमींदार जी का खून?
0: श्यामू को पकड़कर थाने ले गए।
2: मैं ना कहता था कि श्यामू का गुस्सा ही जरूर रंग लाएगा।
0: चलो चलो, अरे उठो ना, थाने में चलते हैं। श्यामू को पकड़कर वहीं ले गए।
3: अरे भैया, लाश बाहर खेतों में पड़ी थी और श्यामू उसके सिरहाने खड़ा था, और इधर से थानेदार साहब जो दौरे से वापस आ रहे थे उधर ही आ निकले।
2: अब जरूर फांसी हो जाएगी उसे।
3: पर श्यामू तो कहता है कि मैं निर्दोष हूँ।

0: श्यामू बेटा मैं तुझे रोकती नहीं बेटा, पर तूने मेरी एक न सुनी।
1: मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ माँ।
2: फिर जमींदार जी का खून किसने किया है?

0: चल, दुनिया से एक पापी कम हुआ, उसकी नीयत ही खराब थी, जिसका फल उसको मिल गया। अरे रेल के नीचे अगर उसकी लाश कुचली जाती तो मजा आ जाता। बड़ा चालाक बना फिरता बस। लाला किशोरी लाल, लाला
1: आया पहलवान आया। क्या हुक्म है?
0: अरे आज तुम्हारी शराब को क्या हो गया है? मालूम होता है बीच में ही पानी मिला देते हो।
1: अरे नहीं उस्ताद,
0: आज ठेका खाली खाली क्यों नजर आता है?
1: अरे वो जमींदार जी का कत्ल हो गया है ना, सारा गांव तो थाने में बैठा है, शामू पकड़ लिया गया है।
0: 500 रुपए देता था दूसरे को मारने के लिए। वाह रणधीर पहलवान, तुम्हारे क्या कहने।
2: रणधीर कहाँ है?
0: कौन?
2: रणधीर पहलवान, मैं
0: सावित्री। अरे सावित्री तू यहाँ क्या करने आई है? जा चली जा यहाँ से। अरे क्या हुआ, क्या हुआ सावित्री, तू रोती क्यों है? तू
2: वो श्यामू को ताने ले गए और कहते कि उसने मेरे बापू को मारा है।
0: अरे
2: ये झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है रणधीर। श्यामू ने मेरे बापू को नहीं मारा, वो बिल्कुल निर्दोष है। वो तो मुझसे मिलने के लिए खेतों में जा रहा था कि रास्ते में उसे लाश पड़ी दिखाई थी, बस।

0: ये कैसी बात मुंह से निकालती है सावित्री?
1: जहर खाकर मर जाऊंगी अगर शामू को कुछ हो गया तो।
0: नहीं, ना रो सावित्री, ना रो, मत रो, मैं जाकर देखता हूं थाने में कि क्या बात है। अरे सचमुच तू पगली है, मत रो ना, बेकार अपनी जान हलाकान कर रही है। चल चल सावित्री चल।
2: शामू की माँ रणधीर।
1: रणधीर
2: दारू पी रखी है,
3: थानेदार की तरफ जा रहा है।
4: रणधीर, ए रणधीर, बाहर खड़े रहो। अब्दुल रहमान, तुम इसको रोकते क्यों नहीं?
0: खबरदार जो मुझे किसी ने हाथ लगाया।
4: आने दो इसे, आने दो। हाँ बोलो, क्या कहना है?
0: कुछ नहीं, मैं ये देखने आया था कि जमींदार जी को किसने कत्ल किया।
4: ये मेरा हाकिम बनाकर तुम्हें किसने भेजा है? खैर, कातिल को देखना है ना, लो देख लो, वो तुम्हारे सामने खड़ा है।
0: ये शामू? शामू ने जमींदार को मारा? अरे थानेदार साहब, आपने गलत आदमी को पकड़ लिया।
4: रणधीर, ज्यादा बकवास ना करो, चलो डॉप भागो यहाँ से, निकल जाओ।
0: अरे मैं कहता हूँ थानेदार साहब, जिस आदमी ने कभी चिड़िया तक नहीं मारी, वो एक आदमी को जान से कैसे मार सकता है?
5: उड़ा ले मेरी हंसी। हाँ हाँ, उड़ा ले मेरी हंसी।
0: थानेदार साहब, अरे ये मुर्दार किसी को क्या मारेगा?
6: थानेदार साहब, इससे पूछिए, जमींदार को अगर शामू ने नहीं मारा तो किसने मारा है?
0: तो मुझसे पूछ, थानेदार से पूछने को क्यों कहता है? थानेदार क्या मेरा खुदा है? ले सुन ले, जमींदार को मैंने मारा है।
1: देखा सावित्री, मेरा बच्चा सामो निर्दोष है। देखा सावित्री, मेरा बच्चा निर्दोष है, निर्दोष है। रणधीर, रणधीर तुम
0: सावित्री, मैंने तुझसे कहा नहीं था कि घर चल के बैठ? तू यहां क्या करने आई है? जा, चली जा यहां से।
1: रणधीर, रणधीर तुम बहुत अच्छे आदमी हो।
0: नहीं सावित्री, मैं बड़ा जालिम हूं, बड़ा पापी हूं। मुझे तो ना प्रेम करने का कोई अधिकार ही नहीं है। हाँ, मेरे पहलू में ना दिल नहीं है, पत्थर है, पत्थर।

अभी आप सुन रहे थे सादत हसन मंटो का लिखा नाटक रणधीर पहलवान। भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है: शामू अमित रिछारिया, सावित्री कंचन राजानी, माधव कमल जैन, दीनू अरुण गीते, दरबारी मल देशबंधु शुक्ल, शामू की मां अनुराधा चतुर्वेदी, जमींदार नजीर कुरैशी, मुनीम मांगीलाल शर्मा, थानेदार अरशद इकबाल और रणधीर पहलवान की भूमिका निभा रहे थे संजय मेहता। इस नाटक के प्रस्तुतकर्ता राकेश ढौंडियाल।

वैभवी पिक्चर्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक सिसकिया। ये धारावाहिक खेमलता वकलू के उपन्यास खिला फूल मुरझाया पर आधारित है

पिछली कड़ी में आपने सुना कि सारे का निकाह रसूल से हो जाता है। सारे और रसूल के बीच छोटी छोटी बातों पर तकरार होने लगती है। अपनी बेटी को नाखुश देखकर हसन बट एक दिन फाता पर बरस पड़ते हैं। इसके बाद हसन बट घर छोड़कर पास ही एक कोठरी में रहने लगते हैं। एक दिन मुश्ताक हसन बट से मिलने आता है, जहां सारे से मुलाकात के बाद उन दोनों के बीच की गलत फहमियां दूर हो जाती हैं और वे अक्सर मिलने लगते हैं। अब आगे।

0: लगे हैं मुश्ताक। आओ, बड़ी देर कर दी।
1: बहुत सारे कुछ लोग मिल गए थे।
0: मुश्ताक, मुझे एक जरूरी बात करनी है।
1: हाँ हाँ बोलो, क्या बात है?
0: अब हम यहाँ नहीं मिल पाएंगे। गांव वालों को हमारे मिलने की भनक लग गई है और वे लोग हमें अलग करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
1: सारे तुम फिक्र ना करो, गांव वाले हमारा कुछ ना बिगाड़ पाएंगे। जब हम एक हैं तो हमें कोई जुदा नहीं कर पाएगा।
0: पर मुझे बहुत डर लग रहा है मुश्ताक, अगर ये बात गांव में फैली और रसूल को पता चला तो वो तो कुछ भी कर सकता है। हमें कुछ करना चाहिए मुश्ताक।
1: अरे तुम इतनी परेशान ना हो, मैं तलाक के लिए कोशिश कर रहा हूं, लेकिन रसूल के आने के बाद ही कुछ हो सकता है।
0: ठीक है, पर तब तक हमें एहतियात से काम लेना होगा ताकि

0: कोई परेशानी खड़ी ना कर सके।
1: सारे, डरने की कोई बात नहीं, रसूल के आते ही हम तलाक की बात कर लेंगे। और जहां तक गांव वालों की बात है तो कुछ दिन हम नहीं मिलेंगे।
0: हाँ, यही ठीक रहेगा।
1: ठीक है सारे, मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना।
0: आप भी अपना ख्याल रखना।

0: Assalamualaikum bhai.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam bhai.
0: Kya baatein ho rahi thi?
1: Are wo kuch bhi nahi, bas yun hi idhar udhar ki baatein ho rahi thi.
0: Are idhar udhar ki baatein, pata nahi chala kuch. अरे मिल की कोठी में जो हसन भट रहता है ना।
1: अरे हाँ हाँ, पर क्या हुआ हसन भट को?
0: अरे उसकी बेटी जो सारे है ना।
1: हाँ हाँ जानता हूँ उसे, बोलो तो सही।
0: अरे मुश्ताक के साथ उसका चक्कर है।
1: लाहौल विलाव कुवत। अरे मियाँ ये क्या कह रहे हो?
0: अरे सही कह रहा हूँ, वो लोग हसन भट की कोठी में मिलते हैं।
2: सुना तो मैंने भी कुछ ऐसा ही है भैया।
1: लेकिन सारे का निकाह तो रसूल के साथ हुआ है ना, अब फिर ये?
2: अरे पहले तो उसी मुश्ताक के साथ हुआ था, फिर तलाक हो गया था ना।
0: इसका मतलब है तो रसूल की बीवी ना। फिर एक औरत अपने मर्द की गैर हाजिरी में गैर मर्द से मिले, ये तो उसूल के खिलाफ है।
1: हाँ हाँ भैया बिल्कुल, अरे इससे तो हमारी बहु बेटियाँ भी बिगड़ सकती हैं।
0: हाँ, हमें कुछ करना चाहिए।
1: अरे बेगैरत औरतों को जो मर्द के रहते दूसरे मर्द को देखे उसे भी तो सजा मिलनी चाहिए।
2: लेकिन सारे ऐसा क्यों करेगी?
1: अरे जिस औरत को मर्द की हवस हो वो कुछ भी कर सकती है मियाँ।
2: हाँ लेकिन मुश्ताक उसका पहचान वाला है, उससे मिलने में क्या बुराई है? अरे हो सकता है वो लोग यूं ही मिलते रहते हो।
0: लाहौल विलाकवत। अरे मैंने तो सुना है रसूल को धोखा देकर सारा मुश्ताक के साथ नाजायज ताल्लुकात रखती है।
2: अरे तो रसूल कौन सा भला आदमी है, है? कि आप उसकी तरफदारी कर रहे हैं?
1: अरे मर्द चार चार निकाह करे ये जायज है, हमारे मजहब में इसे जायज बताया गया है। पर औरत के लिए अपने शोहर को छोड़ दूसरे मर्द को छूना भी गुनाह है, और अगर कोई इस पाक असूल को तोड़ता है तो उसे सजा का भागीदार होना ही पड़ेगा।
0: इस मामले में फाता व हसन भट्ट को हम सब लोगों को मिलकर समझाना चाहिए ताकि वो सारे पर लगाम कसे।
1: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप तो बिल्कुल सही कहते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता तो सारे को पूरे गांव के सामने सजा दी जाएगी ताकि हमारी बहु बेटियां सबक ले सकें।
0: और भाई दूसरे गांव का आदमी हमारे गांव की बेटी के साथ रंग रैलियां मनाए, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते।
2: अरे पहले उसके अम्मी और अब्बू से तो बात करो, अगर बात सुलझ जाए तो अच्छी है, अरे बदनामी से तो बचेंगे।
1: हाँ हाँ ये बिल्कुल ठीक है, हम हसन भट्ट और फाता से बात करेंगे। नहीं माने तो गांव में पंचायत बुलवाएंगे। एक औरत हमारे मजहब को नकारे ये हम नहीं सहेंगे मियाँ। हाँ चलो, चलो, चलो, चलो, ये नहीं सहेंगे हम।

0: सुन ली ना अपनी बेटी की दास्तान, सारे गांव में थू थू हो रही है हमारी।
1: वाता, शांत रहो। लोग क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं हमारे लिए ये मायने नहीं रखता।
0: तो और क्या करोगे तुम बाप बेटी मिलकर?
1: तुम कुछ देर चुप नहीं रह सकती क्या? अरे हमें सोचने तो दो।
0: मेरी बात तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, सारे अब मुश्ताक से कभी नहीं मिलेगी।
1: सहरे और मुश्ताक मिलते हैं या नहीं, अगर मिलते ही हैं तो वो हमारा रिश्तेदार ही है, कोई गैर तो नहीं। और तुम किन लोगों की?

0: की बातों में आकर ये सब तमाशा कर रही हो।
1: तमाशा? अरे तमाशा मैं नहीं कर रही, तमाशा तुम और सारे कर रहे हो। सारा गांव हमारे नाम पर।
2: अब रहने भी दो अम्मी।
1: क्यों रहने दूं? केतु सारे गांव में मुंह काला कर आए इसलिए?
2: मैं मुश्ताक से प्यार करती हूँ।
1: सारे सारे कमबख्त लड़की, बंद कर अपनी जुबान वरना हलक से खींच कर बाहर कर लूंगी। मुझसे जुबान लड़ाती है, तेरा निकाह रसूल से हुआ है और तू अब मुश्ताक से प्यार करती है? जुबान न काट दूं तेरी।
0: ये क्या कह रही है फाता?
1: मैं जो कह रही हूँ वही सही है।
0: तो क्या गांव वाले सच बोल रहे हैं?
1: नहीं तो क्या झूठ बोलेंगे?
2: ये सच है अबू कि मैं मुश्ताक से मिलती हूँ, पर गांव वाले जैसा कह रहे हैं वो सच नहीं है।
1: हाय किस्मत फूटी मेरी जो तुझे जना बदनामी करा कर जुबान लड़ाती है।
2: जो बात है वही कह रही हूँ।
0: सारे अब तेरा निकाह रसूल से हो चुका है और ऐसे में तू रसूल के सिवा किसी और से मेल जोल रखे तो ये हमारे मजहब के खिलाफ है बेटा, और इससे हमारी बदनामी होगी। अगर हो सके तो तू मुश्ताक से ना मिल।
2: मुझे और मुश्ताक को मिलने से कोई नहीं रोक सकता।
0: सारे क्या तुझे अपने बूढ़े बाप पर तरस नहीं आता? अब मैं सारे गांव वालों को क्या जवाब दूं? क्या कहूं मैं उनसे कि मेरी बेटी हमारे सामने हमारे उसूलों को खाक में मिला रही है और हम कुछ भी नहीं कर सकते?
2: अब्बू अब्बू अब्बू आप परेशान मत होइए, जो होगा उसे मैं संभालूंगी।
1: अरे ना माकूल, तू तो हमें मार कर ही खुश होगी।
2: कौन किसे मार रहा है अम्मी, ये तो खूब जानती है।
1: मुझसे जुबान ना लड़ा, आखिर तू कहना क्या चाहती है? मैं बुरी हूँ और तू जो कर रही है वो सही है।
2: मुश्ताक से तलाक किसने दिलवाया मुझे? मैं आज भी मुश्ताक से प्यार करती हूँ, और जहाँ तक बात रसूल की है तो मुझे बदनामी का कोई डर नहीं। रसूल से मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती।
1: कुछ भी हो अब रसूल तेरा शौहर है।
2: रसूल को मेरी जिंदगी में जबरदस्ती धकेला गया है, और अम्मी ये सब तेरा किया धरा है। मैं रसूल को शौहर नहीं मानती।
1: अरे एक बार जो रिश्ता बन जाए वो कभी नहीं टूटता।
2: मेरा रिश्ता सिर्फ मुश्ताक से था, है और रहेगा।
0: सारे एक बार और सोच ले बेटा, अपने बूढ़े माँ बाप के बारे में सोच। हम जिस समाज में रहते हैं हमें उसे जवाब देना होता है, और अगर तू रसूल के रहते मुश्ताक से अपने ताल्लुकात रखती है तो हम क्या जवाब देंगे? बोलो।
2: किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है अब्बू।
1: तुम्हें नहीं है शायद, पर समाज इन रिश्तों को नहीं मानता, और हमें तो जवाब देना ही होगा। हम इस समाज की मर्यादा को नहीं तोड़ सकते।
2: किस जवाब और किस मर्यादा की बात कर रही है अम्मी? आज जो लोग तुमसे, अप्पू से या मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि मुश्ताक से रिश्ता क्यों रखती हो, तो क्या तुम्हारा समाज मेरे सवालों का जवाब देगा कि रसूल से नूरी का तलाक क्यों हुआ? मेरी इच्छा के बगैर रसूल से मेरा निकाह क्यों पढ़वाया गया? मुश्ताक से मेरा तलाक धोखे से क्यों करवाया गया? रसूल जो मेरा शौहर है वो मुझे छोड़कर शहर में दूसरी औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात क्यों रखता है?
1: अरे जा अपनी जुबान न चला, तू औरत है और औरत की मर्यादा में रह। मर्दों की बातों में दखलंदाजी न दे। औरतों को सवाल पूछने का हक नहीं है।

0: जो इंसाफ करते वक्त दोनों तरफ की बातें ना सुने, उनके सामने मुझे दलील देने की कोई जरूरत नहीं है।
1: सहरे, रसूल से तेरा निकाह हुआ है, क्या तू इस रिश्ते को नहीं मानती? क्या तुझे हम पर भरोसा नहीं है? आखिर तू चाहती क्या है बेटा?
0: अब्बू, मैं कुछ नहीं चाहती, कुछ भी नहीं। रसूल से मेरा निकाह हुआ है, पर रसूल के लिए मैं सिर्फ एक देह हूँ, बीवी नहीं। क्योंकि रसूल के लिए तो औरत सिर्फ एक गुलाम है। मैंने मुश्ताक से प्यार किया था अब्बू, और आज भी मुश्ताक से ही प्यार करती हूँ।
2: तेरा तलाक हो चुका है।
0: हमारा तलाक एक धोखा था।
2: मजहब तलाक मानता है।
0: मैं उस मजहब को नहीं मानती जो इंसानी रिश्तों को भूल जाए।
2: तू औरत है और तुझसे जो कहा जाए वो ही करेगी।
0: मैं औरत हूँ इसलिए किसी मर्द की जूती बनकर रहूँगी, ये मुझसे नहीं होगा। मैं अपनी इच्छा से मुश्ताक के साथ रहूँगी, और रसूल मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा।
2: सारे, देख, ये अच्छा ना होगा। तेरा निकाह रसूल से करने में कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा था, ये शायद तू नहीं जानती।
0: हाँ, तकलीफ?
2: तू ऐसे नहीं मानेगी। रसूल को आने दे, वही समझाएगा तुझे।
0: हाँ हाँ, आने दो रसूल को, मुझे अब डर नहीं है किसी का। अब मैं जान गई हूँ कि औरों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश करती रही है तू।
2: मेरे घर में रहकर मुझे ही धौंस दिखाती है।
1: फाता, बात को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। हमें इस मसले पर सोच विचार करना चाहिए। अगर सारे नहीं चाहती कि वो रसूल के साथ रहे, तो हमें भी उस पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। पहले भी एक बार हम सारे के साथ गलती कर चुके हैं। अब
2: अम्मा, तुम चुप रहो। आज तक किसी का भला चाहा है तुमने? तुम्हारी बेटी सारे गांव में मुंह काला किए फिर रही है। शौहर रहते मुश्ताक से मिलती जुलती है, और तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो। हाय,
1: मैं तरफदारी नहीं कर रहा। अगर सारे चाहती है कि वो मुश्ताक के साथ रहे, तो उसे...
2: या खुदा, मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा, और इस घर में तो कभी नहीं। मैं ऐसा हरगिज ना होने दूंगी।
0: तो मैं ये घर छोड़ दूंगी।
2: धमकी देती है मुझे अपनी माँ को।
0: अम्मी, अगर तू यही चाहती है तो यही सही, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। जब कहो तब मैं ये घर छोड़ सकती हूँ।
1: सारे, अंदर जा, हमें सोचने दे कि हम क्या करें।
2: जरा देखो इस बदसात लड़की की हिम्मत तो देखो।
1: सारे, तू अंदर जा। फाता, ये ना समझ कि वो अभी भी बच्ची है, अच्छे बुरे की पहचान है उसे। हमने उसकी जिंदगी में पहले ही जहर घोल रखा है, हमें ही संभालना होगा उसे।
2: या खुदा, तुम बाप बेटी पागल हो गए हो। बेटी की जिद के सामने तुम झुक सकते हो, मैं नहीं।
1: अरे, हमें सारे की खुशी के बारे में सोचना है, उसके भले के लिए सोचना है। समाज अपनी जगह है, और वो
2: और क्या, अपनी बेटी को उस मुश्ताक के पास भेज दोगे क्या? रसूल को क्या जवाब दोगे?
1: आने दो रसूल को, फिर बात करते हैं। अरे, अभी तो तसल्ली से रहना होगा हमें।

0: आओ बैठो यहाँ।
1: फाता, ये मैं क्या सुन रहा हूँ?
0: क्या सुन रहा है?
1: सारे के बारे में लोग जो कह रहे हैं, क्या वो सच है?
0: अब तुमसे क्या छुपाना बेटा?
1: फाता, साफ साफ कहो, क्या ये सच है?
0: हाँ, तुम्हारे जाने के बाद ही सारे मुश्ताक से मिलती रही है।
1: तो तुमने उसे रोका नहीं?
0: रोका था, पर पहले तो मुझे इधर उधर की सुना देती थी, पर जब बात बढ़ गई और पूरे गांव को पता चल गया तो फिर
1: क्या? अरे, ऐसी औरत के हाथ पैर तोड़कर घर में बंद कर देना चाहिए।
0: सही कहते हो रसूल, पर मैं तो लाचार हो गई हूँ। अब तुम आ गए हो तो अब तुम ही संभालो उसे।
1: ठीक है, सारे कहाँ हैं? जरा बुलाओ उसे।
0: घर में ही है, पर बेटा जरा समझा उसे कि इस तरह की हरकत ना करे, और तू भी ध्यान दिया कर उसकी तरफ।
1: ठीक है।
0: औरत को एक बार प्यार से देखेगा ना तो तेरी गुलामी को तैयार हो जाएगी।
1: फाता, मेरे पास बहस करने का वक्त नहीं है। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, दो पैसे जोड़ता हूँ, अपने मन से खर्च करता हूँ। अरे, सारे जैसी कई लड़कियां मेरे जूतों में पड़ी रहती हैं। अरे, वो तो तुम्हारी बातों में आकर निकाह को हाँ कर दी थी, वरना मुझे क्या पड़ी थी सारे से निकाह करने की। पर जब निकाह हो ही गया तो उसे वही करना होगा जो मैं कहूंगा, और जब मैं नहीं रहता तो तू क्या करती है? अरे, मेरे से इतने पैसे लेती है किस लिए? अरे, तुझसे अपनी बेटी भी नहीं संभलती?
0: अरे समझाया था पर
1: अरे, तुम पर जितने पैसे खर्चे हैं मैंने, उतने में 10 साराय को अपने साथ घुमा चुका होता। पर तुझ पर तरस आ जाता है सो मन मार लेता हूँ। पर अब पानी सर से ऊंचा जा चुका है। सारे मेरी बीबी है और उसे मेरे कहे पर चलना होगा।
0: हाँ हाँ, वही तो मैं समझाती हूँ उसे, पर मेरी सुने तब ना।
1: बुला उसे, मैं समझाता हूँ।
0: सारे
2: आई अम्मी।
1: क्योरी, मेरे जाते ही तेरे चेहरे पर रौनक आ जाती है और मेरे सामने ये मनहूस चेहरा लेकर आ जाती है।
2: हुआ क्या है?
1: जो बात पूरे गांव को पता है, जो बात अभी अभी फाता ने बताई है, क्या वो बात तुझे मालूम नहीं? हाँ, बोल, बोलती क्यों नहीं? मैं ही बताता हूँ तुझे।
2: रसूल, तू अब ऐसा नहीं कर सकता।
1: तो तू मुझे समझेगी कि क्या करना है और क्या नहीं है? अभी बताता हूँ तुझे। औरत का मजहब होता है शोहर की सेवा करना, उसके कहे को मानना। अगर मर्द घर से बाहर रहे तो उसका इंतजार करना, और तू मेरे ना रहने पर उस मुश्ताक के साथ ऐश करती थी।
0: अरे सारे बेहोश हो गई। अभी छोड़ दे, अब अक्ल ठिकाने आ जाएगी।
3: अरे, ये शोर कैसा है? अरे, सारे को क्या हुआ है? क्या हुआ सारे बेटा?
1: अरे कुछ नहीं, अब इसकी अक्ल ठिकाने आ गई।
3: सारे, उठ मेरी बच्ची, सारे।
0: अरे रहने दो, बड़े बाप बनते हो, तुम्हारी नाक के तले ही हमारी बदनामी करती रही और अब प्यार जता रहे हो।
3: अरे, तुम लोगों ने मिलकर मारा है सारे को। फाता, तुम माँ नहीं है। सारे बेहोश हो गई और तुम देखती रही।
1: अरे, अब तुम भी अपना रोना बंद करो। मेरी बदनामी करेगी तो सारे के साथ ऐसा ही होगा।
3: बंद करो तुम लोग अपनी हैवानियत। अब तुम लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते। सारे, मैं

0: है बेटा, तुम ठीक तो हो?
1: हाँ अबू, अबू मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है?
0: बेटा, वक्त के हाथों में हम सब कठपुतलियां हैं। वक्त जो करेगा हमें वही देखना है।
1: पर वक्त को बदला तो जा सकता है अब्बू।
0: नहीं मेरी बच्ची, नहीं। वक्त हमारी नियति बनाता है और उसे बदलना नामुमकिन है।
1: तो क्या मुश्ताक से मेरी मुलाकात अब कभी नहीं हो सकेगी?
0: वक्त ने चाहा तो मुश्ताक से कोई अलग नहीं कर सकता तुझे।
1: अब्बू, आप तो मेरे साथ है ना?
0: हाँ सारे बेटे, अगर तेरी खुशी इसी में है तो यही सही, मैं तेरे साथ हूँ।
1: रसूल के साथ तलाक हो जाने के बाद ही मैं मुश्ताक के साथ रह सकती हूँ अब्बू।
0: वक्त ने चाहा तो ऐसा ही होगा, पर पहले तू ठीक हो जा, उसके बाद सोचा जाएगा।
1: अब्बू, अब्बू हमें तलाक के बारे में मुश्ताक से बात करनी होगी।
0: तू आराम कर, हम बात कर लेंगे, और खुदा ने चाहा तो तुम्हारी मुराद जरूर पूरी होगी।
1: अब्बू, मेरी वजह से आपको भी परेशानी हो रही है ना?
0: अरे पगली, औलाद की खुशी तो माँ बाप की खुशी होती है, उसमें तकलीफ कैसी उठानी? तू ऐसा ना सोच कि तेरी मदद करने में मुझे तकलीफ होगी। तू फिक्र मत कर बेटी, अल्लाह ताला सब ठीक कर देंगे। मुश्ताक तलाक के लिए जरूरी बातें पता कर रहा है।
1: पर अब्बू, क्या रसूल मानेगा?

अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक सिसकियां की नौवीं कड़ी। गीतकार अशोक वर्मा, संगीत दिया था मोहनलाल ने, गायिका सुप्रिया श्रीवास्तव, ध्वनि मुद्रण और संपादन जितेंद्र, लेखक अक्रम खान, निर्माता निर्देशक अंशु आनंद। भाग लेने वाले कलाकार थे नीलम, लोकेश, सुप्रिया, हरीश और ललित। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।

साथी न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन, साथी DTH के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में

0: शाम के 5 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए नए अवसरों पर विचार किया। केंद्र सरकार ने आज वर्ष 2026 के लिए 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों की घोषणा की। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने बताया कि ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को कुल 17 पुरस्कार दिए जाएंगे, जिसमें 10 स्वर्ण पुरस्कार, 6 रजत पुरस्कार तथा 1 ज्यूरी पुरस्कार शामिल है। मेरा युवा भारत को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है। इस अभियान ने एक सप्ताह में ऑनलाइन क्विज में भाग लेने वाले सबसे अधिक उपयोगकर्ताओं का खिताब हासिल किया है। इसमें 3,90,000 से अधिक प्रतिभागियों ने क्विज को पूरा किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन की प्रतिभाशाली बेटी सुश्री दीक्षा की कला को वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान मिलने पर बधाई दी है। दीक्षा ने केवल 22 मिनट में 8 मिलीमीटर आकार की चने की दाल के 12 दानों पर ज्योतिर्लिंगों की पेंटिंग बनाकर असाधारण कला का प्रदर्शन कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। और राज्य शासन की स्थानांतरण नीति 2026-27 के तहत जनजाति कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ने स्थानांतरण आवेदनों के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार स्वैच्छिक स्थानांतरण के आवेदन 3 जून से 8 जून तक EHRMS पोर्टल पर ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल, आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है, थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव डीटीएच का ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युवाणी, आज की युवाणी आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है।

0: नमस्कार दोस्तों, आज की इस खूबसूरत शाम में हम लेकर आए हैं ढेर सारी बातें, मुस्कान और कुछ खास पल। आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम युववाणी, और मैं हूं आज का आपका रेडियो दोस्त अनमोल।
1: और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अंकिता। उम्मीद है आप सभी का दिन अच्छा गुजरा होगा। अब वक्त है थोड़ी सी राहत का और कुछ प्यार भरी बातों का और शानदार संगीत का।
0: बिल्कुल, दिन भर की भाग दौड़ के बाद शाम का ये समय अपनेपन और सुकून का होता है, और हम चाहते हैं कि आपकी ये शाम और भी खूबसूरत बन जाए।
1: तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम को आज के दो प्रश्नों के साथ। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलचर जीव कौन है? और आज का दूसरा प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है?
0: साथियों, इनके जवाब हम आपको बताएंगे कार्यक्रम के अंत में, लेकिन उससे पहले इस शाम को और भी सुरीला बनाते हैं एक खूबसूरत गीत के साथ, जिसे आवाज दी है अरिजीत सिंह और आशीष कौर ने, और जिसे लिया गया है फिल्म केसरी से।

0: वापस स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं युववाणी। अंकिता, कभी कभी लगता है ना, पहले मौसम कितने अच्छे हुआ करते थे। पेड़ों की वो ठंडी ठंडी छाव, साफ हवा और बारिश की वो खुशबू।
1: लेकिन अब सब धीरे धीरे बदलता जा रहा है। हर जगह प्रदूषण, प्लास्टिक और कटते हुए पेड़ दिखाई देते हैं।
0: और सबसे हैरानी की बात ये है कि इंसान खुद ही प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है और फिर उसी खराब माहौल की शिकायत भी करता है।
1: हाँ और क्या, हम खुद के स्वार्थ में भूल जाते हैं कि प्रकृति नहीं रहेगी तो जीवन भी मुश्किल हो जाएगा।
0: अब आज गर्मी हर साल बढ़ रही है, बारिश का मौसम भी बदलता जा रहा है। ये सब कहीं ना कहीं पर्यावरण के बिगड़ने का असर है।
1: पर पेड़ लगाकर, पानी बचाकर और प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करके हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बदलाव भी ला सकते हैं।
0: बिल्कुल, प्रकृति सिर्फ हमारी जरूरत नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी है।
1: और दोस्तों, आज से हम सब मिलकर एक छोटी सी कोशिश जरूर करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी साफ और सुंदर वातावरण मिल सके।
0: साथियों, इसी वादे के साथ अब कार्यक्रम में जोड़ते हैं ये गीत, जिसे लिया गया है फिल्म मेट्रो इन दिनों से और जिसे आवाज दी है अरिजीत सिंह ने।

0: दोस्तों, प्रेरक व्यक्तित्व के अंतर्गत हम हर बार एक आइडियल पर्सनालिटी के बारे में आपसे बात करने आते हैं और उनके जीवन से जुड़े महान कार्यों को जानकर उससे प्रेरित होकर उनको याद करने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं।
1: जी हाँ दोस्तों, और आज हम आपसे बात करने आए हैं राजकुमारी अमृत कौर के बारे में। आजादी की राह, सेवा की चाह, अमृत कौर की यही पहचान है।
0: इनका जन्म 2 फरवरी 1889 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता कपूरथला पंजाब के राजा थे और इनकी प्राथमिक से लेकर उच्च स्तरीय शिक्षा भी इंग्लैंड से पूरी हुई थी।
1: लेकिन संपन्न परिवार से होने के बाद भी अमृत कौर ने अपना जीवन सादगी से जीना चाहा। देश को स्वतंत्र कराने, सामाजिक विकास करने के लिए उन्होंने कई सारे कार्य किए।
0: वे बाल विवाह और पर्दा प्रथा के सख्त खिलाफ थी और उनका कहना था कि शिक्षा को भी निःशुल्क और अनिवार्य बनाना चाहिए।
1: महिलाओं की दयनीय स्थिति को देखकर ही उन्होंने 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना की। उन्होंने ऑल इंडिया विमेन एजुकेशन फंड एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था।
0: इस तरह अपने राजनीतिक करियर के दौरान राजकुमारी अमृत कौर ने कई बड़े पदों पर काम किया। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री भी बनाया।
1: इतना ही नहीं, 1950 में उन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन का अध्यक्ष भी बनाया गया। ये सम्मान हासिल करने वाली वे पहली एशियाई महिला थी और इस तरह सेवा, समानता और स्वास्थ्य ही अमृत कौर का संकल्प बन गया।
0: आज़ादी की राह पर उन्होंने 16 वर्षों तक गांधी जी के सचिव के रूप में भी काम किया। 1930 में दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें जेल भी जाना पड़ा और इस तरह लोगों को जागरूक करने और देश को स्वतंत्र कराने के लिए अमृत कौर जीवन पर्यंत प्रयास करती रही।
1: साथियों, 2 अक्टूबर 1964 का दिन भले ही अमृत कौर के जीवन का आखिरी दिन रहा हो, लेकिन उनके सराहनीय कार्य और उनके योगदान को आज भी उतना ही याद किया जाता है।

इन्हीं बातों के साथ आइए दोस्तों अब सुनते हैं कार्यक्रम के अगले गीत को उरी फिल्म से शांतनु सुदामे और शाश्वत सचदेव की आवाज में।

0: अंकिता, आज मैं बहुत खुश हूँ।
1: क्यों?
0: क्योंकि आज मैंने अपनी लाइफ की फर्स्ट जॉब से फर्स्ट सैलरी जो ली है।
1: अरे वाह अनमोल, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर आज तो तुम्हें सेल्फ इंडिपेंडेंट होने की फीलिंग आ रही होगी।
0: बिल्कुल सही कहा अंकिता, खुद की मदद करके किस व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता। छोटी छोटी जरूरतों से लेकर बड़ी बड़ी आवश्यकताओं तक जब आप अपने परिवार पर निर्भर नहीं होते बल्कि दूसरों का सहारा बनते हैं, तब ये फीलिंग ही कुछ और होती है।
1: सही कहा अनमोल, आज के टाइम पर हर व्यक्ति एक्टिव है। वो अपने अधिकार, अपने कर्तव्य के लिए जागरूक भी है। किसी कार्य को करने से क्या फायदा क्या नुकसान है, सरकार की कौन कौन सी योजनाएं अस्तित्व में है और इससे जुड़कर किस तरह हम अपने भविष्य

0: को उज्जवल बना सकते हैं और रोजगार भी किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, इन सभी बातों का ध्यान आज हमारे देश का नागरिक रखता है।
1: आज वो खुद की सहायता के लिए पूरी तरह तैयार है। बिना किसी सहारे के स्वसहायता से व्यक्ति स्वावलंबन की ओर बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, आज की जागरूक होती महिलाएं भी घर के साथ साथ बाहर निकलकर अपने कौशल को बढ़ाना चाहती हैं।
0: और दोस्तों, इस राह में सरकार के कई प्रयास जैसे रोजगार योजना, कौशल विकास, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और स्टार्टअप इंडिया जैसे कई सारे विकास के कार्य भी जारी हैं।
1: तो दोस्तों, अगर आप भी खुद की मदद करना चाहते हैं और अपने साथ दूसरों को जागरूक कर परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, तो स्वावलंबी बनने की ओर कदम बढ़ाना बहुत जरूरी है।
0: और उम्मीद है आप सभी इस क्षेत्र में एक छोटा सा प्रयास जरूर करेंगे। इन्हीं बातों के साथ आइए अब सुनते हैं आतिफ असलम की आवाज में बजरंगी भाईजान फिल्म से इस गीत को।

0: दोस्तों बातें तो अभी और भी हो सकती थी, लेकिन घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अलविदा कहने का समय हो चला है।
1: लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे कार्यक्रम की शुरुआत में पूछे गए प्रश्न के उत्तर को। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न था, भारत का राष्ट्रीय जलचर जीव कौन सा है? इसका उत्तर है गंगा डॉल्फिन।
0: और साथियों आज का हमारा दूसरा प्रश्न था, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? जिसका उत्तर है प्रशांत महासागर। साथियों उम्मीद है आज की ये शाम, हमारी बातें और संगीत के ये पल आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान जरूर छोड़ गए होंगे।
1: जिंदगी की भागदौड़ में कभी कभी कुछ पल अपने लिए चुरा लेना भी जरूरी होता है, और हमें खुशी है कि आपने उन पलों में युववाणी को शामिल किया।
0: साथियों हम फिर लौटेंगे नई शाम, नई धुन और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप सुन रहे थे आपकी रेडियो दोस्त अनमोल द्विवेदी
1: और आपकी रेडियो दोस्त अंकिता को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युववाणी। आज की युववाणी आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

0: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन 3 पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान।
6: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गा।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत, और फिल्म संगीत में हम सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अमर अकबर एंथोनी का एक गीत। आवाज़ें हैं किशोर कुमार, मुकेश, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और साथियों की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म नसीब से, आवाज़ हैं लता मंगेशकर और साथियों की, आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, सुनते हैं ये गीत।

फिल्म नसीब के बाद अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म क्रांति का। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, नितिन मुकेश और साथियों की। संतोष आनंद ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, सुनिए।

आखिर में अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म शान का एक गीत। आवाज़ें किशोर कुमार, आशा भोसले, उषा मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी हैं। अनिल बख्शी ने इस गाने को लिखा है, आर डी बर्मन का संगीत।

इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

0: कवि हेमंत देवलेकर।
1: आकाशवाणी की दुनिया जहां संगीत है, नाटक हैं, समाचार हैं, समाज सुधार और शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रसारण है। हम सब रचनाकार, अलग अलग क्षेत्रों के सर्जक आकाशवाणी के प्रति हार्दिक आभारी हैं कि आकाशवाणी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपनी अपनी आवाज़ें आकाशवाणी के माध्यम से देश में समाज जनों के बीच में प्रसारित कर पाएं। आकाशवाणी आकाश की तरह अजर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन का दौरा करेंगे। सूरत में वे सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण विमान ईंधन ATF की कीमतों में आई असामान्य बढ़ोतरी का बोझ यात्रियों पर न पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता देने का फैसला किया है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज स्वास्थ्य और आयुष विभाग को 19 जून के विश्व सिकल सेल दिवस के मद्देनजर उन्मूलन गतिविधियां तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में स्क्रीनिंग, दवा वितरण और जनजागरूकता कार्यक्रमों की विशेष निगरानी जरूरी है। इंदौर में 6 जून को भारत लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन व्यापार एवं निवेश फोरम 2026 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में होने वाले इस फोरम में लैटिन अमेरिका के 15 देशों के राजदूत और 350 से अधिक उद्योग प्रतिनिधि शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने प्रदेश के निमाड़ अंचल को बड़ी सौगात देते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 347B के उन्नयन और चौड़ीकरण को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर 4,415 करोड़ रुपये खर्च होंगे और इससे बैतूल, खंडवा, खरगोन और बड़वानी जिलों में सड़क की स्थिति सुधरेगी। और प्री मानसून बारिश और आंधी तूफान को देखते हुए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने सभी मैदानी अधिकारियों और कर्मचारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम

0: जगता है।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीन बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं,
2: है काम आदमी का दूसरे के काम आना।
0: क्या बात है काम आदमी का दूसरे के काम आना। धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार को भेजने के लिए। अब आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम ममना सरीला जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा जी का।
2: और अगला संदेश मिला है महाराष्ट्र से प्रथमेश हेड़के जी का। उन्होंने लिखा है, मुझे NCERT का उमंग प्रोग्राम बहुत पसंद है, हर दिन, हर बार, हर रोज सुनता हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: इलाहाबाद से रेशमा नाज डोम और बेबी अंसारी डोम।
0: आप सबको हमारा आभार संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, संदेश जरूर भेजिए क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। साथियों, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रमुख मरुस्थलों की। कल हमारी चर्चा का विषय था गोभी का शीत मरुस्थल।
2: इन कड़ियों में हमने विशेष रूप से ये जाना था कि मरुस्थल या मरुभूम कहलाने के लिए किसी क्षेत्र में रेत ही रेत हो या बहुत गर्मी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
0: जी हाँ श्रोताओं, मरुभूमि या मरुस्थल की परिभाषा उस क्षेत्र की निर्जलता या अति अल्प वृष्टि पर निर्भर करती है। तो विमलेश जी, आज हम किस शीत मरुस्थल की चर्चा करने जा रहे हैं? मेरे विचार से क्यों ना भारत के शीत मरुस्थलों की चर्चा की जाए।
2: अजीत जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं सोच रही थी कि आज हम भारत के शीत मरुस्थल की चर्चा करते हैं जो लद्दाख में है। आपको याद है NCERT की ओर से मीडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम भी वहां जा चुके हैं।
0: जी हाँ, हमने उस इलाके को देखा भी है।
2: जी बिल्कुल, मुझे भी याद है। तो श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे लद्दाख के शीत मरुस्थल की। इसे कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। जैसा कि हमने सुना था, मरुस्थल का अर्थ सिर्फ रेत नहीं होता, बल्कि वो जगह मरुस्थल कहलाती है जहां वर्षा बहुत कम होती है। तो श्रोताओ, आपको बता दें कि लद्दाख में सालाना वर्षा बहुत कम होती है, लगभग 50 से 100 मिलीमीटर के लगभग।
0: लेकिन विमलेश जी, ऐसा क्यों है? मेरा मतलब है कि वहाँ यानी लद्दाख में इतनी कम वर्षा क्यों होती है?
2: अजीत जी, इसका कारण यह है कि लद्दाख का क्षेत्र हिमालय पर्वत की रेन शेडो यानी वर्षा छाया में स्थित है। हिमालय पर्वत यहाँ आने वाली वर्षा को रोकता है। अजीत जी, मुझे तो ये भी याद है कि वहाँ जाने पर हमें शुरू में सांस लेने में भी थोड़ी कठिनाई हुई थी।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वहाँ की हवा अधिक ऊंचाई के कारण बहुत पतली होती है और ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलती है। इसलिए पहली बार जाने वालों को कुछ विशेष सलाह दी जाती है। बताइए क्या सलाह दी जाती है?
2: जी, वहाँ पहली बार जाने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि तेज न चलें, ज्यादा ऊंची चढ़ाई न चढ़ें और भारी शारीरिक काम जैसे ट्रैकिंग वगैरह एकदम से उत्साह में आकर न करें।
0: जी,
2: पहले वहाँ के वातावरण में अपने शरीर को अनुकूलित करें और फिर धीरे धीरे सामान्य गति में आए।
0: जी बिल्कुल सही। श्रोताओं, यहाँ का तापमान सर्दियों में -20 डिग्री सेल्सियस या इससे भी नीचे जा सकता है।
2: जी,
0: लेकिन गर्मियों के दिनों में धूप तेज लगती है।
2: जी,
0: लद्दाख का अर्थ ही है ऊंचे दर्रों वाली भूमि। श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि ये दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल मार्गों में गिना जाता है।
2: अब बात करते हैं यहाँ पाए जाने वाले जीवों की, खास तौर से यहाँ याक, स्नो लेपर्ड, हिमालयी भेड़िया और नीली भेड़ पाई जाती है। और हाँ, लद्दाख की झीलें पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, जैसे पेंगोंग झील। श्रोताओं, और अब जानते हैं यहाँ के लोग कैसे रहते हैं और क्या खाते हैं। अजीत जी, अब आपकी बारी।
0: तो विमलेश जी, यहाँ के मुख्य भोजन है स्कू और थुकपा।
2: जी,
0: ये गेहूं के आटे से बना होता है। पावा भी यहाँ बहुत लोकप्रिय है, जो जौ के सत्तू से बनाया जाता है। यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई खुबानी से बनती है। यहाँ लोग अपने घर मोटी मिट्टी और पत्थरों से बनाते हैं ताकि घरों में गर्मी बनी रहे। जहाँ तक खेती की बात है, यहाँ विशेष रूप से जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं।
2: अजीत जी, एक और रोचक बात श्रोताओं से साझा करना चाहती हूँ।
0: हाँ जरूर कीजिए।
2: वो ये कि लद्दाख में एक पेड़ बहुत अधिक पाया जाता है जिसे विलो कहा जाता है।
0: जी,
2: इनकी लकड़ी हल्की, मजबूत और लचीली होती है। इसी लकड़ी से क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। दुनिया भर में इस लकड़ी की बहुत मांग है। इसलिए लद्दाख में इसकी खेती

0: भी की जाती है।
1: जी, ये तो आपने बड़ी रोचक जानकारी हमें दी। विमलेश जी, आपको याद है जब हम वहां गए थे मैग्नेटिक हिल,
0: बिल्कुल याद है।
1: जहां यदि वाहनों को बंद भी कर दिया जाए या न्यूट्रल गियर में भी रखा जाए तो
0: जी
1: वो खिसकने लगते हैं,
0: बिल्कुल
1: क्या रहस्य है इसका, जरा श्रोताओं को बताइए।
0: जी जी, ये जगह लेह कारगिल मार्ग पर स्थित है। हमने भी तो इसका अनुभव किया था।
1: हाँ,
0: लोग अक्सर सोचते हैं कि वहां पहाड़ियों में कोई चुंबकीय शक्ति है जो वाहनों को खींचती है, लेकिन सच्चाई ये है कि वैज्ञानिकों के अनुसार वास्तव में वाहन वहां अपने आप नहीं चलते। ये एक दृष्टि भ्रम या ऑप्टिकल इल्यूजन है।
1: जी श्रोताओ, दरअसल बात यह है कि वहाँ की सड़क की बनावट ही ऐसी है कि जो सड़क हल्की ढलान पर नीचे जा रही होती है वो आंखों को ऊपर ऊपर जाती दिखाई पड़ती है।
0: जी
1: इसी दृष्टि भ्रम से ऐसा लगता है कि वाहन अपने आप सड़क रहे हैं। एक बात और आपको बता दें कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर गुरुद्वारा पत्थर साहिब है, जो एक दर्शनीय स्थान है।
0: श्रोताओं, लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। यहाँ बौद्ध संस्कृति, मठ, प्रार्थना चक्र और रंग बिरंगे खूबसूरत झंडे देखे जा सकते हैं। और तो और, सिंधु घाटी की सभ्यता को पालने वाली सिंधु नदी लद्दाख से ही गुजरती है। श्रोताओं, इस नदी को देखना भी हमारे लिए कभी न भूलने वाला अनुभव था।
1: जी, सुंदर नीला आकाश, रात में असंख्य चमकते हुए तारे,
0: जी
1: रेत, बर्फ, सूखे पहाड़, झीलें और वहां की आध्यात्मिक संस्कृति। जब हम इन सारी बातों को देखते हैं तो हमें क्या लगता है विमलेश जी?
0: कि भारत के शीत मरुस्थल लद्दाख में हमें एक साथ मिलते हैं।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत के प्रसिद्ध शीत मरुस्थल लद्दाख की।
0: जी
1: आशा है कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो आप सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न है।
0: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर, और आप हमारे ईमेल पर भी अपने संदेश या प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता नोट कर लीजिए। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और श्रोताओ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर यानी ऑडियो बुक्स सुनना चाहते हैं तो इन्हें आप NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल या दीक्षा पर सुन सकते हैं। दीक्षा पोर्टल पर आप पढ़ पाएंगे ढेर सारी शैक्षिक सामग्री और सुन व देख पाएंगे हमारे ऑडियो वीडियो कार्यक्रम भी।
0: जी, और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
1: भारत अर्थात इंडिया।
0: कक्षा 6 की समाज की अध्ययन की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से भारत देश के विभिन्न नामों के बारे में बताया गया है और उन नामों के पीछे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भी सप्रसंग विवरण किया गया है।
2: भारत अर्थात इंडिया।
3: दोस्तों, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम, जहां हो रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट मैच। अनुष्का भीड़ की बातों को ध्यान से सुन रही थी। वो सोचने लगी,
4: हमारे देश के इतने सारे नाम, कोई इंडिया कहता है, कोई भारत कहता है, तो कोई हिंदुस्तान भी कहता है।
3: दोस्तों, अनुष्का का कौतूहल स्वाभाविक था। क्या आपने भी कभी इस प्रकार से सोचा? अगर सोचा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सोचा तो चलिए आज इस मनोरंजक और रोचक सच्चाई से पर्दा उठाते हैं। अनुष्का अपने स्कूल गई, लेकिन ये बात उसके दिमाग से नहीं गई थी। उसने ये बात अपनी सहेली जिशा से साझा की। तय ये हुआ कि वो अपने हिस्ट्री के अध्यापक से बात करेंगे। वो बात ध्यान से

0: सुनते हैं और बोलने का मौका भी देते हैं।
1: सर, क्या हम अंदर आ सकते हैं?
2: कौन? ओ, अनुष्का, जिशा,
1: सर।
2: तुम दोनों आ जाओ अंदर आ जाओ शाबाश।
3: क्या अभी आपके पास समय होगा?
2: तुम लोग बिल्कुल ठीक समय पर आए हो।
1: सर, उस दिन हम क्रिकेट मैच देखने गए थे।
2: हाँ, वो बांग्लादेश और भारत का?
3: जी वही।
1: सर, उस दिन लोग वहाँ कुछ बातें कर रहे थे।
2: अच्छा।
3: सर, कोई कहता था कि इंडिया जीतेगा, तो कोई कहता कि भारत ने मैच जीता।
2: और
1: कोई कहता था कि हिंदुस्तान की टीम ने कमाल कर दिया। और

0: पुस्तक में देश का नाम भारतवर्ष भी तो है।
1: बिल्कुल,
2: लेकिन सर दूसरे देशों के इतने सारे नाम तो नहीं होते। बांग्लादेश, पाकिस्तान, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों के नाम तो एक ही है। फिर हमारे देश के इतने ढेर सारे नाम क्यों हैं?
1: बहुत अच्छा सवाल। देखो बच्चों, आज का भारत एक आधुनिक राष्ट्र है, लेकिन ये आज से 500, 2000 या 5000 वर्ष पहले ऐसा नहीं था।
0: 5000 वर्ष पहले?
1: हाँ, इसके लिए हमें हजारों वर्ष पहले के इतिहास में जाना होगा।
2: जी, लेकिन हमें हजारों वर्ष पहले की जानकारी कैसे मिलेगी?
1: अच्छा ये बताओ, तुमने ऋग्वेद का नाम सुना है?
0: जी सर, सुना तो है। ये एक प्राचीन ग्रंथ है।
1: प्राचीन ही नहीं, ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है।
0: अच्छा।
1: इस ग्रंथ से हमें अपने देश के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल जाती हैं।
0: जैसे?
1: जैसे इस ग्रंथ के अनुसार हमारे देश के उत्तर पश्चिम भाग में एक वैदिक समूह निवास करता था।
0: वैदिक समूह?
1: हाँ, वैदिक समूह। इस समूह के ऋषियों और मुनियों द्वारा वैदिक ऋचाओं की रचना हुई। इस वैदिक समूह का नाम भरत था।
0: भरत?
2: भरत नाम तो हमने सुना है।
1: अच्छा, भाई भरत नाम से बाद में बहुत से राजाओं को भी जाना गया।
0: ओह, भरत। अच्छा, तो ये बात है।
1: हाँ।
0: तो क्या इसी भरत नाम से देश का नाम भारत पड़ा?
1: बिल्कुल ठीक कहा तुमने अनुष्का, इसी नाम से देश का नाम भारत पड़ा, जिसे बाद में भारतवर्ष भी कहा जाने लगा। ये वैदिक समूह भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में यानी सिंधु घाटी क्षेत्र में निवास करता था। ऋग्वेद में इस भाग को सप्त सैंधव अर्थात सात नदियों की भूमि कहा गया है।
0: अच्छा।
1: हाँ, सैंधव शब्द सिंधु शब्द से आया है।
2: मैंने पढ़ा था कि सिंधु का मतलब होता है नदी।
1: बिल्कुल सही, इसका तात्पर्य सिंधु नदी से ही है। अच्छा, ये तो बात हुई ऋग्वेद की। अब सिंधु के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात।
0: वो क्या सर?
1: वो ये कि छठी शताब्दी पूर्व एक फारसी सम्राट ने सैनिक अभियान किया और सिंधु नदी के इलाके पर नियंत्रण कर लिया। अपने लेखों और शिलालेखों में फारसियों ने भारत के सिंधु इलाके को हिद, हिदू या हिंदू कहा है।
2: फारसियों ने सिंधु को हिद, हिदू या हिंदू कहा है,
0: भला ऐसा क्यों?
1: ऐसा इसलिए क्योंकि फारसी भाषा में सिंधु शब्द का रूपांतरण हिंदू होता है।
0: अच्छा।
1: हाँ, क्योंकि स अक्षर उनकी भाषा में है ही नहीं।
0: है ही नहीं?
1: हाँ।
0: ऐसा कैसे?
1: ऐसा है, स की जगह उन्होंने ह का प्रयोग किया।
0: ओ।
1: हाँ, हिंदू। तो सिंधु रूपांतरित होकर बन गया
0: हिंदू।
1: शाबाश। लेकिन यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि हिंदू शब्द से उनका तात्पर्य हिंदू धर्म से नहीं था।
0: तो फिर?
1: हिंदू शब्द एक भौगोलिक शब्द था जो सिंधु नदी या सिंधु की घाटी क्षेत्र को संदर्भित करता था।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी जानकारी है। सर, ऋग्वेद के अलावा क्या कुछ और भी ग्रंथ है जिनसे हमें और अधिक जानकारी मिल सकती है?
1: बिल्कुल जिशा, कुछ और हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं जैसे विष्णु पुराण और महाभारत। अच्छा जरा ये बताओ, मैंने अब तक कितने ग्रंथों के नाम तुम्हें बताए?
2: आपने अब तक 3 ग्रंथों के नाम बताए।
1: अच्छा, तो कौन कौन से हैं वो 3 ग्रंथ?
0: सर, ऋग्वेद,
2: महाभारत,
0: विष्णु पुराण।
1: अरे वाह, क्या बात है, कमाल कर दिया तुमने, बहुत अच्छे। विष्णु पुराण में बच्चों हम पढ़ते हैं वो देश जो समुद्र के उत्तर में और हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है, उसे भारत कहते हैं।
0: अच्छा।
1: हाँ।
2: सर, आपने प्राचीन ग्रंथ महाभारत का भी नाम लिया था।
1: बिल्कुल।
2: क्या उससे भी हमारे देश की जानकारी मिलती है?
1: देखो, पहली बात तो ये है कि महाभारत ग्रंथ के नाम में ही भारत का नाम है।
0: अच्छा।
1: हाँ, महाभारत में पहली बार भारत को भारत वर्ष भी कहा गया है।
0: अच्छा।
1: हाँ, और साथ साथ इस ग्रंथ में एक और नाम है भारत का।
0: वो क्या?
1: बताता हूँ बच्चों, वो है जम्बूद्वीप।
2: जम्बूद्वीप?
1: हाँ, जम्बूद्वीप। महाभारत में भारत वर्ष को जम्बूद्वीप भी कहा गया है।
0: जम्बूद्वीप?
1: हाँ,
0: ये नाम

0: देखो, जम्बू का अर्थ होता है जामुन। इसे जम्बुल भी कहते हैं। जामुन का पेड़ उन दिनों इस भूभाग पर बहुत अधिक पाया जाता था, इसलिए भारत को जम्बू द्वीप भी कहा गया।
1: अच्छा।
0: हाँ, सम्राट अशोक ने भी अपने शिलालेखों में संपूर्ण भारत का वर्णन जम्बू द्वीप के नाम से भी किया है।
1: सर, मैंने सुना है कि उन दिनों हमारा देश बहुत बड़ा था।
0: बिल्कुल ठीक तुमने सुना है। उन दिनों भारत में आज के बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी सम्मिलित थे।
1: इतने सारे देश?
0: हाँ, और शायद इसी कारण से भारत को महाभारत भी कहा गया है।
1: अच्छा। सर, अभी तक हमने जाना कि हमारे देश को भारत, भारतवर्ष और जम्बूद्वीप कहा जाता था। सर, इंडिया और हिंदुस्तान भी तो हमारे देश को कहा जाता है।
0: बिल्कुल।
1: ये नाम कैसे आए?
0: लगता है सब कुछ जानकारी मानोगे। चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इंडिया नाम कैसे आया। देखो बच्चों, इंडिया नाम इंडस से आया है। तुम्हें याद है ना कि सिंधु नदी को अंग्रेजी में इंडस रिवर कहते हैं?
1: जी सर।
0: हाँ, तो अभी अभी मैंने बताया था कि भारत में फारसी लोग आए, लेकिन आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व यूनानियों का भी हमारे देश में आगमन हुआ।
1: अच्छा।
0: हाँ, यूनानी जब हमारे देश में आए तो उन्होंने सबसे पहले सिंधु नदी को पार किया।
1: ओ।
0: और सिंधु नदी को इंडोई या इंडिके कहा।
1: ऐसा क्यों कहा उन्होंने?
0: उनके साथ भी भाषा की समस्या थी। हाँ।
1: तो इसका मतलब है कि यूनानियों के लिए सिंधु कहना मुश्किल था और इंडो या इंडिके कहना ज्यादा आसान था।
0: हाँ। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अच्छा, तुम्हें एक बात और बता दूं। और वो ये कि प्राचीन यूनानी लोग भारत में रहने वालों को इंडोई कहते थे।
1: अच्छा। इंडोई यानी इंडिया के रहने वाले इंडोई कहे जाते थे।
0: बिल्कुल।
1: तो इस तरह से नाम पड़ा इंडिया।
0: हाँ?
1: और हिंदुस्तान?
0: देखो, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग तुर्क और मुगलों ने किया। वो जिन इलाकों से आए थे उन इलाकों के नाम के आगे प्रायः स्थान शब्द हुआ करता था, जैसे
1: अफगानिस्तान।
0: बिल्कुल सही।
1: बलूचिस्तान।
0: सही।
1: तुर्किस्तान।
0: बिल्कुल। और उज्बेकिस्तान वगैरह वगैरह। और बच्चों, शायद स्थान का अर्थ स्थान से रहा हो।
1: सर, अब हमें हमारे सवालों का हल मिल गया।
0: अच्छा?
1: हाँ, बिल्कुल।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: सर, आपने हमें बड़ी मजेदार जानकारी दी।
0: हमारे
1: देश के इतने सारे नाम हैं, लेकिन हमें किस नाम का प्रयोग करना चाहिए?
0: बड़ा अच्छा प्रश्न किया तुमने। देखो, हमारे संविधान की अंग्रेजी प्रति के पहले अनुच्छेद में ही ये स्पष्ट करते हुए लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत। हिंदी में कहा गया है, इंडिया जो कि भारत है।
1: अच्छा।
0: हाँ। अच्छा, ये बताओ, तुम्हें संविधान की प्रस्तावना याद है?
1: जी, प्रस्तावना की शुरुआत में कहा गया है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया।
0: बहुत अच्छे। तो हमारे देश का नाम हुआ भारत, जिसे इंडिया भी कहते हैं। समझ में आया?
1: जी सर।
0: शाबाश। अच्छा, आज जो भी तुमने जाना है, समझा है, उस जानकारी को तुम कल क्लास में सबके साथ बांटोगे।
1: सबके साथ?
0: हाँ, सबके साथ।
2: तो साथियों, कैसी लगी आपको अपने प्यारे देश भारत अर्थात इंडिया के विषय में ये जानकारी? अच्छी लगी ना? इतने सारे नाम शायद ही किसी और देश के रहे होंगे। आज हमने जाना कि हमारे देश का नाम है भारत अर्थात इंडिया।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत अर्थात इंडिया, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पहली उड़ान।
4: इस कार्यक्रम में विश्व इतिहास में मनुष्य की पहली उड़ान के बारे में रोचक जानकारी दी गई है, और बताया गया है कि कैसे गर्म गैस के गुब्बारे पर मनुष्य ने पहली बार उड़ान भरी। इस घटना ने भविष्य में आधुनिक वायुयानों के आविष्कार का मार्ग प्रशस्त किया।
5: आपने आकाश में उड़ते पक्षियों को तो देखा ही होगा, देखा है ना? पक्षियों को उड़ते हुए देखकर आकाश में उड़ने की लालसा मनुष्य के मन में शुरू से ही रही।

0: और आज मनुष्य रॉकेट, अंतरिक्ष यानों और हवाई जहाज की सहायता से आकाश में उड़ सकता है। मगर ये कैसे संभव हुआ, आइए आज हम आपको बताते हैं। आज से लगभग 200 वर्ष पहले की बात है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में दो भाई रहते थे, जोसेफ और स्टीफन, जिनकी आयु होगी लगभग 15-16 वर्ष। दोनों भाई अक्सर आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखते और हवा में उड़ने की लालसा किया करते। एक दिन की बात है, दोनों भाई घर में खाना खा रहे थे।
1: भाई वाह, आज तो मजा आ गया। कितना बढ़िया खाना बनाया है माँ ने, क्यों जोसेफ?
2: हाँ स्टीफन भाई, हमारी माँ से बढ़िया खाना भला और कोई बना भी सकता है?
3: तुम लोग खाना खाओगे या बातें ही करते रहोगे? जल्दी से खा लो बेटा, मुझे अभी कबूतरों को भी दाना पानी देना है।
2: अच्छा माँ, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ?
3: हाँ पूछो बेटा।
2: क्या हम भी कबूतर की तरह नहीं उड़ सकते?
3: बेटा भला हम कैसे उड़ सकते हैं, हमारे पास पंख थोड़े ही हैं।
1: लेकिन माँ,
3: ओफो, तुमसे बातें करते करते मैं तो भूल ही गई कि चूल्हा भी बुझ रहा है। ठहरो जरा, जोसेफ
2: जी
3: जरा वो फूकनी तो देना बेटा।
2: अच्छा माँ, ये लो माँ।
3: ला।
1: ओ, कितना धुआं भर गया है कमरे में, जल्दी करो माँ।
2: मिल गया, हाँ मिल गया मुझे। अरे मिल गया मुझे।
3: क्या मिल गया
2: मुझे? माँ माँ ओ माँ,
3: क्या मिल गया? क्या मिल गया?
2: मुझे मिल गया।
1: क्या मिल गया भाई, क्या मिल गया?
3: सब क्या हो गया तुम्हें बेटा, बताओ तो सही, क्या हो गया है?
2: माँ मुझे उड़ने का तरीका मिल गया। हाँ उड़ने का तरीका मिल गया।
1: जोसेफ होश में आओ भाई, क्या हुआ?
2: स्टीफन स्टीफन, माँ माँ माँ, सर इस कमरे के धुएं को देखो। हाँ इस कमरे के धुएं को देखो। इसमें इसमें क्या उड़ रहा है बताओ? बताओ उसमें क्या उड़ रहा है?
3: कुछ भी तो नहीं।
1: कुछ भी तो नहीं है।
2: ओ नहीं स्टीफन नहीं, ध्यान से देखो। हाँ ध्यान से देखो, क्या धुएं के साथ राख नहीं उड़ रही है? उड़ रही है ना?
1: वो तो है मगर
2: इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ स्टीफन कि धुआं राख को उड़ा सकता है।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ, कहते तो तुम ठीक हो।
2: तो फिर क्यों ना हम कुछ प्रयोग करें, हैं?
1: हाँ।
2: मुझे तो लगता है कि अगर हम किसी हल्के लिफाफे में धुआं भर दें तो वो जरूर ऊपर की ओर उड़ेगा।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ, ये बात तो है। चलो चलो जोसेफ, चलो देखते हैं।
2: ठीक है, आओ मेरे साथ।
3: अरे सुनो, अरे खाना तो खाते जाओ। स्टीफन जोसेफ सुनो तो।
0: और फिर क्या था, दोनों भाइयों ने झटपट कई प्रयोग कर डाले। इसमें कई बार उन्हें असफलता हाथ लगी, लेकिन वो पूरी लगन से अपने काम में जुटे रहे। और एक दिन सचमुच धुएं से भरा लिफाफा छत से जा टकराया। इस प्रयोग की सफलता से उत्साहित होकर दोनों भाई और अधिक परिश्रम से अपने प्रयोग करते रहे। उनकी योजना थी एक बड़ा गुब्बारा बनाकर उसे उड़ाने की, और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने एक ऐसा गुब्बारा बना ही लिया। सन 1783 सितंबर का महीना था। दोनों भाई एक बड़े मैदान में अपने बनाए हुए गुब्बारे के पास खड़े थे। इस करतब को देखने के लिए मैदान में भारी भीड़ जमा थी।
4: अरे अरे गुब्बारा गुब्बारा कहाँ उड़ेगा?
5: क्या बात है दोस्त, यहाँ तो बड़ी भीड़ है।
6: हाँ भाई भीड़ तो है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लड़के मजाक ही कर रहे हैं। अरे यार भला हवा में कोई चीज उड़ सकती है क्या?
5: अभी पता चल जाएगा, पर यहाँ तो इतनी भीड़ है कि इस तरफ से कुछ भी साफ साफ नहीं दिख पाएगा।
6: तो चलो उस तरफ चलते हैं, उधर भीड़ जरा कम है।
5: हाँ, आओ, आओ, यही ठीक रहेगा। आओ चलो।
7: ना जाने क्या करेंगे,
6: रहने दीजिए, भला कोई चीज उड़ नहीं सकती।

0: 真系啦，你真系你坐嘅
1: 啊，好难嘅。我哋卫生局啦，收电啲阿记喺边啲，
0: 卫生局阿记啊，吓，
2: 我哋阿记阿记，यहाँ से हम सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं।
1: अरे अरे वो देखो वो सामने एक बड़ा सा गुब्बारा रस्सी से बंधा हुआ है।
2: अरे ये क्या, जोसेफ और स्टीफन गुब्बारे से एक टोकरे को बांध रहे हैं। हाँ? वो देखो टोकरे में, हाँ
1: अरे अरे, अरे, अरे टोकरे में तो एक भेड़ है। अरे वो देखो एक मुर्गा और साथ में एक बत्तख भी है।
2: हाँ, क्या ये भी गुब्बारे के साथ उड़ेंगे?
1: दोस्त लगता तो कुछ ऐसा ही है। अरे अरे अरे अरे वो देखो, हाँ? स्टीफन हाथ से कुछ इशारा कर रहा है
2: और, हाँ? और एक आदमी गुब्बारे की रस्सी खोल रहा है।
1: अरे अरे अरे वो गुब्बारा तो ऊपर की ओर जा रहा है। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है,
3: मान गए भाई, मान गए, कमाल कर दिया बच्चों ने।
1: ये क्या हो रहा है, कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है? अरे देखो, हाँ? वो गुब्बारा तो वाकई ऊपर जा रहा है।
2: हाँ? अरे सचमुच उड़ रहा है, सचमुच।
1: अरे वाह, अरे यार ये तो कमाल हो गया,
2: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो देखो गुब्बारा बहुत ऊंचा चला गया।
1: अरे शाबाश, अरे इन दोनों लड़कों ने कमाल दिखा दिया, आज तक ऐसा नहीं हुआ।
2: वो देखो वो देखो गुब्बारा नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा, उधर उधर जा रहा है। देखो पेड़ों की तरफ,
1: अरे
2: देखो,
1: अरे अरे वो पेड़ों की तरफ जा रहा है। अरे बाप रे, अरे वो पेड़ से जाकर टकरा गया, अरे गिर गया, अरे गिर गया, अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे
4: हाँ साथियों, ये थी जोसेफ और स्टीफन की पहली उड़ान। क्या आप जानते हैं ये गुब्बारा लगभग 8 मिनट तक हवा में उड़ा और बाद में एक पेड़ से जा टकराया। और हाँ, जिस रस्सी से टोकरा बंधा हुआ था वो रस्सी भी टूट गई और सभी यात्री धड़ाम से नीचे आ गिरे। सिर्फ मुर्गे का एक पंख टूटा, शेष यात्री यानी भेड़ और बतख बिल्कुल ठीक थे। ठीक इसके 2 महीने बाद यानी नवंबर सन 1783 में जोसेफ और स्टीफन ने एक गुब्बारा और उड़ाया जिस पर खुद उन्होंने उड़ान भरी। ये गुब्बारा लगभग 900 मीटर ऊंचा उड़ा और इसने 2 किलोमीटर की यात्रा की। इस तरह शुरू हुआ उड्डयन का युग। लेकिन गुब्बारे में उड़ना बहुत जोखिम का काम था। तेज हवा गुब्बारे को किसी भी दिशा में उड़ा ले जाती थी। कई बार मनुष्य को इस उड़ान में अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता था। लेकिन मनुष्य ने हार नहीं मानी और वो इस दिशा में खोज करता रहा। आखिर में अमेरिका के 2 भाइयों विल्बर और ओलिवर राइट, जिन्हें हम राइट ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने हवाई जहाज का एक ऐसा नमूना विकसित किया जो पेट्रोल से उड़ सकता था। और इस तरह साकार हुआ मनुष्य का हवा में उड़ने का स्वप्न।
5: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पहली उड़ान। और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत,
6: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। मीडियम वेव डीटीएच ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत, और फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म एक दूजे के लिए का एक गीत। आवाज़ें हैं अनूप जलोटा और लता मंगेशकर की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। सुनिए ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म शान से। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी, आर डी बर्मन और साथियों की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है और सुनते हैं ये गीत।

ये गाना था फिल्म शान का, और अब अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हम का। आवाज़ें हैं मोहम्मद अजीज़ और शोभा जोशी की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, सुनिए ये गीत।

ये गाना था फिल्म हम का, और अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आशा का। इसमें आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी और साथियों ने, आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। सुनिए ये गीत।

इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और मैं हूं आपके साथ जावेद खान।

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए देश पर मिटे।

0: मीडिया वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन और साथ ही वेब्स ओटीटी पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7 बजने को हैं और ये समय होता है हिंदी में समाचार का, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं। तो कृपया हिंदी में समाचार के लिए प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए नए अवसरों पर विचार किया। विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। उन्होंने बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: श्री टंडन ने कहा कि दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने भारत वेनेजुएला संबंधों को और मजबूत बनाने तथा विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री

क्रिकेट ने कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत किया और इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। साथ ही वह लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ साथ स्थानीय संस्कृति को भी बढ़ावा दे रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए फील्ड कमांडरों के वित्तीय अधिकार को दोगुना करने को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन उपायों से 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद में सुविधा होगी। मंत्रालय ने कहा कि वित्तीय शक्तियों में वृद्धि 100% तक की गई है और कुछ मामलों में यह दोगुने से भी अधिक है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत केवल एक नए वाहन की शुरुआत नहीं है, बल्कि भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी। इससे देश को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है और गैर जीवाश्म ईंधन उत्पादन क्षमता के मामले में विश्व के शीर्ष उत्पादकों में से एक बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस योजना की सफलता का मुख्य कारण यह है कि देश के नागरिकों ने यह समझ लिया है कि वे अपनी छतों पर बिजली खुद पैदा कर सकते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में आज विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ, जो वैश्विक खेलों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योगासन का खेलों में बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि यह प्रतियोगिता योग को खेल की दुनिया में नई पहचान दिलाने का काम करेगी। श्री मोदी ने कहा कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ी चैंपियन हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। रात 8 बजे आप सुनेंगे समाचार सेवा विभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष स्वास्थ्य सेवा। 8:15 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत। 8:30 पर आप सुन सकते हैं पीएम मोदी के 12 साल सोमनाथ अमृत महोत्सव भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण। ये कार्यक्रम आरएनयू भोपाल की प्रस्तुति होगी। 10 बजे हम आपको सुनवाएंगे प्रदेश लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। और अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:21 पर आप सुनेंगे किसान भाइयों का कार्यक्रम ग्राम सभा, यानी कि ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किया जाएगा। ये थे आकाशवाणी भोपाल और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले आज के शेष मुख्य कार्यक्रम। और अब हम नज़र डालते हैं कल यानी 5 जून शुक्रवार को प्रसारित होने वाले आकाशवाणी मध्य प्रदेश और आकाशवाणी भोपाल के मुख्य कार्यक्रमों पर। फोन इन कार्यक्रम फोन करेगी सुने आप सुन सकते हैं।

11 बजे। 12 बजे का समय है आपकी फरमाइश का। 12:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक सिसकियां की 10वीं कड़ी। 1 बजे महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम, 1:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम और युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युवाणी रोज की तरह 5:02 पर होगा और ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति होंगे। हम आपको एक बार फिर याद दिला दें, 1 बजे महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम, 1:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम और युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युवाणी रोज की तरह 5:02 पर होगा और ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है। फिल्म संगीत का आप आनंद ले सकते हैं 2:00, 2:00, शाम 5:33 पर, 6:30 पर, रात 8:35 पर और रात 9:45 पर। आपकी फरमाइश कार्यक्रम होगा कल दोपहर 2:30 पर और रात 10:00। 6:00 हम आपको सुनवाएंगे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। रात 8:00 आप सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष स्वास्थ्य सेवा। रात 9:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम खेल जगत, इसमें आप सुनेंगे वार्ता फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026, वार्ताकार होंगे नवेद इशरत। 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला के अंतर्गत पंडित रामस्वरूप रतौनिया का तबला वादन, ताल होगी रूपक ताल। और ये तो थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम और अब एक नज़र डालते हैं आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले कल के मुख्य कार्यक्रमों पर। सुबह 7:20 पर कार्यक्रम नमस्कार भोपाल, 8:30 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। 9:15 पर गांधी चर्चा, 10:00 आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी, 10:05 पर आप सुन सकते हैं महिला कार्यक्रम महिला संसार और 10:30 पर सुबह आप सुनेंगे पंडित रामस्वरूप रतौनिया का तबला वादन जिसमें आप सुनेंगे ताल पंचम और साथ ही सवारी ताल। और कल शाम 7:21 पर किसान भाइयों का कार्यक्रम ग्राम सभा होगा। ये थे आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले आज और कल के मुख्य कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 7:10 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात कर ऊर्जा, व्यापार और निवेश पर चर्चा की। प्रधानमंत्री कल गुजरात और दमन दौरे पर 21,500 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने विश्व सिकल सेल दिवस के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग को जनजातीय क्षेत्रों में उन्मूलन गतिविधियां तेज करने के निर्देश दिए और इंदौर में 6 जून को भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार एवं निवेश फोरम का होगा आयोजन। अब समाचार विस्तार से।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात की। बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना रहा, क्योंकि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक भंडार मौजूद है। इसके अलावा खनन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग में भी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन क्षेत्र का दौरा करेंगे। सूरत में वे सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा श्री मोदी शाम को दमन में करीब 3,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिनमें स्वास्थ्य, पर्यटन और हवाई संपर्क से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण विमान ईंधन ATF की कीमतों में आई असामान्य बढ़ोतरी का बोझ यात्रियों पर न पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता देने का फैसला किया है। वहीं पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी आश्वस्त किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार मौजूद है और कालाबाजारी रोकने के लिए निगरानी जारी है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

0: दमन क्षेत्र का दौरा करेंगे। सूरत में वे सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा श्री मोदी शाम को दमन में करीब 3,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिनमें स्वास्थ्य, पर्यटन और हवाई संपर्क से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण विमान ईंधन ATF की कीमतों में आई असामान्य बढ़ोतरी का बोझ यात्रियों पर न पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता देने का फैसला किया है। वहीं पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी आश्वस्त किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार मौजूद है और कालाबाजारी रोकने के लिए निगरानी जारी है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने इस बारे में जानकारी दी।
1: I will request all the citizens.
2: मैं सभी नागरिकों से अपील करती हूं कि वे ऊर्जा की बचत करें और उसका सोच समझकर उपयोग करें। सरकार पेट्रोल, डीजल और LPG के पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, इसलिए घबराहट में इनकी जरूरत से अधिक खरीदारी या बुकिंग ना करें। साथ ही लोगों से अनुरोध है कि वे PNG, इंडक्शन स्टोव और इलेक्ट्रिक कुकटॉप जैसे वैकल्पिक ईंधनों और संसाधन का भी उपयोग करें।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत किया और इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने वाली संस्था के रूप में कार्य कर रही है। सत्र में भाग लेने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सभी नेता एक मजबूत और अधिक समृद्ध पूर्वोत्तर के निर्माण के अपने संकल्प में एकजुट हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज स्वास्थ्य और आयुष विभाग को 19 जून के विश्व सिकलसेल दिवस के मद्देनजर उन्मूलन गतिविधियां तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में स्क्रीनिंग, दवा वितरण और जागरूकता कार्यक्रमों की विशेष निगरानी जरूरी है। राज्यपाल ने प्रत्येक मंगलवार को आंगनवाड़ी केंद्रों में माताओं और बच्चों को सिकल सेल के कारण, लक्षण और उपचार की जानकारी देने के लिए भी कहा है। इंदौर में 6 जून को भारत लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन व्यापार एवं निवेश फोरम 2026 का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में होने वाले इस फोरम में लैटिन अमेरिका देशों के 15 देशों के राजदूत और 350 से अधिक उद्योग प्रतिनिधि शामिल होंगे। फार्मा, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और IT क्षेत्र में निवेश और व्यापार के अवसरों पर भी चर्चा होगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन को शामिल कर लिया है। कल उन्होंने मुख्यमंत्री निवास से स्टेट हैंगर तक पहली बार EV से यात्रा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचत के संदेश को अमल में लाते हुए वे अब भोपाल में नियमित रूप से इलेक्ट्रिक वाहन से ही चलेंगे। उन्होंने कहा कि EV से वायु प्रदूषण नहीं होता, रखरखाव सस्ता है और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ भविष्य की दिशा में एक अहम कदम है। केंद्र सरकार ने प्रदेश के निमाड़ अंचल को बड़ी सौगात देते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 347B के उन्नयन और चौड़ीकरण को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर 4,415 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इससे बैतूल, खंडवा, खरगोन और बड़वानी जिलों में सड़क की स्थिति सुधरेगी। खरगोन के लिए 16 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड बाईपास भी बनेगा। जनजाति कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ने स्थानांतरण नीति 2026-27 के तहत स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इच्छुक कर्मचारी 3 से 8 जून तक EHRMS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अधिकतम 15 कार्यालयों का चयन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने के मौके पर बैतूल जिले की शुभ्रा खाड़े ने अपनी प्रेरक कहानी साझा की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि
4: मैं 7 साल से आजीविका मिशन में जुड़ी हूँ। वर्तमान में मैं बैंक सखी का कार्य कर रही हूँ। तो मेरी आर्थिक स्थिति खराब थी, अब आजीविका मिशन में जुड़ने के कारण मैंने जो जनरल स्टोर की दुकान खोली है उससे मुझे अच्छी इनकम हो जाती है, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक है।
0: मध्य प्रदेश में पहली बार नगरीय निकायों और पंचायतों की मतदाता सूची पुनरीक्षण में मतदाताओं को नाम जोड़ने, कटवाने और संशोधन के लिए ऑनलाइन सुविधा दी गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि अब तक 8,300

मतदाता आवेदकों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है। अंतिम फोटोयुक्त मतदाता सूची 18 जून को प्रकाशित की जाएगी। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए स्वामित्व अधिकार अभिलेखों के पंजीयन पर लगने वाली स्टैम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क को पूरी तरह से माफ कर दिया है। 3,800 करोड़ रुपये का यह पूरा खर्च अब राज्य सरकार उठाएगी। प्रदेश में अब तक 68 लाख से अधिक अधिकार अभिलेख तैयार किए जा चुके हैं और लगभग 98% ड्रोन सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है। उज्जैन की 12वीं कक्षा की छात्रा दीक्षा कुशवाहा ने मात्र 22 मिनट में चने की दाल के 12 दानों पर 12 ज्योतिर्लिंगों की पेंटिंग बनाकर वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स पर अपना नाम दर्ज कराया है। 8 मिलीमीटर आकार की इन दालों पर सूक्ष्म कला का यह कमाल दीक्षा ने महज 1 साल की मेहनत से हासिल किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस उपलब्धि पर दीक्षा को बधाई दी है। भोपाल के रविन्द्र भवन में आज शाम मशहूर शायर और पद्मश्री प्राप्त बशीर बद्र को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के इस याद बशीर बद्र कार्यक्रम में कई बड़े शायर, गायक और फिल्म निर्माता बशीर बद्र की विरासत पर अपने विचार रख रहे हैं। थोड़ी देर में अखिल भारतीय मुशायरा शुरू होगा, जिसमें देशभर के नामचीन शायर अपना कलाम पेश करेंगे। प्री मानसून बारिश और आंधी तूफान को देखते हुए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने सभी मैदानी अधिकारियों और कर्मचारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। कंपनी के प्रबंध संचालक ऋषि गर्ग ने कहा कि किसी भी आपात स्थिति में उपभोक्ता कॉल सेंटर नंबर 1912 पर संपर्क कर सकते हैं। कंपनी ने उपभोक्ताओं को भी सावधान किया है कि मानसून में हवा में नमी के कारण करंट लगने का खतरा बढ़ जाता है और घर में मजबूत अर्थिंग का होना जरूरी है। अब रुक करते हैं मौसम की खबर का। प्रदेश में मानसून से पहले ही प्री मानसून गतिविधियां जोर पकड़ चुकी हैं। बीते 24 घंटों में 29 जिलों में आंधी बारिश और कुछ जगह ओले भी गिरे हैं। श्योपुर में सबसे अधिक 1.25 इंच बारिश दर्ज की गई और कई इलाकों में जलभराव हो गया। राजधानी भोपाल में रात भर बारिश का दौर चला है और सुबह भी बूंदाबांदी होती रही। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के 20 जून के बाद प्रदेश में दाखिल होने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश के नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने आज नीमच के ग्राम खेमला में निर्माणाधीन ग्रीनको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के कार्यों का निरीक्षण किया। बैतूल में विद्युत संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए संपर्क अभियान के तहत खंडारा में शिविर का आयोजन किया जाएगा। खंडवा शासकीय आईटीआई में आयोजित युवा संगम रोजगार मेले में 265 युवाओं का विभिन्न कंपनियों के लिए चयन किया गया। नर्मदापुरम जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत पचमढ़ी के छावनी झील पर सफाई और जल संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी के द्वारा आज किरण बाल गृह कटनी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आगरमालवा जिले के सुसनेर में 5 से 21 जून तक विशेष अभियान चलाया जाएगा और अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम के तहत राजगढ़ के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में बीकॉम इन बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड इंश्योरेंस में ऑनलाइन प्रवेश प्रारंभ हो गए हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम मीडियम वेव डीटीएच ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी।

ग्राम लक्ष्मी सुनबे बारिस। हमारी सभी ग्राम लक्ष्मीन को रीता बहन की दो हाथ जोड़ के राम राम। बिन्ना हरो, अबे कहूँ कहूँ बौछारें जरूर पड़ी हैं, लेकिन गर्मी के मारे ना घर में चैन है और ना बाहर। और तो और कछु खाए को मन भी नहीं होते, और कभों कछु चटर पटर खा लें सो डर लगत है कि कहूँ पेट गड़बड़ ना हो जाए। सो काहे ना बिन्ना हरे, हम ई बात पे चर्चा करें कि गर्मी में हमाओ खान पान कैसो होवे चाहिए, जिसे कि हमारी सेहत और हमारा मन दो प्रसन्न रहें। सो हम आप और उन्हें बता देते हैं कि गर्मी में हमेशा हल्को, जल्दी पचवे वारो और पानी

से भरपूर भोजन करने चाहिए। डिहाइड्रेशन से बचवे के लाने मौसमी फल, हरी सब्जी, दही, छाछ और नींबू पानी जैसे प्राकृतिक पेय पदार्थों को सेवन करने चाहिए। कैसे के ऐसो करवे से शरीर अंदर से तो ठंडो होते और ऊर्जावान भी बनो रहे थे। ठंडी तासीर वाले खाद्य पदार्थ जैसे खीरा, ककड़ी, टमाटर अपने सलाद में जरूर शामिल करें। संग में दही को सेवन भी करने चाहिए, कैसे कि जो पेट के लाने बहुत ही फायदेमंद होते। भारी और मसालेदार भोजन की जगह पतली दाल, हरी सब्जी जैसे लौकी, तोरई, भिंडी और कम घी वाली रोटी खाने चाहिए। बिना रोजे तो बात हो गई कि हमें का खाने चाहिए, अब हमें का नहीं खाने चाहिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। हमें नहीं खाने चाहिए वे हैं जंक फूड, तले भुने खाद्य पदार्थ, चाय, कॉफ़ी और बहुत ज़्यादा मीठे डिब्बा बंद कोल्ड ड्रिंक्स को सेवन नहीं करने चाहिए। बिना हरो अच्छो आहार करवे से अच्छे विचार आउत हैं। जैसे आप और गर्मी के हिसाब से अपने खान पान को राखियो और स्वस्थ रहियो। और अब सुन लेते हैं देवी गीत, ये गाओ है बसंत कटारे ने।

0: बुंदेली समाचार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात करी। बातचीत को मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करवो रहो कैसे के वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारण में से एक है। इसके अलावा खनन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उपयोग से भी सहयोग बढ़ाए पे चर्चा भई है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण विमान ईंधन ATF की कीमतन में आई असामान्य बढ़ोतरी को बोझ यात्रियों पे ना पड़े इके लाने केंद्र सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता देवे को फैसला करो है। उतने पेट्रोल मंत्रालय ने आश्वस्त करो है कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस को पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और कालाबाजारी रोकवे के लाने निगरानी जारी है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज स्वास्थ्य और आयुष विभाग को 19 जून के विश्व सिकल सेल दिवस के मद्देनजर उन्मूलन गतिविधियों को तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कही है कि जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र में स्क्रीनिंग, दवा वितरण और जागरूकता कार्यक्रमों की विशेष निगरानी जरूरी है। उन्होंने कही है कि हर मंगलवार को आंगनबाड़ी केंद्र में माताओं और बच्चों को सिकल सेल के कारण, लक्षण और उपचार की जानकारी देवो जरूरी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल कर लो है।

कालून ने मुख्यमंत्री निवास से स्टेंट हैंगर तक पहली बार ईवी से यात्रा करी। मुख्यमंत्री ने कही है कि वे ईंधन बचत के संदेश को अमल में लात भए अब वे भोपाल में नियमित रूप से इलेक्ट्रिक वाहन से ही चल हैं। जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ने स्थानांतरण नीति 2026-27 के तहत स्वैच्छिक स्थानांतरण के लाने दिशा निर्देश जारी करे हैं। इच्छुक कर्मचारी 3 से लेके 8 जून तक ई एचआरएमएस पोर्टल पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अधिकतम 15 कार्यालयों को चयन कर सकते हैं। आवेदन में गलत जानकारी दे पे संबंधित कर्मचारी और सत्यापन अधिकारी दोनों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है। प्री मानसून बारिश और आंधी तूफान को देखत भए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने सभी मैदानी अधिकारियों और कर्मचारी को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण नागरिकों को बड़ी राहत देत भय स्वामित्व अधिकार और अभिलेख के पंजीयन पे लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क पूरी तरह से माफ कर दो है। 3,800 करोड़ रुपए को जो पूरा खर्च राज्य सरकार उठा है। प्रदेश में अब तक 68 लाख से अधिक अधिकार अभिलेख तैयार करे जा चुके हैं और लगभग 98% ड्रोन सर्वेक्षण कार्य भी पूरे हो गए हैं। उज्जैन की 12वीं कक्षा की छात्रा दीक्षा कुशवाहा ने मात्र 22 मिनट में चने की दाल के 12 दानन पे 12 ज्योतिर्लिंग की पेंटिंग बना के वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लो है। 8 मिलीमीटर आकार के इन दाल पे सूक्ष्म कला को जो कमाल दीक्षा ने महज 1 साल की मेहनत में हासिल करो है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ई उपलब्धि पे दीक्षा को बधाई दी है। प्रदेश में मानसून से पहला ही प्री मानसून गतिविधियों ने जोर पकड़ लो है। बीते 24 घंटों में 29 जिलन में आंधी बारिश और कछु जगहों पे ओले गिरे हैं। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के 20 जून के बाद प्रदेश में दाखिल होने की संभावना जताई जा रही है। बुंदेली समाचार समाप्त भए।

0: बुंदेली समाचार।
1: बिनहरो गर्मी की छुट्टी बच्चन के लाने आराम के संगे संगे कछु नव काम सीखवे को सुनहरो अवसर होत है। इस समय को सदुपयोग करवे के लाने कला, क्राफ्ट और बागवानी जैसे रचनात्मक कार्य, शौक, स्विमिंग या साइकिलिंग जैसे शारीरिक खेल या रोचक किताब पढ़वे में लगा सकत हैं। बिनहरो पहला आज के समय में जैसे मोबाइल कंप्यूटर नहीं होते थे, लेकिन मोड़ा मोड़ी हरे कॉमिक्स पढ़ के अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताऊ थे और कॉमिक्स और किताब पढ़ने से उनकी हिंदी में सुधार आउ थो और साथ में मात्राएं भी वे आसानी से सही कर सकते थे। बिनहरो जो काम बच्चे स्कूल के समय में नहीं सीख सकते हैं वे काम गर्मी की छुट्टी में आराम से कर सकते हैं। हम इन्हें नए कौशल सीख भी दे सकते हैं जैसे संगीत, चित्रकला, कोडिंग, रोबोटिक्स या ऑनलाइन कोर्स जैसे सीखवे के लाने प्रोत्साहित कर सकते हैं। रचनात्मक और शारीरिक गतिविधियां बच्चन के मानसिक विकास और शारीरिक विकास को बढ़ाते हैं। बच्चों को घर के छोटे छोटे काम जैसे पौधे लगाना, अपने कमरे की सफाई करना या रसोई में मदद कर वो सिखा सकते हैं। ये सबके द्वारा हम उनके समय को सदुपयोग कर वो सिखा सकते हैं। और अब सुन लेते हैं लोकगीत, जे एक रसिया गीत है, जे गाँव है मंजू श्रीवास्तव ने।

0: बिना हरो गर्मी के समय में गर्मी से बचवे के लाने हमारी चिकित्सा पद्धतियन में कई उपाय बताए हैं। आज की भेंट वार्ता में कछु ए से संबंधित जानकारी आपके लाने हैं। विषय है गर्मी के मौसम में स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद की सलाह, और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रितु पांडेय। भेंट करी हैं हमारी पूनम सराओगी बहन ने, सो सुनत है जे भेंट वार्ता।
1: गर्मी में स्वस्थ रहना सबसे बड़ी समस्या होती है। कैसे स्वस्थ रहें, हमारा आहार कैसा हो, वैसे तो आयुर्वेद में स्वस्थ रहने के लिए कई सारे उपाय बताए गए हैं, लेकिन फिर भी इससे लेकर बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है कि क्या करें और कैसे करें जिससे हम इस मौसम में यानी कि गर्मी के मौसम में हाइड्रेट रह सके। और इसी को लेकर और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर रितु पांडे को। आप रानी दुलैया कॉलेज भोपाल के प्रसूति विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार।
2: नमस्कार
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ आयुर्वेद में गर्मी के मौसम में किस प्रकार से आहार को वर्गीकृत किया गया है।
2: सबसे पहले तो हम गर्मी के मौसम की बात करते हैं। हमारे आयुर्वेद में मौसम को दो विभागों में डिवाइड किया गया है। पहला एक आदान काल, दूसरा विसर्ग काल। जो हमारा विंटर सीजन है, ठंड का मौसम होता है, उसको विसर्ग काल बोला जाता है। उस समय चंद्रमा का बल ज्यादा रहता है और वो हमें बल देता है, इसलिए हम उस समय कुछ भी खाते हैं विंटर्स में तो वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है।
1: जी।
2: सेकंड है हमारा आदान काल, जो इस समय चल रहा है। इस समय सूर्य का बल बहुत तेज होता है।
1: जी जी।
2: और सूर्य का बल तेज होने की वजह से हमें कई सारी पाचन संबंधी बीमारियां होने लग जाती हैं, स्किन डिजीजेस होती हैं। ठीक है, आदान काल कहलाता है। इसमें ये बताया गया है कि सूर्य हमारा जो जलीय अंश है उसको अपनी तरफ खींचने लग जाता है, तो हमारा बल कम

0: जी डॉक्टर साहब, ये बताइए शरीर में गर्मी में किस तरह के दोष पैदा हो सकते हैं?
1: गर्मी क्योंकि सूर्य का प्रकोप बढ़ता है तो हमारे शरीर में भी तीन तरीके के दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त और कफ। गर्मियों में पित्त दोष की प्रधानता होती है और पित्त दोष की प्रधानता की वजह से जो उसके लक्षण दिखते हैं सामान्य लोगों में, उसमें जैसे किसी को हाइपर एसिडिटी होती है, किसी को लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, किसी को स्किन एलर्जी शुरू होती है, आंखों में जलन, यूरिन में जलन, ये सारी समस्याएं उनमें दिखने लग जाती है।
0: जी, गर्मियों में आयुर्वेद के अनुसार कौन से खाद्य पदार्थों का हमें सेवन करना चाहिए?
1: आयुर्वेद में ऋतुचर्या करके एक बहुत वास्ट डिस्क्रिप्शन मिलता है, उसमें हर ऋतु के हिसाब से क्या खाना है, क्या पहनना है, किस तरीके का व्यवहार करना है, इन सब का वर्णन किया गया है। तो अगर हम सामान्य उससे बात करें तो ऐसे पदार्थों का सेवन करना चाहिए जिनमें जल की मात्रा ज्यादा है, जैसे तक्र का यूज करना चाहिए इस समय हमें, फल जो भी मौसमी मिल रहे हैं, जैसे हमें तरबूज भी मिलता है इस समय, आम भी थोड़ी क्वांटिटी में खा सकते हैं, इनका सेवन करना चाहिए, खीरा खा सकते हैं, और सबसे अच्छा फल इस समय मिलता है हमें बेल का। ठीक है, बेल को जिस फॉर्म में हम यूज करें वो बहुत अच्छा रहता है, वो पित्त का शमन करता है, पित्त को शांत करके रखता है।
0: यानी कि हमें जूसी फल या रसीले फल इस मौसम में खाने चाहिए। क्या कुछ विशेष शीतल पेय आयुर्वेद द्वारा सुझाए गए हैं इस मौसम में पीने के लिए?
1: बिल्कुल, मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलूंगी। पुराने जमाने में जब हम गांव में कहीं जाते थे तो गांव में हमें वेलकम ड्रिंक, ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स नहीं मिलती थी। क्या करते थे, सत्तू दे दिया जाता था। तो वो सत्तू आज के समय में, आज के परिपेक्ष में बहुत इम्पोर्टेंट है, वो कम्प्लीट हमें रिहाइड्रेट कर देता है, एनर्जी देता है। तो सत्तू का यूज करना चाहिए, सौंफ का पानी यूज कर सकते हैं, अगर किसी को बहुत ज्यादा गर्मी की परेशानी है तो धनिये का पानी भी यूज कर सकते हैं कि रात भर भिगो के रखें और सुबह उसको पी सकते हैं, जिससे उनको शांति मिलती है। दूध ले सकते हैं, गाय का दूध शीतल होता है और बहुत अच्छा तर्पक होता है।
0: जी डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इस मौसम में किन खाद्य पदार्थों का हमें परहेज करना चाहिए?
1: इस मौसम में ऐसे सारे पदार्थ जो कि पित्त को बढ़ाते हैं, जैसे बासी खाना नहीं खाना चाहिए, तली हुई चीजें नहीं खानी चाहिए, ठीक है, और मैदे की बनी चीजें, बेसन की बनी चीजें, इनको थोड़ा सा इनसे परहेज करना चाहिए।
0: जी, इस मौसम में योग या प्राणायाम का क्या महत्व हो सकता है?
1: योग और प्राणायाम का महत्व तो ऐसा रहेगा कि हम एक तो सुबह उठेंगे, ठीक है, सुबह उठने के साथ में फ्रेश एयर को जब हम अपने अंदर लेंगे तो वैसे ही सारे दोष बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से हमारी लंग कैपेसिटी बढ़ती है। गर्मियों में अगर हमने प्रातःकाल ये कर लिया तो पूरे दिन के लिए हमें एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि हमने सुबह बड़ी अच्छी ऑक्सीजन अपने अंदर ले ली है। और जरूर करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में तो नहीं बोलूंगी मैं, पर 6 बजे के बाद किसी को सोना नहीं चाहिए गर्मी में, उस समय उठकर सबको प्राणायाम करना चाहिए। कुछ विशेष आसन है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं करना चाहिए कि बल क्षय हो, जैसे ताड़ासन है, त्रिकोणासन है, शीतली शीतकारी प्राणायाम है, इनका प्रयोग करना चाहिए, इनका अभ्यास करना चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, बड़ी ही अच्छी जानकारी आप हमारे श्रोताओं को दे रही है। अच्छा, ये बताइए गर्मी के मौसम में हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए?
1: हमारी दिनचर्या बिल्कुल संतुलित होनी चाहिए, जैसे प्रातः काल जल पीना चाहिए, बहुत ज्यादा शीतल नहीं, बहुत ज्यादा उष्ण नहीं, सुखोष्ण जल का सेवन करना चाहिए, वो भी विषैले तत्वों को शरीर से बाहर निकालता है। उसके बाद में योग और आसन, योगासन करना चाहिए, हमें प्राणायाम करने चाहिए। फिर हमारा जो ब्रेकफास्ट है उसमें ऐसी चीजें होनी चाहिए कि जो शीतल रहे, फ्रूट चाट वगैरह बना के ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं इस समय। दिन का खाना भी लघु और सुपाच्य होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बहुत देर में है, जैसे यहाँ पे बाटी बहुत कल्चर में आती है कि हाँ बाटियां खाते हैं, इस समय उसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए।
0: जी, यानी कि ऐसा खाना खाएं, ऐसा भोजन करें जो जल्दी पच जाए। जी, आयुर्वेद में दोपहर के समय में क्या सुझाव दिए गए हैं जब गर्मी चरम पे होती है?
1: दोपहर के समय आयुर्वेद में बताया गया है कि आपको घर से बाहर बहुत ज्यादा नहीं निकलना, तीखी धूप का सेवन नहीं करना, ठीक है, और अपने आप को उस समय हाइड्रेट करके रखना है। पहले के जमाने में एसी कूलर नहीं होता था तो ये बताया गया है कि आपको छायादार पेड़ जो भी रहते हैं उनके नीचे विश्राम करना चाहिए।
0: जी, गर्मी से राहत पाने के लिए कुछ सरल घरेलू उपाय बता दीजिए।
1: जैसे कि हम चंदन का यूज कर सकते हैं, चंदन का लेप सिर पे लगा सकते हैं, हथेलियों पे लगा सकते हैं, महिलाएं हैं मेहंदी का यूज कर सकती हैं, उससे शरीर में ठंडक बनी रहती है, गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: जी,
1: और फलों में अगर हम बात करें जो कि कॉमन रहता है, आंवला, आंवला बहुत अच्छा पित्त शामक है, गर्मी को भी शीत कम करता है, तो आंवले का प्रयोग करना चाहिए, एलोवेरा का प्रयोग करना चाहिए और त्रिफला का प्रयोग पूरे करना चाहिए।
0: एक बड़ी समस्या हमारे श्रोताओं के सामने आती है कि जब हम धूप में जाते हैं तो हमारी स्किन बर्न हो जाती है, तो त्वचा को धूप

0: से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं?
1: सबसे पहले तो जब धूप एकदम तीक्ष्ण है उस समय हमें धूप में निकलना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर निकल रहे हैं तो अम्ब्रेला का यूज करना चाहिए, अपने शरीर को कवर करके निकलना चाहिए। वो दो फायदे देगा, एक तो हीट स्ट्रोक से बचाएगा, दूसरा हमारे स्किन को भी जलने से बचाएगा, और फिर हम सनस्क्रीन का यूज भी कर सकते हैं। अगर उससे किसी को परेशानी है तो एलोवेरा लगा के वो बाहर जा सकते हैं, वो सनस्क्रीन के बराबर प्रोटेक्शन देगा।
0: जी, गर्मी में थकान, लू, डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं हो जाती हैं, इनसे बचने के लिए आयुर्वेद क्या सुझाव देता है?
1: इनसे बचने के लिए आयुर्वेद में कुछ ड्रिंक्स बताए गए हैं, जैसे एक षडंग पानी है, उसमें हमें धनिया वगैरह ये सब मिलाकर 6 ड्रग्स मिलाकर उसको रात भर भिगो के रखना होता है और सुबह उसको पान करना होता है। वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरफ से पित्त का शमन करेगा, दाह का शमन करेगा। पहली चीज ये, सत्तू का प्रयोग तो मैंने पहले ही बताया कि हमें करना चाहिए, बिल्व का प्रयोग करना चाहिए, इनसे गर्मियों में राहत मिलेगी।
0: जी, बच्चों और बुजुर्गों को इस मौसम में स्वस्थ रखने के लिए खास सलाह दी जाती है, तो आप हमारे श्रोताओं को क्या सलाह देना चाहेंगे?
1: बच्चों को जंक फूड नहीं देना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं देनी चाहिए, नहीं पीना चाहिए बच्चों को।
0: जी
1: ठीक है, आजकल बच्चे मैगी और ये सब खाने की जिद करते हैं, ये सारी चीजें पित्त और कफ को बढ़ाती हैं, जो कि हेल्दी नहीं है।
0: जी,
1: और जो बुजुर्ग हैं उन्हें भी तेज धूप में नहीं जाना चाहिए, जहाँ जब भी अगर धूप में निकलना हो रहा है तो उन्हें अपना प्रॉपर कवर करके सबको सबके लिए ही लगभग ये सब। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी बोल नहीं पाते, माँ के दूध पे ही निर्भर रहते हैं, ऐसे बच्चों को भी अगर ऐसा लग रहा है कि उनका पेशाब कम आ रहा है तो 1-2 चम्मच पानी दिया जा सकता है, ORS वगैरह दिया जा सकता है।
0: जी, गर्मी में यात्रा के दौरान आयुर्वेदिक सुरक्षा उपाय क्या हो सकते हैं?
1: वही है कि हमें हाइड्रेशन मेंटेन करके रखना है, बार बार पानी पीते रहना है, बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं जाना है, दोपहर के समय यात्रा से बचना चाहिए, बहुत जरूरी हो तो ऐसे छोटे छोटे डिस्टेंस के बाद में रुकना चाहिए और अपने आप को थोड़ा सा ठंडक दिलानी चाहिए कि पानी पीते रहें, नारियल पानी पीते रहें, गन्ने का जूस पीते रहें बीच में पूरे यात्रा के समय।
0: जी, तो ऐसे हमारे श्रोता खुद को हाइड्रेट रख सकते हैं,
1: बिल्कुल
0: पानी की कमी को पूरा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को अपनी तरफ से क्या सलाह देना चाहेंगे इस गर्मी के मौसम में स्वस्थ रहने के लिए?
1: गर्मी में मेरी तरफ से आप सबसे यही निवेदन है कि अपना तो आपने ध्यान रखना है, स्वस्थ रहने के लिए पानी पीते रहना है, हल्का खाना खाना है, दिन में थोड़ा सा आराम करना है, सोना नहीं है, बस दिन में आराम करना है, सुबह जल्दी उठना है, थोड़ा सा हल्का व्यायाम करते रहना है आपने। और दूसरा, इस समय क्योंकि बहुत गर्मी है हम तो पानी की व्यवस्था करते हैं, पक्षियों के लिए पानी जरूर रखना है।
0: बिल्कुल, तो ये थी डॉक्टर ऋतु पांडे, आप हमें जानकारी दे रही थी गर्मी के मौसम में स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद की सलाह। तो डॉक्टर साहब, आपने इतनी बढ़िया जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: बिना हरो आपने सुनी जे भेंट वार्ता, जी को विषय हतो गर्मी के मौसम में स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद की सलाह। जानकारी देवे वाली विशेषज्ञ हती डॉक्टर ऋतु पांडे और भेंट करी हती पूनम सरावगी बहन ने। और अब सुन लेते हैं एक लोकगीत, जे एक लोक भजन है, जे गाव है बलराम रैकवार ने।

नहरो ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम होए और कछु व्यंजन विधि ना होए तो ऐसा तो हो नहीं सकत है। सो अबे हम आपके लाने लाए हैं गुड़ वालो मैंगो जैम। बाजार में आम भरपूर मात्रा में आ रहे हैं, हम तरह तरह के व्यंजन भी बना सकते हैं और साल भर के लाने हम वह स्टोर भी कर सकते हैं। आज हम आपके संगे आम से बनोभव मैंगो जैम की रेसिपी शेयर करें। सो आप और जल्दी से ये बनाई की विधि नोट कर लो। ये बनाई के लाने हमें चाहने हैं 6 मध्यम आकार के पके भाई आम, आम भी अच्छे गूदे वाले होने चाहिए, 1 कप गुड़ को पाउडर या कद्दूकस करो भाव गुड़, नींबू को रस 1 चम्मच बड़ो। सबसे पहला आम को छील के ई के टुकड़ा काट लें और बिना पानी मिलाए ये चिकनो पीस कर छान लें। ई में गुड़ पाउडर मिला के फिर से पीस लें। अब गैस पे पैन गरम करके आम के पेस्ट को धीमी आंच पे पका लें। जब जो पेस्ट पकत पकत पारदर्शी हो जाए सो उमे नींबू को रस मिला के अच्छी तरह से पका लें। गुड़ को ज़्यादा देर तक ना पकाइयो, नहीं तो जैम कड़क हो जाए। ठंड होए पे एयर टाइट बर्तन में भर के फ्रिज में स्टोर कर दियो। 4 से लेके 6 महीना तक आराम से हम ई जैम को उपयोग कर सकते हैं। और अब सुन लेते हैं लोकगीत, जे एक 12 मासी गीत है, जे गाँव है पन्ना लाल कुंजेले और साथियों।

बिनहरो जैसे कि आप उरे जानत हो, वर्तमान समय में पर्यावरण बचावो और इको संरक्षण करवो हमारी आवश्यक जिम्मेदारी हो गई है। यही से संबंधित मिशन लाइफ भारत के नेतृत्व में शुरू करो गो है, एक वैश्विक आंदोलन है जिको उद्देश्य लोगों में पर्यावरण के संरक्षण के लाने जागरूकता बढ़ावो और दैनिक जीवन में छोटी छोटी आदतें बदलकर पृथ्वी को बचावो है। ई मिशन को एक और उद्देश्य है जो कि जन जन तक पहुंचावो है, उपयोग करो और फेंको की मानसिकता से बाहर निकल के चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर ले जावो है। जो भी इस्तेमाल करो वह फिर से उपयोग लायक बनाओ और व्यर्थ मत गवाओ। ये मिशन 3R सिद्धांत पे आधारित है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। खेत बचाओ अभियान भी एक ही अंतर्गत आउट है जो कि 1 जून से लेके 30 जून तक चलाओ जे है। और अब कल के कार्यक्रम भी आप उन को बता देते हैं। बिनहरो काल सवेरे कृषि चर्चा में सुनियो विषय पपीते की वैज्ञानिक खेती। वार्ताकार हुए डॉक्टर प्रिया अवस्थी और संजय के बिरिया में सुनियो आपकी पाती आपके फिल्मी गीत ग्राम सभा कार्यक्रम में। और अब सुना थे एक लोकगीत, ये गाँव है प्रभा साहू ने।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, और लीजिए अब प्रस्तुत है समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष स्वास्थ्य सेवा। ये कार्यक्रम
1: आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल, नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वी के पॉल और बिलासपुर एम्स के अध्यक्ष डॉक्टर एन के अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं प्रियंका अरोड़ा।
2: दिस इज आकाशवाणी। इन द स्पेशल सीरीज नाउ वी ब्रिंग यू अ डिस्कशन ऑन 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर। पार्टिसिपेंट्स आर डॉक्टर वी के पॉल, फॉर्मर मेंबर नीति आयोग, एंड डॉक्टर एन के अरोड़ा, प्रेसिडेंट एम्स बिलासपुर। मॉडरेटर इज प्रियंका अरोड़ा।
3: स्वस्थ नागरिक किसी भी सशक्त और समृद्ध राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम के मंत्र को आत्मसात करते हुए भारत ने पिछले 12 वर्ष में स्वास्थ्य क्षेत्र में परिवर्तन की एक नई गाथा लिखी है। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, गरीबों के लिए उपचार की बेहतर व्यवस्था, आधुनिक अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों का विकास तथा डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का बढ़ता दायरा, इन सभी ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई दिशा और नई गति दी है। यही परिवर्तन आज करोड़ों भारतीयों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का आधार बन रहे हैं। मोदी सरकार के 12 साल नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति विषय पर आज हम स्वास्थ्य क्षेत्र में उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वी के पॉल और एम्स बिलासपुर के अध्यक्ष डॉक्टर एन के अरोड़ा। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
4: बहुत बहुत नमस्कार।
3: तो जी, कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर पॉल, आपसे जानना चाहती हूँ कि पिछले 12 वर्ष में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में आए सबसे बड़े संरचनात्मक बदलावों को आप किस रूप में देखते हैं?
4: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विजनरी लीडरशिप में स्वास्थ्य क्षेत्र में अनप्रेसिडेंटेड, जो कभी नहीं हुए, वो रिफॉर्म्स हुए और वो बदलाव आया है। इसके बहुत सारी डायमेंशंस हैं, लेकिन मैं सर्वोपरि अगर उन डायमेंशंस को देखूं तो जो एक्सेस टू हेल्थ केयर बढ़ी है
3: जी,
4: और जो हेल्थ केयर की वजह से जो बोझ पड़ता खास नागरिक पे, खासकर जो गरीब परिवार है, इन दोनों में सुधार लाने के लिए, एक्सेस को बढ़ाने के लिए और जो आर्थिक बोझ स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने के लिए पड़ता था, उनमें जो कमी आई है, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी उपलब्धि वो है। इसको हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की नज़र से भी देख सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं मिले, और जब स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं तो व्यक्ति की और सिटीजन जेब के ऊपर बोझ नहीं पड़ना चाहिए। ये जो हुआ है, वो जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और उसी के साथ साथ उसी बजट स्पीच में 2018 के बजट के अंतर्गत आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, अब उनको हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहते हैं
3: जी,
4: जो हमारी प्राइमरी केयर की व्यवस्था बनी और जो सेकेंडरी और टर्शरी केयर में हेल्थ सर्विसेज को पहुंचाने के लिए जो एक मैकेनिज्म बना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत, मैं समझता हूँ कि इन दोनों को जोड़ के देखूँ तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ जो सुधार और जो जन जन तक इसका फायदा हुआ है, उसको मैं सबसे बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ।
3: जी हाँ, यह भूतपूर्व पहल रही है और आज भी विश्व में सबसे बड़ी योजना के रूप में मानी जाती है। डॉक्टर अरोड़ा, अगर आपसे जानना चाहें तो जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पिछले 12 वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि आप किसे मानते हैं?
5: जैसे कि प्रोफेसर पॉल ने कहा कि एक आम व्यक्ति के जेब से आज से 12 वर्ष पहले अगर वो 100 रुपए डॉक्टर की इलाज पे या अपनी

0: किसी बीमारी के इलाज पे खर्च करता था तो उस समय 60 रुपए उसकी जेब से जाते थे, आज ये घट करके 3540 रुपए के बीच में आ गया है। ये एक आमूल परिवर्तन है। और दूसरी चीज जो डॉक्टर पॉल कह रहे थे, जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनको इस स्ट्रैटेजिक तरीके से रणनीतिक तौर पर इनको बनाया गया है कि किसी भी व्यक्ति को इस देश में 2 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलने की जरूरत नहीं होती। यानी कि 2 किलोमीटर का जो दायरा है, रेडियस है, उस बीच में एक आयुष्मान मंदिर है। तो
1: जी
0: जिसको हम एक्सेस है या स्वास्थ्य सेवाओं की प्रति जो उसकी प्राप्ति के लिए उसकी जो सुविधा है वो उसमें बहुत जबरदस्त परिवर्तन किया गया है। दूसरा एक चीज और है, मेड इन इंडिया या भारत में निर्मित जो एक पूरा का पूरा अभियान चला है उसके अंतर्गत कई चीजें हुई हैं। और मैं यहाँ पर टीकाकरण क्षेत्र का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा कि अब इस देश में 100% जो टीके हैं वो भारतीय दिए जाते हैं। कोविड
1: जी
0: के दौरान जो 228 करोड़ टीके दिए गए वो पूरे के पूरे भारत में निर्मित थे, और उसकी वजह से जो देश में बचाव हुआ उसके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। एक और चीज करी गई है और जो मेड इन इंडिया की तरफ बहुत बड़ा कदम रहा है कि अनुसंधान में बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिससे कि हमारी इलाज करने की तरीके, इलाज करने के लिए दवाइयाँ, इलाज करने के लिए वैक्सीन और किसी भी बीमारी के लिए अब भारत में सुविधाएं उपलब्ध कराना, उसमें आशातीत वृद्धि हुई है। आज से 12 साल पहले लोगों को बाहर जाना पड़ता था, अब किसी भी इलाज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, चाहे आप किसी भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से आए।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर अरोड़ा, और हम जब आयुष्मान भारत की बात करते हैं, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना मानी जाती है, तो ये किस तरह से स्वास्थ्य क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हुई है डॉक्टर पॉल?
2: हमारे देश में सुविधाओं की कमी रही कई सालों तक, उसके साथ साथ में सिटीजन को अपने आप को स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने के लिए जो खर्चा होता था उसका समाधान का तरीका निकाला गया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 60 करोड़ हमारे जो नागरिक हैं, 60 करोड़,
1: जी
2: उनको 5 लाख का कवरेज हर साल, उनके परिवार के अंदर 5 लाख का कवरेज जो है वो सेकेंडरी टर्शरी केयर के लिए दाखिला जब होता है अस्पताल में तो वो सरकार कवर करती है।
1: जी
2: और इसके साथ साथ बहुत सारे राज्यों ने और भी अपने अपने नागरिकों को एक्स्ट्रा भी जोड़ लिया है। अब ये जो सेवाएं दी जा रही हैं ये लगभग 1900 से ज़्यादा पैकेजेस की तरह से है कि आपको डेंगू का बीमारी हुई तो एक पैकेज डेंगू का है, आपको घुटने के रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है एक पैकेज है। आप सोच सकते हैं कि हमारे सबसे ज़्यादा जो मार्जिनलाइज्ड हमारे नागरिक भाई बहन हैं, बच्चे हैं, उनको टर्शरी केयर में हार्ट की सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट और इवन किडनी ट्रांसप्लांट और बुखार की बीमारी, एनकेफेलाइटिस, स्ट्रोक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ब्लड की बीमारियां, कैंसर, इन सब बीमारियों को उनको कैशलेस, उनको सामने पैसा नहीं देना है और उनको सेवाएं मिल रही हैं 30,000 से ज़्यादा अस्पतालों में, जिनमें कि कम से कम 12,000 प्राइवेट हॉस्पिटल भी जुड़े हुए हैं। तो प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़ दिया गया एक आम नागरिक के लिए, ये एक बहुत बड़ी इनोवेशन है। आयुष्मान भारत PMJ के अंतर्गत हर रोज 85 से 90 हज़ार व्यक्ति अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं और उनका मुफ्त इलाज हो रहा है, रोज 80 से 90 हज़ार। अभी तक 10 करोड़ से ज़्यादा ऐसे दाखिले हो गए हैं, 10 करोड़ से ज़्यादा। देखिए कितने लोगों को ये फ़ायदा कैशलेस कवरेज का जो हुआ है, अगर हम देखें कि इससे कितनी बचत हुई है समाज को, देश के नागरिकों को, तो ये आंकड़ा आता है 1,52,000 करोड़ का फायदा जो है वो यहाँ तक पहुँचा है। लेकिन अगर हम इसको दूसरी तरह से देखें कि इससे मेरे को रीच कैसे बढ़ी, तो जब शुरू हुआ था तो जो बेनिफिशरीज हैं, लाभार्थी हैं, उनमें लगभग 0.7%, less than 1% ही बेनिफिशरीज का फायदा ले रहे थे। लेकिन जैसे जैसे प्रोग्राम मैच्योर हुआ, आपको जान के खुशी होगी कि आप 2 से 2.5% लोग, मतलब कि 2.5 से 3 गुना बेनिफिशरीज को एक्सेस अब मिल रहे हैं। तो लोग बैठे रहते थे, अब इसको अपनी सेवाओं का को लेके जाते हैं। कैंसर से पीड़ित व्यक्ति जो है, एक स्टडी हमें दिखाती है

कि जिनको पीएमजे का कवरेज नहीं है वो टाइम पे पहुंचते हैं 30% लोग सिर्फ, और आयुष्मान भारत के जो लाभार्थी हैं वो 90% लोग टाइम पे पहुंच पा रहे हैं सेवा, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पास ताकत है इलाज लेने के लिए। बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि 2024 से इस कार्यक्रम के साथ में 70 और 70 से ज़्यादा उम्र के सभी नागरिकों को जोड़ दिया गया है। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, अमीर गरीब सब के लिए। तो ये 6 करोड़ नागरिक हैं जिनको कि एक्स्ट्रा एक आयुष्मान भारत में जगह मिली है। ये लगभग 4.5 करोड़ फैमिलीज परिवारों को बिलोंग करते हैं, और मुझे खुशी है बताते हुए।

0: इस कार्यक्रम के अंतर्गत वयो योजना जो है पीएमजे की, उसके साथ जोड़ के वयोवंदन योजना में ये समावेश हुआ है। तो जो सबसे नीडी लोग हैं उनको, क्योंकि उस उम्र पे ज़्यादा बीमारियां होती हैं, तरह तरह की बीमारियां होती हैं, तो उस समाज को प्रोटेक्ट करना और इस स्कीम के साथ जोड़ना एक बहुत बड़ी बात है और उपलब्धि है। ये इतने बड़े स्केल के ऊपर रोज दाखिले हो रहे हैं और उन सबका इलाज हो रहा है और इससे गरीब की जेब पे बोझ कम हुआ है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि उनको एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर मिलना शुरू हो गया है।
1: बिल्कुल। और डॉक्टर अरोड़ा, अगर मैं आपसे बात करूं, आप लंबे समय से टीकाकरण कार्यक्रमों से जुड़े रहे हैं, मिशन इंद्रधनुष और कोविड टीकाकरण अभियान ने भारत के जो सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र को किस प्रकार मजबूत किया है?
2: ये जब आप टीकाकरण की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में इस चीज को सराहा गया है। 2014 में कुल 63% बच्चों में संपूर्ण टीकाकरण होता था और आज ये बढ़कर के 93-94% हो गया है। अभी NFHS का डेटा 2 दिन पहले आया है 2024-25 का, एक्चुअली उसमें डेटा 22-23 का
1: जी, जी।
2: और उसके हिसाब से 88.7% बच्चों में संपूर्ण टीकाकरण उपलब्ध हो रहा। और इसका कारण, और आपने मिशन इंद्रधनुष का जो उदाहरण दिया कि जो बच्चा रह जाए जिसको टीका नहीं मिला हो उसको देने का प्रयास किया गया, और साथ ही साथ गर्भवती महिलाएं जिनको टिटनेस का टीका नहीं मिला उनको भी देने का। लेकिन ये टीका खाली कहने पर से नहीं है, इस कार्यक्रम में जो नवाचार किया गया कि इस देश का हर बच्चा जो टीकाकरण के लिए उसका अधिकार था उसको मैप आउट किया गया, उसकी पहचान की गई और उस तक पहुंचने का प्रयास किया गया। और यह जो प्रयास था जिसको हम माइक्रो प्लानिंग कहते हैं, ये हम सीखे खास तौर पे जब हम पोलियो उन्मूलन कर रहे थे। पूरे के पूरे टीकाकरण में हमारा अब हर बच्चा हर महिला जो है हमारे एक तरीके से हाथ पे लिखा रहता है। और अब इसको आगे ले जाकर के यूएन आईटी प्लेटफॉर्म है जिससे कि हर एक एक हमारी रजिस्ट्री बन गई है जिसमें बच्चों को टीकाकरण दिया जाता है। लेकिन इसका मुख्य लाभ जो हुआ है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुदृढ़ता आई है, क्योंकि अब जब मैं बच्चों के तक पहुंचता हूं, गर्भवती महिलाओं तक पहुंचता हूं, तो खाली टीकाकरण नहीं है, उनके स्वास्थ्य से संबंधित बाकी जो समस्याएं हैं उनको भी वहां तक लेके जाने का प्रयास किया जा रहा। साथ ही साथ जो ये माइक्रो प्लान वाला सिस्टम है, इसका प्रभाव हमारी जो क्रॉनिक बीमारियां हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के द्वारा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये खास तौर पे 2 बड़ी बीमारियां हैं
1: जी।
2: ये भी अपने आसपास के जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के चारों तरफ लगभग 5,000 की पॉपुलेशन होती है, वहां तक पहुंचाने में भी इसी उपक्रम का प्रयोग किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के जो भी नवाचार किया जा रहा है टीकाकरण में, उसका प्रभाव खाली बच्चों की और महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं पर सुदृढ़ नहीं हुआ है, लेकिन बाकी स्वास्थ्य सेवाओं पर भी प्रभाव पड़ा है। और मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि इस समय जो भारत का टीकाकरण कार्यक्रम है वो हमारी सारी की सारी सरकारी जो भी हमारे कार्यक्रम हैं, अभियान हैं, उसमें सबसे ज़्यादा कवरेज या पहुंच जो है टीकाकरण कार्यक्रम की है। इस देश के लगभग 97% जो टीकाकरण के अधिकारी हैं उन तक कम से कम एक टीका लग चुका है। तो यही एक रास्ता है जिससे कि बाकी जो सेवाएं हैं उनको भी पहुँचाया जा सकता है।
1: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अभी डॉक्टर अरोड़ा ने आयुष आरोग्य मंदिरों की बात की और बहुत ही महत्वपूर्ण है प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिहाज से, और अभी देश में 1,70,000 से अधिक हमारे यहाँ आयुष्मान आरोग्य केंद्र हैं। तो अगर बात करें आयुष्मान भारत जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसका विस्तार किया जा रहा है ताकि जो आयुर्वेद है और आयुष उपचारों को उसमें शामिल किया जा सके, तो सरकार कैसे आधुनिक और पारंपरिक चिकित्सा को एक साथ लेकर चल रही है?
0: आपके सवाल में 2 हिस्से हैं। पहले मैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर की जो बात कही है उसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूँगा। किसी भी देश में स्वास्थ्य सेवाओं में जो प्राइमरी केयर होती है, प्राथमिक सेवाएं जो होती हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में प्राथमिक सेवाओं में जो सुदृढ़ता आई है, हमारे सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर सालों से काम निभा रहे थे बिल्कुल लिमिटेड तरीके से, जितना भी कर पा रहे थे लिमिटेड था। 2018 में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिनको आज हम आयुष्मान आरोग्य मंत्र कहते हैं, उनकी संरचना, उनकी सोच लेके आए

0: लिमिटेड प्राथमिक सेवाएं होती थी, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ या संक्रमित बीमारियों की, इन्फेक्शियस बीमारियां, कम्युनिकेबल डिजीज की, वो तो करना ही है, उसमें भी और डेप्थ और इंटेंसिटी लेके आए। लेकिन जो नहीं हो रहा था, जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी इतनी प्रोमिनेंट है, कैंसर, अब ये सेवाएं प्राथमिक सेवाओं में आयुष्मान भारत केंद्र में निहित हो गई कि हम इनको एक सीमित तरीके से, सीमित इन द सेंस कि पीरियोडिक, इतने साल के बाद हर व्यक्ति का एक चेकअप होगा, हर साल ब्लड प्रेशर चेक होगा, हर साल शुगर चेक होगी डायबिटीज के लिए, और कैंसर तीन साल में, पाँच साल जैसा प्रोटोकॉल है, उस पर तीन कैंसर, मुंह का कैंसर, कैंसर सर्विक्स, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर लेडीज में, और ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर, इसकी सबकी स्क्रीनिंग होगी। इसके अलावा मेंटल हेल्थ को साथ में जोड़ा गया, आई, आँख का इलाज, ENT, कान का इलाज, नाक का इलाज, डेंटल हेल्थ, फिर एल्डरली केयर को भी जोड़ा गया इसमें। तो 12 पैकेजेस बने, शुरू के 5 पैकेजेस, 4 पैकेजेस के बजाय उसका आयाम बढ़ गया। अब और इंटरेस्टिंग बात देखिए, 170,000 ये बने, उसमें दो तरह के हैं, एक सब सेंटर लेवल का होता है 6,000 पॉपुलेशन के लिए, और एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का होता है, लगभग 30,000 का उसका दायरा होता है। कुल मिला के ये यूनिट बन जाता है, एक PHC वाला आयुष्मान आरोग्य मंदिर, और 5 या 6 या 4 या 5 सब सेंटर वाले आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन जाता। अब बिल्कुल आश्चर्य भी होगा आपको, 120,000 नए मिड लेवल प्रोवाइडर्स, इनको करने के लिए टीम को बढ़ाया गया। हमारी पुरानी टीम थी आशा वर्कर थे एक गांव में लगभग 1,000 की पॉपुलेशन पे, फिर हमारे पास ANM थे, कहीं कहीं मेल हेल्थ वर्कर होता था, लेकिन 120,000 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को लगाया गया है। इतनी रेवोल्यूशनरी बात है कि इतने संख्या में एक ह्यूमन रिसोर्स को प्राइमरी केयर के पीछे लगाया गया, और ये टिपिकली BSc पास हमारी नर्सेस होती हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, और सब जगह पे टेलीमेडिसिन का प्रावधान हुआ
1: जी।
0: सब जगह पे 100 से ज़्यादा दवाइयाँ, सब सेंटर वाले में 105 दवाई, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 170 फ्री मेडिसिन, सब सेंटर वाले में 14 डायग्नोस्टिक टेस्ट फ्री, और PHC वाले में 42 से ज़्यादा फ्री डायग्नोस्टिक टेस्ट का प्रावधान किया गया है। तो सारे समाज को, सारे जितनी पॉपुलेशन है उसको एक सूत्र में बांध के कमिटमेंट है कि हम इनका चेकअप करेंगे, कमिटमेंट है कि हम उनको याद दिलाएंगे कि दवाई आपको फ्री मिल रही है, दवाई जब ख़त्म होती है तो अगली दवाई आप लीजिए, ज़रूरत होगी तो टेलीमेडिसिन के द्वारा जोड़ा जाएगा, और जो बाकी सेवाएँ शुरू से हैं, इम्यूनाइजेशन है, मदर चाइल्ड हेल्थ है, TB कंट्रोल, लेप्रसी, ये जो प्रोग्राम वो तो चल रही है, उनमें भी ताकत है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस प्लैनेट पर सबसे बड़ा जो प्राइमरी हेल्थ केयर का जो एक रेवोल्यूशनरी काम हो रहा है एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, वो आज हमारे देश में हो रहा है, और ये बहुत दूर तक हमें लेके जाएगा, क्योंकि क्रॉनिक बीमारियों को बचाने का तरीका सिर्फ यही होता है कि या तो वैसे ही हम अपने आप को, अपना लाइफस्टाइल ठीक करें, नहीं तो हम डिटेक्ट करें, और प्राइमरी हेल्थ के द्वारा डिटेक्शन भी हो, प्रिवेंशन भी हो, हेल्थ प्रमोशन भी हो, और ज़रूरत पड़े तो फिर ट्रीटमेंट भी हो, जिसमें फिर PMC जुड़ जाता है।
1: बिल्कुल, देखा जाए इतनी बड़ी आबादी है हमारे जैसे देश की, तो घर घर जाकर इस चीज़ की जांच करना और उनको बताना, रोकथाम के लिए उपाय बताना, तो ये बहुत बड़ी बात है।
0: दूसरी बात आपने कही कि हमें ट्रेडिशनल मेडिसिन को जोड़ा गया, बहुत बड़ी बात है
1: जी।
0: ये हिस्टोरिक जब देखा जाएगा तो हिस्ट्री में ये माना जाएगा कि प्रधानमंत्री जी के आने के बाद में जो भारत का अपना सिस्टम थे, आयुर्वेद था हमारा, सिद्ध है हमारे पास, यूनानी है, ये सब हमारे भारत में पनपे हुए सिस्टम है, ये इन सब के जो योग है वो भी स्वास्थ्य के लिए भी और स्वास्थ्य से भी ऊपर का है, वो उन सब को एक मेन स्ट्रीम में लाना, उनको ये बजट प्रदान करना, उनके सिस्टम को स्ट्रेंथन करना, और उनको एक इंटीग्रेटिव अप्रोच में जोड़ना, और को जो बढ़ोतरी मिली है वो बहुत बड़ी बात है कि दोनों का समावेश हो, आधुनिक कार्यक्रम, आधुनिक पद्धति का भी हो और ट्रेडिशनल का भी हो, ताकि दोनों मिलके एक व्यक्ति को, एक नागरिक को वो दे पाएँ जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा, स्वास्थ्य रहे, बीमारियाँ नहीं हो, मन भी अच्छा हो, तन भी अच्छा हो और आत्मा भी अच्छा हो, इन सब का जो जोड़ इंटीग्रेटिव अप्रोच में लेके आए हैं, ये भारत का मॉडल जो है ये दुनिया देखेगी, और आयुर्वेद का जो प्रचलन है वो बड़ा है, आयुर्वेद की जो दवाइयाँ हैं उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ी है, हमारे एक्सपोर्ट बढ़े हैं, और बिल्कुल ये मेन स्ट्रीम में दोनों को ले जाने का जो माहौल बना है और जो ताकत आई है, ये भी अनप्रेसिडेंटेड
1: है। बिल्कुल, एक साथ ले जाना तो बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर अरोड़ा, हम जैसे बात कर रहे थे टीकाकरण की भी, तो इन दिनों

0: जो कैंसर है उसकी डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन पर, स्क्रीनिंग पर बहुत ध्यान दे रही है, और खासकर जो सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। तो आप आज के परिप्रेक्ष्य में इसे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं?
1: जो HPV वाला टीकाकरण है, और इसके अलावा डॉक्टर पॉल ने तीन कैंसर्स के बारे में बताया, एक तो महिलाओं के बच्चेदानी के मुंह वाला कैंसर जिसको सर्वाइकल कैंसर है, उसी के लिए वैक्सीन है ये
0: जी,
1: उसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर और मुंह का कैंसर, और एक तीसरे कैंसर के लिए वैक्सीन ऑलरेडी दी जा रही है जो हेपेटाइटिस बी है, उसकी वजह से लिवर का कैंसर हो जाता है। तो कैंसर की तरफ जो है, क्योंकि जैसे कि हम सबको मालूम है कि पिछले कुछ समय में हम सब लोगों का ध्यान बहुत अधिक आकर्षित हुआ है कैंसर की बीमारी की तरफ, उसकी स्क्रीनिंग के लिए, जल्दी पहचान के लिए, फिर इलाज के लिए, और इस दिशा में बहुत सारा काम किया गया है। तो एक तो स्क्रीनिंग के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया, लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और हुई है हमारे देश में इस पिछले 12-13 साल में, एम्स का संख्या एक से बढ़कर के इस समय 23 एम्स हो गए, जो अपने आप में एक गजब की चीज है। कि और ये एम्स बड़े शहरों में नहीं करे गए, फॉर एग्जाम्पल झारखंड में देवघर करके एक जगह है, कई लोगों को मालूम भी नहीं होता, मतलब ऐसी जगह किया है जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन या पिछड़े इलाकों में किया गया है, हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में है, इसी तरीके से JNK में दो हैं, और बाकी पूरे कंट्री में इस तरीके से करे गए, और खास तौर पे ऐसे क्षेत्रों में किया गया है एम्स को एस्टैब्लिश, जहां से ज्यादा लोगों के पास टर्शियरी केयर, जो सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, और इनमें कैंसर के इलाज के लिए बिल्कुल आधुनिकतम मशीनें उपलब्ध हैं इन सारे में। ये सब नए इंस्टीट्यूशन है, उसके बावजूद कैंसर की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही साथ अनुसंधान इस तरीके से किया जा रहा है कि जो क्षेत्रीय और स्थानीय समस्याएं हैं, और उसमें हमारे कुछ कैंसर स्थानीय तौर पे बहुत होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं तो लेरिंजियल कैंसर, मुंह का कैंसर बहुत कॉमन है, और सर्वाइकल कैंसर भी बहुत ज्यादा है। तो उन क्षेत्रों में उन पे विशेष तौर पर ध्यान देकर के उसकी स्क्रीनिंग है, उसके बचाव के लिए क्या तरीका किया जाए, उसके इलाज के लिए क्या किया जाए। और अब ये जो HPV वैक्सीन के बारे में आपने कहा, ये हमारी बच्चियों के लिए 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए है, और ये वैक्सीन इतनी सुरक्षित है, और वैक्सीन मिलने के बाद कैंसर, सर्वाइकल कैंसर या महिलाओं के बच्चेदानी का मुंह का कैंसर प्रैक्टिकली खत्म हो जाता है। इनफैक्ट WHO की तरफ से ये मुहिम चलाई जा रही है कि ये वैक्सीन के साथ साथ अगर हम स्क्रीनिंग और इलाज करते हैं तो अगले 15-20 साल में इस समस्या से निजात मिल सकती है। तो कुल मिलाकर कैंसर की तरफ जो है बहुत बड़ा ध्यान दिया जा रहा है। कुछ बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, बाकी सरकार जिनको सहायता कर रही है, जैसे टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट है, इनके चारों तरफ पूरे देश में शाखाएं बनाई जा रही हैं, और कुल मिलाकर हर एक प्रदेश में कैंसर का एक रीजनल सेंटर बनाया गया है, जिससे कि लोगों को दूर दराज चल करके जाने की जरूरत ना पड़े और घर के पास ही ये सुविधाएं उपलब्ध हैं।
0: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अगर हम आज देखें, आज भारत डिजिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत तेजी से विकास कर रहा है, तो जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है और जो स्वास्थ्य ID जैसी पहल है, वो आम नागरिक के लिए जो स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरह से सरल और प्रभावी बना रही है?
2: भारत का जो डिजिटल हेल्थ की तरक्की हुई है वो दुनिया में बिल्कुल अलग और शायद सबसे आगे की तरक्की की तरह मानना चाहिए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शुरू किया गया, और उसके जो डिफरेंट स्वरूप हैं उसमें एक है कि हमारे पास हर नागरिक का इवेंचुअली एक डिजिटल आइडेंटिटी होगा, उसको हम आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कहते हैं, आभा। तो आपको हैरानी होगी, 87 करोड़ व्यक्तियों का, नागरिकों का आभा आइडेंटिटी आज हमारे पास अवेलेबल है, 87 करोड़, 145 करोड़ में से। इसका क्या फायदा है कि इस सिस्टम के द्वारा, इस आइडेंटिटी के द्वारा जो मेरे हेल्थ के रिकॉर्ड्स हैं वो उसके ऊपर लोड हो सकते हैं, वो पुराने नए अगले सब जुड़ सकते हैं, और जब किसी ने इसको देखना है और प्रस्तुत करना है और रिकॉर्ड की तरह भी है, तो वो डॉक्टर साहब उसको देख के फैसला कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और जैसे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स हमारे और से और लोड होते जाएंगे, ये एक इनोवेशन का भी जरिया बनेगा, और इसमें बहुत सेवा की ईज जो है, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ एक्सेसिंग हेल्थ, वो अचीव होगी। इसमें फिर जो टेलीमेडिसिन में जो तरक्की हुई है, जैसे मैंने बताया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में टेलीमेडिसिन हो गया है, हमारे पास ई संजीवनी एक टेलीमेडिसिन है, रोज हजारों कंसल्टेशन उसके ऊपर होती है।

0: उसमें इतने डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, उसके अलावा प्राइवेट स्पेस में टेलीमेडिसिन हो रही है, इंस्टीट्यूशंस में एक रेवोल्यूशन आ गई है टेलीमेडिसिन। उसके और डायमेंशंस भी हैं कि हॉस्पिटल की रजिस्ट्री बनेगी, हेल्थ प्रोफेशनल्स की रजिस्ट्री बनेगी, वो सब काम हो रहा है। लेकिन जो डिजिटल हेल्थ है वो एक हिस्सा बन चुका है हमारे देश में हेल्थ सिस्टम का। हम डिजिटल हेल्थ को इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोग्राम्स को लागू करते हैं, हम बेनिफिशरीज को चिन्हित करते हैं, हम बेनिफिशरीज को फायदे के साथ जोड़ते हैं, उनको ट्रैक करते हैं। सो डिजिटल हेल्थ में जो इतना बदलाव आया है और जो उसकी वजह से हेल्थ की एक्सेस बढ़ी है, एक्यूरेसी बढ़ी है और जो इसका फ्यूचर पोटेंशियल है वो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। और इसके आगे चलते हुए जब इस टेक्नोलॉजी को हम एआई के साथ लिंक करेंगे, इस टेक्नोलॉजी के और सॉल्यूशंस होंगे, तो मुझे लगता है कि भारत बिल्कुल अग्रणी देशों में होगा इस काम में।
1: डॉक्टर अरोड़ा, आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन रिगार्डिंग मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इशू। व्हाट प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स ड्यूरिंग द लास्ट 12 इयर्स?
2: वी हैव जस्ट सीन लास्ट 2 डेज सम ऑफ द रीसेंट डेटा। One of the key issues which has been bothering all of us was stunting in children. And stunting has been traditionally recognized as the quality of health services. And during last, between NFHS 5 and 6, I think the stunting has decreased by 12 or 14 percent points. Now, this is remarkable because this is, jisko kehte hain, bilkul phasi hui cheez thi, jisko ठीक करने में बहुत ही मेहनत लग रहा था। और ये देश भर में पोषण कार्यक्रम शुरू हुआ, महिलाओं का एम्पावरमेंट, उनके पोषण पे विशेष ध्यान देना, उस दिशा में जो काम हुआ है। तो अब हमने देखा है कि बच्चों में जो स्टंटिंग, हमारे यहाँ लगभग 50% बच्चे अपनी पूरी ऊंचाई को प्राप्त और लंबाई को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, वो अब आ गए हैं 29% पे लगभग। लेकिन अभी काम करने की जरूरत है, वो है अनीमिया, खून की कमी है। अब वो गर्भवती महिलाएं हैं, हमारी किशोरी बिटिया लोग हैं और बाकी बच्चों में ये अनीमिया की समस्या ऐसी है। इसकी तरफ जो है अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम आरंभ किया गया है और उस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन वो विकास में और मेहनत करने की जरूरत है क्योंकि देश के डिफरेंट हिस्सों में अनीमिया के कारण अलग अलग हो सकते हैं और खाने में खासतौर पे उस चीजों का विशेष ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के, और एक तीसरी चीज जो महिलाओं के लिए विशेष तौर पे रहा है कि एक समय था जब हमारे यहाँ केवल 27% महिलाएं अपना प्रसव जो है एक संस्था में करती, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, आज वो पढ़ करके लगभग 95% हो गया है। ये भी एक अभूतपूर्व उपलब्धि है और इसकी वजह से नवजात शिशुओं की मृत्यु, असमय मृत्यु से उसको कम किया गया है। और साथ ही साथ जो हमारी महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी, मैटरनल मोर्टैलिटी, वो एकदम नीचे आ गई है। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि जो हमारी माताएं हैं और बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य में जो प्रोत्तर विकास हुआ है, उस विकास में एक तेजी आई है, मृत्यु दर में कमी हुई है, चाहे वो माँ हो चाहे नवजात शिशु हो। और इसमें भी हम लोग पूरी कोशिश की जा रही है कि 2030 तक, उससे पहले ही जो हमारे SDG गोल्स हैं उनको हम प्राप्त कर सकें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उन चीजों की उपलब्धि प्राप्त कर सकें जिसमें ज्यादातर देश प्राप्त नहीं कर पाए हमारी तरफ।
1: बिल्कुल। अगर डॉक्टर पॉल आपसे बात करूं, कोरोना के टाइम की जब कभी याद आती है तो अब भी जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन उस समय जो भारत की रणनीति थी उसको पूरे विश्व में सराहा गया, दो इट वाज अ मेजर चैलेंज फॉर अस। सो व्हाट मेजर स्टेप्स हैव बीन टेकन टू स्ट्रेंथन इंडियाज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सिंस द COVID-19 पेंडेमिक?
0: उसके बाद में हमने अपनी व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ किया, एक वन हेल्थ मिशन देश में लॉन्च किया गया। उसका तात्पर्य यह है कि जो महामारियां हम अभी देख रहे हैं पिछले दशकों में, और कोविड की महामारी को भी देखा और आगे देखते हैं, तो ये लगता है कि महामारी का जो ओरिजिन है, जो वायरस है, वो एनिमल किंगडम से आता है, बैट से, चमगादड़ से आता है, या बर्ड से आता है, चिकन से आता है। अब इन सब चीजों को समझते हुए क्लियर हो गया है कि हम एनिमल किंगडम से अलग नहीं है, हम वाइल्ड लाइफ के सिस्टम से अलग नहीं है, हम जो हमारा लाइफ स्टॉक है, घरेलू जानवर है, उनसे अलग नहीं है, हम एनवायरनमेंट, जंगल, इन सब से सभी जुड़े हुए। तो वन हेल्थ के अप्रोच के द्वारा इन सब सेक्टर्स को

0: और इन सब डायमेंशंस को जोड़ के एक जो मिशन बनाया गया है उनके अंतर्गत जो हमारा सर्वेलेंस सिस्टम है कि कहाँ पे क्या बीमारी हो रही है, पशु में भी क्या हो रही है, ह्यूमन में भी क्या हो रही है, उसको जीनोमिक लेवल तक जाके समझना और उसके बारे में देखना कि वो कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, उसको कंटेन कैसे करना है। तो ये एक होल ऑफ गवर्नमेंट का एक सिस्टम वन हेल्थ के अंतर्गत बनाया गया है। हमारे सर्वेलेंस की पद्धतियों को स्ट्रॉन्ग किया गया है, हमारे जो इंडस्ट्री है और साइंस एकेडमी का सिस्टम है उनको अलर्ट करके उनकी अप्रोच करा गया है कि जो वायरसेस महामारी का रूप दे सकते हैं या उनसे मिलते जुलते हैं उनके लिए अपनी रिसर्च को बढ़ाओ, उनके लिए तैयार रहो कि पहले से ही वैक्सीन की रिसर्च हमारी बहुत आगे तक हो ताकि अगर मुसीबत आती है तो हम जल्दी से जल्दी 100 दिन के भीतर वैक्सीन को पैदा करने की ताकत रखें। इसके अलावा जो रिस्पांस है ग्राउंड से, जो रिस्पांस है हमारा जो एक IDSP का सिस्टम है, 2 लाख से भी ज्यादा जगह से हमें इन्फॉर्मेशन आती है, उसको सशक्त किया गया है। सिंड्रोमिक अप्रोच ICMR ने डिटेक्ट करने का सिस्टम को सशक्त किया गया। वेस्ट वाटर सर्विलेंस भी करा जाए कि सुएज में क्या वायरसेस आ रहे हैं। काफी बड़े तौर पे इन सारे को पिछले लेसन को लेकर और आज की साइंस को जोड़ते हुए हमने अपनी व्यवस्थाओं को बहुत स्ट्रांग किया है और ये जो फ्यूचर के लिए हमारी बायो सिक्योरिटी है, फ्यूचर के लिए हमारी जो हेल्थ सिक्योरिटी है, उसके लिए स्टेप जो है पूरे तरीके से लिए जा रहे हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अगर बात करें आम आदमी को क्या चाहिए, अच्छी शिक्षा, आवास मिल जाए और अच्छी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो और किफायती दाम पर जब आपको दवाएं मिलती हैं तो उससे बड़ी बहुत ही सुखद एहसास नहीं हो सकता एक आम आदमी के लिए। तो जन औषधि केंद्र ऐसे में कितने महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं?
0: जन औषधि केंद्रों के द्वारा हाई क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन जो गुणवत्ता में पूरी उतरती है उनको उपलब्ध किया जाता है। देश में 19,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों का जाल बिछा हुआ है और बहुत तेजी से इसको 25,000 तक लगाने की प्लान है। इसमें हर रोज 10 लाख से ज्यादा व्यक्ति अपनी दवाइयां खरीदते हैं
1: जी।
0: किफायती दाम पे मिलती हैं। मार्केट में जो रेट होता है उससे आधी और कई दवाइयां तो सिर्फ 10% तक भी नीचे उनको उसका प्राइस से मिलता है, बहुत फायदा होता है। अगर हम देखें जब से ये प्रोग्राम चालू हुआ है तो लगभग 40,000 करोड़ रुपए की बचत भारत के नागरिक समाज को इस कार्यक्रम की वजह से उपलब्ध हुई है। और ये कार्यक्रम के द्वारा जो जन औषधि केंद्र हैं ये सब जगह, सब प्रदेशों में, सब जिलों में इसका डायमेंशन दिखाई देती है, इनकी प्रेजेंस दिखाई देती है। और दवाइयों के अलावा जो मेंस्ट्रुएशन के लिए पैड्स की भी उपलब्धि की गई है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए, और जब से ये वाला कार्यक्रम शुरू हुआ है 105 करोड़ से ज्यादा सुविधा नैपकिन जो है मेंस्ट्रुअल नैपकिन दिए गए जिसकी कीमत सिर्फ 1 रुपया है। तो ये दो काम कर रहा है, एक तो गुणवत्ता की दवाइयां मिल रही हैं, दूसरा व्यक्ति को बचत हो रही है और तीसरा इसकी वजह से एक्सेस बढ़ती है, व्यक्ति सेवाएं ले पाता है, इस्तेमाल करता है तो बीमारी रुकती है और उसका जो जो जायजा है वो हम रुपयों में नहीं ले सकते। इतना बड़े भले का ये कार्यक्रम है।
1: बिल्कुल श्रोताओं, नए भारत की जो स्वास्थ्य क्रांति की यात्रा है केवल नीतियों और आंकड़ों की कहानी नहीं है बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में आए वास्तविक परिवर्तन की गवाही भी है। डॉक्टर पॉल और डॉक्टर अरोड़ा, आप दोनों का धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए।
2: बहुत बहुत शुक्रिया,
0: बहुत धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वीके पॉल और बिलासपुर एम्स के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी प्रियंका अरोड़ा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और यूट्यूब चैनल NewsOnAIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: In the special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government transforming healthcare. Participants were Dr. V.K. Paul, former member Niti Aayog, and Dr. N.K. Arora, President, Ames Bilaspur. Moderator was Priyanka Arora. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashwani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official.
5: अभी आप सुन रहे थे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष स्वास्थ्य सेवा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम सभा में रविवार 7 जून 2026 को शाम 7:30 बजे से 8 बजे के बीच सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा, हेलो ग्राम सभा। इसमें विषय होगा मानसून के आगमन पर बगीचे और उद्यानिकी फसलों के बारे में जानकारी। इस कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान चाहते हैं वो 7 जून 2026 को शाम 7:30 बजे से 8 बजे के बीच आकाशवाणी भोपाल के फ़ोन नंबर से 2660902 और 2660903 पर फ़ोन लगाकर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दिन समय और फ़ोन नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए, 7 जून 2026 शाम 7:30 बजे से 8 बजे के बीच फ़ोन नंबर्स हैं 2660902 और 2660903। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। सूचना समाप्त हुई। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने को हैं। यह समय होता है समाचार संध्या का, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंची। प्रिया घंघास और विश्वनाथ सुरेश ने शीर्ष 3 में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।

0: enter the Venezuelan market successfully.
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी।
2: हमारे देश से करीब 22 से 23 लाख करोड़ रुपए हम फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। हमारे देश में अगर ये इंपोर्ट को कम करना है तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर काफी काम करने की आवश्यकता थी, और इसलिए ये जो इंडस्ट्री है यही हमारे देश के ग्रोथ इंजिन है।
1: फ्लेक्स फ्यूल वाहन पेट्रोल और एथेनॉल के विभिन्न मिश्रणों पर चल सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: अपने क्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम इस श्रृंखला में बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों के बारे में।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
5: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी

0: के लिए बहुत बड़ा स्टेप है स्टेबिलिटी के लिए। अप्रत्यक्ष करके रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है, लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
1: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुँच प्रदान करता है।
2: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई स्टार्टअप महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
1: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एकजुट करता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
5: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
3: हमारी संवाददाता ने बताया कि विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया गया है।
6: अहमदाबाद का एका एरिना आज से शुरू हुई पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप के साथ ही एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बन रहा है। इस वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका, घाना, केन्या और मलेशिया सहित 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मेजबान भारत ने 6 आयु श्रेणियों में मुकाबले के लिए अपनी 122 सदस्यों की टीम उतारी है। परणा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकुरणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में आज भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। वहीं प्रिया घांघस 60 किलोग्राम भार वर्ग और विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम भार वर्ग में शीर्ष तीन में जगह बनाने में सफल हुए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर और डॉक्टर सतीश पूनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज एक नए डिजिटल पोर्टल की घोषणा की, जिससे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विकसित

0: किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के शोध तंत्र को मजबूत करना है। और बात मौसम की, दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गया। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुदुचेरी और काराईकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज बारिश हुई। लोगों को गर्मी और उमस भरे मौसम से थोड़ी राहत मिली। आज रात भी हल्की वर्षा की संभावना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अगस्त सितंबर सत्र के लिए अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लेने के लिए महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें छात्राएं, शोधकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक शामिल हो सकते हैं जो किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक गैर शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हों। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल wcd.intern.nic.in के माध्यम से किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। और मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. India and Venezuela review full spectrum of bilateral relations and explore new avenues of cooperation in energy, trade and healthcare. Home Minister Amit Shah asked the chief ministers of northeastern states to focus on AI, machine learning and blockchain infrastructure for new generations. World Yogasan Sports Championship begins in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi hopes it will give Yogasan a global sports identity. India launches first flex-fuel passenger vehicle operating on a wide range of ethanol-petrol blends. Southwest monsoon hits Kerala. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Kerala, Karnataka and Tamil Nadu during the next 7 days. And in world boxing rankings, India's Jasmine Lamboria climbs to world number 1, while Priya Ghangas and Vishwanath Suresh enter into top 3. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today held talks with Acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. The two leaders reviewed the full spectrum of bilateral relations and explored new avenues of cooperation in energy, trade, investment, healthcare and automobiles, among others. In a social media post, Mr. Modi said they had extensive discussions on expanding cooperation in energy, critical minerals, technology, agriculture, health and people-to-people ties. He said that as a valued partner in Latin America, India's close cooperation with Venezuela holds immense importance for the Global South. He said both nations will continue to work together for the mutual benefit of the people of the two countries. Addressing media after the talks, Secretary East Rudrendra Tandon said, Venezuela possesses one of the largest oil reserves in the world. He said today's discussions between the two sides focused on forging an energy partnership between the two countries, as Venezuelan energy sector is undergoing a fundamental transformation.
2: The discussions also went into broadening the economic partnership to other areas, not just in the energy sector, but also in areas like mining, animal husbandry, transportation, agriculture equipment, automotive sector, and pharmaceuticals, to try and work out ways in which Indian commercial entities can enter the Venezuelan market successfully.
1: During the conversation, the leaders also exchanged

0: जकार्ता में हुए इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन की भारतीय जोड़ी मर्दों के डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने आज एक सख्त मुकाबले में मलेशिया की जोड़ी आरुनताई और कांगखाई शिंग को 16-21, 21-15 और 21-19 से शिकस्त दी है, जबकि सिंगल जुमरे में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी के अपने अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में शिकस्त के बाद भारत की मुहिम खत्म हो गई है। भारत ने मुक्केबाजी की हालिया आलमी दर्जाबंदी में अपनी मजबूत पोजीशन बरकरार रखी है। ख्वातीन के 57 किलोग्राम के जुमरे में जैस्मीन लेम्बोरिया आलमी नंबर एक पर पहुंच गई हैं, जबकि एशियाई चैंपियंस प्रिया घंगास 60 किलोग्राम और विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम के अपने अपने जुमरे में टॉप थ्री में पहुंच गए हैं। ख्वातीन के जुमरे में मीनाक्षी ने 48 किलोग्राम के जुमरे में आलमी नंबर एक का अपना मकाम बरकरार रखा है, जबकि मर्दों के जुमरे में सचिन सिवाच और नरेंद्र बेरवाल बैनुल अक्वामी पैमाने पर मुसलसल कामयाबी हासिल करने के बाद टॉप फाइव में पहुंच गए हैं। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और वेनेजुएला ने बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। नीज तवानाई, तिजारत और सेहत देखभाल के शोबों में तआवुन के नए मौके की जस्तजू की। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने शुमाल मशरकी रियासतों के वज़राए आला को हिदायत दी है कि वो नई नस्लों के लिए AI, मशीन लर्निंग और ब्लॉक चैन बुनियादी ढांचे पर तवज्जो मरकूज करें। आलमी योग आसन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप अहमदाबाद में शुरू हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जाहिर की है कि ये योग आसन को एक आलमी खेलकूद की शनाख्त फराहम करेगी। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है पीएम मोदी के 12 साल सोमनाथ अमृत महोत्सव भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण ये कार्यक्रम। ये कार्यक्रम RNU भोपाल की प्रस्तुति है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं विशेष कार्यक्रम सोमनाथ अमृत महोत्सव, विकास और विरासत की गौरव यात्रा। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पुनर्स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में पिछले दिनों सोमनाथ अमृत महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और भारत की शाश्वत आत्मा के पवित्र प्रतीक के रूप में खड़ा है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ एक मंदिर से अधिक देश के मजबूत मनोबल का प्रमाण है। दरअसल सोमनाथ हमारी प्राचीन विरासत, आस्था और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक भी है। सोमनाथ साक्षी है कि सृजन शक्ति हमेशा विनाशकारी शक्ति से प्रभावी होती है। सोमनाथ की प्रत्येक ईंट भक्ति का ताप और भारत के पुनरुत्थान का गौरव कहती है। इतिहास में कई बार मंदिर को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया गया, लेकिन प्रत्येक विध्वंस के बाद ये मंदिर और अधिक भव्यता के साथ उठ खड़ा हुआ। आज सोमनाथ अमृत महोत्सव पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, विचारक और लेखक श्री कृष्ण मोहन झा जी। जैसा बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में आकाशवाणी में।
3: जी धन्यवाद।
2: कार्यक्रम को शुरू करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई को सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए क्या कहा वो सुनवाते हैं आपको।
4: साथियों, जब मैं पिछली बार यहाँ आया था तब मैंने कहा था जिसके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हो उसे नष्ट कौन कर सके। इतिहास के लंबे कालखंड में इस मंदिर ने कितने ही आक्रमण झेले। महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी जैसे अनेक आक्रांताए लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर का वैभव मिटाने का प्रयास किया। वो सोमनाथ को एक भौतिक ढांचा मानकर उससे टकराते रहे। बार बार इस मंदिर को, इस ढांचे को तोड़ा गया और ये बार बार बनता रहा, हर बार उठ खड़ा होता रहा, क्योंकि तोड़ने वालों को मालूम नहीं था हमारे राष्ट्र का वैचारिक सामर्थ्य क्या है। हम भौतिक शरीर को नश्वर मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम जानते हैं उसके भीतर बैठी आत्मा अविनाशी है।

0: और फिर तो शिव तो सर्वात्मा है, इसलिए अलग अलग काल में अलग अलग जीवों की संकल्प शक्ति में शिव प्रकट होते रहे। राजा भोज, कभी राजा भीमदेव प्रथम, कभी राजा कुमारपाल, कभी राजा महिपाल प्रथम, तो कभी राव खंगार, ऐसे अनेक शिव भक्त समय समय पर सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाते रहे। ऐसी कितनी ही महान विभूतियां हैं जो सोमनाथ की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पित करती थी। मैं आज इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्रीमान के एम मुंशी जी, ऐसी सभी ज्ञात अज्ञात दिव्यात्माओं को भी श्रद्धापूर्वक आदरपूर्वक नमन करता हूं। उनका स्मरण हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना है, बल्कि इस जिम्मेदारी को आने वाली पीढ़ियों के हाथों में सौंप कर भी जाना है।
1: जहां सर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सोमनाथ एक मंदिर से अधिक देश को, देश के मजबूत मनोबल का प्रमाण है, इसे किस तरह देखते हैं आप?
2: देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि सोमनाथ, जो सोमनाथ केवल सोमनाथ कहने को नहीं है, 12 ज्योतिर्लिंगों में महत्वपूर्ण स्थान सोमनाथ का है
1: जी।
2: और जो सोमनाथ के साथ घटित हुआ, यदि हम बात करें 1026 में मोहम्मद गजनवी ने जिस ढंग से वहाँ तोड़फोड़ की और उसके बाद ये लगा कि ये पूर्ण रूप से नष्ट हो गया है, लेकिन फिर भी आप देखिए कि सोमनाथ का निर्माण हुआ, फिर से आप नए स्वरूप को प्राप्त किया, उसके बाद फिर आक्रांताओं ने, विदेशी आक्रांताओं ने कई बार उसमें हमले किए और उसके बाद पुनर्निर्माण का क्रम समाज करता रहा है। तो यही वजह है कि जो मोदी जी ने कहा है कि ये जो हमारी विरासत है ये सुदृढ़ रही और ये हमें सिखा रही है कैसे हमको जो है मजबूती के साथ खड़े होना है, कमजोर टूटना नहीं है
1: जी।
2: हम टूटते नहीं हैं, पुनर्निर्माण करते हैं
1: जी।
2: ये उनके कहने का आशा है। स्वतंत्रता के बाद भी आप देखिए कि जब 1951 में, क्योंकि 75 साल पूरे हो रहे हैं, 11 मई 1951 में सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसकी नींव रखी थी
1: जी।
2: तब से लेकर के 75 वर्ष हो गए और लगातार समृद्ध होता जा रहा है
1: जी।
2: और मंदिर का देखिए कि भव्यता लगातार बढ़ रही है
1: जी।
2: और यही वजह थी कि प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि किसी देश के प्रधानमंत्री ने इतना सोचा हो, आपको ध्यान होगा कि महाकाल लोक की निर्माण किया उन्होंने
1: जी।
2: काशी को एक नया स्वरूप दिया उन्होंने
1: जी।
2: अयोध्या को देखिए कि अयोध्या का निर्माण और उसकी भव्यता किस ढंग से बढ़ी हुई है। तो आज ये पर्यटन के, यानी आप देखिए तीर्थ तो है ही हैं
1: जी, जी।
2: लेकिन साथ में एक पर्यटन के केंद्र भी बन चुके हैं यहाँ पे, जो है पर्यटन और तीर्थ दोनों का समावेश दिखाई दे रहा है
1: जी, जी।
2: इससे एक तरफ तो रोजगार की बढ़ोतरी हो रही है, तरह तरह के रोजगार यहाँ पे आ रहे हैं और जब विदेश से भी लोग यहाँ जब आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उस क्षेत्र का विकास किस ढंग से होता है। आपने अपनी आंख से ही देखा, जो कि हमारे देखते ही देखते उज्जैन के महाकाल की दशा दिशा किस ढंग से बदल गई। तो उसी ढंग से सोमनाथ को भी हम लेते हैं, क्योंकि जो पहला जो आपका जो प्रश्न है उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा हुआ है कि हम कहीं टूटने वालों में से नहीं है, हम मजबूती से खड़े होने वाले हैं। जब जब टूटे हैं तो उसके बाद हम ज़्यादा मजबूती से खड़े हुए हैं
1: जी। जी जी, प्रधानमंत्री ने जो, अगला मेरा प्रश्न है वो इसी से जुड़ा हुआ ही है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर का वैभव मिटाने का प्रयास किया, सोमनाथ को केवल एक भौतिक ढांचा मानकर उन्होंने उसे टकराते रहे, बार बार मंदिर को तोड़ा गया, ये बार बार बनता रहा, हर बार उठ खड़ा होता रहा। तो कहीं ना कहीं ये, जैसा कि आपने भी कहा कि ये आत्मबल, आत्मसम्मान और भारत के गौरव को दिखाता है।
2: देखिए, निश्चित रूप से मैंने पहले ही कहा कि मोहम्मद गजनवी ने जिस ढंग से हमारी धरोहरों को तोड़ने का प्रयास किया
1: जी।
2: उसके बाद यदि मैंने बाबरनामा पढ़ी तो बाबरनामा में बाबर ने हुमायूं को एक पत्र लिखा, उसमें उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति को और इतिहास को मिटाने का कभी प्रयास नहीं करना, उनकी सीख थी। और यही वजह रही है कि जिस ढंग से ये जो हमारी संस्कृति रही है वो बच पाई, तो मुगलों ने उसमें बहुत कुछ, उनका योगदान भी उस ढंग से रहा
1: जी।
2: तो वो किया और जिस ढंग से समृद्धि हमारे पास, जब से आज़ादी के बाद और किसी देश के प्रधानमंत्री ने जब चिंता की, खासतौर पे ज्योतिर्लिंगों को लेकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं सबके आस्था का केंद्र बना।

0: जिस ढंग से उनकी चिंता देखने को मिल रही है, और उन्होंने ये भी बताया कि हमारी विरासतों को किस ढंग से मिटाया गया
1: जी,
0: हमारी संस्कृति को कैसे, क्योंकि संस्कृत हमारी बहुत मजबूत थी, दूसरों के पास संस्कृति नहीं। एक बात बहुत अच्छी बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि बहुत साल पहले भाई महावीर से हमने एक इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने एक बात कही थी कि जिस देश की का इतिहास नहीं है, जिस देश की संस्कृति नहीं है, वो आज संस्कृति बना रहे हैं, लेकिन हम अपने इतिहास को, हमारी संस्कृति को हम सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं
1: जी।
0: तो ये उस प्रश्न का जवाब, आपके प्रश्न का जवाब है कि हमारी संस्कृति तो थी, हमारा इतिहास तो था, लेकिन हमारे स्वर्णिम इतिहास को हम लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। ये जो आयोजन हो रहा है 75वां वर्ष मनाया जा रहा है सोमनाथ जी का, कहीं ना कहीं इस बात का संदेश है कि युवा पीढ़ी जाने कि हम टूटने के बाद भी खड़े हो सकते हैं, किस ढंग से हम दासता को झेले हैं, गुलामियों को झेले हैं, और आज जाकर के हमको जो भी आज़ादी मिली है, तो इस आज़ादी को हम किस ढंग से सुरक्षित रखें और पुराने वैभव को हम बना के रखें।
2: और ये सोमनाथ अमृत महोत्सव है जो आने वाले 1000 वर्षों तक जो है वो लोगों को प्रेरणा देता रहेगा, भारत की प्रेरणा बना रहेगा, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा।
0: देखिए निश्चित रूप से लाखों लाखों वर्ष तक, जब तक धरती रहेगी तब तक के सोमनाथ का जिक्र होगा, तब तक के काशी विश्वनाथ का जिक्र होगा, तब तक के आप ओंकारेश्वर का जिक्र होगा, जब तक महाकाल का जिक्र होगा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, ये छाप कभी छूटेंगी नहीं
1: जी,
0: ये हमारे संस्कारों से रची बसी है, हमारी संस्कृति से रची बसी है, और हमारे दैनिक जीवन से रची बसी हुई है। तो इसका मिटना तो संभव ही नहीं है, लेकिन सुदृढ़ता बहुत ज़रूरी है। जिस ढंग से सुदृढ़ करने का प्रयास है, आज आप देख रहे हैं कि हर राज्य के मुख्यमंत्री ने, जो खासतौर पर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पूरा प्रयास किया है कि लोग जाकर के देख करके आएं। यहाँ से भी आपने देखा कि डॉक्टर मोहन यादव ने एक स्पेशल ट्रेन को रवाना किया,
2: मुख्यमंत्री
0: तीर्थ दर्शन योजना के तहत जो है यहाँ से हजारों की संख्या में लोग गए हैं। तो ये एक अच्छी परंपरा है लोगों को दिखाने की, बताने की। जब तक कि लोग उससे साक्षात्कार नहीं करेंगे तो कैसे जानेंगे कि क्या चीज़ है।
2: बिल्कुल सही बात। मंदिर के इतिहास को अगर हम समकालीन भारत के साथ अगर जोड़ते हुए देखेंगे तो किस तरह से देखते हैं आप मंदिर का इतिहास समकालीन भारत के साथ?
0: देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है कि ये जो इतिहास था
1: जी,
0: बड़ा समृद्धशाली था। भारतीय लेखकों को तो छोड़िए, जो फारसी लेखकों ने लिखा है तो उन्होंने तो ये तक कहा है कि ये मंदिर सोने की चिड़ैया थी
1: जी,
0: वहाँ पे स्वर्ण को लेकर के उन्होंने कहा अत्यंत समृद्ध माना गया सोमनाथ का मंदिर
1: जी।
0: तो उन्होंने अपनी सब चीज़ों में कहा, तो समृद्धि तो बहुत ज़्यादा थी, और यही वजह थी कि उसको लुटेरों ने लूटा है
1: जी,
0: कई बार लूटने का प्रयास किया
1: जी।
0: और जितने बार लूटा उतने ही समृद्धि उस मंदिर की लौटती गई है
1: जी जी।
0: तो मेरा यही कहना है कि जिस ढंग से आप, चूँकि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी यही कहा है कि जो मंदिर का इतिहास रहा है वो बहुत ही समृद्ध रहा है, और हम यही बताना चाहते हैं इन 75 वर्षों के बाद युवाओं को कि किस ढंग से जो है उसका इतिहास रहा है, किस ढंग से स्नेह निर्माण कार्य हुआ है, और आज एक गौरवशाली
1: जी
0: समृद्धता प्राप्त करी है उसने
2: जी। जहाँ साहब 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम सोमनाथ मंदिर के इतिहास को नई पीढ़ी तक पहुँचाने में ये जो अमृत महोत्सव आयोजित किया गया, इसकी क्या भूमिका रहेगी और किस तरह से ये पहुंचेगा?
0: ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो आपने कहा कि ये 12 ज्योतिर्लिंग में और ये जो आयोजन है
1: जी,
0: क्योंकि कोई भी कार्यक्रम आप देखते हैं कि जब आयोजन जब होते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वृत्त प्रस्तुत किए जाते हैं, नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं, नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएंगी, तो ये सब चीज़ें जो हैं वहाँ जो प्रदर्शन, बड़ी बड़ी प्रदर्शनी लगाई जाएंगी, इतिहास से लेकर के आज तक की प्रदर्शनी होगी, तो युवा पीढ़ी समझ पाएगा और उसका प्रचार प्रसार जिस ढंग से आज हम बैठ करके आज ही देख रहे हैं कि आज ये पूरे अखबारों में लगातार सोमनाथ को लेकर के है। माननीय प्रधानमंत्री जी का आर्टिकल आपने पढ़ा होगा कि कितना समृद्ध आर्टिकल था, उसने कितनी भावुकता के साथ लिखा और लोगों से अपील भी की कि जाएं सोमनाथ, जाएं और वहां पे करें
2: जी। और हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बैठकर अगर
0: सोमनाथ की
2: चर्चा कर रहे हैं तो जाहिर है कि पूरे देश में इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं और होनी भी चाहिए, जिससे नौजवान युवा सोमनाथ मंदिर के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, सांस्कृतिक विरासत के बारे में, धर्म के बारे में जाने।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही, जो आज का युवा है अब वो किताबों से हट चुका है
1: जी,
0: वो रील में विश्वास करता है, तो अब रील, क्योंकि अब जब वहाँ जाएंगे तो रील बनाएंगे
1: जी,
0: तो रील भी फ्लोट होगी सोशल मीडिया में, एक जो संचार जिस ढंग से होगा उसका जो जिस ढंग से सर्कुलेट करेंगे तो वो गाँव तक चीज़ें पहुँचेगी, तो सोमनाथ की जो कथा है वो अब वो जो युवा हैं वो खुद प्रस्तुत करेंगे, तो उनको खुद एक लगेगा जब वहाँ पे जब आप पहुँचते किसी चीज़ को आप जाकर के स्वयं देखते हैं, जो कि आपने खुद

0: रिपोर्टिंग भी की है, जब किसी चीज़ को रिपोर्ट आप वहाँ पहुँच करके करते हैं तो बात अलग होती है, और कहीं सुन करके कोई बात करते हैं तो बात अलग होती है। तो कहीं ना कहीं जो करोड़ों की संख्या में जो वहाँ युवा पहुँच रहे हैं, बुजुर्ग पहुँच रहे हैं, कई बुजुर्गों का सपना था वो सपना पूरा हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन से जो है एक मुक्ति प्राप्त होती है, और अपने जीवन काल में इसको करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो उसी तरह से जो बुजुर्ग हैं उनके कहीं ना कहीं सपने रहे होंगे, वो पूरे होंगे, युवा जा करके देखेंगे, और कहीं ना कहीं इसका जो एक व्यापक प्रचार प्रसार आप आकाशवाणी के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, प्राइवेट चैनलों के माध्यम से निरंतर, अब देखिए सोमनाथ की स्टोरी लगातार आ रही है, सोमनाथ पे रोज आर्टिकल्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक माहौल क्रिएट हुआ है।
1: जी जैसा शायद आप भी मेरी बात से इत्तेफाक रखें कि जो युवा हैं, आज के युवा कुछ साल पहले तक उतने धार्मिक नहीं थे, उतने चेतन नहीं थे धर्म को लेकर, परंपराओं को लेकर, विरासतों को लेकर, लेकिन आज का जो युवा है वो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि थोड़ा धार्मिक जितना होना चाहिए उतना है।
0: ये बहुत मार्मिक प्रश्न आपने कहा। 2014 में मैंने भी दो दिन पहले ही कहीं ये कोट किया था
1: जी,
0: कि लाल किले से देश के प्रधानमंत्री ने शौचालय की बात की
1: जी।
0: उन्होंने कहा शौचालय पहले फिर देवालय
1: जी।
0: जब आज़ादी के 70 साल बाद किसी देश के प्रधानमंत्री को शौचालय की बात करनी पड़े तो देवालय की चिंता कैसे कर सकते हैं आप। पहले उन्होंने शौचालय की व्यवस्था की
1: जी,
0: समग्र स्वच्छता की बात की, स्वच्छता अभियान चलाया, और उसके बाद देखिए सने सने उन्होंने चीज़ों को व्यवस्थित किया
1: जी।
0: उन्होंने एक बात और थी, मैं आज यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ क्योंकि विषय से विषयांतर जरूर होगा, लेकिन उन्होंने महिलाओं को निकलने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि आप लड़के को तो आप घूमने देते हैं पर लड़की लेट हो गई तो उसका हिसाब पूछते हैं
1: जी।
0: तो ये जो मैसेज उनका गया, और आज देखिए कि 2014 से हम आज 26 में बैठे हुए हैं, 12 साल का सफ़र है, इन 12 सालों में महिलाएं कितनी समृद्ध हुई। अभी हाल ही में आपने स्पेशल डिस्कशन भी किया महिला आरक्षण को लेकर के, जो बिल आया था उस पर भी आपने किया, तो पूरे देश ने देखा कि किस ढंग से मोदी जी ने महिलाओं को लेकर के कार्य किया, और किसी भी परिवार में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो जो आप धार्मिक अनुष्ठानों में, धार्मिक पूजा पाठों में उनकी भूमिका रहती है, तो आप जो आपका जो प्रश्न था कि युवा क्योंकि आकर्षित हो रहा है, क्योंकि पूजा का क्रम और धार्मिक आयोजनों का क्रम लगातार निरंतर बढ़ता जा रहा है, और आप देखिए कि जो संचार माध्यम है कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि समाज को ही हतोत्साहित भी कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ देखा जाए तो समाज में एक अच्छी चेतना का जागरण भी इसके माध्यम
1: से। नए साल पे भी युवा जो है पहाड़ों पर समुन्द्र किनारे जाने के बजाय अयोध्या जा रहे हैं, काशी वाराणसी जा रहे हैं, धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं, मंदिरों की ओर।
0: भाई आप देखिए पहले लोग ताजमहल और कुतुब मीनार देखने जाते थे
1: जी जी,
0: अब आज जो है वो मंदिरों में, हम खुद ही जानते हैं कि हमारे इतने सारे परिचित आते हैं तो हमें बड़ी दिक्कत जाती है कि उनकी व्यवस्था बनाने के लिए आज इतनी भीड़, लाखों की संख्या में नए वर्ष में जो है वो युवा आते हैं, परिवार के साथ आते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस सरकार की है, और हम तो कहते हैं कि 140 करोड़ जनता की तरफ से हम माननीय मोदी जी के प्रति आभारी ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने जो हमारी संस्कृति थी, जो हमारे ऐतिहासिक धरोहर थे, उनको जीवित कर दिया, आज उनको इस योग्य बना दिया कि लोग आज वहाँ पहुँच रहे हैं, और आज देखिए आज आप ही आपके परिचित कितने बोलते होंगे कि उज्जैन जाना है
1: जी,
0: तो आज आप हाथ खड़ा कर लेते हैं क्योंकि वहाँ व्यवस्था करना कठिन हो गया है
1: जी। सही बात। अमृत महोत्सव की बात चल रही है, तो जो सोमनाथ अमृत महोत्सव है इससे सोमनाथ और आसपास के क्षेत्रों में रोजगार, होटल व्यवसाय और स्थानीय हस्तशिल्प को जहाँ साहब कैसे बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
0: देखिए बहुत अच्छा ये प्रश्न भी आपका है, जो कि धार्मिक पर्यटन जब होता है
1: जी,
0: तो जब बाहर से जब आदमी आता है, जब आप कहीं भी जाते हैं तो आप अपने घर के लिए कुछ ना कुछ लेकर के जाते हैं
1: जी।
0: तो एक तो आने के लिए आपको पहले तो होटलों की व्यवस्था की जरूरत होगी वहाँ अच्छे से, क्योंकि आप अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से वहाँ रुकने की व्यवस्था करते हैं
1: जी।
0: तो होटलों का व्यवसाय बहुत अच्छे से चलेगा
1: जी।
0: फिर आपको वाहन का व्यवसाय बहुत अच्छे से चलता है
1: जी।
0: फिर धार्मिक पर्यटन के लिए जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं
1: जी।
0: जो स्थानीय जो परिवहन है उसको लाभ मिलता है, गाइड को लाभ मिलता है, जो वहाँ का लोकल उत्पाद होता है उसको एक दिशा दशा मिलती है। आप देखिए कई प्रोडक्ट ऐसे हुए जो लोकल से निकल करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गए। तो जो हस्तशिल्प है हमारा उसको एक अलग स्थान मिलेगा। प्रसाद का उद्योग है वो बढ़ोतरी हो रही है। जो छोटे व्यापारी हैं जो फूल, नारियल और ये सब चीज़ें बेचते हैं, तो वो एक उसको भी एक अलग दिशा मिलेगी
1: जी।
0: अच्छा गुजरात सरकार द्वारा इसको हेरिटेज टूरिज्म के रूप में भी डेवलप किया जा रहा है। तो ये जो सब चीज़ें हैं वहाँ पे भी देखिए छोटे छोटे व्यापार को प्रोत्साहित करने का भी प्रयास किया गया है
1: जी। और जाहिर बात है कि अगर जो धार्मिक पर्यटन से अगर हम इसको देखें जोड़कर, तो जब लोग आएंगे तो स्थानीय जो छोटे

0: छोटे से दुकानदार हैं, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, उनका भी फायदा होगा, जो होटल वालों का भी फायदा होगा। चौतरफा विकास पर्यटन के साथ, ये मोदी सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि ही कही जाए कि जहाँ जहाँ धार्मिक स्थलों का विकास हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है, वहाँ विकास चौतरफा हुआ है। सिर्फ मंदिर नहीं बनाए हैं, मंदिर के साथ साथ पूरा क्षेत्र का विकास हुआ है,
1: चहुमुखी विकास हो रहा है। और देखिए, आप दूर मत जाइए, आप तो यहाँ से, हमने उज्जैन आपने खुद देखा होगा, कल और आज में आप अंतर महसूस करिए कि कल क्या था, आज आप चाह करके भी वहाँ पे होटलें पूरी फुल हैं, वहाँ पे रोजगार के नए नए सृजन होते जा रहे हैं, वहाँ का जो लोकल उत्पाद है वो इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा है। तो यही स्थिति आपको सोमनाथ में देखने को भी मिलेगी, क्योंकि लोकल उत्पाद अब जो है ग्लोबल होता जा रहा है। तो हमारी जो चीज़ें थी, तो अब बाहर का जब आदमी आकर के जब देख रहा है, चीज़ों को कर रहा है, तो वो उसको प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जो कि प्लेटफॉर्म मिलने की आवश्यकता होती है, और वहाँ पे ये इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको देखने को मिलेगा।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें यहाँ पर अमृत महोत्सव के अवसर पर स्मारक डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी किया गया है सोमनाथ मंदिर जो अमृत महोत्सव है उस पर।
1: देखिए, किसी चीज़ को जीवंत रखने के लिए, उसको यादगार बनाने के लिए ये सब चीज़ें बरसों से चले आ रही है। और ये क्योंकि आप देखिए कि स्मारिका निकाली जाती है, डाक टिकट जारी किए जाते हैं, सिक्के जारी किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये उस चीज़ को बताता है, ये बरसों बरसों तक, जैसे कि आपने कहा ना कि मोदी जी ने कहा कि हजारों वर्ष तक याद रहेगा, तो याद कैसे रखा जाएगा? तो ये डाक टिकट याद रखे जाएंगे, ये सिक्के याद रखे जाएंगे, ये जो डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है वो याद रखे जाएंगे। तो ये सब चीज़ें एक इस चीज़ को चिरस्थायी बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है।
0: जी जासर, सोमनाथ मंदिर की जो ऐतिहासिक यात्रा जो है, 1026 से शुरू होती है और आज हम सन 2026 में हैं, 1000 वर्ष पूरे हो चुके हैं। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण भी हुए और इन आक्रमणों और उनके पुनर्निर्माण के बाद जो सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया, किस तरह भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ये प्रतीक बन सकता है?
1: देखिए, बहुत ही ये बात रही है कि मोदी जी ने इस बात को, जैसे आपने भी कहा कि किसी चीज़ के विकास के साथ साथ वहाँ के ऐतिहासिक महत्व को, सांस्कृतिक विरासत को सुदृढ़ करने के लिए, क्योंकि आप जब सोमनाथ जाएंगे तो गुजरात के कल्चर को वहाँ महसूस करेंगे, सोमनाथ के कल्चर को वहाँ महसूस करेंगे, तो ये जो सांस्कृतिक जो गतिविधियाँ होंगी, जो सांस्कृतिक आयोजन होंगे, कहीं ना कहीं ये हमारे मानस में स्थान बना चुके रहेंगे, मानस पटल पे वो शामिल हो चुके रहेंगे। तो ये जो करोड़ों की संख्या में युवा और बुजुर्ग जा रहे हैं वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं इसका असर वहाँ पे पड़ेगा। और आने वाले समय में, जैसे आप, हम बात करते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में, तो धीरे धीरे शनि शनि एक एक ज्योतिर्लिंग पे काम होना शुरू हो चुका है, तो आने वाले समय में इसी तरह के जो आयोजन हैं वो अन्य जगहों पे भी होंगे, तो हमें लगता है कि हमारी जो विरासतें हैं वो और सुदृढ़ हो पाएंगे।
0: जी, 11 मई को जो समारोह के दौरान, जो अमृत महोत्सव समारोह के दौरान 11 पवित्र तीर्थ स्थलों के जल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ भव्य कुंभाभिषेक और महापूजा की और देश की समृद्धि की, लोगों के कल्याण की कामना की।
1: देखिए, ये हमारी परंपरा है जी, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जब भी कभी सिंहस्थ होगा तो 11 ज्योतिर्लिंगों के जल से वहाँ अभिषेक होगा, विधिवत सारे अखाड़ों के प्रमुख वहाँ मौजूद रहेंगे, शंकराचार्य वहाँ मौजूद रहेंगे, उसके बाद राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए, राष्ट्र की समृद्धि के लिए कामना की जाती है। यही कार्य मोदी जी ने यहाँ किया, और यही वजह है कि जिस ढंग से आपने देखा कि 11 मई को चूंकि इसकी नींव रखी गई, इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई, चूंकि 11 मई 1951 में जो है तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी इस ऐतिहासिक पल को वो किया था, उसको याद किया गया, और यही वजह थी कि मोदी जी ने 11 ज्योतिर्लिंगों के जल से अभिषेक करके ये इस कार्य की का श्रीगणेश किया था।
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। अंतिम एक, जो आज के युवा हैं, और क्योंकि युवा पीढ़ी के केंद्र में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र में हमेशा युवा पीढ़ी रहती है, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं धर्म को लेकर, विरासत को लेकर, सांस्कृतिक विरासत को लेकर, जो सोमनाथ, आप भी मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ये अपील करेंगे कि वो भी सोमनाथ मंदिर जाएं, वहाँ की विरासत को देकर देखें, और किस तरह से इतने आक्रमणों के बाद भी मंदिर आज वहाँ खड़ा हुआ है और देश के गौरव की को बता रहा है।
1: बहुत अच्छी बात आपने कही।

0: मैं आज के युवाओं से यही आग्रह करना करूँगा कि वो हमारी विरासत को, वो हमारे इतिहास को और वो हमारी संस्कृति को जिंदा रखने का प्रयास करें, क्योंकि भारत की बागडोर आने वाले समय में आपके हाथ में ही आने वाली है
1: जी।
0: आप इसको समझें कि इसकी महत्ता क्या है। बड़े संघर्षों से चीज़ें आज यहाँ खड़ी हुई है, इसको सहेजना और आगे लेकर के चलना आपकी जवाबदारी है। आप जरूर देखें और आपको ये सीख जरूर मिलेगी कि किस ढंग से कोई इमारत बार बार टूटने के बाद भी खड़ी होती है। कहीं ना कहीं आपके जीवन में इस बात को आत्मसात करने का ये अवसर होगा कि किस ढंग से गजनवी ने इसको बार बार तोड़ा, उसके बाद कई आक्रांताओं ने इसको तोड़ा, लेकिन आज भी सोमनाथ खड़ा हुआ है, सोमनाथ का मंदिर आज भी वही वैभव के साथ है। तो कहीं ना कहीं इस बात के संकेत हैं कि यदि हम प्रयास करते रहें तो जीर्ण उद्धार लगातार होता है और हम इस चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं।
1: जी, जाने से पहले एक बार फिर मैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ अमृत महोत्सव में 11 मई को जो शामिल हुए थे वहां पर क्या कुछ कहा था, एक बार फिर से सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को।
2: हमारे सांस्कृतिक स्थल हजारों वर्षों से भारत की पहचान रहे, इतनी समृद्ध विरासत हमें मिली है, लेकिन आप विडंबना देखिए, हमने दशकों तक उसके महत्व को नहीं समझा। दुनिया में से कितने ही उदाहरण हैं जहां विदेशी हमलावरों ने राष्ट्रीय पहचान से जुड़े स्थलों को नष्ट किया, लेकिन जब उस देश के लोगों को मौका मिला, सबने साथ आकर अपनी पहचान को फिर से सहजा, फिर से संवारा, पुनः प्रतिष्ठा की। लेकिन हमारे यहां राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़े विषयों पर भी राजनीति होती रही। सोमनाथ खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आजादी के बाद पहले दायित्वों में से एक था कि सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करते, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने इसके लिए इतने प्रयास किए। लेकिन हम सब जानते हैं उन्हें इसके लिए नेहरू जी द्वारा कितना विरोध झेलना पड़ा था। मैं आज इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सरदार साहब की इच्छा शक्ति थी कि इतने विरोध के बावजूद सरदार साहब डिगे नहीं, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी हुआ और देश ने सदियों के कलंक को भी धो दिया। साथियों, दुर्भाग्य से देश में ऐसी शक्तियां आज भी प्रभावी हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्वाभिमान से ज्यादा तुष्टीकरण जरूरी लगता है। राम मंदिर निर्माण जैसे अवसरों पर भी हमने देखा है किस तरह राम मंदिर निर्माण का भी विरोध किया गया। हमें ऐसी मानसिकता से सावधान रहना है। इस तरह की संकुचित राजनीति को हमें पीछे छोड़ना होगा। हमें विकास और विरासत को साथ लेकर के आगे बढ़ना होगा।
1: अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, विचारक कृष्ण मोहन झा जी को, जो कि सोमनाथ अमृत महोत्सव पर उन्होंने विस्तार से वहाँ की विकास और विरासत की गौरव यात्रा पर प्रकाश डाला। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
0: धन्यवाद, और आकाशवाणी की पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और साधुवाद देता हूँ कि आपने इस गंभीर विषय को समाहित किया और लोगों तक सोमनाथ के बारे में बताने का प्रयास किया। धन्यवाद।
1: कार्यक्रम के आज के अंक में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में किसी अन्य विषय के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी मध्य प्रदेश। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे पीएम मोदी के 12 साल सोमनाथ अमृत महोत्सव का सांस्कृतिक पुनर्जागरण। ये कार्यक्रम आरएनयू भोपाल की प्रस्तुति थी।
1: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी है। आज के राष्ट्रीय क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के कार्यक्रम में हम सुनवा रहे हैं मैथिली लोक संगीत, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं आकाशवाणी की ए श्रेणी की कलाकार सौम्या मिश्रा। सौम्या मिश्रा बिहार के मधुबनी जिले की निवासी हैं। वे एक प्रतिभाशाली लोक गायिका हैं, जिन्हें मैथिली, हिंदी और भोजपुरी में अपनी भावपूर्ण प्रस्तुतियों के लिए विशेष पहचान प्राप्त है। आपके संगीत में मिथिला की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं की गहरी छाप दिखाई देती है, साथ ही उसमें आधुनिक श्रोताओं को आकर्षित करने वाली नवीनता भी विद्यमान है। सौम्या मिश्रा देश भर के अनेक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक समारोहों और मंचीय कार्यक्रमों में अपनी मधुर एवं भावपूर्ण गायकी से श्रोताओं का मन मोहती रहती हैं। आइए सुनते हैं आकाशवाणी की ए श्रेणी की कलाकार सौम्या मिश्रा की स्वरबद्ध प्रस्तुति में मनमोहक मैथिली लोकगीत। आज के कार्यक्रम में संगत करता है तबले पर हरिभूषण झा, ऑक्टोपैड पर ललित, ढोलक पर अमन कृष्ण और सिंथेसाइजर पर शशिभूषण झा। सौम्या मिश्रा अपने कार्यक्रम का आरंभ कर रही हैं महाकवि विद्यापति की एक रचना चानन भेल विषम सर रे से।
1: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक। वी प्रेजेंट मैथिली फोक सॉन्ग बाय सौम्या मिश्रा एंड ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। सौम्या मिश्रा हेल्स फ्रॉम मधुबनी बिहार। She is a gifted folk vocalist, acclaimed for her soulful renditions in Maithili, Hindi and Bhojpuri. Her music reflects a deep connection to the cultural traditions of Mithila, while carrying a freshness that appeals to contemporary audiences. Sowmya Mishra has performed at numerous prestigious cultural festivals and stage programs across the country, enchanting listeners with her melodious voice and heartfelt expression. In today's program, the accompanists are Haribhushan Jha on tabla, Lalit Kumar on octopad, Aman Krishan on dholak, and Shashibhushan Jha on keyboard. She begins her rendition with a composition titled Chanan Bhel.

0: अभी आप सुन रहे थे सौम्या मिश्रा से महाकवि विद्यापति की एक रचना चानन भेल विषम सर रे। आइए अब सुनते हैं एक लगनी गीत जिसके बोल हैं एकता हम बारी कुमारी।
1: We just heard a composition titled चानन भेल। Continuing this program, she now presents a composition titled एकता हम बारी कुमारी।

0: आप सुन रहे हैं सौम्या मिश्रा द्वारा प्रस्तुत मैथिली लोकगीत। कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति है एक चैती, जिसके बोल है कुहके बारी कोयलिया हो रामा।
1: That was a Maithili composition performed by Soumya Mishra. We will now listen a composition titled Kuhke Bari Koyaliya Horama.

0: अभी आप सुन रहे थे चैती गीत। कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति है एक पूर्वी जिसके बोल हैं, बाट हेरी दिन काटी नूर बहैया।
1: That was a मैथिली composition performed by सौम्या मिश्रा। She concludes her rendition with a composition titled बाटे हेरी दिन काटी नूर बहैया।

0: इसी के साथ आज के कार्यक्रम में मैथिली लोकगीत की ये प्रस्तुति अब यहीं संपन्न होती है। इस कार्यक्रम में तबले पर संगत की हरिभूषण झा ने, ऑक्टोपैड पर थे ललित कुमार, ढोलक पर थे अमन कृष्ण और सिंथेसाइजर पर साथ दिया था शशि भूषण झा ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर ओडिशा की प्रस्तुति।
1: विद दैट शी कंक्लूड्स हर रेंडिशन ऑफ मैथिली फोक कॉम्पोजिशंस। दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड इन द स्टूडियो ऑफ आकाशवाणी दिल्ली। कॉन्टिन्यूइंग द ब्रॉडकास्ट फ्रॉम आकाशवाणी दिल्ली, नाउ वी विल लिसन टू द प्रेजेंटेशन ऑफ आकाशवाणी जयपुर ओडिशा।

क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं। मैं अमीना हुसैन, नमस्कार। आज हम आपको सुनवा रहे हैं ओडिशा प्रदेश के कुछ मधुर और मन मोह लेने वाले आधुनिक गीत, जिनको प्रस्तुत किया है आकाशवाणी जयपुर केंद्र ओडिशा। इन गानों को सुरों में सजाकर आप तक पहुंचाया है आकाशवाणी जयपुर केंद्र ओडिशा के सुप्रसिद्ध टॉप ग्रेड म्यूजिक कंपोजर श्री विजय कुमार सामंतराय। श्री विजय कुमार सामंतराय माता श्रीमती स्नेहलता सामंतराय और पिता श्री चंद्रशेखर सामंतराय के सुपुत्र हैं। आपने गुरु श्री हेमंत कुमार त्रिपाठी के तत्वावधान में बचपन से ही बैला यानी कि वायोलिन की शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया था। सन 1994 में आपने आकाशवाणी जयपुर केंद्र में स्टाफ आर्टिस्ट के तौर पर योगदान दिया। उसके बाद से आपने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक सीढ़ियों को पार करते हुए सन 2023 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय, आकाशवाणी और दूरदर्शन की तरफ से टॉप ग्रेड म्यूजिक कंपोजर का मान्यता हासिल किया। आपने सन 2015 में आकाशवाणी संगीत सम्मेलन के अखिल भारतीय संगीत कार्यक्रम में बेला वादक के तौर पर संगत भी किया है। आपने आकाशवाणी के विभिन्न कार्यक्रम में संगीत देकर 20 से भी अधिक नेशनल और इंटरनेशनल एनुअल अवार्ड भी प्राप्त किया है। तो लीजिए, आज हम आपको सुनवा रहे हैं विजय कुमार सामंतराय के बनाए हुए सुरों से सजे कुछ आधुनिक ओडिया गीत। विभिन्न वाद्य यंत्र पर संगत कर रहे हैं तबला पर सुशांत कुमार अधिकारी, बांसुरी पर वी कुर्मनाधन, वायोलिन पर हिमांशु भूषण शतपथी, मैंडोलिन पर के ईश्वर सराफ, गिटार पर इंदर सिंह, ऑर्गन पर के संतोष कुमार राव, सैक्सोफोन पर हैं राहुल देव सामंतराय, ऑक्टोपैड पर बी जगदीश कुमार, ढोलक पर हैं उमेश कुमार पाणिग्राही और आकाश कुमार सामंतराय। स्पेशियल इफेक्ट दिया है गुप्तेश्वर पाणिग्राही। तो प्रस्तुत है पहला गाना, जिसका बोल है मन हृदय जेते सबू कथा तम आगे प्रिय कही दिली। मतलब है, अपने दिल की हर बात लो आज कह दिया हमने आपके सामने। ये बोल लिखा है गीतकार रंजन कुमार बेहरा और मधुर आवाज है प्रीति पंडा की।

कभी सुनते हैं जिंदगी की कुछ भूल भुलैया अनजान राहों की बात। ये बोल लिखा है गीतकार बसंत कुमार दास, आवाज है सनातन पुरोहित दास की। पांथ शाड़ार रातिटीए पाई घड़िए पड़ुछी उणा, हेले मधुशाला अजणा कोणरे सरुना ही बिका किणा। जीवन हेउ केते बाट बणा, हेउ केते बाट बणा।

अभी सुनते हैं गीतकार किशोर चंद्र नंद के लिखे हुए गीत आवेगरे के ही कही थीबा कथा मनो तुली ने किया अंके। इस गाने को आवाज दिया है प्रीति पंडा। किसी ने जो दिल से कह दिया कुछ बातें, आज ये मन उन्हें ही क्यों ढूंढे।

कार्यक्रम के अगले गाने को अपने मन मोह लेने वाले आवाज से प्रस्तुत कर रहे हैं सनातन पुरोहित दास। गीतकार हैं गौर पटनायक। बोल है नाटकर मिछ अभिनय छड़ा आउ किछि जाने नाही। मतलब है जीवन के रंगमंच में मैं हूं एक अभिनेता, झूठा अभिनय के सिवाय और कुछ भी तो नहीं आता।

में प्रस्तुत है एक युगल गीत, गीतकार रंजन कुमार बेहरा, आवाज है सनातन पुरोहित दास और प्रीति पंडा की। बोल है, प्रथम देखारे तुम्हें मनकल चोरी, अल्प कथारे आहा लागिगला टोरी, पहली ही मुलाकात में मन चुरा लिया, थोड़े ही बातों में हाय दिल लगा लिया।

अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ ओडिया आधुनिक गीत, जिनको प्रस्तुत किया था आकाशवाणी जयपुर केंद्र उड़ीसा में और प्रसारण किया गया आकाशवाणी दिल्ली से। विभिन्न वाद्य यंत्र पर संगत कर रहे थे तबला पर सुशांत कुमार अधिकारी, बांसुरी पर वी कुर्मनाथ।

वायोलिन पर हिमांशु भूषण सतपथी, मैंडोलिन पर के ईश्वर सराफ, गिटार पर इंदर सिंह, ऑर्गन पर के संतोष कुमार राव, सेक्सोफोन पर थे राहुल देव सामंतराय, ऑक्टोपेड पर बी जगदीश कुमार, ढोलक पर उमेश कुमार पाणिग्राही और आकाश कुमार सामंतराय। स्पेशियल इफेक्ट दिया था गुप्तेश्वर पाणिग्राही। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग में सहायता किया था रंजन कुमार बेहरा। यांत्रिक सहायता किए थे शरद कुमार पाढ़ी और एन योगेंद्र। इसी के साथ क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विदा चाहती हूँ मैं अमीना हुसैन। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमरीका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल की पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
2: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉ. अलका गुर्जर और डॉ. सतीश पुनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे। प्रवर्तन